0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर श्रोताओं आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आइए अब हम आपको जानकारी देते हैं हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के प्रमुख कार्यक्रमों की। जीवन सौरभ कार्यक्रम आप सुनेंगे अब से कुछ ही देर के बाद। आज का शीर्षक, मन को अनुशासन में रखें। अक्षय निधि कार्यक्रम लेकर आएंगे 7:10 पर, जिसमें आप सुनेंगे ऋग्वेद के द्वितीय मंडल से आज सूक्त 22 का वाचन। भक्ति संगीत कार्यक्रम आप सुनेंगे 7:20 से। हमारा नियमित कार्यक्रम वतन का राग आप सुनते हैं प्रातः 8 बजे। आज का कार्यक्रम केंद्रित होगा मदन लाल ढींगरा की जयंती पर। प्रातः 8:30 पर होगा कार्यक्रम आमने सामने, जिसमें आप सुनेंगे एलपीजी गैस की बचत और इसका संरक्षण कैसे करें, विशेषज्ञ आशा पाठक। वसीम बरेलवी पर केंद्रित होगा वागर्थ कार्यक्रम, प्रसारण समय 9:00। 9:30 पर आप सुनेंगे विशेष कार्यक्रम, जिसमें नर्मदा एक सांस्कृतिक परिदृश्य के रूप में, कलाकार अशोक जमनानी। भोपाल शहर की साहित्यिक सांस्कृतिक गतिविधियों की जानकारियां आप सुनते हैं परिक्रमा कार्यक्रम में। आज ये कार्यक्रम आप सुनेंगे 10:00। हिंदोस्तान हमारा कार्यक्रम आज केंद्रित रहेगा शंकर शाह रघुनाथ शाह की शहादत पर, प्रसारण समय 10:30। दिन में 11:00 आप सुनेंगे कार्यक्रम कला कल्लोलिनी, आज का आकर्षण सत्यदेव दुबे। 11:30 पर युग प्रवर्तक विवेकानंद कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा, 48वां भाग आज आप सुनेंगे। हमारे कार्यक्रमों को आप प्रतिदिन 7:00 से रात्रि 10:00 तक निरंतर सुन सकते हैं मिक्सलार एप्लीकेशन पर भी। बने रहिए रेडियो आजाद हिंद के साथ, देश का चैनल देश के लिए। आइए श्रोताओं सुनते हैं कार्यक्रम जीवन सौरभ।
1: जीवन सौरभ।
2: हमारा मन अति सूक्ष्म है, पर है बड़ा शक्तिशाली। अगर हमने अपने मन को काबू में कर लिया तो मानो सारी दुनिया को काबू में कर लिया। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे एक घर होता है, घर में उससे छोटा कमरा होता है, कमरे से छोटा उसका दरवाजा होता है, और दरवाजे से छोटी उसकी कुंडी होती है, कुंडी से भी छोटा ताला होता है, और ताले से छोटी चाबी होती है। छोटी सी चाबी से ताला लगाते ही सारे घर का कब्जा हमारी जेब में होता है। इसी प्रकार छोटे से मन को कब्जे में करते ही सारा संसार हमारे कब्जे में आ जाता है। मजे की बात देखिए, चाबी को एक ओर घुमाया तो ताला बंद हो जाता है और दूसरी ओर घुमाने से खुल जाता है। इसी प्रकार मन की चाबी को परमात्मा की तरफ घुमाने से हम संसार से खुल जाते हैं और परमात्मा से बंध जाते हैं। हमारा मन हमेशा ही अनुकूलता चाहता है, इसे जरा प्रतिकूलता बर्दाश्त नहीं। यह हमेशा ही सुख चैन ढूंढता है। मन की तुलना हाथी से की जा सकती है। हाथी को कितना भी नहला धुला कर आप खड़ा करें, लेकिन वो फिर से अपनी सूंड से मिट्टी धूल अपने ऊपर डाल लेता है। ऐसे ही हमारे मन के ऊपर भी जमाने की मिट्टी धूल रोज रोज गिरती रहती है, लेकिन एक

0: जीवन सौरभ।
1: नब्बे दशमलव आठ मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद के कार्यक्रमों को। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम जीवन सौरभ। आइए अब सुनते हैं अक्षय निधि।
2: प्रस्तुत है कार्यक्रम अक्षय।

0: अक्षय निधि कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है ऋग्वेद के द्वितीय मंडल के सूक्त 22 से वाचन। ऋषि हैं ग्रत्समत और भार्गव शौनक, देवता इंद्र, छंद अष्टि अथवा अतिशक्वरी।
1: त्रिकद्रुकेशु महिषो यवाशिरम तुविशुष्मस्त्री पत्सोम मपि बद्विष्णुना सुतम यथा वशत स ईम ममाद महिकर्म कर्तवे महामुरुम सैनम षश्चद्देवो देवम सत्यमिंद्रम सत्य इंदुः। अत्यंत बली पूजनीय इंद्रदेव ने तीनों लोकों में व्याप्त तृप्तिदायक दिव्य सोम को जौ के सार भाग के साथ मिलाकर विष्णुदेव के साथ इच्छानुसार पान किया। उस सोम ने महान इंद्रदेव को श्रेष्ठ कार्य करने के लिए प्रेरित किया। उत्तम दिव्य गुणों से युक्त उस दिव्य सोमरस ने इंद्रदेव को प्रसन्न किया। अधत्विषीमाम अभ्योजसा क्रिविम युधा भवदा रोदसी अप्रणदस्य मज्मना प्रवावृधे अधत्तान्यं जठरे प्रेम रिच्यत सैनम सश्च देवो देवम सत्यमिंद्रम सत्य इंदुः। हे इंद्रदेव, अपनी सामर्थ्य से क्रीवी नामक असुर को आपने जीता और आकाश एवं पृथ्वी को तेज से परिपूर्ण कर दिया। आपने सोम के एक भाग को अपने उदर में धारण किया और दूसरा भाग देवों को दे दिया। सत्य स्वरूप दीप्तिमान दिव्य सोम सत्य स्वरूप तेजस्वी इंद्रदेव को पुष्ट करता है। साकम जातः क्रतुना साकमोजसा ववक्षिथ साकम वृद्धो वीर्यैः सासहिर मृधो विचर्षिणः दाता राधः स्तुवते काम्यं वसुसैनं सश्चद्देवो देवं सत्यमिंद्रं सत्य इंदुः। हे इंद्रदेव, आप यज्ञ के साथ प्रकट हुए हैं। अपनी सामर्थ्य से विश्व का भार उठाने को लालायित रहते हैं। हे ज्ञानी श्रेष्ठ इंद्रदेव, महान पराक्रमी शत्रु संहारक विशिष्ट ज्ञानी, आप स्तोताओं को अभीष्ट ऐश्वर्य देते हैं। सत्य स्वरूप दीप्तिमान दिव्य सोम सत्य के ज्ञाता इंद्रदेव को प्राप्त होता है। तव त्यन्नर्यम नृतोप इंद्र प्रथमं पूर्व्यं दिवि प्रवाच्यं कृतम् यद्देवस्य शवसा प्रारिणा असुम ऋणन्नपः भुवद्विष्म भव्यादेव मोजसा विदादुर्जम शतक्रतुर विदादिशम। सभी को अपने अनुशासन में चलाने वाले हे इंद्रदेव, मानव मात्र के हितकारी, सबसे पहले किए गए आपके सबसे उत्कृष्ट कर्म स्वर्गलोक में प्रशंसित हैं। अपनी शक्ति से आपने राक्षसों का संहार किया, असुरों को हराया तथा जल प्रवाहित किया। शतकर्मा इंद्रदेव ने अन्न एवं बल प्राप्त किया।
0: अक्षय निधि कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे ऋग्वेद के द्वितीय मंडल के सूक्त 22 से वाचन, प्रस्तुत कर रहे थे डॉक्टर नीलिम त्रिपाठी।
2: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद से प्रसारित किए जा रहे कार्यक्रम। आइए श्रोताओं, सुनते हैं भक्ति संगीत।

तन की पवित्रता मन की पवित्रता से आती है, मन की पवित्रता से बुद्धि की पवित्रता आती है, बुद्धि की पवित्रता से चित्त की पवित्रता आती है, और चित्त पवित्र होने से जीवन में चेतना स्वयं ही प्रकट हो जाती है।

भक्त और भगवान का हृदय एक जैसा ही होता है। भक्त भक्त है और भगवान भगवान, इनकी तुलना नहीं हो सकती। परंतु फिर भी भक्त और भगवान का हृदय बिल्कुल एक जैसा ही होता है।

भक्ति संगीत कार्यक्रम आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद से। श्रोताओं, जिस तरह मीरा ने श्री कृष्ण को पाया, अर्जुन ने उन्हें अपना सखा बनाया, आइए हम भी अपने ईश्वर से कुछ इसी तरह से एक बेनाम का रिश्ता बना लें।

जब विज्ञान मौन हो जाता है, जहां तर्क की सीमाएं समाप्त हो जाती हैं और व्यक्ति भीतर से पूरी तरह से निशब्द हो जाता है, वहां से जो अनुभूति आरंभ होती है उसी का नाम ईश्वर है।

जब हम सहजता से अपने ईश्वर को पुकारते हैं, जब हम अपनी सारी चिंताएं, अपनी सारी विवशताएं उस परम शक्ति के चरणों में समर्पित कर देते हैं जो घट घट में समाया है, उस पर विश्वास ही हमारे हर सुख संतोष की चाबी है और वे सब कुछ संभाल लेते हैं। यही भरोसा, यही विश्वास अपने आराध्य के प्रति सच्ची भक्ति होगी।

हमें भी प्रभु चरणों की भक्ति सतत मिलती रहे, प्रभु की असीम अनुकंपा हम सब पर सदैव बनी रहे। इसी भाव के साथ भक्ति संगीत कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न करते हैं। 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद। हमारे कार्यक्रमों को आप प्रतिदिन सुबह 7 बजे से रात्रि 10 बजे तक निरंतर सुन सकते हैं मिक्सलार एप्लीकेशन पर भी। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम भक्ति संगीत। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण, देश का चैनल देश के लिए। श्रोताओं, सुबह के ठीक 8 बजे हैं। लीजिए प्रस्तुत है अगला कार्यक्रम वतन का राग। आज का कार्यक्रम केंद्रित है मदनलाल ढींगरा पर।

मैं अपने बचाव में सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि अंग्रेजों की कोई भी न्याय व्यवस्था मुझे सजा देने का हक नहीं रखती। इसी वजह से मैंने कोई वकील मुकर्रर करना मुनासिब नहीं समझा। जैसे जर्मनी के खिलाफ लड़ना अंग्रेजों की देशभक्ति है, वैसे ही अंग्रेजों के खिलाफ आजादी की लड़ाई हमारी देशभक्ति है। मैं अंग्रेजों को 8 करोड़ भारतीयों का हत्यारा मानता हूँ, जिनको पिछले 50 सालों में बेरहमी से मौत के घाट उतारा गया है। ये शब्द हैं कटघरे में खड़े उस नौजवान के, जिसमें अपने देश की आजादी का जज्बा हिलोरे ले रहा था और जिसका परिवार अंग्रेजों का विश्वास पात्र था। नाम था मदनलाल ढींगरा। मदनलाल ढींगरा का जन्म 18 सितंबर 1883 को पंजाब प्रांत के हिंदू परिवार में हुआ था। उनके पिता सिविल सर्जन थे और अंग्रेजी रंग में पूरी तरह रंगे हुए थे। मदनलाल ढींगरा को भारत की आजादी से संबंधित क्रांति के आरोप में लाहौर के कॉलेज से निकाल दिया गया। परिवार ने मदनलाल से नाता तोड़ लिया। मदनलाल को जीवन यापन के लिए पहले एक क्लर्क के रूप में, फिर एक तांगा चालक के रूप में और अंत में एक कारखाने में श्रमिक के रूप में काम करना पड़ा। कारखाने में श्रमिकों की दशा सुधारने के लिए उन्होंने यूनियन बनाने की कोशिश की, तो वहां से भी उन्हें निराश होना पड़ा। कुछ दिन उन्होंने मुंबई में काम किया, फिर अपने बड़े भाई की सलाह पर उच्च शिक्षा प्राप्त करने इंग्लैंड चले गए। विदेश में रहकर अध्ययन करने के लिए बड़े भाई ने तो सहायता दी ही, इंग्लैंड में कुछ राष्ट्रवादी कार्यकर्ताओं से भी उन्हें आर्थिक मदद मिली।

मदनलाल ढींगरा का क्रांतिकारी सफर लंदन से शुरू हुआ। जब वे लंदन के यूनिवर्सिटी कॉलेज से सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा कर रहे थे, 1905 के आसपास का समय था। मदनलाल इंडिया हाउस में रहते थे, जो उन दिनों भारतीय विद्यार्थियों के राजनीतिक क्रियाकलापों का केंद्र हुआ करता था। ढींगरा राष्ट्रवादी विनायक दामोदर सावरकर और श्यामजी कृष्ण वर्मा के संपर्क में आए। वे लोग ढींगरा की प्रचंड देशभक्ति से बेहद प्रभावित हुए। सावरकर ने ही मदनलाल को अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संस्था का सदस्य बनाया और हथियार चलाने का प्रशिक्षण दिया। ये लोग उस समय खुदीराम बोस, कन्हैयालाल दत्त, सतिंदर पाल और काशीराम जैसे क्रांतिकारियों को मृत्युदंड दिए जाने से बेहद क्रोधित थे। इन घटनाओं ने सावरकर और ढींगरा को सीधे बदला लेने के लिए विवश किया। इंग्लैंड में अध्ययन के दौरान उन्होंने विलियम हट कर्जन वाइली नामक एक ब्रिटिश अधिकारी की गोली मारकर हत्या की थी। ये घटना 20वीं शताब्दी में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की प्रमुख घटनाओं में से एक थी। मदनलाल ढींगरा का मानना था कि अंग्रेज प्रतिवर्ष 10 करोड़ रुपया भारत से इंग्लैंड ले जाते हैं और भारत को चूसकर मौज उड़ाते हैं। अंग्रेजी हुकूमत देशवासियों को बिना बात फांसी की सजा और आजीवन कारावास देती है। एक अंग्रेज 100 रुपया पाउंड की नौकरी पर भारत इसलिए भेजा जाता है कि वो 1000 भारतीयों को मौत का निशाना बनाए। अंग्रेजों की ये हवस साम्राज्य विस्तार के साथ साथ भारतीयों के शोषण की दास्तान बयां करती है। जैसे जर्मनी को इंग्लैंड पर कब्जा जमा कर उसे गुलाम बनाने का कोई अधिकार नहीं है, वैसे ही अंग्रेजों को भारत को पराधीनता की बेड़ियों में रखने का कोई अधिकार नहीं।

1 जुलाई 1909 की रात को मदनलाल वाइली से मिले और उनसे कुछ खास बात करने के बहाने उनके समीप पहुंचे। कोल्ड पिस्टल निकालकर कर्जन वाइली पर करीब से 2 गोलियां चलाईं, जिससे वो ढेर हो गया। नस नस में भरे हुए इस क्रांतिकारी के पराक्रम और देश के लिए दी गई कुर्बानी के कारण उन्हें पकड़कर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। उन्होंने शान से कहा कि मैं आपका कानून नहीं मानता। जिस तरह से जर्मन लोगों का ब्रिटेन पर राज करने का कोई अधिकार नहीं, वैसे ही आप लोगों को भी हम पर राज करने का अधिकार कैसे हो सकता है? जब जर्मन को मारकर अंग्रेज अपने को देशभक्त कहता है, तो निश्चित रूप से मैं भी देशभक्त हूँ। मातृभूमि का अपमान करने वालों की हत्या करना एक देशभक्त का पवित्र कर्तव्य है। मैंने वही किया है जो सच्चे देश प्रेमी को करना चाहिए। मुझे मृत्यु की जरा भी परवाह नहीं। अंग्रेजों का काला कानून मुझे फांसी की सजा दे सकता है, पर वो देशभक्ति की भावना को दफन नहीं कर सकता। मेरी फांसी के बाद देश में अंग्रेजों के खिलाफ आजादी की जंग और तेज होगी। इंग्लैंड की ब्रिक्सटन जेल में मदनलाल और सावरकर को रखा गया था। ब्रिटिश हुकूमत ने 17 अगस्त सन 1909 को उन्हें फांसी पर लटका दिया।

0: आजादी की यादगार तरानों पर केंद्रित राष्ट्र वंदना के विविध स्वर जन गर्जे। अंग्रेजी राज के दमन लूट और आतंक के प्रतिरोध में भारतीय जन का उद्घोष जन गर्जे। स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति ऑडियो एल्बम का संग्रह जन गर्जे।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की।

रेडियो आजाद हिंद से प्रसारित किए जा रहे कार्यक्रमों को आप प्रतिदिन सुन सकते हैं प्रातः 7 बजे से रात्रि 10 बजे तक। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 MHz पर, देश का चैनल देश के लिए।

0: आदमी वो नहीं जिसे हालात बदल दे, आदमी तो वो है जो हालात को बदल दे। ऐसे ही महान वीर सपूतों की कहानी सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद पर 90.8 मेगाहर्ट्ज। रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम आमने सामने।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। मैं हूं दानिश। कार्यक्रम आमने सामने में आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय पर जो हर घर से जुड़ा है, एलपीजी गैस का सही इस्तेमाल और उसका संरक्षण। एलपीजी का पूरा नाम लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, हिंदी में तरल पेट्रोलियम गैस कहते हैं। यह हमारे घरों में सबसे जरूरी चीजों में से एक है। इसका मुख्य उपयोग खाना बनाने में होता है। ये गैस कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल को साफ करने की प्रक्रिया से निकलता है। भारी दबाव डालकर इसे तरल रूप में बदला जाता है ताकि सिलेंडरों में भरा जा सके और आसानी से कहीं भी ले जाया जा सके। इस विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं विषय विशेषज्ञ आशा पाठक जी। नमस्कार मैम।
3: नमस्ते, आपके सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार।
2: मैम, सबसे पहले हम इस विषय पर आपसे ये जानना चाहते हैं और हमारे श्रोता भी, कि एलपीजी गैस का सही इस्तेमाल और उसका संरक्षण किस तरह से किया जाए।
3: बहुत ही आवश्यक एक प्रश्न है, क्योंकि एलपीजी हर घर में भोजन तो बना ही रहा है और साथ में लोगों के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को भी प्रदान कर रहा है। कहीं अगर रात में कोई मेहमान आ जाए और चूल्हा जलाना पड़ता तो आप समझ सकते हैं कि उस महिला का मानसिक स्थिति जो है वो क्या होती है, उस समय लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। तो एक प्रकार से एलपीजी जो है परिवार में खुशियां लाता है और ये सबसे ज्यादा बोलना सुविधाजनक ईंधन है और साथ में सुरक्षित ईंधन है। तो एलपीजी का उपयोग जो है वो घर घर में तो हो ही रहा है, लेकिन उसके साथ ही आज जो है एलपीजी से चलने वाली गाड़ियां भी हैं और एलपीजी इंडस्ट्रीज में भी इस्तेमाल होता है। तो एलपीजी एक प्रकार से इसीलिए ये इस्तेमाल होता है इतना ज़्यादा, क्योंकि ये बहुत ही सुविधाजनक ईंधन है। इसको एक तो कन्वीनियंट है कि इसको हम स्टोर कर सकते हैं या तो फिर हम उसको पाइपलाइंस के जरिए हम भी ले सकते हैं। ये जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण ईंधन है।
2: तो क्या एलपीजी एक सीमित संसाधन है और इसे बचाना क्यों जरूरी है?
3: जी हाँ, देखिए क्या होता है, क्योंकि एलपीजी आपने बताया लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो है, पेट्रोलियम मींस वही जो पेट्रोलियम से निकला क्रूड ऑयल जिसको हम कच्चा तेल बोलते हैं, तो ये कच्चे तेल का ही एक मतलब उसमें जो फ्रैक्शन है। दो तरीके से वैसे तो बनाया जाता है ये, थोड़ा इसीलिए इसका उत्पादन पेट्रोल के मुकाबले में थोड़ा ज़्यादा होता है, क्योंकि इसको हम जो कई बार जो कुएं होते हैं तेल के, उसके ऊपरी सतह पर एक गैस हमको मिलती है, उसे आप बाय प्रोडक्ट बोल सकते हैं पेट्रोलियम कच्चे तेल का, उसे हम प्राकृतिक गैस बोलते हैं। या तो फिर कई कुएं ऐसे होते हैं जिसमें सिर्फ गैस होती है, प्राकृतिक गैस होती है, तो उससे भी इसको बनाया जाता है। और साथ में क्रूड ऑयल के जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जिसको हम कहते हैं, तो उसमें सबसे ऊपरी सतह के ऊपर जो है हमें एक गैस मिलती है, तो यही गैस जो है उसको फिर हम लिक्विफाइड रूप में लाते हैं, मतलब तरल बनाते हैं, उसको इतना प्रेशर देते हैं कि वो, इसका एक गुण है ये कि अगर इसको प्रेशराइज किया जाएगा तो ये एक तरल रूप में बन जाती है। तो ये एक बहुत ही अच्छा गुण है इसका, उसके कारण ही हम इसे सिलेंडर में भर पाते हैं, नहीं तो 200 ग्राम गैस भी पूरे सिलेंडर को भर लेती, तो हम इसमें 14.2 किलोग्राम गैस भर पाते हैं। मतलब ये मैं किसके बारे में बता रही हूँ, जो घरेलू हम लाल वाला जो सिलेंडर होता है, फिर उसके बाद कमर्शियल सिलेंडर है या अलग अलग, फिर वो उनके मतलब वॉल्यूम्स होते हैं। और दूसरी चीज ये होती है कि जो एलपीजी जो है इसकी अपने कोई गंध या कोई मतलब कलरलेस है, ये कोई रंग नहीं है, कोई गंध नहीं है, तो अगर ये लीक होगा तो कैसे पता चलेगा आपको। तो इसीलिए इसके अंदर एक मतलब इसे तरल किया जाता है और इसके अंदर एक रसायन मिलाया जाता है जिसे मरकैप्टन भी बोलते हैं, ये इसी की गंध होती ये जो आपको जब एलपीजी लीक होती है तो आपको समझ में आता है, जो कि एक संकेत होता है कि आप इसको अटेंड करिए, तो हाँ गंध जो है वो ये हमें बताती है। तो ये इस तरीके से एलपीजी जो है इसका संरक्षण हमें इसीलिए जरूरी है, क्योंकि पेट्रोलियम से बना है, तो पेट्रोलियम तो एक प्राकृतिक ईंधन, प्राकृतिक रिसोर्स है, और इसको बनने में लगभग 250-300 करोड़ साल लग जाते हैं। तो इतना लंबा समय इसको बनने में लग रहा है, फिर आप खर्च करने में तो कुछ सेकंड्स में खर्च कर देते हैं, चाहे वो पेट्रोल हो, चाहे डीजल हो, चाहे एलपीजी हो। हमने तो बहुत इस्तेमाल कर लिया पिछले 50 साल से ही, समझ लीजिए हम इसका इस्तेमाल बहुत ही ज्यादा तेजी से बढ़ते ही जा रहा है। लेकिन आगे के बच्चों का क्या होगा, आगे के जनरेशंस का क्या होगा, जो आगे हमारी बहुएं आएंगी उनका क्या होगा? खाना तो सबको हमेशा रोज ही चाहिए, दोनों टाइम चाहिए। तो इसीलिए इसको संरक्षित करके न केवल हम अपना पैसा बचा रहे हैं, बल्कि साथ ही जो भविष्य में जो हमारी जनरेशन आ रही है उनके लिए हम कुछ
2: उनकी भी जरूरतें पूरी हो,
3: तो इसीलिए हमें इसका संरक्षण करना जरूरी है। क्योंकि अब ये बहुत कम बचा हुआ है पृथ्वी के अंदर, पृथ्वी में अंदर से निकाला जाता है, किसी फैक्ट्री में तो आप बना नहीं सकते। तो ये एक कारण है कि इसका संरक्षण हमें अवश्य करना चाहिए, सबकी जिम्मेदारी है।
2: घर में एलपीजी की खपत कम करने के आसान तरीके क्या है?
3: बहुत ही आसान से तरीके हैं
2: जी।
3: और ये कोई तरीके ऐसे नहीं है कि एलपीजी में ही इस्तेमाल, एलपीजी में कुछ विशेष अलग भी इस्तेमाल होते हैं, लेकिन ये वही सब हैं जो कि शायद मेरी दादी भी जब चूल्हा जलाती थी गाँव में तो वो इस्तेमाल करती थी कि वो जो है लकड़ी कम इस्तेमाल हो या सिगड़ी में कोयला कम इस्तेमाल हो, कहीं ना कहीं वही उसका एक थोड़ा दूसरा रूप एलपीजी में आता है। तो ऐसा कुछ नया नहीं है या कुछ टेक्निकल नहीं है इसके अंदर कि कोई नहीं कर सकता इसको। तो पहला तो क्योंकि हम सिलेंडर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो सिलेंडर के नीचे अगर आप एक लकड़ी का पटा रख दें है ना, लोग आजकल वो एक मतलब स्टैंड टाइप रखते हैं, तो हम ये कहेंगे कि उसकी जगह अगर आप लकड़ी का पटा रख दें, लकड़ी क्या होती है, ये एक कुचालक है ऊष्मा की, तो आपके जो फर्श होता है वो ठंडा है और खासकर ठंड के दिनों में तो और ठंडा हो जाता है। तो अगर वो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में है सिलेंडर के, तो हमारी जो गैस जो है वो थोड़ी नीचे जम जाती है। तो हम ये सोचते हैं कि गैस खत्म हो गई है, लेकिन हो सकता है कि एक दिन की कुछ समय, कुछ घंटे तक आप उसको और इस्तेमाल कर सकते हैं, जो वेस्ट चला जाएगा आपका। तो नीचे आप लकड़ी का पटा रख लीजिए, तो ज्यादा कन्वीनियंट आपके लिए, मतलब बचत के हिसाब से हो जाएगा। हाँ, कुछ घंटों का उतना भी, अगर हम ऐसे 1000 सिलेंडर देखें, 100 सिलेंडर देखें, तो थोड़ा थोड़ा भी बहुत हो जाता है। और जो दूसरे उपाय मैं आपको बता रही हूँ, सिर्फ इनका अगर आप उपयोग कर लें तो 23% तक आपका ईंधन बच जाएगा। मतलब 23% मतलब लगभग एक हफ्ता हो गया।
2: बिल्कुल,
3: एक हफ्ते का सिलेंडर अगर आप गैस की बचत कर रहे हैं, तो ऐसे आप सोचिए कितने घर, हमारे प्रधानमंत्री जी की भी योजना जो घर घर तक एलपीजी पहुंचाने की थी, तो एलपीजी हम पहुंचा तो रहे हैं, लेकिन अगर कमी हो जाएगी तो क्या करेंगे? 23% हम इसी तरीके से बचा सकते हैं। पहला तो आप देखेंगे कि दो आपके बर्नर होते हैं, छोटा एक बड़ा है, कई बार चार बर्नर भी होते हैं, तो आप ये देखिए कि अगर आपको जल्दी नहीं है तो आप छोटे बर्नर्स का इस्तेमाल करें, छोटे बर्नर, या तो फिर बड़ा बर्नर इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन आप फिर उसको एक बार कोई भी, जैसे अगर प्रेशर कुकर इस्तेमाल कर रहे हैं, हमने देखा स्टीम हो गई है उसके अंदर, काफ़ी स्टीम आ गई है, तो फिर आप जो है उसको धीमी आँच पे कर दें। हम लोग क्या करते हैं, मतलब ये एक वाकई सोचने वाला विषय है कि जब हम रसोई का काम करते हैं तो उसको हम सेकेंडरी मान के साथ साथ दूसरे काम भी करते हैं। तो हमारा प्रेशर कुकर वो करीब 8 बार विसल दे चुका होता है। अगर आप अटेंड करें, रसोई को अटेंड करें अपन, तो ये हमें पता चल जाएगा कि अब स्टीम बन गई है, तो आप उसको धीमा कर सकते हैं, और धीमा करके फिर थोड़ी देर में तेज कर दें, और फिर ऐसा करके आप 3 बार विसल ले लीजिए, तो आपका खाना, बल्कि 2 ही बार में आपका खाना बन जाएगा, तो जो है आपका काफी ज्यादा ईंधन बच जाएगा। पहले तो हमें ये देखना चाहिए कि हमारा बर्तन का साइज क्या है, मतलब एज पर जो रिकमेंडेशन है वो ये बोला जाता है कि 25 सेंटीमीटर व्यास का जो बर्तन होता है वो परफेक्ट होता है। तो आप कैसे देखेंगे ये कि अगर जो लॉ जो है वो बर्तन के ऊपर चढ़ रही है, तले के अलावा ऊपर भी चढ़ रही है, तो वो बर्बादी है,
2: छोटे बर्तन
3: तो वो बर्बादी है, तो उसको या तो धीमा कर दीजिए आप, और छोटे छोटे तले के बर्तन इस्तेमाल करेंगे तो नीचे ही सिर्फ उसकी लॉ लगेगी,
2: तली को जो है कवर,
3: तली को कवर करेगा,
2: लॉ जो है कवर करेगा
3: जी। हाँ, तो ये बर्तनों का है, बर्तन पे ही अगर हम बात करें तो आजकल कॉपर प्लेटेड बर्तन आते हैं जो नीचे तली पे रहता है, तो आप पता है कॉपर जो है बहुत अच्छा कंडक्टर है, सुचालक है, हाँ, हीट का मतलब, तो वो आप इस्तेमाल करें। उसके अलावा बर्तनों पे ही हम आए तो लिड का इस्तेमाल करें, उस पर ढकना है हमको। आजकल तो बर्तन बहुत अच्छे आ गए हैं, साथ में आपके ढक्कन आते हैं, तो उसी तरह के बर्तन अगर आप इस्तेमाल करें। और दूसरी चीज़ ये है कि प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करें, लेकिन एक घर में शायद तीन तीन चार चार प्रेशर कुकर हैं, वो क्यों हैं? एक बार दाल, एक बार चावल, एक में एक्स्ट्रा भी रखा रहता है कुछ है तो मांझना ना पड़े और तीसरे में कर लिया हमने। वो आपकी बात सही है, लेकिन ये तरीका गलत है, क्योंकि प्रेशर कुकर जो बने थे उसमें सेपरेटर्स भी मिलते थे हमको, है ना? आपने देखो अगर डिब्बे, आपकी मम्मी के समय के अगर आपने देखे हो तो डिब्बे थे उसके अंदर, तो एक में दाल एक में चावल ऐसे करके सब्जी बघार के तीसरे मम्मी डाल देती थी, तो एक साथ में सारा खाना हमारा बन जाता था। तो एक ही बार का उसमें तो तीन चीजें बन गई ना आपकी, तो जहां तक हो सके आप सेपरेटर्स या वो डिब्बों का इस्तेमाल करें। अगर नहीं है तो आप जाके आप ले सकते हैं, तो आप उनका इस्तेमाल करें। प्रेशर कुकर अच्छे वाले इस्तेमाल करें आप, महंगे नहीं बोल रही हूँ मैं, ISI मार्क के अच्छे प्रेशर कुकर होते हैं उन्हीं का इस्तेमाल करें, तो वो जो है आपके गैस की बचत के भी गारंटी होते हैं। लोकल नया करें, वो थोड़ा आपके लिए दुर्घटना का भी कारण बन जाता है कई बार, तो आप अच्छे वाले जो प्रेशर कुकर है उन्हीं का इस्तेमाल करें। यहाँ पर अगर हम ISI की बात कर रहे हैं तो आपके जो गैस के चूल्हे हैं वो भी जो है आजकल जो हमारा ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी है वो स्टार रेटिंग जो देते हैं, तो उसमें जैसे फ्रिज पे आपने देखा है 5 स्टार है 4 स्टार ऐसे आप लेते हैं, उसी तरह से गैस के चूल्हे भी आते हैं, उनको हम ग्रीन स्टोव्स भी के नाम से भी जानते हैं, तो उसके अंदर 2 स्टार अगर आप लेते हैं तो आप एक लोकल वो बिना स्टार वाला लोगे तो उससे तो आप समझ सकते हो कि ज़्यादा ही गैस बचत हो, क्योंकि उसी तरह से बनाया गया है उसका उसका बर्नर का डिज़ाइन या सब कुछ इस तरह से बनाया गया है कि वो बचत करेगा आपकी। बर्नर किस तरह से बचाता है, एक तो बर्नर जो लेके आए हैं आप तो उसमें तो वो तो लगा ही हुआ है, लेकिन अब आप कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं उसको। देखिए गैस मैंने क्यों बोला था बड़ा कन्वीनियंट ईंधन है ये, क्योंकि ये जलता है तो ब्लू कलर में फ्लेम आती है, तो ब्लू कलर आप भी जानते हैं ये दर्शाता है कि वो ईंधन पूरी तरह जल गया। जब पूरी तरह जल गया तो पर्यावरण के लिए तो कुछ घातक कुछ बचा ही नहीं, लॉ जो है वो ऑरेंज आ रही है मान लेते हैं, इसका मतलब वो संकेत दे रही है कि ये बर्नर गंदा है,
4: खराब हो गया, बर्नर
3: दाल गिर जाती है कई बार, दूध गिर जाता है तो उसमें चिपक जाता है। तो हम जो है इस चीज का ध्यान रखें कि अगर रोज नहीं तो कम से कम 3 महीने में एक बार आप जो है उसकी सफाई करें, और सफाई में ये भी ध्यान रखें बर्नर की लाइफ इस चीज पे भी डिपेंड करती है कि कहीं आप गरम गरम बर्नर पे पानी तो नहीं डाल रहे, आप समझ सकते हैं ठंडा गरम तो वो टूटने का भी डर रहता है, ब्रेक हो जाता है, तो आप उसकी जगह क्या ठंडा हो गया बर्नर उसको आप खोल लीजिए, खोलने के बाद में एक भगोने में पानी ले लीजिए और उसमें थोड़ा सा आप कपड़े धोने वाला सा पाउडर डालिए, उसमें थोड़ी देर भिगो दीजिए मतलब छोड़ दीजिए उसको, और फिर उसके बाद 15-20 आधा घंटे बाद उसको निकालिए और जो पुराने टूथब्रश होते हैं उनसे अच्छे से साफ कर लीजिए, आप देखिए आपको समझ में आ जाएगा आपका पानी कितना गंदा हो गया, और फिर उसके बाद थोड़ा सा उसको सुखा के और फिर उसको लगा दीजिए तो पूरी तरह से ब्लू कलर की फ्लेम फिर से आने लग जाएगी। तो ये तरीका होता है, और आप ये ध्यान रखिए कि उस पर गिरे नहीं कुछ भी, तो अपने आप ही वो साफ रहेगा। लेकिन आप ये मत करिए कि आपने रोटी बनाई और अब चलो किचन का काम खत्म, अब सफाई कर रहे हैं तो पानी डाल दिया, फिर एक पॉलिथिन में आपने मतलब कोई पाउडर लिया साफ करने वाला और उसको घिसा आपने, तो यहाँ पर क्या होगा वो पाउडर अंदर घुस जाएगा
4: बर्नर के जो सुराख होते हैं,
3: सुराख में अंदर चला जाएगा और वो जम जाएगा तो फिर आपको आगे जाके दिक्कत होगी। तो इसीलिए ये जो तरीका मैंने बताया उस तरीके से आप इसकी सफाई करें। ज़्यादा परेशानी हो रही है तो आप जो आते हैं ना कि बर्नर साफ करा लो या ये उनसे मत कराइए आप।
4: अच्छा।
3: आप जो एजेंसी में भी इसको आप कर सकते हैं कि हमारे बर्नर ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, तो सर्विस चार्ज लेंगे आपसे लेकिन वो साफ
4: घर पे आके करके जाते
3: हैं। तो वो जो रास्ते पे घूम रहे हैं उन लोगों से ना करवाएं। इसके बाद में जो है आपका भोजन आप बना रहे हैं तो उसमें तो पानी का इस्तेमाल होता है, पानी उतना ही डालें जितनी ज़रूरत है ना। आप जो है सिर्फ एक वीडियो देखना है या कुछ उसके चक्कर में थोड़ा सा पानी ज़्यादा डाल देते कि जले नहीं, लेकिन उसको उड़ाने में आप कितना ईंधन जला देते हो, तो इसीलिए हमें उतना ही पानी डालें जितनी ज़रूरत है। और मैं ये कहूँगी कि भोजन वो मतलब एक जरिया है आपके घर के अंदर, माध्यम है जिससे कि घर में संस्कार आते हैं।
4: बिल्कुल सही।
3: भोजन बच्चों के अंदर जा रहा है, पति के अंदर जा रहा है, आपके अंदर जा रहा है, वही आपके विचारों को बनाता है। तो इसीलिए अगर आप उसे मतलब एक प्रकार से सेकेंडरी बला टालने वाला काम करेंगे कि हाँ भोजन बनाना है हमें, तो फिर आप उसके भी असर देख रहे हैं।
4: प्रायोरिटी पर रखना है सबसे पहले।
3: जी जी, प्रायोरिटी हमारा भोजन है। आप चल किससे रहे हैं, भोजन से ही चल रहे हैं ना।
4: सेहत उसी से।
3: मैं तो आपको एक टिप दे देती हूँ यहाँ महिलाओं को, आप मेरे कहने से, मैं काउंसलर भी हूँ, एक साइकोलॉजिस्ट हूँ, तो उस हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ कि विचार क्या काम करते हैं। तो उस रोटी के ऊपर सिर्फ अगर प्रेम लिख लें, उंगली से प्रेम लिख लें, या बच्चे का एग्जाम है 100% लिख लें और बच्चे को सेक के खिला दें प्यार से,
4: अरे
3: है ना, आप देखिए क्या असर होता है। क्योंकि वो विचार जाता है, वो लिखा इज ओके, लेकिन आपका विचार जा रहा है उसके अंदर। हस्बैंड से तो रोज लड़ाई होती है, लेकिन प्रेम लिख के तो देखिए आप।
4: बिल्कुल सही,
3: बिल्कुल। सब मिल बैठ कर एक साथ खाना खाएं, क्यों बार बार जो है रोटी बने, है ना, बार बार तवा गर्म हो,
4: बार बार चाय गर्म करते हैं।
3: बिल्कुल
4: बार बार,
3: हाँ, बिल्कुल। हम
4: बहुत सारी चीजें हम बार बार करते हैं।
3: अगर हम एक नियम बना दे घर में कि चाय सब साथ में पियेंगे, है ना, या तो एक ही बार बनेगी चाय, जी जी, खाना साथ में खाएंगे। अगर दिन में नहीं भी पॉसिबल हो पा रहा है तो डिनर तो साथ में कर लो, रात का खाना तो कर लो साथ में। तो उससे क्या होगा कि परिवार में जो एक लिंक्स खत्म होते जा रहे हैं, भोजन एक बहुत बड़ा जरिया होता है, है ना, तो वो जो एक लिंक्स हैं वो फिर से बनेंगे, रिकनेक्ट होंगे। आप बच्चा क्या कर रहा है उसकी शक्ल से आप पहचान जाओगे। तो आप जो है डाइनिंग टेबल वो जगह है, भोजन वो जगह है, वो चीज है। तो आप जो है सब मिल बैठ के खाना खाएं, बार बार गर्म नहीं करना पड़ेगा, सब मिल बैठ के खाना खाएं, तो प्यार बढ़ेगा आपके घर के अंदर, हमारा एलपीजी बचेगा। और दूसरी चीज, भोजन बना के आप जो है ऐसे बर्तनों में रखें जिससे वो गर्म रहे।
4: बिल्कुल,
3: है ना। तो हम जो है हम वहां पे क्या करते हैं, तुरंत निकाला, अरे ठंडा है तो माइक्रोवेव में रख दिया हमने। अब यहाँ पर मैं बोलूं कि नहीं बोलूं, लेकिन माइक्रोवेव इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। एलपीजी जैसा तो आपको कोई भी ईंधन नहीं मिलेगा, क्योंकि माइक्रोवेव इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल कर रहा है। इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा महंगी पड़ती है आपको एलपीजी से, अगर आप तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं तो।
4: रेगुलेटर जो होता है और पाइप, ये कितने समय पर चेंज करना चाहिए ताकि गैस का रिसाव भी इनमें से ही होने लगता है और हमें पता नहीं चलता है कि बाज़ वक़्त।
3: इसमें थोड़ा सा मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहती हूँ संरक्षण को लेके, पहले कि जो भी आप दाल चावल वगैरह बना रहे हैं उसको थोड़ा भिगो दें पहले, भिगोने के बाद आप इस्तेमाल करें। नहीं तो एलपीजी इस्तेमाल कर रहे हैं उसको मुलायम करने के लिए, अगर वो पहले से मुलायम होगा तो डायरेक्ट पकना चालू हो जाएगा
4: जल्दी,
3: है ना। तो आप इस चीज को कर सकते हैं। और जहां तक रेगुलेटर की बात है, यहाँ आपके संरक्षण की भी बात आती है यहाँ पे, कि आप जितनी बार भोजन बनाए उतनी बार आप जो नॉब है उसका, आपका सिलेंडर का, उसको भी बंद करें। तो कहीं अनावश्यक अगर कहीं लीकेज हो रहा होगा तो उसको आप बचा सकते हैं। दूसरी चीज़ ये जो आपने पूछा कि कब हमें बदलना चाहिए, तो रेगुलेटर तो बदलने की ज़रूरत होती नहीं है कभी भी। हाँ, अगर टूट जाए, कुछ हो जाए, तो फिर आप कंपनी में जाके, जो भी एजेंसी है वहीं पे जाके आप उसको बदलें। लोकल मार्केट में शायद सस्ता वाला आपको मिल सकता है, लेकिन आप वो ना लें। ये मतलब एक बहुत ही जरूरी चीज है, हो सकता है वो 300 का मिले और ये 150 का मिले, लेकिन वो कभी भी आपके घर में बहुत बड़ा संकट ला सकता है। तो इसीलिए ISI मार्क का एजेंसी से ही लीजिए आप। दूसरी चीज ये है कि जो पाइप जो है उसका, आजकल तो आप बाहर से खरीद ही नहीं सकते, क्योंकि वो आपको एजेंसी ही देती है। और जो पहले आते थे सिर्फ रबर के होते थे वो, तो वो काफ़ी डैमेज हो जाते थे, और मतलब एक प्रकार से जो जहाँ पे चूल्हे के साथ लगते थे वो वहाँ पे खराब होने लग जाते थे, लोग उसे काट काट के छोटा कर देते थे।
4: तो ये रबर के रहते थे,
3: अभी वो वायर के साथ है,
4: हाँ,
3: तो बहुत डिफिकल्ट है उसे काटना भी। लेकिन वो क्या होता है, मैं जो आपको बता रही हूँ कि हो सकता है कई लोग उसमें भी दिमाग लगा लें कि हम उसमें काट देंगे आरी से या कुछ, तो क्या होता है ये करीब 1 मीटर करीब होता है, ये है ना, तो वो एक एक्यूरेट मतलब वो लंबाई लेंथ है उसकी। नहीं तो मैंने आपको शुरू में बताया था कि इसे लिक्विफाइड किया जाता है और ऊपर की सतह पर वो गैस होता है, लेकिन अगर वो जो पाइप है वो अगर सही नहीं है, छोटा है अगर, तो प्रेशर बढ़ जाएगा, तो लिक्विड रूप में बीच में जम जाएगा। और आप खाना बना रहे हैं तो कई बार रोटी बना रहे हैं, 4 बार 5 बार बंद होगा वो, तो आप सोचेंगे पता नहीं क्या हो गया, तो ये कारण आपका पाइप हो सकता है। अभी तो ये बहुत ही अच्छे पाइप्स हैं, तो बहुत जल्दी बदलने की जरूरत नहीं है, करीब आप 6-7 साल भी इसको चला सकते हैं, लेकिन बस इसे काट काट के मत यूज करें।
4: कहीं से चटक गए हैं या चूहे वगैरह ने काट लिया, तो
3: चूहा काटना भी इतना आसान नहीं है इसको, लेकिन फिर भी आपको लग रहा है कि भाई आप क्या बहुत डेंजरस चूहे हैं, तो आप फिर उसको बदलिए बिल्कुल, और लेकिन लेना एजेंसी से ही है।
4: बिल्कुल,
3: आप कहीं लोकल मार्केट से इसको नहीं लेंगे, ये सुरक्षा की दृष्टि से भी है
4: बिल्कुल,
3: और संरक्षण तो है ही, वो बीच में परेशानी भी है आपकी कि गैस बंद हो रही है।
4: बिल्कुल आशा जी, हमारे श्रोता ये भी जानना चाहते हैं कि पीएनजी और एलपीजी में क्या फर्क।
3: जी दानिश जी, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, क्योंकि आज जो है भोपाल में देखिए बहुत सारी जगह थिंक गैस का आपने देखा हो, पाइपलाइंस पाइप दे रहे हैं वो घरों में, मतलब डायरेक्ट सप्लाई है वो। तो पीएनजी का मतलब है पाइपलाइन नेचुरल गैस। मैंने आपको क्या बताया था शुरू में, नेचुरल गैस के बारे में थोड़ा बताया था, तो ये क्योंकि प्राकृतिक गैस ही है तो ये एलपीजी नहीं है, एलपीजी का मुकाबले सुरक्षित है ये। एलपीजी की अगर हम स्मेल आ रही है तो क्या है कि एलपीजी जमीन पे चिपकता है, क्योंकि वो हवा से भारी गैस है, तो जमीन पे चिपक गई कोई चीज तो उसको निकालोगे कैसे आप, अनलेस अंटिल आपको ये पता हो कि झाड़ू लगाओ अब, है ना, तो कई बार पता नहीं होता, तो वो चिपकी हुई है, हम सब दरवाजे खिड़की खोल दिए फिर भी टाइम लेगी वो। लेकिन नेचुरल गैस जो है वो हवा से हल्की गैस है, अगर ये लीक होती भी है तो ऊपर जाएगी, तो ऊपर तो उसको बहुत बड़ा माध्यम मिल गया है फैलने का, तो सुरक्षित भी है। मैं तो यही बोलूंगी कि जहां कहीं पे भी जिस भी मोहल्ले में पीएनजी की सप्लाई के लिए अभी आपसे कांटेक्ट किया जा रहा है तो आप जरूर लें उसको, क्योंकि आगे पीएनजी की सप्लाई ज्यादा मात्रा में है, लेकिन हो सकता है एलपीजी की कम हो जाए,
4: और फिर ये सिलेंडर भरवाने का या
3: हाँ वो सब भी खत्म हो जाता है, आपके मीटर लगा रहता है, जैसे आप मोबाइल रिचार्ज करते हैं वैसे आप अपना,
4: ये तो सुविधाजनक हो,
3: बिल्कुल बहुत सुविधाजनक है, इसका कोई वो भी नहीं
4: भारी
3: है
4: कि भारी आप सिलेंडर उठा के अंदर रखना हो फिर बाहर ले जाना,
3: जी जी महिलाओं के लिए बहुत सारी चीजें हैं उसको लगा ही नहीं पाते कई लोग,
4: वो अचानक रात में भी सिलेंडर खत्म,
3: हाँ हाँ बिल्कुल,
4: ये सारी दिक्कतों से
3: वेटिंग तो बिल्कुल खत्म हो जाएगी इसके अंदर। ये दोनों में अंतर है, वो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है, ये पाइपलाइन नेचुरल गैस है, तो ये काफी कन्वीनियंट है, उससे भी अच्छी है कहना चाहिए, तो इसको जरूर इस्तेमाल करें आप।
4: आशा जी, आजकल एलपीजी का जो सिलेंडर है वो लोग अपने कार में भी इस्तेमाल कर रहे हैं, रिफिल करवाते हैं, कार चलाते हैं उससे, तो ये क्या इस्तेमाल करना सही है?
3: देखिए एलपीजी का इस्तेमाल करना सही तब है जब आप उसे तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि कई हमारी आजकल जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज हैं उन्होंने इस तरह का वो दे दिया है, आपके पास टैंक्स हैं कि जिनमें आप डायरेक्ट एलपीजी फिल करवा सकते हैं आप, अभी तो सीएनजी आ गया है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है वो, तो आप उसको लें तो ज़्यादा अच्छा है, और भी अच्छा है। और अगर लेकिन आप एलपीजी, अगर आपकी गाड़ी है आप एलपीजी उसमें फिल करवा रहे हैं, तो आप जो है पेट्रोल पंप्स पे जहाँ पे अवेलेबिलिटी है इसकी वहीं से करें, खुद ट्राई ना करें। और जो आपके घर के अंदर कई लोगों ने घर में चार मतलब कुछ ज्यादा लोग हैं उनके नाम से सिलेंडर्स ले लिए हैं, फिर उनको आप वो ब्लैक वाले सिलेंडर वो जो पाइप जो रहते हैं सिलेंडर्स उसमें आप करते हैं चेंज करते हैं आप, तो ये बहुत ज्यादा जोखिम भरी चीज है और इसमें आप कई घर बर्बाद हो चुके हैं, जल चुके हैं, तो ये कभी ना करें। थोड़े से पैसे बच जरूर जाएंगे आपके, लेकिन जो तरीका यही है कि जो आप पेट्रोल पंप्स पे या इसके सिलेंडर जो मिलते हैं वही इस्तेमाल करें। तो आजकल तो सीएनजी का समय है तो आप सीएनजी का इस्तेमाल करें, तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है, अगेन नेचुरल गैस है, प्राकृतिक गैस है, आप समझ सकते हैं, तो आपको वो ज्यादा सुविधाजनक है, सुरक्षित है, और दूसरी चीज ये है कि अवेलेबिलिटी ज्यादा है।
4: अगर गैस लीक हो जाए तो तुरंत क्या करना चाहिए?
3: पीजी अगर हो जाती है तो तुरंत जो है हमें सबसे पहले तो दरवाजे खिड़की खोलने चाहिए, क्योंकि उसे बाहर करना बहुत जरूरी है। अच्छा एक चीज और भी मैं यहाँ पर ऐड करना चाहती हूँ महिलाओं के लिए कि अगर एलपीजी जो है जहाँ आप इस्तेमाल कर रहे हो, रसोई जो है हमारा वो थोड़ा खुला हुआ होना चाहिए, पूरा बंद कमरे के अंदर आप एलपीजी मत इस्तेमाल करें। क्यों? क्योंकि किसी भी ईंधन को जलने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, अगर उसको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल रही है तो वो कहीं ना कहीं इनकम्प्लीट जलेगा, और जो भी कुछ विषैली गैस बनेंगी वो आप ही के अंदर जाएंगी, क्योंकि आप वहां ज्यादा समय है, तो आपको चक्कर आने लग गया या आपको उल्टी जैसा होने लगा, तो इसका मतलब है वो बिना किसी कारण के अगर हो रहा है ऐसा, और जब आप खाना बना रही है तभी हो रहा है, तो हो सकता है कि ये कारण हो। तो हम मैं ये कहूंगी तुरंत तुरंत आपको पूरे दरवाजे खिड़की खोल देने हैं, और दूसरी चीज जो सिलेंडर है उसको तुरंत निकाल लीजिए, रेगुलेटर निकाल दीजिए, उसको तुरंत बाहर करिए, उसमें सफेद कैप रहता है, सफेद कैप लगाइए और उसे बाहर करिए। कभी भी बिना सफेद कैप जो रहता है उसके बिना सिलेंडर को रखना ही नहीं है आपके घर में, अगर खाली भी सिलेंडर है तो। और अगर आपको लग रहा है कि अभी भी बहुत तेज बदबू आ रही है तो आप जोर जोर से फर्श पे झाड़ू लगाइए, तो क्योंकि हवा से भारी गैस है जमीन पे चिपक गई है, तो झाड़ू लगाएंगे तो ये बाहर जाती है। अगर एलपीजी लीकेज हो रहा है तो ये इसका तरीका है। लेकिन अगर आग लग गई, मतलब इसके हम सुरक्षा की अगर हम बात करें, तो मैं एक दो चीज जरूर ऐड करना चाहूंगी कि जो हमारा रसोई होता है उसके अंदर देखा होगा आपने महिलाएं जो है वो कागज जो रहता है, पेपर जो रहता है, उसे काट काट के लगाती हैं शेल्फ्स में, तो ना करें वो, क्योंकि वो भी एक माध्यम बन जाएगा और ज्यादा फैलाने का। जहाँ सिलेंडर रखा उसके आसपास कोई ज्वलनशील चीज ना रखें। दूसरी चीज ये है कि आप गैस आपकी ऑन है, आप खाना बना रहे हैं, आपने कॉकरोच देखा और वहीं पर आपने उसे मारना चालू कर दिया हिट वगैरह से,
4: तो उसके अंदर भी गैस
3: वो भी पेट्रोलियम ही है,
4: फ्लेमेबल,
3: फ्लेमेबल है वो, तो आप जो है उसमें भयंकर आग लग सकती है। एक और चीज है, कई बार महिलाएं जहाँ गैस जल रही है उसी के पास मोबाइल रख के और खाना बनाती हैं, तो ये बहुत रिस्की है।
4: वीडियोस देख रहे हैं, यूट्यूब
3: वीडियोस देख रहे हैं, तो उसके अंदर जो एक स्टैटिक चार्ज है, बाय चांस आपने ध्यान नहीं दिया कहीं गैस लीक हो रही है, कई बार गैस बंद हो जाती है, आपका ध्यान ही नहीं है, हाँ, तो आप जो है इस तरह के जो रिस्क है वो ना लें, मोबाइल आप दूर रखें। दूसरी चीज, आपके मोबाइल के ऊपर उतने कीटाणु होते हैं जितने टॉयलेट सीट के ऊपर हैं।
4: बिल्कुल,
3: आप बार बार उसको पकड़ रही हैं, फिर खाना भी बना रही हैं।
4: बिल्कुल,
3: तो आप समझ सकते हैं कि क्या होगा उसका, ये तो अनहाइजीनिक प्रैक्टिस है।
4: बिल्कुल,
3: अगर आग लग जाती है, सपोज कहीं इतने बुरा हो गया कि आग ही लग गई, दुर्घटना हो गई, तो आपको जो है तुरंत सबसे पहले तो ये आपको ध्यान रखना है क्या आप उसे अटेंड कर सकते हो, क्योंकि अगर आप अटेंड नहीं कर सकते तो बाहर निकल लो, जान ज्यादा जरूरी है, सबको घर से बाहर कर दो, क्योंकि अगर आग लग गई है और सिलेंडर फट गया, क्योंकि उसमें प्रेशर इतना बढ़ जाएगा आग के कारण कि वो फट जाता है, अगर वो फट गया तो जो गैस जो उसमें तरल रूप में है वो पूरी दीवारों पे चिपकेगी और हर दीवार पे विद इन सेकेंड आग लग जाएगी, और इलेक्ट्रिसिटी उसमें लाइन में आ गई वो आग, तो इलेक्ट्रिसिटी तो तुरंत बहुत आराम से पूरे घर के अंदर आग को फैला देगी, तो इसीलिए हमें तुरंत ये देखना है। और अगर आपको लग रहा है कि आप बच कर सकते हो, अभी ज्यादा नहीं फैला हुआ है, तो उसके ऊपर तुरंत कोई मोटा कपड़ा गीला कर सकते हो तो ठीक है, नहीं तो कंबल है या कोई ऐसी मोटी दरी है तो उसके ऊपर लगा के आपने निकाल लिया रेगुलेटर, उसके ऊपर डाला आपने और उसको जो है अच्छे से कवर कर दें, या फिर कोई भगोना है जैसे प्लास्टिक का नहीं बोल रही हूँ वो उसके ऊपर रख दें, ऑक्सीजन से उसकी सप्लाई जो है कट कर दें, तो आग बुझ जाएगी, सप्लाई तो वहीं से ही है ना, सिलेंडर से ही है। तो इस चीज का उसका तरीका भी होता है, वो हम अभी आपको रेडियो पे तो नहीं बता सकते, लेकिन उसके कुछ मॉक ड्रिल्स हम लोग करवाते हैं जिससे कि महिला को ये चीज पता चल जाती है कि इसको हमें कैसे बचत करना, सुरक्षित रखना है।
4: आशा जी, अंत में हमारे श्रोताओं के लिए आपका एक संदेश एलपीजी संरक्षण और सुरक्षा को लेकर।
3: जी देखिए, हम लोग बहुत ज्यादा अपने देश के लिए, लोगों के लिए, अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ करते हैं ना, सोचते तो हैं बहुत ज्यादा हम, तो आज ये वो मौका है हमारे पास में एलपीजी के रूप में कि अगर आप इसको संरक्षित करते हैं तो कि आगे आने वाली पीढ़ी आपको बहुत धन्यवाद देगी और आपका एक रिश्ता जो है उनके साथ बहुत अच्छा होगा, तो देश, समाज और परिवार तीनों के लिए इसका संरक्षण बहुत जरूरी है।
4: तो दोस्तों, आज हमने जाना कैसे हम एलपीजी की बचत कर सकते हैं और अपने घर को सुरक्षित भी बना सकते हैं। धन्यवाद आशा जी इतने महत्वपूर्ण सुझाव देने के लिए।
3: आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे ये मौका दिया, और सभी श्रोताओं का धन्यवाद जो मुझे सुन रहे हैं।
4: दोस्तों, याद रखिए, सावधानी ही सुरक्षा है और बचत ही समझदारी। श्रोताओं, ये था कार्यक्रम आमने सामने। इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन संतोष कुमार वर्मा, परिकल्पना अदिति गौड़, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी, समन्वय संयोग सतीश बौथम, मैं था दानिश। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर।
1: आमने सामने।

रेडियो आजाद हिंद से प्रसारित किए जा रहे कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। बने रहिए रेडियो आजाद हिंद के साथ। देश का चैनल, देश के लिए।

आजादी के यादगार तरानों पर केंद्रित राष्ट्र वंदना के विविध स्वर जन गर्जे, अंग्रेजी राज के दमन लूट और आतंक के प्रतिरोध में भारतीय जन का उद्घोष जन गर्जे। स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति जन गर्जे।

0: आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं कलाम जनाब वसीम बरेलवी का।
1: ओ दुनिया भर की नदियां जैसे मेरे साथ बहे।
0: तो पेश खिदमत है कार्यक्रम वागर्त।
2: इस्तकबाल कीजिए, इस्तकबाल कीजिए प्रोफेसर वसीम बरेलवी।
3: कल एक गांव की बुढ़िया मेरी कार से जब टकराई, कल एक गांव की बुढ़िया मेरी कार से जब टकराई, बोली तोहरा दोष नहीं है, हम ही को दिक्कत नहीं है, हम ही को दिक्कत नहीं। सड़क पर हिफाजत करने वाले जवान, उनकी नजर करता हूँ, जो मैंने हिंदी मंच के ऊपर भी पढ़ा है, उर्दू मंच के ऊपर भी पढ़ा है, कि खून में डूबे। सवाल यह था कि जब उस जमाने में फौजी जाते थे तो हमारे नौजवानों को हार पहनाया करते थे, सरहद पे देश की हिफाजत के लिए जा रहे हैं। मेरे जहन में ख्याल आया कि भाई ये तोहफा तो नौजवानों की तरफ से जवानों के लिए हो गया जो सरहद पर जा रहे हैं, जवानों की तरफ से नौजवानों के लिए क्या हो सकता है। तो मुझे तो उसका जवाब नहीं मिला। एक शहीद फौजी की आत्मा मेरी चार पंक्तियों में ढल गई, चार मिसरों में ढल गई, जो मैंने उसी भाषा में लिखा है जिसका मैं बता रहा था। कि खून में डूबे ये इतिहास के पन्ने एक अमानत है। आप शायरी वाले लोग हैं, मुलाजा कीजिए, खून में डूबे ये इतिहास के पन्ने एक अमानत है। जाओ देखिए लफ्जों का इस्तेमाल करो जिस चीज के लिए ये प्रोग्राम किया गया। मैं बताऊंगा कि हिंदी का लफ्ज किस तरीके से उर्दू बन रहा है। कि खून में डूबे ये इतिहास के पन्ने एक अमानत हैं, जाओ इन पर नाश करो, बलिदान की इन पर छाया है। जाओ इन पर नाश करो, बलिदान की इन पर छाया है, आने वाली नस्ल के ख्वाबों, लेकिन इतना याद रहे हमने तुम्हारे कल की खातिर अपना आज गंवाया। खून में डूबे ये इतिहास के पन्ने एक अमानत है, जाओ इन पर नाश करो, बलिदान की इन पर छाया है, आने वाली नस्ल के ख्वाबों, लेकिन इतना याद रहे हमने तुम्हारे कल की खातिर अपना आज गवाया। और इसी महफिल की नजर करता हूँ जो चार पंक्तियां भी चार मिसरे भी मुलाजा फरमाइए, पेश करता हूँ कि मोहब्बत इब्तिदा मेरी, आखिरी मिसर पर आप हजरात की तवज्जो चाहूंगा मुलाजा फरमाइए, कि मोहब्बत इब्तिदा मेरी, मोहब्बत इंतहा मेरी, मोहब्बत इब्तिदा मेरी, मोहब्बत इंतहा मेरी, मैं हिंदुस्तान हूँ सबसे निराली है अदा मेरी, मैं हिंदुस्तान हूँ सबसे निराली है अदा मेरी, सुनी जाएगी सदियों तक, सुनी जाती है सदियों से, सुनी जाएगी सदियों तक, हजारों बोलियों से मिलके बनती है सदा मेरी, सुनी जाती है सदियों से, सुनी जाएगी सदियों तक, हजारों बोलियों से मिलके बनती है सदा मेरी। भात चढ़े, भात चढ़े चूल्हे पे, द्वार हुई खट खट, भात चढ़े चूल्हे पे, द्वार हुई खट खट, अरे जुल्मी ने घर भी समझ लिया पन घट, भात चढ़े चूल्हे पे, द्वार हुई खट खट, जुल्मी ने घर भी समझ लिया पन घट, भात चढ़े चूल्हे पे, द्वार हुई खट खट, के आंगन की दूरी समंदर लागे। लुत्फ लीजिए शायरी का, मैंने गीत में फित्र पसंदी पैदा करने की कोशिश की है, गीत सिर्फ तास्तुराती तर्जुमान होता था, तास्तुर का तर्जुमान, मैंने उसको फिक्र से जोड़ने की कोशिश, इतनी सारी मेरी खाता रहना कोशिश है। जुल्मी ने घर भी समझ लिया पन घट, भात चढ़े चूल्हे पे, द्वार हुई खट खट।

प्यार कहे जा जा लाज कहे ना जा, छोटी सी कुटिया बड़ी मरियादा। लक्ष्मण की रेखा भई, लक्ष्मण की रेखा भई, बाबुल की चौखट भात करे चूल्हे पे द्वार हुई खट। हाथ चढ़े चूल्हे पे द्वार हुई खटखट। मैं आपको गजल के माहौल से निकाल के लाने की कोशिश कर रहा हूँ। आइए गीत को रियल सेंस के अंदर पेश करता हूँ। आइए ये बंद बतर खास पेश करता हूँ। घर की रसोई पे ममता का बहरा,

ममता का पहरा, चूल्हे में रखा है सपना सुनहरा। बाहर से अंदर तक आहटी आहट भाग चले चूल्हे पे द्वार हुई। चूक गए आप, ये मिथरा ही आप चूक गए बिल्कुल। बाहर से अंदर तक आहटी आहट भाग चले चूल्हे पे द्वार हुई कट। जुलमीले घर भी समझ लिया पल घट भात चढ़े चूल्हे। मिश्रा कानों से नहीं सुन रहे, दिल से उठा रहे हैं। मिश्रा पेश करता हूं, सरपरस्ती भी कही जाए तो बस नाम की है। आसमां तेरी बुलंदी मेरे किसान। सरपरस्ती भी कही जाए तो बस नाम की है। आसमां तेरी बुलंदी मेरे किस काम की है। आसमां तेरी बुलंदी मेरे किस काम की है। तेरी बुलंदी मेरे किस काम की है। कल खुदा जाने यहाँ किसका बसेरा होगा। कल खुदा जाने यहाँ किसका बसेरा होगा। आज इस घर पे जो तख्ती है मेरे नाम की है। कल खुदा जाने यहाँ किसका बसेरा होगा। आज इस घर पे जो तख्ती है। बच्चों ले जाओ ये शेर अपने साथ, इंशाल्लाह जिंदगी भर काम। अगर इसको गले में बांध लिया तो जिंदगी में कभी कोई शिकस्त तुम्हारा सामना नहीं आएगी। कभी जिंदगी किसी शोबे में शिकस्त का सामना नहीं करना पड़ेगा। पेश करता हूँ कि आज इस घर पे जो कल खुदा जाने यहाँ किसका बसेरा होगा। आज इस घर पे जो तख्ती है मेरे नाम की है। अपने दुश्मन से हजरत, अपने दुश्मन से ना आया कभी बदला लेना। अपने दुश्मन से ना आया कभी बदला लेना। अरे मुझ में ये ऐसी कमी है जो बड़े काम की है। अपने दुश्मन से ना आया कभी बदला लेना, मुझ में ये ऐसी कमी है। बिल्कुल नया शेर सुना रहा हूँ दोस्तों। तुझे सोचे तो फिर सोते कहाँ। बिल्कुल ताजा गजल सुना रहा हूँ तुझको। तुझे सोचे तो फिर सोते कहाँ है। अरे हम इतने बेअदब होते कहाँ है। हम इतने बेअदब। देखिए

मजमून आ रहा है, मजमून तुझे सोचे तो फिर सोते कहाँ हैं हम, इतने बेअदब होते कहाँ हैं। बच्चों सुनो, बया करते भी हैं तो दिल की हालत, सुने भोपाल शेख उनके बताए मुझे, बया करते भी हैं तो दिल की हालत, अरे ये आंसू आग के होते कहाँ हैं। बयां करते भी हैं तो दिल की हालत, यासू आग के होते कहां हैं, यासू आग के होते कहां हैं, बनाना पड़ते हैं हिम्मत से अपनी। बच्चों तुम्हारे लिए है इसे, बनाना पड़ते हैं हिम्मत से अपनी, सफर में रास्ते होते कहां हैं। सफर में रास्ते होते कहाँ हैं, कि सफर में रास्ते होते कहाँ हैं, सफर में रास्ते होते, तेरा होने का वादा कैसे कर ले। यार सुने सुनो तो हर सुनो वाणी से मुलाजा फरमाइए, सफर में रास्ते होते कहाँ हैं, बनाना पड़ते हैं हिम्मत से अपनी, सफर में रास्ते होते कहाँ हैं, तेरा होने का वादा कैसे कर ले, हम अपने ही कभी होते कहाँ हैं। बहुत बहुत और सुनेंगे, सफर में रास्ते हो देता है, आंखों को मूंद लेने से खतरा न जाएगा, आंखों को मूंद लेने से खतरा न जाएगा, वो देखना पड़ेगा जो देखा न जाएगा, आंखों को मूंद लेने से खतरा न जाएगा, वो देखना पड़ेगा जो देखा न जाएगा, बड़ी मुश्किल से बचा रखा है। सुने गजल वाले सुने, मैंने खुद को बड़ी मुश्किल से बचा रखा है, अरे वरना दुनिया तेरा हो जाने में क्या रखा है। मैंने खुद को बड़ी मुश्किल से बचा रखा है, वरना दुनिया तेरा हो जाने में क्या रखा है, वरना दुनिया तेरा हो जाने में क्या रखा है, वरना दुनिया तेरा हो जाने में क्या रखा है। दिल किसी का भी हो, दिल किसी का भी हो, दुखने से बचा रखा है, दिल किसी का भी हो, दुखने से बचा रखा है, दर्द का नाम मोहब्बत ने दबा रखा है, दर्द का नाम मोहब्बत ने दबा रखा है, उससे कहना जो कहे प्यार में क्या रखा है, उससे कहना जो कहे प्यार में क्या रखा है, सामने मीर का दीवान खुला रखा है, उससे कहना जो कहे प्यार में क्या रखा है, सामने मीर का दीवान खुला रखा है, आप सामने मीर का दीवान खुला रखा है, आप कुछ देर के साथी हैं हमेशा के नहीं, आप कुछ देर के साथी हैं हमेशा के नहीं, मैंने पहले ही से अंदाजा लगा रखा है, मैंने पहले ही से अंदाजा लगा रखा, मैंने पहले ही से अंदाजा लगा रखा, लौट जाए न कहीं तेरी जसारत पे वही, ये लफ्ज पकड़ेंगे यहाँ पर पहले गजल मौजूद है, कि लौट जाए न कहीं तेरी जसारत पे वही, तूने जिसके लिए दरवाजा खुला रखा है। या पहले पूरे शेर का हक अदा कर दो, इंसाफ करो शेर का, तो आगे बढ़ूंगा। लौट जाए न कहीं तेरी जसारत पे वही, तूने जिसके लिए दरवाजा खुला रखा है, मेरी ही सुनते हैं अपनी नहीं कहता कोई,
मेरी ही सुनते हैं, अपनी नहीं कहता कोई, तुमने किन लोगों को महफिल में बुला रखा? मेरी ही सुनते हैं, अपनी नहीं कहता कोई, तुमने किन लोगों को महफिल में बुला रखा है? और ये आखिरी शेर पढ़ूंगा, उसके बाद फिर आपके हुक्म की तामील करूंगा। मुलायदा फरमाइए, शेर अपने साथ ले जाइए। पेश करता हूँ कि तुमने किन लोगों को महफिल में बुला रखा है, जाके लौटा है कहीं कोई हवा का झोंका। पहले ये मिसरा तो लौटा दिए, फिर अगला मिसरा बोलता हूँ। तुमने किस जाके लौटा है कहीं कोई हवा का झोंका, तुमने क्या सोच के दरवाजा खुला रखा है? जाके लौटा है कहीं कोई हवा का झोंका, तुमने क्या सोच के दरवाजा खुला रखा है? तुमने आइए आखिर में मैं ये गीत पेश करता हूँ। ये नज़र मोहब्बत की नज़र है, चाहे वो रूहानी एतबार से हो और चाहे वो रूहानी एतबार से हो। ये पूरा गीत एक नज़र के ऊपर है और पेश करो। ये नज़र औरत की ज़िंदगी में उसका सब कुछ बदल देती है, और फ़कीर की नज़र पड़ जाती है तो उसका मुरीद पूरी ज़िंदगी जो है उसके पीछे पीछे घूमता है। तो इसका आध्यात्मिक पहलू है और रूहानी पहलू, रूहानी भी है और रूहानी भी है। सुने, गौर से सुनिए ये गीत, मेरे अहम गीतों में से एक नज़र। तेरी तेरी एक नज़र ही मुझको धूप से कर गई छाओ। ये पंक्ति लौटा दीजिए मुझे। धूप से कर गई छाओ,

बतलाऊं सजन ये बात किसे बतलाऊं। सुनो तेरी तेरी एक नजर ही मुझको धूप से कर गई छाऊं। सजन ये बात किसे बतलाऊं, सजन ये बात किसे बतलाऊं। अब्बन मुलाजा फरमाइए, मैं अहले अदब को दावत दे रहा हूँ कि पूरी जिम्मेदारियों के साथ मुलाजा फरमाएं कि मैंने अगर कोई कोशिश की। बस सुनिए कि तन की तपती रेत जैसे फार गिरे शबनम की, जब मोहब्बत की पहली नजर आती है जिंदगी में। तन की तपती रेत जैसे फार गिरे शबनम की, ओ कैसी लचाही छुअन पापी तेरे मौसम की, कैसी लचाही छुअन पापी तेरे मौसम की। मित्रा देता हूं कि बदरा से सजाऊं, बदरा से सजाऊं धूप धूप शर्माऊं। सजन ये बात किसे बतलाऊं, बदरा से सजाऊं धूप धूप शर्माऊं। सजन ये बात किसे बतलाऊं। अब ये बंद आ रहा है, अगर आपने गजल की तरह दाद नहीं दी तो अगला बंद ही नहीं पढ़ूंगा मैं। आइए मुलाजा फरमाइए, जैसे आपने गजल सुनी है, देखिए ये कोशिश भी मुलाजा की। बदरा से सजाऊं धूप धूप शर्माऊं। सजन ये बात किसे बतलाऊं कि कल तक जिस दर्पण में मैं थी और मेरे

सुने मिश्रा कि मेरे अंदर चोर छुपा है। जिंदगी की बहुत बड़ी सच्चाई बता रहा हूं कि मेरे अंदर चोर छुपा है, जाने कब लुट जाऊं कदम ये बात से सुनूं।

मुझको धूप से कर गई छाओ। सजन ये बात किसे बतलाऊं, आपकी बेपनाह मोहब्बतों की नजर कर रहा हूँ, ये आखिरी बार बेपनाह मोहब्बतों की नजर है। बहुत मुझे आपने जज्बाती कर दिया, बहुत आपने मोहब्बतें दी, बहुत नवाजा, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। पता नहीं फिर मुलाकात हो या ना हो, ये बंद मेरा अपने साथ ले जाइए। पेश करता हूँ कि रोज के क्या होता है, क्या तब्दीली आती है, कितनी बड़ी तब्दीली आती है वो बताता हूँ। कि रोज के देखे भाले मंजर आज कुछ और कहे हैं। सुने गजल वाले के रोज

भक्ति से बदलो तेरी ये नजर ही

90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं रेडियो आजाद हिंद के साथ और सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण, देश का चैनल देश के लिए।

आजादी के यादगार तरानों पर केंद्रित राष्ट्र वंदना के विविध स्वर जन गर्जे, अंग्रेजी राज के दमन लूट और आतंक के प्रतिरोध में भारतीय जन का उद्घोष जन गर्जे। स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति जन गर्जे।

0: आज के इस खास कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं वक्तव्य वरिष्ठ साहित्यकार अशोक जमनानी का।
1: हम अपनी संस्कृति का मूल्य नहीं पहचानते, नर्मदा आपसे कहती है इसे पहचानो, ये बहुत कीमती है। वो जो भीतर है, वो जो बाहर है, वो जो मूर्त है, वो जो अमूर्त है, इसे पहचान सको तो नर्मदा का अर्थ ही होता है सुख देने वाली, भारत का अर्थ ही होता है प्रकाशित करने वाला। तो ये प्रकाश तुम्हें बहुत सुख देगा, नर्मदा का यही संदेश है और यही असल में नर्मदा का सांस्कृतिक परिदृश्य है।
0: ये वक्तव्य हुआ मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय में आयोजित राष्ट्रीय विमर्श में।

0: अशोक जमनानी जी, आपसे आग्रह करूंगी कृपया आए, नर्मदा एक सांस्कृतिक परिदृश्य के रूप में इस पर प्रकाश डालें।
1: नमस्कार। नर्मदे हर। मुझे लगता है कि मैं बहुत थोड़ी सी बातें कर पाऊंगा, क्योंकि नर्मदा के सांस्कृतिक परिदृश्य पर बोलना हो तो हम बहुत पीछे जाना होता है, और इतनी बातें होती हैं कहने के लिए कि शायद एक सत्र के आप पूरे एक वर्ष में भी कहते रहें तो वे ख़त्म नहीं होती। बहुत सारे युवा यहाँ बैठे हैं, और साथ में मुझे एक और आदेश भी दे दिया गया था कि अपनी कविता भी सुनानी है, तो 10-12 मिनट में अपनी बात कह करके, 3 मिनट में अपनी कविता सुना करके कोशिश करूँगा कि जो कहना चाहता हूँ उसके कुछ सूत्र आपके समक्ष रख सकूँ। जब हम सांस्कृतिक परिदृश्य की बात करते हैं तो एक बात, चूँकि बहुत सारे युवा भी आए हैं, तो एक बात ठीक से समझनी होगी कि हम भारत में संस्कृति की इतनी बात क्यों करते हैं। भारत में हम संस्कृति की बात इसलिए इतनी करते हैं क्योंकि संस्कृति कल्चर नहीं है। संस्कृति कल्चर से कुछ अलग चीज़ है। हम उसे उसके पर्यायवाची रूप में या उसके अंग्रेजी अर्थ में कल्चर कह देते हैं, लेकिन संस्कृति कल्चर नहीं है। ये कल्चर से कैसे अलग है? पश्चिम की जो समाजशास्त्रीय विचारधाराएं वो दो बातें कहती हैं, एक सिविलाइजेशन यानी सभ्यता और एक कल्चर यानी संस्कृति। वहाँ होता यह है कि पहले सिविलाइजेशन हुआ पश्चिम में, फिर कल्चर आया। हमारी सोच थोड़ी अलग है, उसका एक उदाहरण आपके सामने रख रहा हूँ। मैं अक्सर ये बात जब संस्कृति पर बात कहनी होती है, या भोपाल के पास में एक जगह है भीमबेटका, आप सबने बहुत लोगों ने देखा सुना होगा उसके बारे में। भीमबेटका में हजारों साल पुराने चित्र हैं। जिन्होंने इसकी खोज की उनका नाम वाकणकर जी था। वाकणकर जी आज से कई दशक पहले उज्जैन विश्वविद्यालय में नौकरी किया करते थे, और वे उज्जैन से, तब यहाँ भोपाल के आसपास ही मंडी द्वीप भी नहीं बना था और बहुत घने जंगल थे, थोड़ा सा बस भोपाल से आगे बढ़ते थे और बहुत घने जंगल थे, वहाँ भीमबेटका है अब्दुल्लागंज से थोड़ा सा आगे जाते हैं तो वे हर शुक्रवार को अपनी ड्यूटी पूरी करके रात में यहाँ आ जाते थे। रात भर उस घने जंगल में जहाँ बहुत खतरनाक जीव जंतु हैं वहाँ अकेले रहा करते थे। शनिवार की सुबह उठ करके सारे डॉक्यूमेंटेशन, जो आज हम बात करें, सारा डॉक्यूमेंटेशन किया करते थे, फोटोग्राफ लिया करते थे, चित्र बनाया करते थे, और सारी सूचना एकत्रित करके लिखते जाते थे, अपना रिसर्च कंप्लीट कर रहे थे। फिर शनिवार को वही वैसी तरह से रात गुजारते थे, और इतवार को उठ करके काम करते थे, फिर रविवार की रात को लौट कर उज्जैन चले जाते थे। और आप सबको जानकर ये आश्चर्य होगा कि ये काम उन्होंने लगभग 14-15 साल तक किया। 14-15 साल तक लोग उनसे पूछते थे कि आखिर आप ये ढूंढ क्या रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं इन चित्रों का इतिहास ढूंढ रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि चित्रों का, उस समय ये जो कार्बन डेटिंग पद्धति है ये विदेशों में थी, हमारे यहाँ नहीं। अब तो बहुत कार्बन डेटिंग आ जाने से बहुत आसान हो गया कि हम पता लगा सकते हैं कि कौन सी चीज़ कितनी पुरानी है। तो उन्होंने कहा मैं ये जानना चाहता हूँ और मैं दुनिया को बताना चाहता हूँ कि ये चित्र जो हैं 5000 साल से ज़्यादा पुराने हैं। तो सबने उनसे कहा कि इससे क्या क्या सिद्ध होगा, मान लीजिए ये सिद्ध भी हो गया कि ये 5000 साल पुराने हैं, और अब तो ये सिद्ध हो गया कि वे चित्र 10000 साल से भी ज़्यादा पुराने हैं, उसमें कुछ चित्र तो ऐसे भी हैं। तो उन्होंने कहा कि इससे क्या सिद्ध हो जाएगा कि ये चित्र 5000 साल पुराने हैं या 4000 साल पुराने हैं। तो उन्होंने जो जवाब दिया वो जो मैं बात आपसे कहना चाहता हूँ उस बात की घोषणा है। उन्होंने कहा कि मैं ये सिद्ध करना चाहता हूँ कि जब मनुष्य ने खाना बनाना नहीं सीखा था, जब मनुष्य ने घर बनाना नहीं सीखा था, जब मनुष्य ने कपड़े पहनना नहीं सीखा था, तब मनुष्य ने पेंटिंग करना सीख लिया था, क्योंकि ये देश वैसा देश है कि जहाँ सिविलाइजेशन से पहले कल्चर आया है, सभ्यता से पहले संस्कृति आई है। तो उन्होंने, कितनी अद्भुत बात है, उन्होंने, और आखिर में ये सिद्ध हुआ कि जब मनुष्य ने घर बनाना नहीं सीखा था तब वो पेंटिंग करना सीख गया था, गाना गाना सीख गया था। इस देश का जो विचार है जिसे हम भारत कहते हैं, भारत ये कहता है कि सिविलाइजेशन के आने से पहले कल्चर आता है, सभ्यता के आने से पहले संस्कृति आती है। और जब हम नर्मदा की संस्कृति की बात करते हैं तो अजीब बात यह है कि नर्मदा जब इस धरती पर थी तब अफ्रीका से कुछ टुकड़े टूट रहे थे और इस धरती पर महाद्वीपों का निर्माण हो रहा था। अफ्रीका का एक टुकड़ा टूटा, वो आकर वहाँ जुड़ गया जहाँ नर्मदा बह रही थी, और उस समय उस टुकड़े के आकर के भारत से जुड़ने से इतनी जोर का घर्षण हुआ कि एक जगह धरती ऊपर उठ गई और जहाँ धरती ऊपर उठ गई वहाँ आज हिमालय है। तो नर्मदा तब भी थी जब इस दुनिया में महाद्वीप बन रहे थे इस धरती पर, और नर्मदा ने हिमालय को जन्म लेते हुए देखा है। सोचिए नर्मदा कितनी पुरानी है। और नर्मदा की संस्कृति की बात करेंगे तो हमें कहाँ जाना होगा, करोड़ों साल पीछे जाना होगा जहाँ से हम नर्मदा की संस्कृति की शुरुआत करेंगे। तो मैं 15 मिनट में आपको क्या बताऊँगा कि हम नर्मदा के मैं आपके सामने क्या सांस्कृतिक परिदृश्य रखूँगा। दो बातें कहनी हैं, उसके बाद कविता सुना करके समाप्त कर दूंगा। संस्कृति का अर्थ भारत में भिन्न इस तरह से है, कई बार पुरानी चीज़ों को लोग संस्कृति समझ लेते हैं। भारत ने इसे एक नया अर्थ दिया। भारत ने कहा जो अतीत में है वह सब संस्कृति नहीं है, संस्कृति वह है जो अतीत से आती है, वर्तमान में होती है और भविष्य को जाती है, कि निरंतर निरंतर अपने आप में से एक छन्नी लगाती रहती है। लगता है कि अभी काल इस काल में अब इसकी उपयोगिता समाप्त हो गई, इसे छोड़ दो, कि वर्तमान तक आती है, वर्तमान में कुछ जोड़ती है इसे, इसे लगता है कि इसका भविष्य में महत्व है। इसलिए भारत की संस्कृति नदी बनती है, भारत की संस्कृति नर्मदा बनती है। इसलिए बनती है क्योंकि इसमें लगातार प्रवाह है। अभी आप बात कर रहे थे, मैं वर्तमान की बात इसलिए कर रहा हूँ, मैडम ने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन किया 64 योगिनी मंदिर का। मैंने एक उपन्यास लिखा है बूढ़ी डायरी, वह इसी मंदिर पर केंद्रित है। और इस उपन्यास को जब मैं लिख रहा था, हमारा वर्तमान संस्कृति के प्रति कितनी उदासीनता का समय है, मैं आप युवा बैठे इसलिए कहना चाहता हूँ, और नर्मदा समग्र जो काम कर रहा है इसकी क्या ज़रूरत है इसलिए कहना चाहता हूँ। अभी जो आप, मैंने सोचा नहीं था कि मैं इस पर बात करूँगा, लेकिन वो चित्र ये सारी चीज़ें देख करके मुझे लगा कि इस पर बात करना ज़रूरी है। सर, जब मैं बूढ़ी डायरी उपन्यास लिख रहा था और मैं पहली बार तेवर गया, तो मुझे पता चला कि एक कल्चुरी राजवंश था। इस कल्चुरी राजवंश ने संस्कृति के क्षेत्र में कितना बड़ा काम किया। भारत में शायद सबसे, हम मौर्य साम्राज्य की बात करते हैं, मुगल साम्राज्य की बात करते हैं, अंग्रेजों की बात करते हैं, लेकिन 1000 साल से भी ज़्यादा कल्चुरी राजवंश ने भारत के अलग अलग हिस्सों में राज्य की शासन किया, और ये भारत का सबसे अधिक समय तक शासन करने वाला राजवंश था। इतिहास की किताबों में इसके ऊपर एक पैराग्राफ मिलता है, कोई चैप्टर तक नहीं है। ये इतना महत्वपूर्ण समय राजवंश था, लेकिन जो अच्छी बात थी कि इसका कला के प्रति और संस्कृति के प्रति बड़ा गहरा लगाव था। कहते हैं कि जब कल्चुरी राजवंश की जो राजधानी थी, जिसे जिसका नाम तब त्रिपुरी था, तब वहाँ पर दिन रात शिल्पकार इतना काम किया करते थे कि आप अगर 10 कोस दूर हों तब भी उनकी छेनी हथौड़ी की आवाज़ सुनाई दिया करती थी, इतनी मूर्तियाँ बन रही होती थी। तो इतना उनका कला और संस्कृति से लगाव था। ये राजवंश लगभग समाप्त हो रहा था। ये जो 64 योगिनी का मंदिर है, उस समय एक रानी थी, उनका नाम था अल्हण देवी। वो लगभग कल्चुरी वंश के जो अंतिम राजा थे, उस राजवंश की अंतिम रानी है। उनके आचार्य थे रुद्र राशि, जो बहुत बड़े तांत्रिक थे। अब रानी की चिंता ये थी कि राज्य कैसे बचेगा, और आचार्य की चिंता ये थी कि विद्या कैसे बचेगी। दोनों की चिंताएं अलग अलग थी, लेकिन दोनों की मुलाकात हुई तो रानी ने अपने गुरु से कहा, अपने आचार्य से कहा कि कुछ ऐसा कीजिए कि राज्य बच जाए। और आचार्य की चिंता ये थी, रानी से उन्होंने कहा कुछ ऐसा कीजिए कि ये विद्या बच जाए। तो दोनों ने मिलकर के एक काम किया, राजवंश ने और गुरुकुल ने मिलकर के एक काम किया। उन्होंने कहा कि एक मंदिर बनाते हैं। गुरु ने कहा कि मैं साधना करूंगा, हो सकता है राज्य बच जाए, लेकिन आचार्य के मन में जो बड़ी बात थी कि ये विद्या बच जाए। तो उन्होंने ये जो 64 योगिनी मंदिर, जिसे अभी 81 योगिनियों का मंदिर कहा जा रहा है, ये 64 योगिनी मंदिर असल में एक किस्म से उस तरह के उस समय के जो सर्वश्रेष्ठ कलाकार थे उनको बुलाया, और एक किस्म की जो पूरी विद्या थी उसकी कोडिंग इन प्रतिमाओं में की गई। आप समझ रहे, पत्थर की प्रतिमाओं में उस पूरी जो इसे कहते हैं योगिनी कोल संप्रदाय। ये तंत्र का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है और बहुत गहरी विद्या है। तो ऐसे योगिनी कोल संप्रदाय की उन्होंने पूरी कोडिंग उन कलाकारों से, उन शिल्पकारों से, उन प्रतिमाओं में करवाई। एक एक प्रतिमा में, और इन 64 प्रतिमाओं को या 81 प्रतिमाओं को मिला दिया जाए, और अगर इनको, इनके जो हिस्से गायब हो चुके हैं, अगर उन हिस्सों को हम फिर से ले लें, तो पूरा का पूरा योगिनी कोल संप्रदाय हमारे सामने ऐसे खुल करके आ जाएगा, जैसे हम कंप्यूटर में डिकोड कर देते ना, ऐसे पूरा का पूरी ये विद्या डिकोड हो जाएगी। आप सोचिए एक आचार्य क्या कर रहा था, रानी की चिंता थी राज्य बचे, आचार्य की चिंता थी या गुरुकुल की चिंता थी विद्या बचे, वे दोनों मिलकर के उन्होंने कोशिश की, राज्य भी नहीं बचा, विद्या भी नहीं बची, क्यों नहीं बची। मैं जब ये उपन्यास लिखने के लिए त्रिपुरी गया, उसका नाम है तेवर अब वर्तमान में, तो राज्य नहीं बचा, जब आक्रमण अधिक होने लगे तो वहाँ लाखों करोड़ों प्रतिमाएँ थी, सबने सोचा कि ये आएंगे और आक्रांता आएंगे और प्रतिमाओं को तोड़ेंगे, तो हर खेत में गड्ढे खोदे गए और उन लाखों करोड़ों प्रतिमाओं को उन गड्ढों में दबा दिया गया। और उसके बाद ये हुआ कि जब मैं गया वहाँ तो मैंने तेवर में जाकर के जो पहला दृश्य देखा, वहाँ कोई भी आदमी, ये मैं आपको कोई 50 साल पुरानी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं 2006 में मैं उपन्यास लिख रहा था, और जब मैं तेवर में गया जो मैंने पहला दृश्य देखा, वहाँ हर खेत में से मूर्तियाँ निकलती हैं, हर खेत में से अब भी निकलती हैं, अगर हम अपनी संस्कृति को जानते और समझते कि हमारी संस्कृति का मूल्य क्या है। हम अपनी संस्कृति का मूल्य नहीं पहचानते। नर्मदा आपसे कहती है इसे पहचानो, ये बहुत कीमती है, वो जो भीतर है, वो जो बाहर है, वो जो मूर्त है, वो जो अमूर्त है, इसे पहचान सको तो नर्मदा का अर्थ ही होता है सुख देने वाली, भारत का अर्थ ही होता है प्रकाशित करने वाला, तो ये प्रकाश तुम्हें बहुत सुख देगा। नर्मदा का यही संदेश है और यही असल में नर्मदा का सांस्कृतिक परिदृश्य है। तो अब मैं एक अपनी कविता सुना करके अपनी बात समाप्त करूँगा। मुझे पहले आदेश दे दिया गया था कि अंत में आप अपनी कविता सुना दीजिएगा, इसलिए सुना रहा हूँ। तो क्या होता है, जो कवि होते हैं उनको जैसे ही मंच और श्रोता मिल जाते हैं, वो मौका ढूंढने लगते हैं कि कविता सुना दो। मैंने मुझे आदेश दिया गया था इसलिए सुना रहा हूँ। इस कविता के तीन हिस्से हैं। नर्मदा कविता का शीर्षक है, एक जो वर्तमान की पीड़ा है वह है, और दूसरे हिस्से में प्रलय का वर्णन है, अंत में प्रार्थना है। नर्मदा का जब जन्म हुआ तो भगवान शंकर के माथे से पसीने की एक बूंद गिरी और नर्मदा बन गई। भगवान शंकर ने वरदान दिया कि तुम कल्प में भी नष्ट नहीं होगी। जब हर कल्प में प्रलय होता है, प्राकृत प्रलय होता है, पहले हिस्से में नर्मदा का वर्तमान से जुड़ी पीड़ा है, दूसरे हिस्से में प्रलय का वर्णन है और अंत में प्रार्थना है कि बहो निरंतर बहो नर्मदा, बहो निरंतर बहो नर्मदा, कल्प नहीं बाधा प्रवाह में। इसमें एक शब्द आएगा एकार्णव, प्रलय में सारे समुद्र, जो हमारा साइंस कहता है कि प्रलय में ये होगा कि पहले ग्लोबल वार्मिंग होगी, सब कुछ जलने लगेगा और बाद में सारे समुद्र, इतना पानी बढ़ जाएगा ग्लेशियर्स के कारण कि सारे समुद्र मिलकर के एक हो जाएंगे। उसके लिए उन्होंने दिया एक कारण और शब्द, यानी सारे समुद्र मिलकर के एक हो जाएं। और आप कितने आश्चर्य की बात है, जो साइंस आज कहता है कि पहले ग्लोबल वार्मिंग होगी फिर सारे समुद्र मिल जाएंगे, हमारे पुराण भी यही कहते हैं। वो कहते हैं सामवर तक अग्नि होगी, सब कुछ जलने लगेगा, फिर सारे समुद्र मिलकर के एकार्णव हो जाएंगे और यही प्रलय होगा। तो साइंस और पुराण कोई अलग अलग बात नहीं कर रहे हैं। तो बहु निरंतर बहु नर्मदा, बहो निरंतर बहो नर्मदा, कल्प नहीं बाधा प्रवाह में। बहो निरंतर बहो नर्मदा, कल्प नहीं बाधा प्रवाह में। सृष्टि के उत्थान पतन की चिर साक्षिणी शेष रहे। बहो निरंतर बहो नर्मदा, बहो निरंतर बहो नर्मदा। तपो भूमि है तट तेरे, तपो भूमि है तट तेरे, तपो भूमि है तट तेरे, पर तप के सांचे कौन ढलेंगे। ना जाने हैं कौन कौन जो तेरे तट पर दाव चलेंगे। संस्कृतियों के अर्थ व्यर्थ हैं, कहां हृदय ये जहां पलेंगे। जो तेरा अभिषेक करेंगे हाथ, वही दिन रात चलेंगे। तो सहो निरंतर सहो नर्मदा, सहो निरंतर सहो नर्मदा, घात नहीं बाधा प्रवाह में। सहो निरंतर सहो नर्मदा, घात नहीं बाधा प्रवाह में। पाप पुण्य के भेद अभेद की चिर साक्षिणी शेष रहे। बहो निरंतर बहो नर्मदा, बहो निरंतर बहो नर्मदा। और यह प्रलय का वर्णन है कि काल प्रलय घनघोर गहन है, काल प्रलय घनघोर गहन है, दिग दिगंत तक घोर गहन, काल प्रलय घनघोर गहन है, दिग दिगंत तक घोर गहन। लुप्त लुप्त जल सुप्त सुप्त जल तृषा तृषित है शेष देन। काल प्रलय घनघोर गहन है, दिग दिगंत तक घोर गहन, लुप्त लुप्त जल सुप्त सुप्त जल तृषा तृषित है शेष देन। दग्ध दग्ध दिग दिग दिगंत है, दिग दिगंत दिग दिग दिगंत दिग दिग दिगंत दिग दिग दिगंत है। काल प्रलय घनघोर गहन, दिग दिगंत तक घोर गहन, लुप्त लुप्त जल सुप्त सुप्त जल तृषा तृषित है शेष देन। दग्ध निष्ठ चेतना चल स्थिर में गंध लीन स्तेज लीन है परसनाथ स्तर में जल जल जल जल जल जल जल जल जल जल अनंत उलझ पर जल जल जल जल अनंत जल जल अनंत काल पर घर गोर गए दिग दिगंत गोर गए लुप्त लुप्त जल सुप्त सुप्त जल त्रषात शेत है शेष देन दग्ध दग्ध दिग दिग दिगंत है दिग दिगंत दिग दिग दिगंत गड़गड़ गड़ गड़ गड़ गड़ अंत अंत बस अंत अंत अंत अंत बस अंत अंत अंत अंत बस अंत अंत तो रहो न तब भी रहो न तब भी रहो न तब भी रहो नर्मदा प्रलय नहीं बाधा प्रवाह में दृश्य अदृश्य के लोप अलोप की चिर साक्षिणी शेष रहे बहो निरंतर बहो नर्मदा। और अंत में प्रार्थना है हे शुभांग देही शुभम करोति इदम वरेण्य पंथ धर्मदा हे शुभांग देही शुभम करोति इदम वरेण्य पंथ धर्मदा शुभम वरेण्य सदा सर्वदा नर्मदाति पुण्य नर्मदा हरिनिनाद शम शम निनाद शंभू निनाद जलधार सर्वदा शिव स्थापन हृदय हृदय हर हर हर हर हर मात नर्मदा। कहो मंत्र शिव कहो मंत्र शिव कहो मंत्र शिव कहो नर्मदा काल नहीं बाधा प्रवाह में मानवता के अस्त उदय की चिर साक्षिणी शेष रहे बहु निरंतर बहु नर्मदा बहु निरंतर बहु नर्मदा नर्मदा नर्मदा नर्मदा। बहुत
2: आज के इस खास कार्यक्रम में आप सुन रहे थे वरिष्ठ साहित्यकार अशोक जमनानी का वक्तव्य। विषय था नर्मदा एक सांस्कृतिक परिदृश्य के रूप में। अगले कार्यक्रम तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद से प्रसारित किए जा रहे कार्यक्रम। श्रोताओं, आप समय मिला सकते हैं, दिन के 10 बज चुके हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा। कार्यक्रम में आप जानते हैं भोपाल शहर की साहित्यिक सांस्कृतिक गतिविधियों की जानकारी।

कांटों के बीच खिलने की दास्तान नाटक के जरिए पेश की जाएगी कैक्टस फ्लावर नाटक, जिसका मंचन 27 सितंबर को किया जाएगा। भोपाल थिएटर्स की ओर से ये आयोजन होगा। एबी बरोज द्वारा लिखित इस नाटक का हिंदी रूपांतरण प्रवीण महुवाली ने किया है, जबकि इसका निर्देशन रंगकर्मी राजीव वर्मा ने किया है। मंच पर रीता वर्मा, प्रवीण महुवाली, महुआ चैटर्जी, सुनील सक्सेना और राजीव वर्मा अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। नाटक की मंच परिकल्पना राजीव वर्मा और दिनेश नायर की है। संगीत संचालन युग खड़ायेते और प्रकाश परिकल्पना कमल जैन की रहेगी। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में हिंदी पखवाड़ा 2026 के अंतर्गत राजभाषा इकाई द्वारा श्रुत लेखन हिंदीतर भाषियों हेतु प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता का उद्देश्य हिंदी भाषी कर्मचारियों में राजभाषा हिंदी के प्रति रुचि बढ़ाना, उनके शुद्ध लेखन कौशल को प्रोत्साहित करना और दैनिक कामकाज में भाषा के व्यवहारिक प्रयोग को सुदृढ़ बनाना था। आयोजन के दौरान हिंदी भाषी प्रतियोगी साथियों ने भाग लेकर अपनी भाषाई दक्षता का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम का संचालन एवं समन्वयन प्रतियोगिता संयोजक श्रीकांत गुप्ता और डॉ. प्रीतम चौधरी के मार्गदर्शन में हुआ। संग्रहालय के निदेशक डॉ. अमिताभ पांडे ने हिंदी भाषी कर्मचारियों द्वारा हिंदी सीखने और लिखने के प्रयासों की सराहना की। हेमंत बहादुर सिंह ने हिंदी को कामकाज में अपनाने की बात की।

वहीं सरोजिनी नायडू शासकीय कन्या स्नातकोत्तर स्वशासी महाविद्यालय के हिंदी विभाग की ओर से हिंदी पखवाड़े के तहत स्वरचित काव्य पाठ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मातृभाषा का महत्व और मैं और मेरी हिंदी विषय पर विद्यार्थियों ने स्वरचित कविताओं का पाठ किया। स्टूडेंट्स ने अत्यंत मौलिक और सार्थक कविताओं का पाठ किया। आइए श्रोताओं, चलते हैं आपको लेकर वन विहार में, जहां साधारण से पत्थरों और वुडन टाइल्स पर किसी ने दौड़ता हुआ चीता बनाया तो किसी ने जंगल, तितलियों और वन्य जीवों की रंगी दुनिया उकेरी। बच्चों की कल्पना के कुछ दृश्य हकीकत से तो कुछ जंगल प्रेम से निकले थे। देखते ही देखते पत्थरों पर मानो फिर जंगल के दरवाजे खुले और चीते दौड़ने लगे। गुरुवार को वन विहार राष्ट्रीय उद्यान की चीता चौपाल में ये नजारा दिखा। भारत में चीता रीइंट्रोडक्शन के 4 साल पर हुई स्टोन और वुडन टाइल पेंटिंग प्रतियोगिता में स्कूल कॉलेजों के 120 बच्चों ने हिस्सा लिया। बच्चों ने रंगों से चीते की खूबसूरतियों के लिए वन्य जीव संरक्षण का संदेश दिया और वे चीता मित्र बने। कार्यक्रम से ऑनलाइन जुड़े प्रमुख सचिव वन राघवेंद्र कुमार सिंह ने ये बताया कि नामीबिया से 8 चीते लाए जाने के बाद फरवरी 2023 में दक्षिण अफ्रीका से 12 चीते लाए गए। वर्ष 2026 में बोत्सवाना से 9 चीते भारत लाए गए। वर्तमान में देश में कुल 52 चीते हैं, जिनमें खास बात ये है कि इनमें से 32 चीतों का जन्म भारत में ही हुआ है। कार्यक्रम में प्रधान मुख्य वन संरक्षण एवं वन वल प्रमुख शुभरंजन सेन और प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्य जीव अभिरक्षक डॉक्टर समिता राजौरा भी उपस्थित थे। आइए अब चलते हैं बरकतुल्ला विश्वविद्यालय, जहां पर दीक्षांत समारोह शुक्रवार सुबह 10:30 पर कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर यानी मिंटो हॉल में होगा। समारोह में 85 शोधार्थियों को पीएचडी की उपाधि आज प्रदान की जाएगी। वहीं विभिन्न संकायों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को 27 गोल्ड मेडल से सम्मानित किया जाएगा। इनमें 5 प्रायोजित स्वर्ण पदक हैं। समारोह की अध्यक्षता राज्यपाल और कुलाधिपति मंगू भाई पटेल करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी इस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा एवं आयुष मंत्री इंदर सिंह परमार विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होंगे। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान के कुलपति प्रोफेसर के रंगराजन मुख्य वक्ता होंगे। हेरिटेज डे 2026 के अवसर पर आलियांस फ्रांसिस द भोपाल की ओर से 19 सितंबर को एक खास हेरिटेज वॉक का आयोजन किया जाएगा। ये वॉक सुबह 10 बजे रानी कमलापति महल से शुरू होगी। इसमें प्रतिभागियों को भोपाल के इतिहास में बोरबोन परिवार की विरासत और फ्रांस से जुड़े ऐतिहासिक संबंधों से परिचय कराया जाएगा। रानी कमलापति महल से शुरू होगी हेरिटेज वॉक। इसके दौरान शहर की ऐतिहासिक इमारतों,

अभिव्यक्ति गरबा महोत्सव। ऐसे में और भी ज्यादा उत्साह, नई उमंग और ऊर्जा के साथ शहर के लोगों के लिए अभिव्यक्ति गरबा वर्कशॉप की शुरुआत आज यानी शुक्रवार से 18 सितंबर से होने जा रही है। मानस भवन और चार इमली स्थित रविशंकर कम्युनिटी हॉल में आयोजित हो रही वर्कशॉप में गरबा के 19 बैच रखे गए हैं। वर्कशॉप 12 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इसके सभी प्रतिभागी अभिव्यक्ति गरबा महोत्सव का हिस्सा बनेंगे, जहां भक्ति और नृत्य का समागम एक बार फिर पूरे भोपाल को प्यार के बंधन में बांधेगा। वर्कशॉप में प्रतिभागियों को गरबा और डांडिया के नए नए स्टेप्स सीखने के साथ 5 दिवसीय महोत्सव के लिए अपनी एनर्जी और परफॉर्मेंस बेहतर करने का मौका मिलेगा। पुराने गरबा मैट्स एक बार फिर से एक साथ प्रैक्टिस करेंगे और मैचिंग ट्रेडिशनल ड्रेसेस में अपनी दोस्ती का एक और साल सेलिब्रेट करेंगे। हर साल भोपाल के 25,000 से ज़्यादा लोग अहमदाबाद से आने वाले अभिव्यक्ति के विशेष गरबा मास्टर से गरबा और डांडिया सीखते हैं। तो श्रोताओं, ये था आज का परिक्रमा कार्यक्रम, जिसमें हम आपको जानकारी दे रहे थे भोपाल में होने वाले साहित्यिक सांस्कृतिक गतिविधियों की। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आइए सुनते हैं देशभक्ति गीतों को।

0: हिंदुस्तान हमारा स्वाधीनता संघर्ष की महाकथा, आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथा के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, अनुसूचित जाति और जनजाति सहित सभी अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाएं।
1: राजा शंकर शाह और उनके पुत्र रघुनाथ शाह सन 1857 की क्रांति में शहीद हुए दो प्रमुख क्रांतिकारी कवि थे। राजा शंकर शाह गढ़ा राज्य के वारिस थे, जिस पर प्रतापी राजा संग्राम शाह और वीरांगना रानी दुर्गावती ने शासन किया था। सन 1784 में गढ़ा राज्य पर सागर के मराठों का अधिकार होने के पश्चात उसके वारिसों को गुजर बसर के लिए जबलपुर के पास एक जागीर दे दी गई थी। राजा शंकर शाह की यही जागीर 1857 की क्रांति के समय क्रांतिकारी गतिविधियों का केंद्र बन गई। 1857 की क्रांति के समय जब दिल्ली और मेरठ क्षेत्र की घटनाओं के समाचार जबलपुर पहुंचे तो वहां उत्तेजना फैल गई। जबलपुर की 52वीं बटालियन के सैनिकों ने अंग्रेजों को उखाड़ फेंकने का मन बना लिया। शंकर शाह के निवास पर क्रांतिकारी योजनाएं बनने लगी। उन्हीं योजनाओं में अंग्रेज अफसरों को मारने की योजना भी बनी, मगर ये योजना कारगर हो पाती इससे पहले ही मुखबिर गिरधारी दास की सूचना पर राजा शंकर शाह और उनके पुत्र रघुनाथ शाह को गिरफ्तार कर लिया गया। राजा शंकर शाह के निवास से एक कागज का टुकड़ा मिला, जिसमें राजा ने अपनी आराध्य देवी से ब्रिटिश सरकार को खत्म करने और खुद की सरकार स्थापित होने की प्रार्थना की थी। इसी राष्ट्रवादी प्रेरक रचना को आधार बनाकर राजा और उनके बेटे पर ब्रिटिश राज के विरुद्ध साजिश करने का मुकदमा चलाया गया। साजिश में उनका हाथ सिद्ध होने के सबूत में उन्हें तोप से उड़ा दिए जाने का दंड दिया गया। जब राजा शंकर शाह और उनके पुत्र रघुनाथ शाह को तोप के मुंह पर बांधा जा रहा था तो उन्होंने प्रार्थना की कि भगवान उनके बच्चों की रक्षा करें ताकि वे अंग्रेजों को खत्म कर सकें। अंतिम इच्छा के रूप में दोनों वीर क्रांतिकारियों ने एक दूसरे को देखकर कविता सुनाई। कविता पाठ की समाप्ति के साथ ही दो तोपों की गर्जना ने राजा और उनके पुत्र के मातृभूमि के लिए उत्सर्ग को स्वीकार कर लिया।

0: अरे गजबे दादा, दो चाय लगाना इधर,
1: जरा जल्दी करना दादाऊ।
2: क्यों रे?
1: हाँ,
2: कल रात को क्या हुआ था?
1: कुछ तो नहीं।
2: अरे सुना है प्रफुल्ल अस्पताल में भर्ती है और उसके सर पैर हाथ पैरों में चोट लगी है।
1: वो तो उसकी बाइक सामने से आ रहे बंदे की बाइक से टकरा गई थी और दोनों उछल कर दूर जा गिरे।
2: अच्छा, तू क्या समझता है कि मैं इस बारे में बात कर रहा हूँ?
1: मैं समझा कि तू झगड़े के संबंध में पूछ रहा है।
2: किस झगड़े की बात कर रहा है तू?
1: अरे वो कली की तो बात है।
2: क्या?
1: कोई 10:30-11 बजे का समय होगा। मैं नीता को घर छोड़कर आ रहा था।
2: अच्छा,
1: तभी मैंने देखा कि वो लिंक रोड पर स्टेच्यू के सामने 4 लड़के बीच रोड पर रास्ता रोक के खड़े हैं।
2: फिर क्या हुआ?
1: फिर क्या, मुझे बाइक रोकनी पड़ी।
2: अच्छा,
1: मैंने पूछा क्या बात है। उनमें से एक बोला, बात एकदम सीधी है बिड़ू, अपन को माल मांगता है क्या समझा? जो कुछ भी जेब में हो जल्दी से निकालने का।
2: अरे बाप रे।
1: मैंने कहा अपने पास कुछ नहीं है। तो दूसरा बोला, ए सियाणे, ज्यादा होशियार बनने का नहीं, जो कुछ भी हो जल्दी से ढीला करने का। अरे फिर मुझे गुस्सा आ गया।
2: तुझे गुस्सा आ गया?
1: हाँ, मैं बोला, ए लगता है तुम लोगों को ज्यादा ही रंगदारी चढ़ गई है, अकेले देखकर शेर बन रहे हो।
2: अरे क्या हुआ?
1: फिर उनमें से बोला, तू कौन सा दादा है रे? मैंने झटका दिया। रॉबर्ट ग्रुप का नाम सुना? इतना सुनकर पहला थोड़ा नरम होकर बोला, तो फिर झगड़ा काय को करने का, अपना भाई समझ के ही भाई की मदद करने का।
2: अच्छा,
1: देख भाई, अपन लोग बहुत जरूरत में है। मैंने मौके की नजाकत को देखकर जेब से पर्स निकाला।
2: अच्छा,
1: उसमें खुले 200 रुपए थे।
2: अच्छा,
1: उनकी ओर बढ़ाते हुए बोला, ए भाई अभी इतना ही है।
2: अच्छा,
1: कल इधर ही इसी समय मिलना, तुम्हारी सभी जरूरत पूरी हो जाएंगी। और मैं वहां से आगे बढ़ गया। वो नोट पर झपटते हुए बोला, थैंक यू, और मैं वहां से चुपके से खिसक आया।
2: बेटा तेरी चलाकी काम कर गई। ये रॉबर्ट ग्रुप का क्या फंडा यार? ये कौन है रॉबर्ट ग्रुप?
1: अरे मुझे क्या पता, मैंने तो ऐसे झटका दे दिया था।
2: याने तेरी ट्रिक काम आ गई।
1: और क्या, एक बात ठीक से समझ ले यार, अपन को कभी भी फालतू में किसी से पंगा नहीं लेना।
2: अच्छा, हाँ। दूसरा चाहे भले ही अपने सर पे हावी हो जाए।
1: देख, अगर अपन 4 होते तो भी ठीक था, जब अकेले हैं तो ज्यादा जोश दिखाकर हाथ पैर तुड़वा लेने से तो अच्छा है 100-500 रुपए दे के निकल लो। अच्छा। फिर अपन कोई गुंडे थोड़ी है यार जो बराबरी से लड़ते फिरे। एक बात है यार।
2: क्या?
1: ये लोगों की चौथ वसूली अच्छी चल रही है।
2: यार चौथ वसूली क्या, अब जो लते पड़ गई है ना, उन्हें पूरा करने के लिए पैसे तो चाहिए ही ना।
1: और
2: अब घर से तो इतने पैसे मिलते नहीं। अच्छा एक बात बता, प्रफुल्ल कैसा है? कोई सीरियस बात तो नहीं है ना?
1: अरे कुछ नहीं, डॉक्टर ने उसे आउट ऑफ डेंजर बताया।
2: अच्छा,
1: वो तो हेलमेट ने बचा लिया, नहीं तो कुछ भी हो सकता था।
2: थैंक गॉड। अरे गजबे दादा, हमारी चाय का क्या हुआ दादा?
1: यार
3: अरे चाय तो आ रही है बेटा, पर ये तो बताओ कि एक्सीडेंट किसका हुआ?
1: प्रफुल्ल का दादा।
3: वो जो अपने कमीज की कॉलर हमेशा खड़ी रखता है उसका?
2: अरे हाँ दादा, वही। अच्छा एक बार बताया यार, दूसरा लड़का कौन था वो साथ में?
1: अरे वो शंकर नाम का लड़का है।
2: अच्छा,
1: डॉक्टर ने उसे भी खतरे से बाहर बताया है।
2: अच्छा
3: यार, शंकर नाम से याद आया बेटा।
2: क्या
3: बेटा, तुम्हें पता है शंकर शाह के लड़के रघुनाथ शाह ने 57 की लड़ाई में अंग्रेजों को भारी टक्कर दी थी?
2: दादा सच बताए ना तो शंकर शाह रघुनाथ शाह के बारे में अपन को कुछ नहीं पता।
1: बिल्कुल सही कह रहे था दादा, पिछले दिनों चित्रकला प्रतियोगिता के संबंध में इनके नाम जरूर पढ़े थे हमने। कौन थे दादा ये?
3: हाँ बेटा, सरकारी स्कूलों के कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए जिला स्तरीय चित्रकला प्रतियोगिता हो रही है।
2: अच्छा,
3: और पुरस्कार वीर रघुनाथ शाह और शंकर शाह के नाम पर रखे गए हैं।
1: अच्छा दादा, इनकी कहानी सुनाओ ना।
2: हाँ दादा प्लीज, आज इनकी कहानी सुनाओ ना।
3: तो सुनो, शंकर शाह गढ़ा मंडला के प्रतापी गोंड राज घराने के वंशज थे।
2: अच्छा,
3: इनके पुरखों ने गोंडवाना में लगभग 1500 वर्ष तक राज किया।
1: दादा ये गढ़ा वही है ना जो जबलपुर के पास है?
3: हाँ बेटा, जबलपुर से कोई 4 मील की दूरी पे है जो गढ़ा गोंड साम्राज्य की राजधानी थी।
2: अच्छा,
3: गढ़ा राज करीब 280 साल रहा।
2: अच्छा,
3: इसमें संग्राम शाह, रानी दुर्गावती और हृदय शाह जैसे नामी राजा हुए। 57 के संग्राम के समय शंकर शाह विद्रोहियों को संगठित करते रहे।
4: पिताश्री, एक हरकारा रामगढ़ की रानी आवंती बाई का संदेशा लेकर आया है, वो आपसे मिलने को आतुर है पिताश्री।
5: वही रामगढ़ ना, जो मंडला की पहाड़ियों में राजपूत सामंतों की प्राचीन जागीर रहा है।
4: जी पिताश्री, आपको तो पता ही होगा, उनके पति स्वर्गवासी विक्रमादित्य सिंह जी के बाद फिरंगी शासन ने छल बल से रामगढ़ जागीर को भी कोर्ट ऑफ वार्ड्स के तहत अपने अधीन कर लिया है।
5: हाँ, हमें पता है, पर उन्होंने तो अत्यंत साहस और धैर्य का परिचय देते हुए दक्षता के साथ राजकाज संभाल लिया था।
4: जी, तभी तो अंग्रेजों की कूटनीति से क्षुब्ध हैं और उन्होंने अंग्रेजी राज के विरुद्ध विद्रोह का बीड़ा उठाया है।
5: रघुनाथ
4: जी,
5: क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता, देवी माँ के आशीर्वाद से ये हमारे लिए शुभ संदेश लेकर आया है?
4: जी पिताश्री, मैं आपका संकेत समझ रहा हूँ, इससे हमें भी अपना खोया हुआ राज्य प्राप्त करने का रास्ता मिल जाएगा।
5: बिल्कुल ठीक, बुलाओ उस हरकारे को, बुलाओ, हम स्वयं उससे बात करना चाहेंगे।
4: जैसी आज्ञा पिताश्री। अंगरक्षक, हरकारे को महाराज की सेवा में प्रस्तुत किया जाए।
6: महाप्रतापी गौण राजा संग्राम शाह के वंशज राजा शंकर शाह के चरणों में गढ़ा मंडला राजवंश की जागीर रामगढ़ की महारानी अवंतीबाई के दूत का सादर प्रणाम स्वीकार कीजिए महाराज।
5: आओ, स्वागत, अभिनंदन है। कहें, आप महारानी का क्या संदेश लेकर आए हैं?
6: महाराज, रानी ने आपके लिए जो खरीदा और सामग्री भेजी है वो तो मैं आपकी सेवा में प्रस्तुत करूंगा ही, पर उससे पहले महारानी ने जो चर्चा आपसे करने का आदेश दिया है वो करना चाहूंगा।
5: जी हाँ, स्वागत है।
6: महाराज, जब से अंग्रेजों ने रामगढ़ जागीर को कोर्ट ऑफ वार्ड्स के अधीन हथियाया है, महारानी ने आसपास के सभी जागीरदारों, राव उमरावों को फिरंगी शासन के विरुद्ध एकजुट करने का बीड़ा उठाया है।
5: हाँ, हमें पता है।
6: महाराज, महारानी की प्रेरणा स्रोत यशस्वी गौण रानी स्वर्गीय दुर्गावती, साथ ही इन दोनों में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का अनुगमन कर रही हैं। इन्हीं प्रेरणाओं के तहत अपना लक्ष्य सिद्ध करने के लिए वे एक ओर तो गांव दर गांव के दौरे कर रही हैं और दूसरी ओर क्रांति संदेश के प्रतीक कमल और रोटी का आदान प्रदान भी कर रही हैं।
5: हमने उनके इस अभियान के बारे में सुना है, बताओ रानी हमसे क्या चाहती हैं?
6: महाराज, महारानी ने अत्यंत शालीनता के साथ आपको गौण साम्राज्य के महाप्रतापी राजा, आपके महाराजा संग्राम शाह का स्मरण कराया, जिन्होंने 3-4 गढ़ों को बढ़ाकर पूरे 52 गढ़ों का साम्राज्य खड़ा किया था। साथ ही उन्होंने याद दिलाया है, आपसी झगड़ों का फायदा लेकर सागर के पेशवा ने गढ़ा राज्य पर अपना आधिपत्य कर लिया था। अतः स्पष्ट है, हमारी एकजुटता ही आतताई फिरंगियों को अपने देश से बाहर खदेड़ सकती है। इस कार्य में वे आपका सहयोग चाहती है।
5: महारानी के इस अभियान से हम बहुत उत्साहित हुए हैं। महारानी को हमारी ओर से पूर्ण आश्वस्त करें कि हमारा और हमारे पुत्र रघुनाथ का संकल्प भी वही है जो उनका है। उनसे कहिए 70 साल की इस उम्र में भी हमारी हड्डियों में हमारे पूर्वजों के शौर्य का वही बल है। हमारी एकजुटता हमें अपना संकल्प पूरा करने में सफल अवश्य बनाएगी। हम सभी उनके साथ हैं।
6: महाराज का ये संदेश पूरी निष्ठा के साथ ये दास महारानी तक पहुंचा देगा। महारानी द्वारा भेजी गई सामग्री संभाले और सेवक को आज्ञा दे महाराज।
5: आपकी यात्रा सफल हो। रघुनाथ
4: जी पिताजी,
5: जरा देखो तो रानी अवंतीबाई ने और क्या क्या सौगात भेजी है।
4: जी पिताश्री, एक खरीता है और कुछ चूड़ियां।
5: चूड़ियां?
4: जी।
5: जरा पढ़ो तो खरीते में क्या लिखा है।
4: लिखा है, मान्यवर सादर प्रणाम, मेरा दो टूक संदेश है, देश के लिए कमर कसो या चूड़ियां पहनो। साथ ही लिखा है, तुम्हें धर्म ईमान की सौगंध है, जो इसका सही पता बैरी को दो। देश हित में आशा है, आप मेरी धृष्टता को क्षमा करेंगे। आवंती बाई।
5: जा, देश हित में तुझे क्षमा किया। हम तेरे साथ हैं।
3: तो बेटा, कागज के उस छोटे से टुकड़े पे लिखे संदेश ने मुक्ति आंदोलन लाने के लिए वो जोत जलाई कि जिसकी चिंगारी से पूरे इलाके में देश पे मर मिटने की आग धधकने लगी। कहने को ये सारी तैयारी चोरी छिपे तरीके से चलती रहती थी।
2: अच्छा।
3: लेकिन इसकी भनक अंग्रेजों को जब तब लगी जाती थी।

0: कैप्टन मॉस कौन? ये राजा शंकर शाह कौन होता? हमको खबर मिलता कि राजा शंकर शाह और उसका बेटा रघुनाथ लोगों को कंपनी राजा के खिलाफ भड़काता।
1: मेजर अस्टाइन ये एक जागीरदार है जो जबलपुर के पास गढ़ापुरवा में रहता है।
0: ओके, पर इसको राजा क्यों कहता?
1: सर, वो इसलिए कि ये गढ़ा राज्य का वारिस है।
0: गढ़ा राज का एंटो 1784 में ही हो गया था जब सागर के मराठा ने इसे जीता था, पर 1818 से तो ये कंपनी सरकार के अंडर होता।
1: सर, आप ठीक कह रहे हैं, गढ़ा राज्य को खत्म हुए 70 साल से ज्यादा हो चुके हैं। शंकर शाह अंतिम गौंड राजा माना जाता है, हालांकि राज्य और अधिकार इसके पास नहीं है। इन्हें ब्रिटिश सरकार से पेंशन मिलती है और इनके पास गुजर बसर के लिए जागीर है।
0: ओके
1: सर, अब तो ये 70 साल का बूढ़ा है। जब जवानी के दिलों में इसने विरोध नहीं किया तो अब क्या करेगा?
0: जो भी हो, पर इसे इग्नोर नहीं करने का।
1: यस सर।
0: जब से दिल्ली और मेरठ की वारदात की खबर इधर आता, इधर भी थोड़ा हलचल है। तुम राजा की एक्टिविटीज पर वॉच रखो।
1: ओके सर।
2: इधर शंकर शाह के पुरवा गांव विद्रोही गतिविधियों का केंद्र बना रहा। जबलपुर की 52वीं रेजिमेंट के कई सिपाही भी यहां आते रहते। यहां चर्चा करके अपने आगे की योजना बनाते रहते थे।
3: राजा साहब, आपने सुना फिरंगी शासन के प्रति सैनिक विद्रोह की शुरुआत मेरठ से हो गई है।
4: और मंगल पांडे का क्या हुआ?
3: वो तो पकड़ा गया है। इसी तरह दिल्ली में भी सैनिक विद्रोह की खबरें हैं। और इधर की खबर ये है हुजूर, इन खबरों के इधर आने से हमारी 52वीं बटालियन में भी जोश की लहर दौड़ गई है।
5: हमने उनके इस अभियान के बारे में सुना है।
3: अब 16 जून की ही बात लें हुजूर।
4: वो 16 जून को क्या हुआ?
3: जब एडजुटेंट मिलर अपनी रेजिमेंट की गारद का निरीक्षण कर रहा था तो एक सिपाही ने उनपे बंदूक टान दी और हमला कर दिया। मिलर बच गया, केवल मामूली चोटें आई थीं।
5: लेकिन उस सिपाही का क्या हुआ?
3: उसे बनारस ले जाया गया है, सुना है वहाँ उसे फांसी दी जाएगी। मैं तो कहता हूँ राजा साहब, हमें भी विद्रोह कर देना चाहिए। 52वीं बटालियन आपके साथ है ही।
4: पिताश्री, ये ठीक कह रहे हैं।
5: हमें जोश से नहीं, होश से काम लेना होगा। अपनी तैयारी का आकलन करके सही योजना बनानी होगी ताकि अचानक हमले से फिरंगी सरकार को बचने का मौका ना मिल पाए।
3: हमारी तैयारी काफी अच्छी है हुजूर। गांव के पास के पहाड़ी जंगलों में बहुत बड़ी संख्या में बंदूकें तलवारें इकट्ठी कर ली गई हैं। 52वीं पलटन के अलावा हमारे पास करीब 200 ऐसे जांबाज लड़ाकू आदमी तैयार हैं जो दुश्मन के 2000 लोगों पर भी भारी पड़ेंगे हुजूर।
5: वाह, बिल्कुल ठीक है। हम सोचकर योजना बनाते हैं कब और कैसे कहां से कार्रवाई शुरू की जाएगी।
2: तभी 52वीं पलटन के 8-10 सिपाहियों की बेवकूफी से कैप्टन मैक्सोन सतर्क हो गए।
6: क्या किया था दादा इन सिपाहियों ने?
2: मूर्ख ऐसे ही बैठे योजना बनाते रहते।
6: अच्छा।
2: कि कैसे फिरंगियों को मौत के घाट उतारा जाए।
6: अच्छा।
2: इनकी बातें अफसरों ने सुन ली और इन्हें गिरफ्तार कर लिया।
6: अच्छा।
2: और फिर सेना में दहशत फैलाने की गरज से इन्हें तोप से उड़ा दिया।
7: अरे, केवल बात सुनकर ही मौत की सजा दे दी गई।
2: हाँ, बगावत की खबर सब तरफ से आती रही। सुन सुन के अंग्रेज अफसर भी घबराते रहते।
7: सो तो है, घबराना तो था ही।
2: इधर डिप्टी कमिश्नर ने राजा की योजना की जानकारी लेने के लिए एक चाल चली।
6: चाल? कैसी चाल दादा?
2: उसने राजा की धार्मिक भावना का लाभ लेने के लिए अपने एक चपरासी को फकीर के वेश में राजा के पास भेज दिया।
8: अलक निरंजन, राजा तेरा भला हो।
2: राजा और उसके बेटे रघुनाथ शाह ने बिना झिझक अपनी सारी योजना और उसे पूरा करने के लिए अपनाए जाने वाले तरीके की सारी जानकारी उस फकीर वेश में आए चपरासी को बता दी।
6: फिर क्या हुआ दादा?
2: फिर बेटा, लेफ्टिनेंट वॉल्डविन और डिप्टी कमिश्नर ने राजा और उसके बेटे रघुनाथ शाह को गिरफ्तार करने के लिए 14 सितंबर 1857 के दिन पूर्वा की ओर कूच कर दिया।
9: लेफ्टिनेंट बॉल्डविन
10: सर,
9: आपका दल में कितना लोग है?
10: 20 सवार और 40 लोगों का पुलिस दल है। आपके आदेश अनुसार किसी को कुछ नहीं बताया, कहां जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं।
9: ठीक है। देखो, राजा का महल अब करीब 1 माइल डिस्टेंस पर है। हम लोग यहां घेरा डालेगा और तब तक वॉचफुल रहेगा जब तक कि तुम लेफ्टिनेंट क्लार्क की टुकड़ी के सिपाहियों के साथ जाकर महल में राजा और उसके बेटे को गिरफ्तार नहीं कर लेता।
10: यस सर। चलो लेफ्टिनेंट क्लार्क।
9: ओके सर।

0: पिताश्री, पिताश्री।
1: क्या हुआ?
0: बुरी खबर है, अंग्रेजी सिपाहियों ने पूरे महल को चारों तरफ से घेर लिया है। लेफ्टिनेंट क्लार्क और बॉल्डविन सिपाहियों के साथ अंदर आ चुके हैं पिताश्री।
2: ए, कोई होशियारी नहीं करने का, सरेंडर। टॉम गिरफ्तार हो चुका है।
3: इधर ये 14 लोग हैं, इन्हें गिरफ्तार किया जा चुका है सर।
2: ठीक है, राजा शंकर शाह और उसका बेटा इधर अरेस्ट हो चुका है। तुम महल की पूरी पूरी तलाशी लो। इनकी बगावट का सबूत मांगता है हम।
4: ये देखो लेफ्टिनेंट बॉल्डविन, राजा का पलंग से ये सिल्क का थैला मिला।
2: ओ,
4: इसमें ये मैरिट मर्डर केस के बाद की घोषणा का टुकड़ा है। और देखो क्लार्क, यहाँ पर कोई पोयम भी लिखा है।
2: क्या है ये? इस पोयम में क्या लिखा होता? राजा, तुम बताओ, बोलो बोलो।
1: ये देवी से प्रार्थना है।
2: कैसी प्रार्थना?
1: ब्रिटिश सरकार को खत्म करने और स्वराज स्थापित करने की प्रार्थना।
2: तुम लिखा है ये?
1: हाँ, मैंने लिखा है।
0: और उस बही के पहले पृष्ठ पर यही कविता मैंने भी लिखी है, देख लो।
2: पढ़ो इसे, देखें क्या प्रार्थना की है।
5: मूंद मुख डंडिन को चुंगलो को चबाए खाई, खूंद डार दुष्टन को शत्रु संगारिका, मार अंग रेज रेज कर दे मात चंडिका, बचे नाही बैर बाल बचे संघारिका।

0: मात कालिका, भक्षण कर तक्षण वेग गौर मात कालिका, खूंद डार दुष्टन को शत्रु संघारिका, खूंद डार दुष्टन को शत्रु
1: संघारिका। तो तुम बाप बेटा ब्रिटिश सरकार को खत्म करने के वास्ते अपनी देवी माँ से प्रार करता है। लोगों को ब्रिटिश सरकार के खिलाफ भड़काता है।
2: देवी माँ से प्रार्थना करना कोई गलत काम नहीं है। देखना, देवी माँ तुम्हें दंड जरूर देगी।
1: लेकिन अभी तो हम तुम्हें सजा देगा। मिस्टर बॉल्डविन,
3: सो
1: दोनों को अरेस्ट कर लो और कल किले के सामने इन दोनों को टॉप के मुंह से बांधो।
3: यस सर।

0: शंकर शाह और रघुनाथ शाह को तोप के मुंह से बांध दिया है।
1: आप ठीक है,
0: लेकिन सर पब्लिक की इतनी ज्यादा भीड़, कहीं हालात बेकाबू ना हो जाए।
1: नहीं बॉलवेन, आज के बाद अब कोई भी विद्रोही ब्रिटिश सरकार के खिलाफ बगावत करने की नहीं सोचेगा।
0: यस सर।
1: तुम पब्लिक को कंट्रोल करो।
2: अंग्रेज सरकार,
0: खबरदार, अगर किसी ने आगे बढ़ने की कोशिश करी तो उसे गोली से भून दिया जाएगा।
2: अंग्रेज सरकार,
0: इन लोगों को तोप के सामने से हटाओ।

0: शंकर शाह, तुम्हें मरने से बिल्कुल डर नहीं लगता?
1: डर? कैसा डर? अरे पागल, डरते तो कायर हैं।
2: अंत समय अपने गॉड से प्रार्थना करो, शायद वो तुम्हारी हेल्प करे।
1: हे देवी माँ, इन लोगों के बच्चों की रक्षा करना, ताकि वो बड़े होकर अंग्रेजों से बदला ले सकें।
0: ब्लडी इंडियन फायर!
3: इस तरह बेटा, बाप बेटा दोनों को तोप के मुंह से बांध के उड़ा दिया गया।
4: सिर्फ एक कविता पे इतनी भयानक मौत की सजा दादा?
3: पूरी जनता के सामने जश्न के रूप में।
4: अरे बाप रे।
3: हाँ बेटा, तुम समझो कितने भारी जुल्म किए गए हैं फिरंगियों द्वारा।
4: बड़ा ही दर्दनाक दृश्य रहा होगा दादा।
3: हाँ बेटा, सुना है उनके हाथ पांव तो तोप के मुंह के पास पड़े रहे, और शरीर का ऊपरी भाग कोई 50 गज की दूरी पे जाके गिरा।
4: अच्छा।
3: और दोनों के चेहरे पर अपूर्व शांति थी।
4: सचमुच दादा, आजादी के लिए लोगों ने बड़ी कुर्बानियां दी हैं।
3: हाँ बेटा, अब सोचो तब उन्होंने देश की आजादी लाने के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी।
4: जी।
3: और आज हम देश को बनाने के लिए, बुराइयों से बचाने के लिए क्या कर रहे हैं?
5: निर्माण और प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग।
6: नमस्कार श्रोताओं, 90.8 पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। प्रस्तुत है कार्यक्रम कला कल्लोलनी।

0: कला कल्लोलिनी, जहां कला लहर बनकर बहती है और कलाकारों की आवाज वक्त की बंदिशों को तोड़कर सदियों तक गूंजती रहती है। आज की कड़ी में हम बात करेंगे एक ऐसे महानायक की जिसने रंगमंच को सिर्फ जिया नहीं बल्कि उसे एक नई परिभाषा दी। आइए मिलकर रुख करते हैं इस कलात्मक सफर की ओर। बहती है जो अनवरत सदियों का इतिहास लिए, रंगों की सुरों की लफ्जों की प्यास लिए, ये भावों की सरिता है, ये सुरमई रागिनी है, कला के अनंत समंदर से उठी ये कला कल्लोलिनी है। कुछ अनकहे किस्से हैं, कुछ जाने पहचाने हैं, कुछ अनकहे किस्से हैं, कुछ जाने पहचाने हैं, ये कभी घुंघरू बनकर छनकती है, कभी चित्र बनकर सजती है, ये कभी नाटक के मंच पर जीवन की हकीकत बनकर गरजती है। समय का पर्दा अब धीरे धीरे सरकने वाला है, इतिहास के पन्नों से एक सितारा मंच पर उतरने वाला है।
1: और आज कला कल्लोलिनी की लहरें हमें बहाकर ले जा रही हैं एक ऐसे समंदर की तरफ जिसने भारतीय रंगमंच को अपनी शर्तों पर जीना सिखाया। एक ऐसा शख्स जिसने नाटक को केवल मनोरंजन नहीं बल्कि आत्मा का आत्म साक्षात्कार बना दिया। जी हाँ, आज बात हो रही है पद्म भूषण से सम्मानित आधुनिक भारतीय रंगमंच के कबीर, अक्खड़ फक्कड़ और अद्वितीय नाटककार निर्देशक सत्यदेव दुबे की। आइए शुरू करते हैं उनकी जीवन यात्रा। दोस्तों, समय का पहिया पीछे घूमता है। सन 1936 की 13 जुलाई को छत्तीसगढ़ के बिलासपुर की शांत वादियों में एक बालक ने आंखें खोली। नाम रखा गया सत्यदेव दुबे।
0: घर में कला और संस्कृति का एक अनूठा माहौल पहले से मौजूद था। एक प्रतिष्ठित परिवार में जन्मे सत्यदेव के पिता का बिलासपुर में अपना एक स्थानीय सिनेमा हॉल था। उस दौर में जहां आम बच्चों के लिए सिनेमा देखना किसी सपने जैसा होता था, वहीं छोटे सत्यदेव के लिए वह जादुई पर्दा उनका अपना घर था। वो अक्सर अंधेरे हॉल के किसी कोने में बैठ जाते और पर्दे पर चलने वाली कहानियों, लाइव परफॉर्मेंस और इंसानी जज्बातों को बड़े कौतूहल से निहारते। फिल्मों के उन किरदारों को देखकर उनके बाल मन में कहानी कहने और दृश्यों को रचने की समझ अनजाने में ही अपनी जड़ें जमाने लगी थी। लेकिन नियति का खेल भी बड़ा निराला होता है। जिस लड़के को आगे चलकर भारतीय रंगमंच का सबसे बड़ा कप्तान बनना था, उस समय उसका दिल थिएटर के विंग्स में नहीं बल्कि क्रिकेट के हरे मैदान पर धड़कता था। बचपन और शुरुआती लड़कपन के दिनों में सत्यदेव के सिर पर क्रिकेट का भूत सवार था। धूप में तपते हुए हाथ में बल्ला थामे वो गेंद की हर हरकत को वैसे ही भापते थे जैसे आगे चलकर उन्होंने अभिनेताओं के हाव भाव को भापा। वो एक पेशेवर क्रिकेटर बनने का ख्वाब देखते थे। खेल के मैदान की वो एकाग्रता, अनुशासन और कुछ कर गुजरने की जिद, शायद ये सब उन्होंने क्रिकेट की पिच से ही सीखा था, जिसे उन्होंने बाद में थिएटर के तख्ते पर उतार दिया। किसे पता था कि बिलासपुर के मैदानों पर चौके छक्के लगाने का सपना देखने वाला ये लड़का एक दिन माया नगरी मुंबई की पिच पर उतरकर भारतीय नाटक और सिनेमा की पूरी कप्तानी ही बदल देगा।
1: पिता के सिनेमा हॉल के प्रोजेक्टर से निकलती रोशनी की वो चमकीली लकीर, सिल्वर स्क्रीन पर नाचते हुए किरदार और बिलासपुर की तपती दोपहरी में चमचमाता क्रिकेट का बल्ला, सत्यदेव दुबे का बचपन इन्हीं दिलचस्प रंगों से बुना गया था। बिलासपुर की उस माटी में कुछ अजीब सी कशिश थी। अरपा नदी के किनारे खेलते हुए इस बालक के भीतर शब्दों की एक नदी बहने लगी थी। पिता चाहते थे कि बेटा पढ़ लिख कर कोई सरकारी ओहदा संभाले, पर नियति ने तो इस बालक के हाथों में रंगमंच की चाबी सौंप रखी थी। दुबे जी का बचपन कोई बहुत ठाट बाट का नहीं था, एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार, लेकिन उनके भीतर एक अजीब सी बेचैनी थी, एक ऐसी खोज जो उन्हें शांत नहीं बैठने देती थी। वो किताबों में खो जाते, कहानियों के पात्रों को अपने आसपास ढूंढने लगते।
0: बिलासपुर की शांत हवाओं को पीछे छोड़, जब 16-17 साल का वह दुबला पतला लड़का बंबई के खचाखच भरे वीटी स्टेशन पर उतरा, तो उसके पास ना तो कोई बड़ा सूटकेस था और ना ही जेब में पैसों की खनक थी, तो बस आंखों में एक अजनबी सी चमक और दिल में कुछ बड़ा कर गुजरने की बेचैनी। सेंट जेवियर्स कॉलेज की ऐतिहासिक इमारत के ऊंचे मेहराबों के नीचे अंग्रेजी साहित्य के पन्नों को पलटते हुए सत्यदेव दुबे के विचारों को नए पंख मिल रहे थे। कॉलेज उनके लिए सिर्फ पढ़ाई की जगह नहीं, बल्कि एक जादुई प्रयोगशाला बन गया था। वहां वह रोज नए विचार गढ़ते थे, लेकिन इस वैचारिक उड़ान के पीछे एक कड़वी हकीकत भी थी, पेट की भूख और खाली जेब। माया नगरी की चमचमाती रोशनियों के बीच इस नौजवान के संघर्ष की कहानी बड़ी बेदर्द मगर बेहद खूबसूरत थी। जब रात को पूरी मुंबई सो जाती, तब सत्यदेव के पास सिर छुपाने की कोई छत नहीं होती थी। कई रातें उन्होंने रेलवे स्टेशनों के ठंडे बेंचों पर या फुटपाथ के सन्नाटे में आसमान को चादर बनाकर गुजारी।
1: श्रोताओं, कहते हैं ना कि जौहरी की नजर में हीरा कभी नहीं छुप सकता। कॉलेज के इन्हीं कई दिनों के बीच नियति ने उनका हाथ थाम लिया। उनकी मुलाकात रंगमंच के उस दौर के सबसे बड़े पारखी और थिएटर यूनिट के मसीहा इब्राहिम अलकाजी से हुई। अलकाजी साहब ने भीड़ में खड़े इस अखड़ स्वाभिमानी और बेहद प्रतिभाशाली लड़के की भीतर सुलगती कला की चिंगारी को पहली ही नजर में पहचान लिया। उन्होंने सत्यदेव को तराशना शुरू किया और बस यहीं से फुटपाथ के उस फकीर का भारतीय रंगमंच के सुल्तान बनने का आधिकारिक सफर शुरू हो गया। कहते हैं, जब दो समंदर आपस में मिलते हैं तो कोई शोर नहीं होता, बस एक गहरी अनंत खामोशी छा जाती है। मुंबई की उस उमस भरी शाम को भी शायद समय कुछ पल के लिए ठहर गया था। ये सिर्फ दो इंसानों की मुलाकात नहीं थी, ये रंगमंच के अतीत और भविष्य का एक ऐतिहासिक आलिंगन था। एक तरफ थे इब्राहिम अलकाजी, अनुशासन का दूसरा नाम, सलीका, संजीदगी और थिएटर का वो कड़क पैमाना जिसे छूना हर किसी के बस की बात नहीं थी, और दूसरी तरफ बिलासपुर की धूल से उठकर आया वो अल्हड़ नौजवान सत्यदेव दुबे।
0: अलकाजी का अनुशासन और दुबे का अनगणनपन, इन दोनों का मिलन ऐसा था जैसे बहती हुई उफनती नदी को एक मजबूत बांध मिल गया हो।

0: फिल्मों का निर्देशन किया। 1962 से 1977 तक एनएसडी के प्रमुख के रूप में उन्होंने भारत में अभिनय और रंगमंच की शिक्षा को एक नई दिशा दी। सत्यदेव दुबे एक बहुमुखी रंगकर्मी, अभिनेता, निर्देशक और पटकथा लेखक थे। 1950 के दशक के मध्य में मुंबई आकर वे इब्राहिम अलकाजी की थिएटर यूनिट में शामिल हो गए। अब अलकाजी एनएसडी के लिए दिल्ली चले गए तो दुबे ने थिएटर यूनिट की बागडोर संभाली। उन्होंने गिरीश कर्नाड, बादल सरकार और विजय तेंदुलकर जैसे नाटककारों के प्रमुख नाटकों का निर्माण किया। 1971 में उन्होंने फिल्म शांतता कोर्ट चालू आहे का निर्देशन किया, जिसके लिए उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। अलकाजी और दुबे के बीच का संबंध सत्यदेव दुबे के रंगमंच करियर की शुरुआत इब्राहिम अलकाजी के सानिध्य में ही हुई थी। दुबे ने थिएटर यूनिट में अलकाजी के मार्गदर्शन में काम किया और बाद में उनके द्वारा छोड़े गए समूह का नेतृत्व भी किया। इसके अलावा दुबे ने ही धर्मवीर भारती के अंधा युग की क्षमता को पहचाना था और उसे अलकाजी के पास भेजा था। अलकाजी ने 1962 में एनएसडी में इस नाटक का मंचन किया, जिसने भारतीय रंगमंच के इतिहास में एक नया प्रतिमान स्थापित किया। ये मुलाकात महज एक इत्तेफाक नहीं थी, ये नियति का वो गुप्त समझौता था जिसने फुटपाथ पर सोने वाले एक भूखे फकीर को भारतीय रंगमंच का शहंशाह बनाने की पहली इबारत लिखी थी।
1: सत्यदेव दुबे ने जब महसूस किया कि हिंदी रंगमंच अपने मूल लेखन की कमी से जूझ रहा है, तो उन्होंने एक क्रांतिकारी कदम उठाया। उन्होंने मराठी, कन्नड़, बंगाली भाषा के सर्वश्रेष्ठ समकालीन नाटकों को चुना और उन्हें हिंदी में इस तरह ढाला कि वे नाटक हिंदी भाषी दर्शकों की अपनी रूह का हिस्सा बन गए। गिरीश कर्नाड के हैवदन और ययाति जैसे कन्नड़ नाटकों को हिंदी मंच पर लाकर उन्होंने पौराणिक कथाओं को आधुनिक संदर्भ दिए, तो वहीं बादल सरकार के बंगाली नाटक एवं इंद्रजीत के जरिए उन्होंने उस दौर के युवाओं के भीतर की सामाजिक छटपटाहट और अकेलेपन को आवाज दी। वे सही मायने में भारतीय भाषाओं के बीच एक मजबूत और जीवंत सांस्कृतिक सेतु बन गए थे। दुबे जी का ये दृढ़ विश्वास था कि नाटक भव्य सेट, कीमती पर्दों या भारी भरकम साजो सामान का मोहताज नहीं होता, बल्कि रंगमंच की असली ताकत तो अभिनेता, शब्द और दर्शकों के बीच का सीधा संवाद है। उन्होंने बेहद कम खर्चे में सिर्फ कुछ कर्टन्स, एक दो कुर्सियां और बेहतरीन लाइट अरेंजमेंट के दम पर ऐसे नाटक तैयार किए जो दर्शकों को अंत तक बांधे रखते थे। उनके इस मिनिमलिस्टिक प्रयोग का सबसे बड़ा उदाहरण अंधा युग का मंचन था, जहां उन्होंने किसी बंद ऑडिटोरियम में भारी भरकम खर्चों के बजाय बाण गंगा के खुले खंडहरों को अपना सेट बनाया और प्रकृति तथा माहौल को ही अपने नाटक का एक जीवंत हिस्सा बना दिया।
0: गुरु इब्राहिम अलकाजी के जाने के बाद दुबे जी ने थिएटर यूनिट को देश की सबसे जीवंत रंग कार्यशाला में तब्दील कर दिया, जहां नाटक सिर्फ शाम को मंच पर दिखाने के लिए नहीं होते थे, बल्कि रोज अभिनय, आवाज के उतार चढ़ाव और शब्दों के उच्चारण पर कड़ा विमर्श होता था। दुबे जी भाषा और संवाद अदायगी को लेकर बेहद सख्त थे और यदि कोई अभिनेता किसी शब्द का उच्चारण गलत करता तो वे पूरे नाटक का रिहर्सल तब तक रोक देते थे जब तक वह शब्द बिल्कुल शुद्ध ना निकले। उनका यह अक्खड़पन और गुस्सा किसी दुर्भावना से नहीं, बल्कि कला के प्रति उनके अगाध समर्पण से पैदा होता था और यही वजह थी कि उनका कड़ा अनुशासन कलाकारों को मांझ कर हीरा बना देता था। सत्यदेव दुबे के लिए रंगमंच कोई व्यवसाय या मनोरंजन का साधन नहीं था, बल्कि वह एक गहरी दार्शनिक साधना और आत्मखोज का माध्यम था। उन्होंने विजय तेंदुलकर के नाटक गिधारे और सखाराम बाइंडर जैसे नाटकों का निर्देशन किया, जो समाज के पाखंड, मानवीय क्रूरता और दबी हुई कुंठाओं पर बेहद तीखा प्रहार करते थे। इन प्रयोगधर्मी नाटकों को लेकर उस दौर में बड़े विवाद भी हुए और सेंसरशिप की तलवारें भी चली, लेकिन दुबे जी कभी अपने कदम पीछे खींचने को तैयार नहीं हुए। उनका मानना था कि नाटक का काम दर्शक को केवल सुलाना या बहलाना नहीं, बल्कि उसकी सोई हुई चेतना को झकझोर कर जगाना है। इसलिए वे रंगमंच और कलाकारों की आत्मनिर्भरता के बहुत बड़े पैरोकार थे। वे हमेशा लोगों से इस बात का आग्रह करते थे कि नाटक को कभी मुफ्त या पास पर नहीं, बल्कि हमेशा टिकट खरीद कर ही देखना चाहिए। उनका मानना था कि जब एक दर्शक टिकट खरीदता है तो वह न केवल कला का सम्मान करता है, बल्कि उस नाटक और कलाकार की आजादी को भी जिंदा रखता है।
1: श्रोताओं, सत्यदेव दुबे सिर्फ पर्दे के पीछे से धागे हिलाने वाले सूत्रधार नहीं थे, उनके भीतर एक ऐसा अभिनेता भी छुपा था जो मंच की खुशबू पाते ही जाग उठता था। अक्सर जब थिएटर की रिहर्सल खत्म होती या शाम को दोस्तों और शागिर्दों की महफिल जमती तो लोग उनसे कुछ सुनाने की जिद कर बैठते। दुबे जी मुस्कुराते, उनके चेहरे की कड़कड़ाहट पल भर में गायब हो जाती और उनकी आंखें किसी गहरे दार्शनिक सोच में डूब जाती। वे हमेशा धर्मवीर भारती के अंधा युग के उस पात्र की पंक्तियां सुनाते जो उनके दिल के सबसे करीब था, अश्वत्थामा, एक ऐसा पात्र जो भटक चुका था, जो कुंठित था, लेकिन जिसके भीतर सत्य को जानने की छटपटाहट थी। जब दुबे जी अपनी बुलंद और भारी आवाज में हाथों को हवा में लहराते हुए ये संवाद बोलते तो कमरे में बैठा हर शख्स अपनी सुध-बुध खो बैठता था।
0: यह मेरा नहीं, यह उस युग का अंधापन है जिसमें हम सब जीते हैं, जिसमें हम सब मरते हैं। मैंने तो सिर्फ उस प्रतिशोध को चुना जो इस समूचे ब्रह्मांड के माथे पर लिखा था। अब न कोई न्याय है, न कोई धर्म है, सिर्फ एक अंतहीन रात है और मैं हूं। इन पंक्तियों को बोलते हुए उनकी आवाज में जो दर्द, जो गुस्सा और जो दार्शनिक ठहराव होता था, वह सुनने वालों के रोंगटे खड़े कर देता था। उन्हें ऐसे जटिल पात्र बहुत पसंद थे जो सफेद या काले नहीं होते थे, बल्कि इंसानी स्वभाव के भूरे रंगों को दर्शाते थे। वे कहते थे कि नाटक का असली मजा तब है जब वह आपको अंदर से बेचैन कर दे। आज भी जब थिएटर की पुरानी गलियों में अंधा युग का जिक्र होता है तो लोगों के कानों में अश्वत्थामा के रूप में गूंजती सत्यदेव दुबे की वह बुलंद आवाज आज भी सजीव हो उठती है।
1: इसी वैचारिक आजादी और कड़े अनुशासन की पाठशाला से दुबे जी ने अभिनेताओं की एक ऐसी अद्वितीय पौध तैयार की जो आगे चलकर न केवल थिएटर के स्तंभ बने, बल्कि भारतीय सिनेमा के इतिहास के सबसे प्रसिद्ध और दिग्गज अभिनेता कहलाए। उनके तराशे हुए हीरो में अमरीश पुरी, नसीरुद्दीन शाह, ओम पुरी, रत्ना पाठक शाह, अमोल पालेकर और सतीश कौशिक जैसे नाम शामिल थे जिन्होंने अभिनय की परिभाषा ही बदल दी। रंगमंच की इसी धुरी पर काम करते हुए 70 के दशक में सत्यदेव दुबे की मुलाकात मशहूर फिल्मकार श्याम बेनेगल से हुई। ये मुलाकात भारतीय समानांतर सिनेमा के लिए एक ऐतिहासिक मोड़ साबित हुई। दोनों की कलात्मक ट्यूनिंग इतनी बेहतरीन थी कि श्याम बेनेगल के शुरुआती और सबसे प्रभावशाली फिल्मों की आत्मा दुबे जी के शब्द ही बने। दुबे जी ने बेनेगल की कालजयी त्रयी, अंकुर, निशांत और मंथन के संवाद और पटकथा लिखी जिन्होंने भारतीय सिनेमा को यथार्थवाद का एक नया चेहरा दिया। इसके बाद 1977 में आई फिल्म भूमिका के लिए तो उन्हें सर्वश्रेष्ठ पटकथा का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिला। उन्होंने बेनेगल की फिल्म कलयुग की पटकथा पर भी काम किया था।
0: शब्दों का जादू बिखेरने के साथ साथ दुबे जी ने पर्दे पर अपनी अदाकारी का हुनर भी दिखाया। उन्होंने श्याम बेनेगल की ही फिल्म निशांत में एक पुजारी की बेहद जीवंत और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसके अलावा उन्होंने गोविंद निहलानी की मशहूर फिल्म आक्रोश में भी अभिनय किया। इतना ही नहीं, कला सिनेमा से इतर उन्होंने मुख्य धारा के सिनेमा में भी अपनी छाप छोड़ी। उन्होंने साई पराजपे की बेहद लोकप्रिय फिल्म चश्मे बद्दूर के तीखे और मजेदार संवाद लिखे और निर्देशक उमेश मेहरा की फिल्म हमारे तुम्हारे की पटकथा भी तैयार की। सत्यदेव दुबे ने श्याम बेनेगल की टीवी सीरियल भारत एक खोज में चाणक्य और फिल्म निशांत में पुजारी की भूमिका निभाई। पटकथा लेखन से लेकर कैमरे के सामने अभिनय करने तक सिनेमा का ये पूरा सफर उनके बहुमुखी और अक्खड़ कलाकार होने का सबसे बड़ा प्रमाण था। मशहूर फिल्मकार श्याम बेनेगल सत्यदेव दुबे को भारतीय कला जगत का एक अद्वितीय और अपरिहार्य स्तंभ मानते थे। वे अक्सर दुबे जी के बारे में कुछ बेहद खास बातें कहा करते थे। बेनेगल अक्सर तारीफ करते थे कि दुबे जी के पास अभिनेताओं को तराशने की एक जादुई कला थी। अमरीश पुरी, नसीरुद्दीन शाह और ओमपुरी जैसे दिग्गज कलाकारों को बेनेगल ने अपनी फिल्मों में मुख्य भूमिकाएं दी। वे सब दुबे जी की थिएटर वर्कशॉप की ही देन थे। बेनेगल मानते थे कि दुबे जी जिस अभिनेता पर हाथ रख देते थे वे सोना बन जाता था। श्याम बेनेगल दुबे जी के अक्खड़पन और उनकी फकीरी के मुरीद थे। वे कहते थे कि दुबे एक ऐसे विरल कलाकार थे जिन्होंने कभी पैसों या शोहरत के लिए अपनी कला से समझौता नहीं किया। वे सिनेमा में काम जरूर करते थे लेकिन उनका दिल हमेशा थिएटर के लिए ही धड़कता था। सीधे शब्दों में कहें तो श्याम बेनेगल के लिए सत्यदेव दुबे सिर्फ एक सह लेखक या दोस्त नहीं थे, बल्कि वे उन्हें एक ऐसा क्रिएटिव पार्टनर और थिएटर गुरु मानते थे जिसने भारतीय सिनेमा और रंगमंच को सच बोलना सिखाया।
1: श्रोताओं, वो पूरी तरह से एक फकीर और सन्यासी की तरह जिए, जिनका एकमात्र धर्म और परिवार सिर्फ और सिर्फ रंगमंच ही था। दुबे जी ने जीवन के आखिरी पड़ाव तक नए लड़कों और लड़कियों को तलाशने और उन्हें तराशने का काम कभी बंद नहीं किया। मुंबई का प्रसिद्ध पृथ्वी थिएटर उनका दूसरा घर बन चुका था। वे घंटों वहां के कैफे में ही बैठे रहते थे, जहां कोई भी नया लड़का स्क्रिप्ट लेकर उनके पास आ सकता था। वो बिना किसी फीस के सिर्फ चाय की चुस्कियों पर नए निर्देशकों को नाटक की बारीकियां सिखाते थे। उन्होंने हमेशा नए और युवा नाटककारों को मंच दिया, क्योंकि उनका मानना था कि थिएटर को जिंदा रखने के लिए नए खून और नए विचार का आना बेहद जरूरी है।
0: थिएटर और फिल्मों के अलावा दुबे जी ने जन माध्यमों की ताकत को भी बहुत पहले पहचान लिया था। उन्होंने धर्मवीर भारती के अंधा युग को न केवल मंच पर उतारा, बल्कि दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो के लिए भी उसके कई प्रयोग किए। उन्होंने ध्वनि और संवाद के उतार चढ़ाव का ऐसा ताना बाना बुना कि बिना दृश्यों के भी सिर्फ आवाज के दम पर दर्शकों के सामने महाभारत के युद्ध का सन्नाटा सजीव हो उठता था। रेडियो नाटक के शिल्प को आधुनिक बनाने में भी उनका यह योगदान अतुलनीय है। वे कभी विवादों से डरे नहीं, बल्कि वे मानते थे कि अगर कला समाज में हलचल ना पैदा करे तो वो कला ही नहीं है।
1: श्रोताओं, भारतीय रंगमंच और कला जगत में सत्यदेव दुबे के अद्वितीय क्रांतिकारी और युगांतकारी योगदान के लिए उन्हें समय समय पर देश के सबसे प्रतिष्ठित सम्मानों से नवाजा गया। उनकी इस अनूठी नाट्य साधना और कला के प्रति अटूट समर्पण को सर्वोच्च सम्मान देते हुए साल 1971 में देश की सर्वोच्च कला संस्था द्वारा उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके बाद भारतीय समानांतर सिनेमा को अपनी लेखनी और संवादों से एक नया और यथार्थवादी धरातल देने के लिए साल 1977 में आई उनकी प्रसिद्ध फिल्म भूमिका के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ पटकथा का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला। कला और संस्कृति के क्षेत्र में उनके जीवन भर के संघर्ष, अमूल्य योगदान और एक महान मेंटोर के रूप में उनके कद को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने उन्हें बेहद प्रतिष्ठित कालिदास सम्मान से भी विभूषित किया। आखिरकार उनके इसी फकीराना जज्बे और कलात्मक महानता को सलाम करते हुए साल 2011 में भारत सरकार ने उन्हें देश के तीसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म भूषण से अलंकृत किया, जो उनके जीवन की कला यात्रा पर राष्ट्र की ओर से एक गौरवशाली मोहर थी।
0: दुबे जी मुंबई के एक बेहद साधारण से किराए के कमरे में किताबों और नाटकों की स्क्रिप्ट के बीच अपनी फकीरी में मस्त थे। वे अक्सर अकेले ही मुंबई की लोकल ट्रेनों में सफर करते या पृथ्वी थिएटर के बाहर एक कप चाय हाथ में थामे घंटों बैठे रहते। उनके जीवन में ना तो पैसों का लालच था और ना ही किसी सांसारिक सुख की चाह। उनका कोई पारंपरिक परिवार नहीं था, क्योंकि उन्होंने अपनी कला को ही अपनी संतान और अपना संसार मान लिया था। एक बार किसी ने उनसे पूछा कि आपको अकेलेपन से डर नहीं लगता, तो उन्होंने हंसकर कहा था, जिसके पास शब्दों का मेला हो और मंच की रोशनी हो, वो भला अकेला कैसे हो सकता है। उनका ये निश्चल समर्पण दिखाता है कि वे सिर्फ नाटक करते नहीं थे, वे खुद में एक जीवंत नाटक थे। सत्यदेव दुबे ने जीवन के अंतिम क्षणों तक अपनी कलात्मक ऊर्जा और जीवंतता को बनाए रखा, लेकिन उम्र के आखिरी पड़ाव पर उनका शरीर थकने लगा था। साल 2011 के सितंबर महीने में उन्हें ब्रेन स्ट्रोक हुआ, जिसके बाद वे कोमा में चले गए। इसके बाद अगले कुछ महीनों तक मुंबई के एक अस्पताल में उनका इलाज चलता रहा। आखिरकार अपनी बीमारी से एक लंबा और संजीदा संघर्ष लड़ने के बाद 25 दिसंबर 2011 को 75 वर्ष की आयु में मुंबई के टोपीवाला राष्ट्रीय मेडिकल कॉलेज और BYL नायर चैरिटेबल अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके निधन का कारण लंबे समय से चल रही बीमारी और दिल का दौरा पड़ना था। उनके जाने से भारतीय रंगमंच का एक बेहद प्रखर, निडर और स्वर्णिम युग हमेशा के लिए समाप्त हो गया, लेकिन अपनी कला और विचारों के रूप में वे आज भी हर रंगकर्मी की चेतना में जीवित हैं। अभिनेता अनुपम खेर ने कहा, हिंदी रंगमंच के दिग्गज सत्यदेव दुबे अब हमारे बीच नहीं रहे। रंगमंच के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता अद्भुत थी। यह एक बड़ी क्षति है, उनकी आत्मा को शांति मिले। फिल्म निर्माता महेश भट्ट ने कहा, थिएटर जगत के दिग्गज सत्यदेव दुबे का देहांत हो गया। साथ साथ घूमने फिरने के दिनों की प्यारी यादें मुझे घेर लेती हैं। अलविदा दुबे जी, ढेर सारा प्यार। निर्देशक केन घोष ने कहा, सत्यदेव दुबे के निधन की खबर सुनकर दुख हुआ। उन्होंने बड़ी विनम्रता से इश्क विश्क की नई कास्ट के साथ एक एक्टिंग वर्कशॉप आयोजित की थी। शांता गोखले उन्हें याद करते हुए कहती हैं
1: कि सत्यदेव दुबे को बहस छेड़ना बहुत पसंद था और उन्हें सबसे ज्यादा खुशी तब होती थी जब वो युवा रंगमंच कलाकारों को अपने विचारों को निष्क्रिय रूप से स्वीकार करने के बजाय प्रतिक्रिया देने के लिए प्रेरित कर पाते थे। आधी सदी से भी अधिक समय में उन्होंने हिंदी, मराठी, गुजराती और अंग्रेजी में 100 से अधिक नाटकों का निर्देशन किया, युवा नाटककारों की खोज की और उन्हें अपनी रचनाओं को फिर से लिखने के लिए प्रोत्साहित किया। साथ ही अभिनेताओं की कई पीढ़ियों को प्रशिक्षित भी किया। आप हमेशा कलाकारों और अभिनेताओं के दिलों में मशाल बनकर जलते रहेंगे। दिग्गज अभिनेता नसीरुद्दीन शाह ने सत्यदेव दुबे को अपना थिएटर गुरु माना है। वो अक्सर याद करते हैं कि कैसे दुबे जी ने उन्हें मंच पर बिना डरे संवाद बोलना और अपनी ऊर्जा को सही जगह इस्तेमाल करना सिखाया। उन्होंने दुबे जी को एक निडर, स्पष्टवादी और रंगमंच के प्रति जुनूनी व्यक्ति बताया।
0: सत्यदेव दुबे अक्सर कहा करते थे कि एक सच्चे अभिनेता का काम केवल संवाद बोलना या चेहरे पर मुखौटा लगाना नहीं है, उनके लिए अभिनय एक आत्मसमर्पण था। वह कहते थे, एक अच्छा अभिनेता वह नहीं है जो मंच पर आकर खुद को दिखाए, बल्कि वह है जो मंच पर आकर अपने अहंकार को पूरी तरह मिटा दे और उस पात्र को अपने भीतर जीने दे। अभिनेता का शरीर और उसकी आवाज सिर्फ एक माध्यम है, असली खेल तो उसकी आत्मा की ईमानदारी का है। सत्यदेव दुबे आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन भारतीय कला जगत उनके जिक्र के बिना हमेशा अधूरा रहेगा। वे एक ऐसे फकीर थे जिन्होंने कभी महलों की चाह नहीं की, क्योंकि उनके हिस्से में मंच की वो जादुई रोशनी थी जो इतिहास बदल देती है। उन्होंने सिनेमा को दिग्गज अभिनेता और कालजयी शब्द दिए और हमें सिखाया कि कला कभी मनोरंजन के लिए नहीं, बल्कि समाज को झकझोरने के लिए होती है। तो श्रोताओं, कला कल्लोलिनी में आज इतना ही। अगले भाग में हम आपको फिर ऐसे ही महान शख्सियत से रूबरू कराएंगे। रंगमंच के कबीर फिल्मकार और नाटककार सत्यदेव दुबे जी पर चर्चा आपको पसंद आई होगी। अब समय है आपसे विदा लेने का। जाते जाते हम आपको बताना चाहेंगे, इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन किया था संतोष कुमार वर्मा ने, परिकल्पना अदिति गौड़, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी और मैं था दानिश, और लेखन दीपक नेमा।
1: आपके लिए इस कार्यक्रम को प्रस्तुत किया मैंने यानी मनीषा,
0: और मैं दानिश। नमस्कार।
1: सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8, देश का चैनल देश के लिए।
2: आदमी वो नहीं जिसे हालात बदल दे, आदमी तो वो है जो हालात को बदल दे। ऐसे ही महान वीर सपूतों की कहानी सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद पर 90.8 मेगाहर्ट्ज। रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
3: स्वराज संस्थान संचालनालय मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग प्रस्तुत करते हैं स्वामी विवेकानंद के आदर्शों और उनके विचारों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद।

0: स्वामी जी कुमारी मूलर और सेवियर दंपत्ति के साथ यूरोप भ्रमण करने गए। वहां स्विट्जरलैंड और जर्मनी भ्रमण कर वे एल्प्स पर्वत के मनोरम स्थानों को देखकर मुग्ध हुए थे। उन्हें अपने हिमालय पर्वतीय प्रदेश की याद आ रही थी। उनका मन हुआ, क्यों ना हिमालय की सुंदर घाटी में एक आश्रम बनाया जाए। परवर्ती काल में सेवियर दंपत्ति की सहायता से उनका यह सपना पूरा हुआ। अल्मोड़ा के पास मायावती आश्रम आज भी स्वामी जी की स्मृति संजोए स्थित है।
1: जर्मनी से प्रोफेसर डायसन के आमंत्रण पर स्वामी जी उत्तरी जर्मनी के कील बंदरगाह गए। वहां से पुनः इंग्लैंड वापस आए। प्रोफेसर डायसन स्वामी जी से बहुत प्रभावित हुए थे। वे और कुछ दिन स्वामी जी के संग बिताने के लिए उनके साथ लंदन आए।
0: लंदन वापस आकर स्वामी जी नए उत्साह के साथ व्याख्यान देने लगे। इस बार वे वेस्ट मिनिस्टर अंचल में ठहरे, जहां गुडविन भी अमेरिका से आ गए और स्वामी अभयानंद भी उन्हीं के साथ रहने लगे। इस बार स्वामी जी ज्यादातर वेदांत दर्शन पर बोले। उन्हें राजयोग और ध्यान के विषय में भी बोलना पड़ता था।
1: प्रोफेसर डायसन प्रायः स्वामी जी के पास आते और वेदांत के गूढ़ अर्थ समझते। अब उन्हें समझ में आ गया कि पाश्चात्य दृष्टिकोण लेकर भारतीय शास्त्रों का अर्थ समझना अत्यंत कठिन है। उसे समझने के लिए पाश्चात्य शिक्षा दीक्षा, संस्कृति तथा राजनीति का आवरण उतारकर प्राच्य के खुले आकाश के नीचे खड़े होना होगा। इधर प्राध्यापक मैक्स मूलर के साथ भी स्वामी जी का पत्र व्यवहार चल रहा था। इस तरह इन तीन मनीषियों के आपसी सहयोग से उस समय वेदांत प्रचार का क्षेत्र काफी विस्तृत हो गया था।
0: उन्होंने ईसा मसीह के उपदेशों का गहन अध्ययन किया और बाइबिल का गूढ़ अर्थ समझा। इसके फलस्वरूप पाश्चात्य विचार जगत ने वेदांत में एक नया और पूर्ण जीवन दर्शन का आविष्कार किया था। स्वामी जी के भाषण केवल शब्द मात्र नहीं थे, बल्कि शब्दों के माध्यम से शक्ति संचारित होकर श्रोताओं को अभिभूत कर देती थी। सारे व्याख्यान वे बिना तैयारी के ही देते थे।

0: उन दिनों स्वामी जी के छोटे भाई महेंद्र नाथ दत्त इंग्लैंड में पढ़ाई करने आए थे। उन्होंने उस काल का स्मरण करके लिखा है कि
1: व्याख्यान शुरू होने के पहले तक स्वामी जी हंसी मजाक और हल्की फुल्की बातें करते रहते थे। मंच पर चढ़ते समय गुडविन उनके कानों में उस दिन के प्रवचन का विषय बता देते थे। उस समय उनके चेहरे पर एक अपूर्व परिवर्तन आता, वे एक अलग ही व्यक्ति बन जाते, जैसे दैवीय प्रेरणावश भाषण शुरू कर देते। बाद में आशुलिपिक गुडविन जब उन्हें उनके भाषणों को लिखकर दिखाते तो वे अवाक हो जाते और कहते,
2: गुडविन ये मेरे भाषण है, मैंने कहा था ये सब, तुमने गलती तो नहीं की।
3: उन दिनों स्वामी जी का भाषण सुनने अनेक विद्वान आते थे जो स्वयं भी भाषणकार थे। उन लोगों ने बाद में कहा था कि वे स्वामी जी की भाषण शैली का अनुकरण करने लगे थे। गंभीर विषयों को सरल बनाकर समझाने में स्वामी जी का जोड़ नहीं था।
0: अमेरिका तथा इंग्लैंड का कार्य सुव्यवस्थित हुआ देख अक्टूबर से ही स्वामी जी के मन में भारत लौटने का विचार हो गया और पत्रों एवं वार्तालापों के दौरान उन्होंने अपनी ये इच्छा घनिष्ठ मित्रों के सम्मुख व्यक्त भी की। अतः ये तय हुआ कि स्वामी जी गुडविन और सेवियर दंपत्ति के साथ भारत जाएंगे। गुडविन इंग्लैंड से ही जहाज में जाएंगे और समुद्र यात्रा कम करने के लिए स्वामी जी और सेवियर दंपत्ति स्थल पथ से इटली के नेपल्स तक जाएंगे और वहां से जहाज में सवार होंगे।
3: नॉर्थ जर्मन लॉयड कंपनी के एक नव निर्मित जहाज का टिकट खरीदा गया जो 30 दिसंबर को नेपल्स से कोलंबो जाने वाला था। प्रिंस रीजेंट लियोपोल्ड जहाज में स्थान मिला। सेवियर दंपत्ति स्थायी रूप से भारत में ही निवास करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने अपनी स्थायी व अस्थायी सभी संपत्ति बेच दी। मिस मूलर थोड़े दिनों बाद अपनी सेविका के साथ भारत आने वाली थी। मिस मूलर ने स्त्री शिक्षा के प्रचार के लिए धन देने का वादा किया था। स्वामी जी ने मन ही मन सोच रखा था कि मार्गरेट नोबल को भारत बुलाकर नारी विद्यालय का भार उन्हें सौंपेंगे।
0: सन 1896 ईस्वी के नवंबर दिसंबर में सूखे के फलस्वरूप भारत में अकाल पड़ा। इसकी खबर अखबारों में पढ़कर स्वामी जी का मन अकाल पीड़ितों के लिए रो पड़ा। उन्होंने कुछ पैसे इंडियन मिरर को भेजे। राहत कार्य के लिए कुमारी एमलिन साउटर ने भी धन दिया। अतः ये कहा जा सकता है कि इसी प्रकार भावी रामकृष्ण मिशन के सेवा कार्यों का सूत्रपात हुआ था।

0: इधर श्रीमती ओली बुल ने स्वामी जी के पत्रों से उनके स्वदेश वापस जाने की खबर जानकर लिखा कि कलकत्ते में स्थायी मठ की स्थापना के लिए वे धन देना चाहती हैं। स्वामी जी ने तत्काल वो धन स्वीकार नहीं किया। संपूर्ण रूपरेखा तैयार कर लेने के बाद उन्होंने श्रीमती बुल से सहायता लेकर बेलूर मठ की स्थापना की।
1: लंदन के छात्र छात्राओं को जब ज्ञात हुआ कि स्वामी जी स्वदेश लौट रहे हैं तो वे दुखी हो गए। स्टर्डी महोदय के नेतृत्व में एक विदाई समारोह का आयोजन किया गया। विदाई के पूर्व रविवार 13 दिसंबर को रॉयल सोसाइटी ऑफ पैटर्न्स इन वाटर कलर्स के भवन में उस दिन जगह कम पड़ गई और स्वामी जी भी भारी मन लिए वहां उपस्थित हुए। श्री एरिक हैमंड ने लिखा है,
2: वो

0: उन्हें देखने की, उनकी वाणी सुनने की, और यदि संभव हुआ तो एक बार उनका वस्त्र स्पर्श करने की। मंच के ऊपर निर्दिष्ट समय पर गायकों एवं वादकों की सुमधुर सुर लहरी उठ रही थी। स्वामी जी ने जिन नर नारियों की श्रद्धा और प्रीति पाई थी उसे व्यक्त करने के लिए उन लोगों ने व्याख्यान दिए। उन्हें सुनकर बीच बीच में तथा व्याख्यानों के अंत में तुमुल हर्ष ध्वनि उठ रही थी। अनेक लोग मौन नीरव तथा भारी मन लिए बैठे रहे। कुछ आंखें नम थी। केवल एक ही आकृति, एक ही रूप उस वेदना से संघर्ष करते हुए उस पर विजय पा रही थी। गैरिक वर्ण के वेश धारण किए स्वामी जी जैसे एक प्रकाश पुंज के समान लोगों के बीच विचरण कर रहे थे। उन्होंने कहा,
1: हाँ हाँ, हम फिर मिलेंगे, अवश्य मिलेंगे।
2: इस अवसर पर स्वामी जी ने हेमंत से कहा था,
1: संभव है कि मैं शरीर को एक जीर्ण वस्त्र के समान त्याग कर बाहर आ जाना पसंद करूं, परंतु मैं कार्य करना बंद नहीं करूंगा। मैं मानव जाति को सर्वत्र और तब तक प्रेरणा और सहायता देता रहूंगा जब तक सभी लोग सर्वोच्च तत्व को जान नहीं लेते।
3: इंग्लैंड में स्वामी जी का अंतिम व्याख्यान हुआ 10 दिसंबर को। विषय था अद्वैत वेदांत। इस भाषण और इंग्लैंड में उनकी सफलता तथा विदाई समारोह के बारे में इंडियन मिरर में छपा,
4: 10 दिसंबर 1896 ईस्वी को अद्वैत वेदांत पर स्वामी जी का जो आखिरी व्याख्यान हुआ, उस समय पूरा सभागार श्रोताओं से भर गया था कि कहीं कोई इस अंतिम भाषण से वंचित ना रह जाए। इस कारण वे लोग विशेष चिंतित थे। जिस ध्यान के साथ इन विचारशील लोगों ने स्वामी जी के लंदन के व्याख्यान सुने, वो इस बात का सूचक है कि स्वामी जी की वेदांत की व्याख्या के प्रति वे कितनी गंभीरता के साथ आकृष्ट हुए थे। ये व्याख्या एक ऐसे व्यक्ति के मुख से हुई जिनके व्यक्तित्व ने अनेक लोगों की श्रद्धा तथा अन्य अनेक लोगों की प्रीति को आकृष्ट किया था। उस व्याख्या की उपयोगिता न केवल पाश्चात्य जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में थी, अपितु उस प्राच्य जीवन में भी वो उतना ही कारगर था जहां सर्वप्रथम इसे व्यक्त किया गया। उस उदार तथा विवेकपूर्ण व्याख्या के फलस्वरूप विभिन्न मतवादों के लोग, यहाँ तक कि चर्च ऑफ इंग्लैंड के अनेक पादरी आकृष्ट हुए, और ये लोग मिलकर स्वामी जी की शिक्षाओं को यथासंभव दूर दूर तक प्रसारित करने में लग गए। स्वामी जी किसी भी संप्रदाय के पक्षपाती नहीं हैं, वे धर्म के प्रचारक हैं, किसी विशेष धर्म के नहीं। धर्म के विराट क्षेत्र में जो लोग किसी विशेष मत के पक्षधर हैं, वे भी उनके साथ विरोध करने का कोई कारण नहीं पा सके। विदाई की सभा में जो लोग उपस्थित हुए थे, उनमें सामरिक तथा असामरिक विभागों के ऐसे अनेक पुराने राज कर्मचारी भी थे जिन्होंने अपने जीवन के अनेक वर्ष भारत में बिताए थे, इसलिए वे भारत के बारे में काफी कुछ जानते थे।
2: लंदन में स्वामी जी की सफलता के बारे में सुप्रसिद्ध राजनीतिक नेता श्री विपिन चंद्रपाल ने 15 फरवरी 1899 के इंडियन मिरर में लिखा था,
5: भारत के कुछ लोग सोचते हैं कि इंग्लैंड में स्वामी विवेकानंद द्वारा प्रदत्त व्याख्यानों का कोई विशेष फल नहीं हुआ और मित्र तथा अनुयायियों ने उनके कार्य को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया है, परंतु यहाँ पर आकर मैंने देखा कि उन्होंने यहाँ पर सर्वत्र एक उल्लेखनीय प्रभाव डाला है। इंग्लैंड के अनेक अंचलों में मेरी ऐसे बहुत से लोगों से मुलाकात हुई जो स्वामी विवेकानंद के प्रति अत्यंत श्रद्धा एवं सम्मान का भाव रखते हैं। यद्यपि मैं उनके संप्रदाय का नहीं हूँ और ये सत्य है कि मेरा उनसे काफ़ी मतभेद है, तथापि मैं ये कहने को बाध्य हूँ कि विवेकानंद ने यहाँ के अनेक लोगों की आंखें खोल दी तथा उनके हृदय को उदार बना दिया है। उनकी शिक्षाओं के फलस्वरूप अब यहाँ के अधिकांश लोग दृढ़ता पूर्वक विश्वास करने लगे हैं कि प्राचीन हिंदू शास्त्रों में अद्भुत आध्यात्मिक सत्य छिपे पड़े हैं। उन्होंने केवल इसी भाव को फैलाया हो ऐसी बात नहीं, वे इंग्लैंड तथा भारत के बीच एक स्वर्णिम संबंध स्थापित करने में सफल भी हुए हैं।
3: वे आगे एक घटना के बारे में लिखते हैं।
5: कल शाम को मैं दक्षिणी लंदन के निवासी अपने एक मित्र से मिलने जा रहा था। रास्ता भूलकर मैं एक मोड़ के किनारे खड़ा होकर सोच रहा था कि किस ओर जाऊं। उसी समय एक महिला एक बालक के साथ मेरी ओर आई। मुझे लगा कि संभवतः वे मुझे रास्ता दिखा देना चाहती हैं। उन्होंने मुझसे कहा, महाशय शायद आप अपना रास्ता ढूंढ रहे हैं, क्या मैं आपकी सहायता कर सकती हूँ। मुझे रास्ता बताने के बाद वे बोली, इन्हें संवाद पत्रों से मुझे पता चला कि आप लंदन आ रहे हैं। आपके ऊपर दृष्टि पड़ते ही मैंने अपने पुत्र से कहा, वो देखो स्वामी विवेकानंद खड़े हैं। चूंकि मुझे ट्रेन पकड़ने की जल्दी थी, अतः मेरे पास ठहर कर उन्हें यह बताने का समय नहीं था कि मैं विवेकानंद नहीं हूँ, और मैं शीघ्रतापूर्वक वहां से चला गया। तथापि विवेकानंद को देखे बिना ही उनके प्रति उक्त महिला की महान श्रद्धा को देखकर मैं सचमुच ही आश्चर्यचकित रह गया। इस सुखद घटना पर मैंने अतीव आनंद का अनुभव किया था और अपनी गिरवा पगड़ी को धन्यवाद दिया जिसने सम्मान दिलाया था। इस घटना के अतिरिक्त भी मैंने यहाँ ऐसे अनेक शिक्षित अंग्रेज सज्जनों को देखा है जो भारत के प्रति श्रद्धा रखते हैं और भारत के धार्मिक तथा आध्यात्मिक तत्वों को अतीव आग्रह के साथ सुनते हैं।
3: इंग्लैंड के निवासियों के प्रति पूर्ण आस्था एवं प्रीति लेकर ही स्वामी जी ने स्वदेश की ओर प्रस्थान किया। 28 नवंबर के अपने पत्र में उन्होंने हेल बहनों को बताया,
1: अंग्रेज जाति के बारे में मेरी जो धारणा थी वो पूर्णता बदल चुकी है। अब मैं समझ रहा हूं कि अन्य सब जातियों की अपेक्षा प्रभु ने उन्हीं पर इतनी कृपा क्यों की है। वे दृढ़ प्रतिज्ञ हैं, पूर्णतः निष्ठावान हैं और साथ ही उनमें गहरी भावुकता भी है। बस बाहर कठोरता का एक आवरण भर है, उसे तोड़ते ही तुम्हें अपनी पसंद का आदमी मिल जाएगा।
3: भारत पहुंचकर उन्होंने और भी स्पष्ट भाषा में कहा,
1: अंग्रेजों के प्रति मुझसे अधिक घृणा का भाव लेकर कभी किसी ने इंग्लैंड की धरती पर पांव नहीं रखा होगा। इस सभा मंच पर जो अंग्रेज बंधु उपस्थित हैं वे इस बात की पुष्टि करेंगे, परंतु जितना ही मैं उन लोगों के बीच रहने लगा, जितना ही उनके साथ मिलने जुलने लगा, जितना ही ब्रिटिश जाति के जीवन यंत्र की प्रक्रिया देखने लगा, उतना ही मेरी समझ में आने लगा कि उस राष्ट्र का हृदय कहां स्पंदित हो रहा है। उतना ही मैं उनसे प्रेम करने लगा। और भाइयों, यहां पर ऐसा कोई भी उपस्थित नहीं है जो अंग्रेज जाति को मुझसे अधिक प्रेम करता हो। मुझे लगता है कि अमेरिका की अपेक्षा इंग्लैंड में मेरा कार्य कहीं अधिक संतोषजनक रहा है। निर्भीक साहसी एवं अध्यवसायी अंग्रेज जाति के मस्तिष्क में यदि कोई भाव किसी तरह एक बार भी संचारित किया जा सके, हालांकि उनकी खोपड़ी दूसरी जातियों की अपेक्षा स्थूल है और उसमें कोई भाव आसानी से नहीं घुसता, तो वो वहीं दृढ़ हो जाता है, फिर बाहर नहीं आता। उस जाति की अमित व्यवहारिक शक्ति के द्वारा वो बीज रूपी विचार अंकुरित होकर अविलंब फलदायी होता है। इस जाति में कल्पना कम है और कर्मठता अधिक है। अंग्रेज वीरों की जाति हैं, यथार्थ क्षत्रिय हैं। अपनी भावनाओं को छिपाए रखना ही उनकी शिक्षा है, परंतु इस बहादुरी के ठाट बाट, इस क्षत्रियत्व के आवरण के पीछे अंग्रेज हृदय की भावनाओं का गहन स्रोत छिपा हुआ है। यदि आप एक बार भी वहां तक पहुंच सकें, यदि एक बार भी आपकी अंग्रेजों से घनिष्ठता हो जाए, यदि आप उनसे घुल मिल जाएं और एक बार भी अपने समक्ष उनके हृदय के भाव व्यक्त करा सकें, तो वे सदा के लिए आपके मित्र हो जाएंगे, सदा के लिए आपके दास हो जाएंगे। इस कारण मेरी राय में अन्य स्थानों की अपेक्षा इंग्लैंड में मेरा प्रचार कार्य अधिक संतोषजनक रहा है।
2: सचमुच ही स्वामी जी इंग्लैंड के निवासियों का हृदय जीत सके थे और स्वयं उनके प्रति प्रेम दिखाकर उन्होंने प्राच्य और पाश्चात्य के वास्तविक मिलन का पथ प्रशस्त कर दिया था।

अभी आप सुन रहे थे स्वामी विवेकानंद के विचारों और आदर्शों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद से प्रसारित किए जा रहे कार्यक्रम। हमारे कार्यक्रमों को आप प्रतिदिन सुबह 7 बजे से रात्रि 10 बजे तक निरंतर सुन सकते हैं मिक्सलार एप्लीकेशन पर भी। श्रोताओं, दिन के ठीक 12 बजे हैं। अब हमारी प्रातःकालीन सभा यहीं पर संपन्न होती है। हमारी दोपहर कालीन सभा में आप सभी का हम पुनः स्वागत करते हैं। आइए सुनते हैं अगला कार्यक्रम, तराने आजादी।
1: मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए पेश है देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम तराने आजादी।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

अभी आप सुन रहे थे देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम तराने आजादी। अब दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज पर, देश का चैनल देश के लिए।

आजादी के यादगार तरानों पर केंद्रित राष्ट्रवंदना के विविध स्वर जन गर्जे, अंग्रेजी राज के दमन लूट और आतंक के प्रतिरोध में भारतीय जन का उद्घोष, जन गर्जे। स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति जन गर्जे।

मित्र प्रमिला, लीजिए सुनिए भारत भारती। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं सुप्रसिद्ध गायिका कलापिनी कोंकली का गायन।

नमस्कार। चांदनी केदार से आज शुरुआत करूंगी। बहुत पुरानी परंपरागत बंदिश है, उसी के साथ में एक और परंपरागत द्रुत रचना आपको केदार में सुनाऊंगी। तो शुरुआत में

मैं आपको एक रूपक में निबद्ध सुनाती हूँ। राग का नाम है दुर्गा और उसी के साथ में एक छोटा सा उसका तराना है एक तार में निबद्ध। दोनों ही रचना कुमार जी द्वारा बनाई गई है और जो रूपक ताल में निबद्ध जो मधुले की रचना मैं आपको सुनाऊंगी वो विशेष रूप से शरद पूर्णिमा के लिए कुमार जी ने बनाई थी। एकमात्र शायद ऐसी बंदिश है जो विशेष रूप से कोजागिरी के लिए बनाई गई है। तो आपको एक छोटी सी बंदिश सुनाती हूँ, उसके बाद में तराना सुनाऊंगी।

अभी आप सुप्रसिद्ध गायिका कलापिनी कोमकली का गायन सुन रहे थे। अब आज का भारत भारती कार्यक्रम समाप्त करने की प्रमिला को दीजिए इजाजत। नमस्कार। 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर ये रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण है। देश का चैनल, देश के लिए। सुनते रहिए।

0: आदमी वो नहीं जिसे हालात बदल दे, आदमी तो वो है जो हालात को बदल दे। ऐसे ही महान वीर सपूतों की कहानी सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद पर 90.8 मेगाहर्ट्ज़। रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: सुनो कहानी, कहानी जो बचपन में नानी दादी सुनाया करती थी, कहानी जो हमें स्वप्न लोक और काल्पनिक लोक में ले जाया करती हैं, कहानी जिनको सुनते सुनते हम बड़े हो गए, कहानी जो मन को छू लेती हैं, दिल में उतर जाती हैं, जीवन के अनछुए मार्मिक और ज्ञान वर्धक पहलुओं पर प्रस्तुत है हमारा कार्यक्रम सुनो कहानी।

नमस्कार, 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद। मैं हूं आपका रेडियो मित्र संदीप शर्मा और आज मैं आपको इस कार्यक्रम में सुना रहा हूं मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी पशु से मनुष्य।

0: दुर्गा माली डॉक्टर मेहरा बारट लॉ के यहां नौकर था। 5 रुपए मासिक वेतन पाता था। उसके घर में स्त्री और 2-3 छोटे बच्चे थे। स्त्री पड़ोसियों के लिए गेहूं पीसा करती थी। 2 बच्चे जो समझदार थे इधर उधर से लकड़ियां गेहूं उपले चुन लाते थे, किंतु इतना यत्न करने पर भी वे बहुत तकलीफ में रहते थे। दुर्गा डॉक्टर साहब की नजर बचाकर बागीचे से फूल चुन लेता और बाजार में पुजारियों के हाथ बेच दिया करता था। कभी कभी फलों पर भी हाथ साफ किया करता। यही उसकी ऊपरी आमदनी थी। इससे नोन तेल आदि का काम चल जाता था। उसने कई बार डॉक्टर महोदय से वेतन बढ़ाने की प्रार्थना की, परंतु डॉक्टर साहब नौकर की वेतन वृद्धि को छूत की बीमारी समझते थे, जो एक से अनेकों को ग्रस लेती है। वे साफ कह दिया करते, भाई मैं तुम्हें बांधे तो हूं नहीं, तुम्हारे यहां निर्वाह नहीं होता तो कहीं और चले जाओ, मेरे लिए मालियों का काल नहीं है। दुर्गा में इतना साहस न था कि वो लगी हुई रोजी छोड़कर नौकरी ढूंढने निकलता। इससे अधिक वेतन पाने की आशा भी नहीं, इसलिए वो इसी निराशा में पड़ा हुआ जीवन के दिन काटता और अपने भाग्य को रोता था। डॉक्टर महोदय को बागवानी से विशेष प्रेम था। नाना प्रकार के फूल पत्ते लगा रखे थे। अच्छे अच्छे फलों के पौधे दरभंगा, मलिहाबाद, सहारनपुर आदि स्थानों से मंगवाकर लगाए थे। वृक्षों को फलों से लदे देखकर उन्हें हार्दिक आनंद होता था। अपने मित्रों के यहाँ गुलदस्ते और शाक भाजी की डालियां तोहफे के तौर पर भिजवाते रहते थे। उन्हें फलों को आप खाने का शौक न था, पर मित्रों को खिलाने में उन्हें असीम आनंद प्राप्त होता था। प्रत्येक फल के मौसम में मित्रों की दावत करते और पिकनिक पार्टियां उनके मनोरंजन का प्रधान अंग थीं। एक बार गर्मियों में उन्होंने अपने कई मित्रों को आम खाने की दावत दी। मलिहाबादी में सुफेदे के फल खूब लगे हुए थे। डॉक्टर साहब इन फलों को प्रतिदिन देखा करते थे। ये पहले ही फले थे, इसलिए वे मित्रों से उनकी मिठास और स्वाद का बखान सुनना चाहते थे। इस विचार से उन्हें वही आमोद था जो किसी पहलवान को अपने पट्ठों के करतब दिखाने से होता है। इतने बड़े सुंदर और सुकोमल सुफेदे स्वयं उनकी निगाह से न गुजरे थे। इन फलों के स्वाद पर उन्हें इतना विश्वास था कि वे एक फल चखकर उनकी परीक्षा करना आवश्यक ना समझते थे। प्रधानता इसलिए कि एक फल की कमी एक मित्र को रसास्वादन से वंचित कर देगी। संध्या का समय था, चैत का महीना। मित्रगण आकर बगीचे के हौज के किनारे कुर्सियों पर बैठे थे। बर्फ और दूध का प्रबंध पहले से ही कर लिया गया था, पर अभी तक फल न तोड़े गए थे। डॉक्टर साहब पहले फलों को पेड़ में लगे हुए दिखलाने के बाद उन्हें तोड़ना चाहते थे, जिसमें किसी को यह संदेह न हो कि फल इनके बाग के नहीं है। जब सब सज्जन जमा हो गए तब उन्होंने कहा, आप लोगों को कष्ट होगा, पर जरा चलकर फलों को पेड़ में लटकते देखिए, बड़ा ही मनोहर दृश्य है। गुलाब में भी ऐसी लोचन प्रिय लाली न होगी, रंग से स्वाद टपक पड़ता है। मैंने इसकी कलम खास मलिहाबाद से मंगवाई थी और उसका विशेष रीति से पालन किया है। मित्रगण उठे, डॉक्टर साहब आगे आगे चले। रवीशों के दोनों ओर गुलाब की क्यारियां थीं। उनकी छटा दिखाते हुए वे अंत में सुफेदे के पेड़ के सामने आ गए, मगर आश्चर्य, वहां एक फल भी न था। डॉक्टर साहब ने समझा शायद वो ये पेड़ नहीं है। 2 पग और आगे चले, दूसरा पेड़ मिल गया और आगे बढ़े, तीसरा पेड़ मिला। फिर पीछे लौटे और एक विस्मित दशा में सुफेदे के वृक्ष के नीचे आकर रुक गए। इसमें संदेह नहीं कि वृक्ष यही है, पर फल क्या हुए? 20-25 आम थे, एक का भी पता नहीं। मित्रों की ओर अपराधपूर्ण नेत्रों से देखकर बोले, आश्चर्य है, इसमें एक भी फल नहीं है। आज सुबह मैंने देखा था, पेड़ फलों से लदा हुआ था। ये देखिए, फलों का डंठल है। यह अवश्य माली की शरारत है। मैं आज उसकी हड्डियां तोड़ दूंगा। उस पाजी ने मुझे कितना धोखा दिया। मैं बहुत लज्जित हूं कि आप लोगों को व्यर्थ कष्ट हुआ। मैं सत्य कहता हूं, इस समय मुझे जितना दुख है उसे प्रकट नहीं कर सकता। ऐसे रंगीले कोमल कमनीय फल मैंने अपने जीवन में कभी ना देखे थे। उनके यों लुप्त हो जाने से मेरे हृदय के टुकड़े हुए जाते हैं। ये कहकर वे नैराश्य वेदना से कुर्सी पर बैठ गए। मित्रों ने सांत्वना देते हुए कहा, नौकरों का सब जगह यही हाल है। ये जाति ही पाजी होती है। आप हम लोगों के कष्ट का खेद ना करें। ये सुफेदे ना सही, दूसरे फल सही। एक सज्जन ने कहा, साहब मुझे तो सब आम एक से ही मालूम होते हैं। सुफेदे, मोहन भोग, लंगड़े, बम्बई, फजली, दशहरी, इनमें कोई भेद ही मालूम नहीं होता। न जाने आप लोगों को कैसे उनके स्वाद में फर्क मालूम होता है। दूसरे सज्जन बोले,
1: भाई यहां भी वही हाल है, जो इस समय फल मिले वही मंगवाइए, जो गए उनका क्या अफसोस।
0: डॉक्टर साहब ने व्यथित भाव से कहा, आमों की क्या कमी है, सारा बाग भरा पड़ा है, खूब शौक से खाइए और बांधकर घर ले जाइए, वे हैं और किस लिए, पर वो रस और स्वाद कहां। आपको विश्वास ना होगा, उन सफेदों पर ऐसा निखार था कि सेब मालूम होते थे। सेब भी देखने में ही सुंदर होता है, उसमें वो रुचिवर्धक लालित्य, वो सुधा में मृदुता कहां। इस माली ने आज वो अनर्थ किया है कि जी चाहता है नमक हराम को गोली मार दूं, इस वक्त सामने आ जाए तो अधमरा कर दूं। माली बाजार गया हुआ था। डॉक्टर साहब ने साइस से कुछ आम तुड़वाए, मित्रों ने आम खाए, दूध पिया और डॉक्टर साहब को धन्यवाद देकर अपने अपने घर की राह ली। लेकिन मिस्टर मेहरा वहां हौज के किनारे हाथ में हंटर लिए माली की बाट जोहते रहे। आकृति से जान पड़ता था

0: तब उसके बच निकलने की कोई राह नहीं रहती। रुधिर के सूखे हुए धब्बे रंग के दाग बन सकते हैं, पर ताजा लहू आप ही आप पुकारता है। दुर्गा के पैर थम गए, छाती धड़कने लगी। डॉक्टर साहब की निगाह उस पर पड़ गई थी, अब उल्टे पांव लौटना व्यर्थ था। डॉक्टर साहब उसे दूर से ही देखते उठे कि चलकर उसकी खूब मरम्मत करूं, लेकिन वकील थे, विचार किया कि इसका बयान लेना आवश्यक है। इशारे से निकट बुलाया और पूछा, सुफेदे के पेड़ में कई आम लगे हुए थे, एक भी दिखाई नहीं देता, कहां चले गए? दुर्गा ने निर्दोष भाव से उत्तर दिया, हुजूर मैं अभी बाजार गया हूं, तब तक तो सब आम लगे थे, इतनी देर में कोई तोड़ ले गया हो तो मैं नहीं कह सकता। तुम्हारा संदेह किस पर है? सरकार, अब मैं किसे बताऊं, इतने नौकर चाकर हैं, न जाने किसकी नीयत बिगड़ गई हो। मेरा संदेह तुम्हारे ऊपर है, अगर तोड़ कर रखे हूं तो लाकर दे दो, या साफ साफ कह दो कि मैंने तोड़े हैं, नहीं तो बुरी तरह पेश आऊंगा। चोर केवल दंड से ही नहीं बचना चाहता, वो अपमान से भी बचना चाहता है। वो दंड से उतना नहीं डरता जितना अपमान से। जब उसे सजा से बचने की कोई आशा नहीं रहती, उस समय भी वो अपने अपराध को स्वीकार नहीं करता। वो अपराधी बनकर छूट जाने से निर्दोष बनकर दंड भोगना बेहतर समझता है। दुर्गा इस समय अपराध स्वीकार करके सजा से बच सकता था, पर उसने कहा, हुजूर आप मालिक हैं, जो चाहे करें, पर मैंने आम नहीं तोड़े। सरकार ही बताएं, इतने दिन मुझे आपकी ताबेदारी करते हो गए, मैंने एक पत्ती भी छुई है। तुम कसम खा सकते हो? गंगा की कसम जो मैंने आमों को हाथ से छुआ हो, मुझे इस कसम पर विश्वास नहीं। तुम पहले लोटे में पानी लाओ, उसमें तुलसी की पत्तियां डालो, तब कसम खाकर कहो कि अगर मैंने तोड़े हूं तो मेरा लड़का मेरे काम ना आए, तब मुझे विश्वास आएगा। हुजूर सांच को आंच क्या, जो कसम कहिए खाऊंगा, जब मैंने काम किया ही नहीं तो मुझ पर कसम क्या पड़ेगी। अच्छा बातें ना बनाओ, जाकर पानी लाओ। डॉक्टर महोदय मानव चरित्र के ज्ञाता थे, सदैव अपराधियों से व्यवहार रहता था। यद्यपि दुर्गा जबान से हेकड़ी की बातें कर रहा था, पर उसके हृदय में भय समाया हुआ था। वो अपने झोंपड़े में आया, लेकिन लोटे में पानी लेकर जाने की हिम्मत न हुई, उसके हाथ थरथराने लगे। ऐसी घटनाएं याद आ गईं जिनमें झूठी गंगा उठाने वाले पर दैवी कोप का प्रहार हुआ था। ईश्वर के सर्वज्ञ होने का ऐसा मर्मस्पर्शी विश्वास उसे कभी नहीं हुआ था। उसने निश्चय किया, मैं झूठी गंगा की कसम ना उठाऊंगा, यही ना होगा निकाल दिया जाऊंगा, नौकरी फिर कहीं ना कहीं मिल जाएगी, और नौकरी ना मिले तो मजूरी तो कहीं गई नहीं, कुदाल भी चलाऊंगा तो सांझ तक आधा सेर आटे का ठिकाना हो जाएगा। वो धीरे धीरे खाली हाथ डॉक्टर साहब के सामने आकर खड़ा हो गया। डॉक्टर साहब ने कड़े स्वर में पूछा, पानी लाया? हुजूर मैं गंगा ना उठाऊंगा। तो तुम्हारा आम तोड़ना साबित है, अब सरकार जो चाहे समझे। मान लीजिए मैं नहीं आम तोड़े तो आपका गुलाम ही तो हूं, रात दिन ताबेदारी करता हूं, बाल बच्चे आम के लिए रोवे तो कहां जाऊं, आपकी जान बख्शी जाए फिर ऐसा कसूर ना होगा। डॉक्टर महोदय इतने उदार न थे, उन्होंने यही बड़ा उपकार किया कि दुर्गा को पुलिस के हवाले न किया और ना ही हंटर लगाए। उसकी इस धार्मिक श्रद्धा ने उन्हें कुछ नरम कर दिया था, मगर ऐसे दुर्बल हृदय को अपने यहां रखना संभव था। उन्होंने उसी क्षण दुर्गा को जवाब दे दिया और उसकी आधे महीने की बाकी मजदूरी जब्त कर ली। कई माह के पश्चात मेहरा बाबू प्रेमशंकर के बाग की सैर करने गए, वहां से कुछ अच्छी अच्छी कलमें लाना चाहते थे। प्रेमशंकर को भी बागवानी से प्रेम था और दोनों मनुष्यों में यही समानता थी, अन्य सभी विषयों में एक दूसरे से भिन्न थे। प्रेमशंकर बड़े संतोषी, सरल और सहृदय मनुष्य थे। वे कई साल अमेरिका रह चुके थे, वहां उन्होंने कृषि विज्ञान का खूब अध्ययन किया था और यहां आकर इस वृत्ति को अपने आजीविका का आधार बना लिया था। मानव चरित्र और वर्तमान सामाजिक संगठन के विषय में उनके विचार विचित्र थे, इसलिए शहर के सभ्य समाज में लोग उनकी उपेक्षा करते थे और उन्हें झक्की समझते थे। इसमें संदेह नहीं कि उनके सिद्धांतों से लोगों को एक प्रकार की दार्शनिक सहानुभूति थी, पर उनके क्रियात्मक होने के विषय में उन्हें बड़ी शंका थी। संसार कर्म क्षेत्र है, मीमांसा क्षेत्र नहीं। यहां सिद्धांत सिद्धांत ही रहेंगे, उनका प्रत्यक्ष घटनाओं से संबंध नहीं। डॉक्टर साहब बागीचे में पहुंचे तो उन्होंने प्रेमशंकर को क्यारियों में पानी देते हुए पाया। कुएं पर एक मनुष्य खड़ा पंप से पानी निकाल रहा था। मेहरा ने उसे तुरंत ही पहचान लिया, वो दुर्गा माली था। डॉक्टर साहब के मन में उस समय दुर्गा के प्रति एक विचित्र ईर्ष्या का भाव उत्पन्न हुआ। जिस नराधम को उन्होंने दंड देकर अपने हाथ से अलग कर दिया था, उसे नौकरी क्यों मिल गई? यदि दुर्गा इस समय फटेहाल रोनी सूरत बनाए दिखाई देता तो डॉक्टर साहब को उस पर दया आ जाती। वे संभवतः उसे कुछ इनाम देते और प्रेम शंकर से उसकी प्रशंसा भी कर देते। उनकी प्रकृति में दया थी और अपने नौकरों पर उनकी कृपा दृष्टि रहती थी, परंतु उनकी इस कृपा और दया में लेश मात्र भी भेद न था, जो अपने कुत्तों और घोड़ों से भी थी। इस कृपा का आधार न्याय नहीं, दीन पालन है। दुर्गा ने उन्हें देखा, कुएं पर खड़े खड़े सलाम किया और फिर अपने काम में लग गया। उसका यह अभिमान डॉक्टर साहब के हृदय में भाले की भांति चुभ गया। उन्हें यह विचार कर अत्यंत क्रोध आया कि मेरे यहां से निकलना इसके लिए हितकर हो गया। उन्हें अपनी सहृदयता पर जो घमंड था, उसे बड़ा आघात लगा। प्रेमशंकर ज्यों ही उनसे हाथ मिलाकर उन्हें क्यारियों की सैर कराने लगे, क्यों ही डॉक्टर साहब ने उनसे पूछा, यह आदमी आपके यहां कितने दिनों से है? यही 6 या 7 महीने हुए होंगे। कुछ नोच खसोट तो नहीं करता? ये मेरे यहां माली था, इसके हथलपकेपन से तंग आकर मैंने इसे निकाल दिया था। कभी फूल तोड़कर बेच आता, कभी पौधे उखाड़ ले जाता, और फलों का तो कहना ही क्या, वे इसके मारे बचते ही न थे। एक बार मैंने मित्रों की दावत की थी, मलिहाबादी सुफेदे में खूब फल लगे थे। जब सब आकर बैठ गए और मैं उन्हें फल दिखाने ले गया तो सारे फल गायब। हजी कुछ ना पूछिए, उस समय उस घड़ी कितनी भद्द हुई। मैंने उसी क्षण इन महाशय को दुत्कार बताई, बड़ा ही दगाबाज आदमी है और ऐसा चतुर इसको पकड़ना मुश्किल है। कोई वकीलों ही जैसा काइया आदमी हो तो इसे पकड़ सकता है। ऐसी सफाई और ढिठाई से ढुलकता है कि इसका मुंह देखते रह जाइए। आपको तो कभी चरका नहीं दिया? अजी नहीं, कभी नहीं, मुझे इसने शिकायत का कोई अवसर नहीं दिया। यहां तो खूब मेहनत करता है, यहां तक कि दोपहर की छुट्टी में भी आराम नहीं करता। मुझे तो इस पर इतना भरोसा हो गया कि सारा बागीचा इस पर छोड़ रखा है। दिन भर में जो कुछ आमदनी होती है वो शाम को मुझे दे देता है और कभी पाई का अंतर नहीं पड़ता। यही तो इसका कौशल है कि आपको उल्टे छुरे मुड़े और आपको खबर भी नहीं। आप इसे वेतन क्या देते हैं? यहां किसी को वेतन नहीं दिया जाता, सब लोग लाभ में बराबर के साझेदार हैं। महीने भर में आवश्यक व्यय के पश्चात जो कुछ बचता है उसमें से 10 रुपये प्रति सैकड़ा धर्म खाते में डाल दिया जाता है, शेष रुपए समान भागों में बांट दिए जाते हैं। पिछले महीने में 140 रुपए की आमदनी हुई थी, मुझे मिलाकर 7 आदमी हैं, 20 रुपए हिस्से पड़े। अब की नारंगियां खूब हुई हैं, मटर की फलियों, गन्ने, गोभी आदि सच्ची आमदनी हो रही है, 40 रुपए से कम ना पड़ेंगे। डॉक्टर मेहरा ने आश्चर्य से पूछा, इतने में आपका काम चल जाता है? जी हाँ, बड़ी सुगमता से। मैं इन्हीं आदमियों के से कपड़े पहनता हूं, इन्हीं का सा खाना खाता हूं और मुझे कोई दूसरा व्यसन है नहीं। यहां 20 रुपए मासिक उन औषधियों का खर्च है जो गरीबों को दी जाती है। ये रुपए संयुक्त आय से अलग कर लिए जाते हैं, किसी को कोई आपत्ति नहीं होती। ये साइकिल जो आप देखते हैं संयुक्त आय से ही ली गई है, जिसे जरूरत होती है इस पर सवार होता है। मुझे ये सब अधिक कार्यकुशल समझते हैं और मुझ पर पूरा विश्वास रखते हैं। बस मैं इनका मुखिया हूं, जो कुछ सलाह देता हूं उसे सब मानते हैं। कोई भी ये नहीं समझता कि मैं किसी का नौकर हूं। सब के सब अपने को साझेदार समझते हैं और जीत तोड़कर मेहनत करते हैं। जहां कोई मालिक होता है और दूसरा कोई नौकर, तो उन दोनों में तुरंत द्वेष पैदा हो जाता है। मालिक चाहता है कि इससे जितना काम लेते बने लेना चाहिए, नौकर चाहता है कि मैं कम से कम काम करूं, उसमें स्नेह या सहानुभूति का नाम तक नहीं आता। दोनों यथार्थ में एक दूसरे के शत्रु होते हैं। इस प्रतिद्वंदिता का दुष्परिणाम हम और आप देख ही रहे हैं। मोटे और पतले आदमियों के पृथक पृथक दल बन गए हैं और उनमें घोर संग्राम हो रहा है। कल चिन्हों से ज्ञात होता है कि ये प्रतिद्वंदिता अब कुछ ही दिनों की मेहमान है, इसकी जगह अब सहकारिता का आगमन होने वाला है। मैंने अन्य देशों में इस घातक संग्राम के दृश्य देखे हैं और मुझे घृणा हो गई है। सहकारिता ही हमें संकट से मुक्त कर सकती है। अच्छा, तो ये कहिए कि आप सोशलिस्ट हैं? जी नहीं, मैं सोशलिस्ट या डेमोक्रेट कुछ नहीं हूं। मैं केवल न्याय और धर्म का दीन सेवक हूं। मैं निस्वार्थ सेवा को विद्या से श्रेष्ठ समझता हूं। मैं अपनी आत्मिक और मानसिक शक्तियों को, बुद्धि सामर्थ्य को धन और वैभव का गुलाम नहीं बनाना चाहता। मुझे वर्तमान शिक्षा और सभ्यता पर विश्वास नहीं। विद्या का धर्म है आत्मिक उन्नति का फल। उदारता, त्याग, सदिच्छा, सहानुभूति, न्यायपरता और दयाशीलता, जो शिक्षा हमें निर्बलों को सताने के लिए तैयार करे, जो हमें धरती और धन का गुलाम बनाए, जो हमें भोग विलास में डुबाए, जो हमें दूसरों का रक्त पीकर मोटा होने का इच्छुक बनाए, वो शिक्षा नहीं है। अगर मूर्ख लोभ और मोह के पंजे में फंस जाए तो वे क्षम्य है, परंतु विद्या और सभ्यता के उपासकों की स्वार्थ अंधता अत्यंत लज्जाजनक है। हमने विद्या और बुद्धि बल की विभूति को शिखर पर चढ़ने का मार्ग बना लिया। वास्तव में वो सेवा और प्रेम का साधन था। कितनी विचित्र दशा है कि जो जितना ही बड़ा विद्वान है उतना ही बड़ा स्वार्थ सेवी है। बस हमारी सारी विद्या और बुद्धि, हमारा सारा उत्साह और अनुराग धन लिप्सा में ग्रसित है। हमारे प्रोफेसर साहब 1,000 से कम वेतन पाए तो उसका मुंह ही सीधा नहीं होता। हमारे दीवान और माल के अधिकारी लोग 2,000 मासिक पाने पर भी अपने भाग्य को रोया करते हैं। हमारे डॉक्टर साहब चाहते हैं कि मरीज मरे या जिए मेरी फीस में बाधा न पड़े, और हमारे वकील साहब क्षमा कीजिएगा ईश्वर से मनाया करते हैं कि ईर्ष्या और द्वेष का प्रकोप और सोने की दीवार खड़ी कर लूं। समय धन है, इसी वाक्य में हम ईश्वर वाक्य समझ रहे हैं। इन महान पुरुषों में से प्रत्येक व्यक्ति सैकड़ों नहीं हजारों लाखों की जीविका हड़प जाते हैं और फिर भी उन्हें जाति का भक्त बनने का दावा है। वो अपने स्वजाति प्रेम का डंका बजाता फिरता है। पैदा दूसरे करें, पसीना दूसरे बहाएं, खाना और मूछों पर ताव देना इनका काम है। मैं समस्त शिक्षित समुदाय को केवल स्वार्थी ही नहीं वरन अनर्थकारी भी समझता हूं। डॉक्टर साहब ने बहुत धैर्य से काम लेकर पूछा, तो क्या आप चाहते हैं कि हम सबके सब मजूरी करें? जी नहीं, हालांकि ऐसा हो तो मनुष्य जाति का बहुत उपकार हो। मुझे जो आपत्ति है ये केवल दशाओं में इस अन्यायपूर्ण समता से है। यदि एक मजदूर 5 रुपए में अपना निर्वाह कर सकता है तो एक मानसिक काम करने वाले प्राणी के लिए इससे दुगुनी तिगुनी आय काफी होनी चाहिए, और वो अधिकता इसलिए कि उसे कुछ उत्तम भोजन वस्त्र तथा सुख की आवश्यकता होती है। मगर 5 और 5,000, 50 और 50,000 का अस्वाभाविक अंतर क्यों? इतना नहीं, हमारा समाज 5 और 5 लाख के अंतर कभी तिरस्कार नहीं करता, वरन उसकी भी प्रशंसा करता है। शासन प्रबंध, वकालत, चिकित्सा, चित्र रचना, शिक्षा, दलाली, व्यापार, संगीत और इसी प्रकार की सैकड़ों अन्य कलाएं शिक्षित समुदाय की जीवन वृत्ति बनी है, पर इनमें से एक भी धनोपार्जन नहीं करती। इनका आधार दूसरों की कमाई पर है। मेरी समझ में नहीं आता कि वो उद्योग धंधे जो जीवन की सामग्रियां पैदा करते हैं, जिन पर जीवन का अवलंबन है, क्यों उन पेशों से नीचे समझे जाएं जिनका काम केवल मनोरंजन या अधिक से अधिक धनोपार्जन में सहायता करना है। आज सारे वकीलों को देश निकाला हो जाए, सारे अधिकारी वर्ग लुप्त हो जाएं और सारे दलाल स्वर्ग को सिधारें, तभी संसार का काम चलता रहेगा, बल्कि और भी सरलता से। किसान भूमि जोतेंगे, जुलाहे कपड़े बुनेंगे, बढ़ई लोहार, राज चर्मकार सबके सब पूर्ववत अपना काम करते रहेंगे, उनकी पंचायतें उनके झगड़ों का निपटारा करेंगी। लेकिन यदि किसान न हो तो सारा संसार क्षुधा पीड़ा से व्याकुल हो जाए। परंतु किसान के लिए 5 रुपए बहुत समझा जाता है, और वकील साहब या डॉक्टर को 5,000 भी काफी नहीं। डॉक्टर, आप अर्थशास्त्र के उस महत्वपूर्ण सिद्धांत को भूले जाते हैं जिसे श्रम विभाजन कहते हैं। प्रकृति ने प्राणियों को भिन्न भिन्न शक्तियां प्रदान की हैं और उनके विकास के लिए भिन्न भिन्न दशाओं की आवश्यकता है। मैं ये कब कहता हूं कि प्रत्येक मनुष्य को मजदूरी करने पर मजबूर किया जाए? नहीं, जिसे परमात्मा ने विचार की शक्ति दी है वो शास्त्रों की विवेचना करे, जो भावुक हो वो काव्य की रचना करे, जो अन्याय से घृणा करता हो वो वकालत करे। मेरा कथन ये है कि विभिन्न कार्यों की हैसियत में इतना अंतर न रहना चाहिए। मानसिक और औद्योगिक कामों में इतना फर्क न्याय के विरुद्ध है। ये प्रकृति के नियमों के प्रतिकूल ज्ञात होता है कि आवश्यक और अनिवार्य कार्यों पर अनावश्यक और अनिवार्य कार्यों की प्रधानता हो। कतिपय सज्जनों का मत है कि इस साम्य से गुणी लोगों का अनादर होगा और संसार को उनके सद्विचारों और सत्कार्यों से लाभ न पहुंच सकेगा। किंतु वे भूल जाते हैं कि संसार के बड़े से बड़े पंडित, बड़े से बड़े कवि, बड़े से बड़े आविष्कारक, बड़े से बड़े शिक्षक धन और प्रभुता के लोभ शिक्षक बन जाते हैं। संसार में आज अनगिनत लेखक और कवि, वकील और शिक्षक उपस्थित हैं। वे सब के सब पृथ्वी पर भार रूप हो रही हैं। जब उन्हें मालूम होगा कि दिव्य कलाओं में कुछ लाभ नहीं है तो वही लोग कवि होंगे जिन्हें कवि होना चाहिए। संक्षेप में कहना यही है कि धन की प्रधानता ने हमारे समस्त समाज को उलट पलट दिया है। डॉक्टर मेहरा अधीर हो गए और बोले, महाशय, समाज संगठन का ही रूप देवलोक के लिए चाहे उपयुक्त हो, पर भौतिक संसार के लिए उस भौतिक काल में वो कदापि उपयोगी नहीं हो सकता। प्रेमशंकर जी ने फिर जवाब दिया, केवल इसी कारण से अभी तक धनवानों का, जमींदारों का और शिक्षित समुदाय का प्रभुत्व बना हुआ है वकील साहब, पर इसके पहले भी कई बार इस प्रभुत्व को धक्का लग चुका है और चिन्हों से ज्ञात होता है कि निकट भविष्य में फिर इसकी पराजय होने वाली है। कदाचित वो हार निर्णयात्मक होगी। समाज का चक्र साम्य से आरंभ होकर फिर साम्य पर ही समाप्त होता है। एकाधिपत्य, रईसों का प्रभुत्व और वाणिज्य प्राबल्य उसकी मध्यवर्ती दशाएं हैं। वर्तमान चक्र ने मध्यवर्ती दशाओं को भोग लिया है और वो अपने अंतिम स्थान के निकट आता जाता है, किंतु हमारी आंखें अधिकार और प्रभुत्व के मद में ऐसी भरी हुई हैं कि हमें आगे पीछे कुछ नहीं सूझता। चारों ओर से जनतावाद का घोर नाद हमारे कानों में आ रहा है, पर हम ऐसे निश्चिंत हैं मानो वो साधारण मेघ की गरज है। हम अभी तक उन्हीं विद्याओं और कलाओं में लीन हैं जिनका आश्रय दूसरों की मेहनत है। हमारे विद्यालयों की संख्या बढ़ती जाती है, हमारे वकील खाने में पांव रखने की जगह बाकी नहीं। गली गली फोटो स्टूडियो खुल रहे हैं। डॉक्टरों की संख्या मरीजों से भी अधिक हो गई है, पर अब भी हमारी आंखें नहीं खुलती। हम इस अस्वाभाविक जीवन, इस सभ्यता के तिलिस्म से बाहर निकलने की चेष्टा ही नहीं करते। हम शहरों में कारखाने खोलते फिरते हैं इसलिए कि मजदूरों की मेहनत से मोटे हो जाएं। 30 रुपए और 40 रुपए सैकड़े लाभ की कल्पना करके फूले नहीं समाते, पर ऐसा कहीं देखने में नहीं आता कि किसी शिक्षित सज्जन ने कपड़ा बुनना या जमीन जोतना शुरू किया हो। यदि कोई दुर्भाग्यवश ऐसा करे तो उसकी हंसी उड़ाई जाती है। हम उसी को मन प्रतिष्ठा के योग्य समझते हैं जो तकिया गद्दी लगाए बैठा रहे, हाथ पैर ना हिलाए और लेन देन पर, सूद बट्टे पर लाखों के वारे न्यारे करता हो। यही बातें हो रही थी कि दुर्गा माली एक डाली नारंगियां, गोभी के फूल, अमरूद, मटर की फलियां आदि सजाकर लाया और उसे डॉक्टर साहब के सामने रख दिया। उसके चेहरे पर एक प्रकार का गर्व था, मानो उसकी आत्मा जागृत हो गई है। वो डॉक्टर साहब के समीप एक मोटे मोढ़े पर बैठ गए और बोला, हुजूर को कैसी कलम चाहिए? आप बाबूजी को एक चिट पर उनके नाम लिख कर दे दीजिए, मैं कल आपके मकान पर पहुंचा दूंगा। आपके बाल बच्चे तो अच्छी तरह हैं। डॉक्टर साहब ने कुछ सकुचाकर कहा, हाँ लड़के अच्छी तरह हैं। तुम यहां अच्छी तरह हो? जी हाँ, आपकी दया से बहुत आराम में हूं। डॉक्टर साहब उठकर चले तो प्रेमशंकर उन्हें विदा करने साथ साथ फाटक तक आए। डॉक्टर साहब मोटर पर बैठे तो मुस्कुराकर प्रेमशंकर से बोले, मैं आपके सिद्धांतों का कायल नहीं हुआ, पर इसमें संदेह नहीं कि आपने एक पशु को मनुष्य बना दिया। यह आपके सत्संग का फल है, लेकिन क्षमा कीजिएगा, मैं फिर भी कहूंगा कि इससे होशियार रहिएगा। यूजेनिक्स यानी सुप्रजनन शास्त्र अभी तक ऐसे किसी प्रयोग का आविष्कार नहीं कर सका है जो जन्म के संस्कारों को मिटा दे। अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी पशु से मनुष्य। अपने अगले एपिसोड में फिर किसी ऐसी ही कहानी के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपने रेडियो मित्र संदीप शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: तो दोस्तों, ये था आज का कार्यक्रम सुनो कहानी। हम फिर हाजिर होंगे किसी नए लेखक की नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
2: आदमी वो नहीं जिसे हालात बदल दे, आदमी तो वो है जो हालात को बदल दे। ऐसे ही महान वीर सपूतों की कहानी सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद पर 90.8 मेगाहर्ट्ज़। रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: आजादी के यादगार तरानों पर केंद्रित राष्ट्रवंदना के विविध स्वर जन गर्जे, अंग्रेजी राज के दमन लूट और आतंक के प्रतिरोध में भारतीय जन का उद्घोष, जन गर्जे। स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति जन गर्जे।
1: नमस्कार, 90.8 मेगाहर्ट्ज पर यह रेडियो आजाद हिंद है, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए श्रोताओं, प्रस्तुत है कार्यक्रम अतुल्य भारत। अतुल्य भारत। और आज अतुल्य भारत में हम बात कर रहे हैं भारत के दर्शनीय स्थल कोलकाता के बारे में।
2: जी हाँ श्रोताओं, कोलकाता है भी बहुत बड़ा और यहाँ की संस्कृति भी बहुत बड़ी है।
1: दुनिया में कई देश तो इससे भी बहुत छोटे हैं, तो चलिए इसी चर्चा को आज हम इस एपिसोड में बात रिपीट। तो चलिए इसी चर्चा को इस एपिसोड में हम आगे बढ़ाते हैं।
2: श्रोताओं, चाहे खान पान हो, चाहे लिटरेचर हो, चाहे नाटक हो या संगीत, हर क्षेत्र में यह शहर अपनी खास पहचान रखता है। तो चलिए शुरुआत खान पान से ही करते हैं। बंगाली का नाम आए और माछी भात छूट जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बंगाल में कहावत भी है कि बंगाली आदमी दो ही चीजों से प्रेम करता है, एक तो मछली और दूसरा हास परिहास से। एक खाए बिना नहीं रह सकता और दूसरा चुलबुलाए बिना नहीं रह सकता।
1: श्रोताओं, तुलसीदास जी ने भी लिखा है कि क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व से बना शरीरा। यानी ये शरीर पांच तत्वों पृथ्वी जल अग्नि आकाश और वायु से मिलकर बना है।
2: लेकिन श्रोताओं, अगर पूछे भात,
1: तो श्रोताओं मछली बंगाल की संस्कृति का एक अभिन्न अंग है। बंगालियों के लिए ये कोई मांसाहार नहीं बल्कि जल सिंघाड़ा है, बिल्कुल शाकाहारी व्यंजन, हर मौके पर जरूरी चीज। शादी ब्याह हो तो दूल्हा और दुल्हन के घर मछली भेजी जाएगी, मंदिर में पूजा हो तो मछली चढ़ाई जाएगी। यहाँ तक कहते हैं कि जब दुल्हन शादी के बाद पहली बार अपने पति के घर आती है तो वो अपने पति के साथ हाथ में मछली लिए घर में प्रवेश करती है।
2: हाँ श्रोताओं, बंगाली को लेते ये बात मशहूर है कि अगर उनकी जेब परमिशन दे तो वह हर दिन मछली खाएं। हमारे यहाँ जैसे कहीं कोई जाते हैं तो मिठाई का डिब्बा लेकर जाते हैं, वैसे ही बंगालियों में मछली लेकर जाने का रिवाज है। और औरतें जब ससुराल से मायके आती हैं या मायके से ससुराल जाती हैं तो मछली अपने साथ लेकर के चलती हैं।
1: यहाँ तक कि अगर किसी का श्राद्ध करना हो तो उसे भी मछली ही चढ़ाई जाती है। यानी मरने के बाद भी एक बंगाली मछली खाकर ही तृप्त होता है। लेकिन अगर कहीं शोक मनाना हो तो बंगाली लोग अन्य चीजों के साथ मछली का भी परित्याग करते हैं। दूसरे शब्दों में मछली न खाकर वे जताते हैं कि हम आपके दुख से दुखी हैं।
2: श्रोताओं, अगर देवी को प्रसाद के रूप में चढ़ाना हो तो बंगाली लोग हिलसा मछली को ज्यादा शुभ मानते हैं, इसे पूजा में चढ़ाते हैं और भक्त लोग प्रसाद के रूप में इसे ग्रहण करते हैं। कुछ जगहों पर तो यह भी रिवाज है कि ऐसे मौकों पर हिलसा मछली की एक जोड़ी घर में लाई जाए तो उस वक्त औरतें घर के भीतर उलू उलू की आवाज निकालती हैं।
1: बहरहाल श्रोताओं, आपको बता दें कि हिलसा मछली बंगालियों की सबसे पसंदीदा मछली है और ये बांग्लादेश में भी खूब लोकप्रिय है। बंगाली लोग इसे लिश कहते हैं और इसकी खासियत ये होती है कि ये होती तो समुद्र की मछली है पर अपने अंडे नदियों में देती है।
2: अब चर्चा बंगाली रसगुल्ले की जाए। आहा, आज भारत के हर शहर में आपको बंगाली रसगुल्लों की दुकान जरूर मिलेगी। जब तक रसगुल्ले के साथ बंगाली शब्द न जुड़ा हो तब तक तो खरीदार इसमें दिलचस्पी नहीं लेता। कहते हैं बिल्कुल रुई का फोहा जैसा होता है यह, आप इसे निचोड़ दे तो इससे पूरा शीरा निकल जाएगा, बिल्कुल मुलायम। नाम सुनकर ही आहा, मेरे मुंह में तो अभी से पानी आ रहा है और पचने में बिल्कुल हल्का है ये।
1: श्रोताओं, आप जरूर सोचते होंगे कि इसे सबसे पहले बंगाल में बनाया गया होगा, तभी तो इसका नाम बंगाली रसगुल्ला है।
2: भाई हम तो ऐसा ही सोचते हैं।
1: तो फिर आप गलत सोचते हैं।
2: अच्छा,
1: सच्चाई इससे थोड़ी हटकर है।
2: वो क्या है?
1: ये हम आपको बताते हैं। आपको रसगुल्ले की कहानी सुनाते हैं रेडियो आजाद हिंद की जुबानी।
2: चलिए इस कहानी को मैं आगे बढ़ाता हूँ। आम तौर पर माना जाता है कि रसगुल्ले के जन्मदाता कोलकाता के एक कन्फेक्शनर नोबिन दास थे। बंगाली लोग उन्हें फादर ऑफ रसगुल्ला भी कहा करते थे, रसगुल्ला नोबिन दास। लेकिन सच्चाई यह है कि नोबिन दास द्वारा कोलकाता में रसगुल्ला इंट्रोड्यूस करने से पहले यह उड़ीसा के पुरी व भुवनेश्वर में एक ट्रेडिशनल मिठाई के रूप में लोकप्रिय हो चुका था।
1: और इसके बाद रसगुल्ले की रेसिपी उड़ीसा के ब्राह्मण रसोइयों के माध्यम से बंगाल पहुंची। इन रसोइयों को अमीर बंगालियों ने अपने यहाँ नौकरी पर रखा था। ये 1868 की बात है। नोबिन दास ने पाया कि उड़ीसा का रसगुल्ला बहुत जल्द ही खराब हो जाता है, तो इसकी लाइफ बढ़ाने के लिए उन्होंने इसकी रेसिपी में कुछ बदलाव किया। अब ये नया रसगुल्ला पुराने वाले से ज्यादा चलता था और ज्यादा स्पंजी भी था।
2: रसगुल्ले की लाइफ बढ़ जाने से नोबिन दास के लिए इसकी मार्केटिंग करना सरल हो गया, साथ ही स्पंजी होने के कारण इसके कदरदान भी बढ़ गए।
1: श्रोताओं, इस तरह पुरी और भुवनेश्वर का रसगुल्ला कोलकाता के रास्ते से पूरे भारत में फैला। आज ये न केवल हमारे देश बल्कि विदेशों में भी एक बहुत ही लोकप्रिय मिठाई है और इसकी कई सारी वैरायटीज भी मौजूद हैं। मसलन उड़ीसा का पहाला रसगुल्ला गर्मा गर्म परोसा जाता है, दूसरी ओर बंगाल का खीर मोहन बड़े साइज का होता है।
2: और इसी तरह रस मलाई, रस कदम, चमचम, मलाई चाप, खीर सागर वगैरह छेने से बनी दूसरी मिठाइयों का नाम आज हम सुनते हैं, वो सब रसगुल्ले से ही पैदा हुई हैं।
1: जब बात कोलकाता की चल रही है और बंगाली साड़ियों का जिक्र ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तो चलिए बात करते हैं बंगाली साड़ियों की।
2: बिल्कुल।
1: वैसे तो साड़ी भारतीय स्त्रियों का एक परंपरागत परिधान है और इसका जिक्र पुराने से पुराने काल में भी मिलता है। आप जानते हैं कि भगवान श्री राम और श्री कृष्ण के जमाने में भी भारत की महिलाएं साड़ी ही पहनती थीं। यहाँ तक कि आज से 5000 साल पहले की सिंधु घाटी सभ्यता में भी इसके प्रमाण मिलते हैं।
2: पूरी दुनिया की स्त्रियों के लिए भारत की यह साड़ी संस्कृति एक झिलमिलाते सपने की तरह है। आज से लगभग 2000 साल पहले उल्लेख मिलता है कि भारत की साड़ी पहनकर रोम की औरतें यहाँ की गलियों में इतराती फिरती थीं।
1: लेकिन साड़ी इतनी पुरानी होने पर भी नित नवीन है। ये ग्रामीण महिला की भी पसंद है, एक एयर होस्टेस की भी और एक राजकुमारी की भी। ये नारी की गरिमा को उभारती है। कहते हैं कि दुनिया का कोई भी परिधान स्त्री को वो गौरव, वो रुतबा, वो स्त्रीत्व और वो सौंदर्य नहीं दे पाता जो साड़ी देती है।
2: हाँ श्रोताओं, जहां तक सवाल बंगाली साड़ियों का है तो ये अपनी भरपूर लंबाई और एक खास तरीके से पहनने की स्टाइल के कारण ही अपनी अलग पहचान रखती है। एक व्यक्ति ने अपने ब्लॉग पर रीजंस दिए कि क्यों वह किसी बंगाली लड़की से शादी करना चाहता है, तो इन रीजंस में उसने यह भी बताया कि बंगाली लड़कियां बहुत ही खूबसूरत होती हैं और साड़ी बहुत ही खूबसूरती के साथ पहनती हैं।
1: बंगाल के बुनकर हैंडलूम पर बिल्कुल हल्की और ट्रांसपेरेंट तांत की साड़ियां बुनते हैं, जो गर्म मौसम में भी आराम के साथ पहनी जा सकती हैं। क्योंकि बंगाल की खाड़ी के कारण बंगाल का क्लाइमेट गर्म और नम होता है, इसलिए कॉटन की बनी ये तांत साड़ियां यहाँ के माहौल में औरतों को बहुत सुकून देती हैं। इनके चौड़े बॉर्डर पर बेहतरीन सिल्क वर्क होता है और इनका पल्लू बेहद खूबसूरत होता है।
2: बंगाली साड़ियों की अगली खास वैरायटी है जन्मदानी साड़ी। हैंडलूम पर बुनी ये साड़ियां जन्मदानी इसलिए कहलाती हैं क्योंकि इन पर एक खास तरह का थ्रेड वर्क होता है जिसे जामेद कहा जाता है। इन साड़ियों पर मोर बनाने का विशेष चलन है। जन्मदानी साड़ियां भी दो तरह की होती हैं, ढकाई जमदानी और गैर ढकाई जमदानी।
1: ढकाई जमदानी साड़ियां बांग्लादेश में बनती हैं। इन्हें बनाने के लिए यहाँ के बुनकर इजिप्शियन हाई क्लास कॉटन का इस्तेमाल करते हैं। ये मलमल की तरह फाइन टेक्सचर वाली होती हैं, लेकिन काम बहुत होता है। इनका पल्लू बहुत ही ऑर्नामेंटल होता है और ये पार्टी ओकेजंस के लिए ही फिट मानी जाती हैं।
2: हाँ, और दूसरी ओर गैर ढकाई जन्मदानी साड़ियाँ ढकाई जन्मदानी साड़ियों की तुलना की तरह पार्टी अफेयर न होकर के वर्किंग वुमेन की खूबसूरती को चार चांद लगाने वाली होती हैं।
1: श्रोताओं, बंगाली साड़ियों के इस क्रम में एक नाम और आता है और वो नाम है बालूचरी साड़ियाँ। सिल्क के धागों से हैंडलूम पर बुनी जाने वाली ये साड़ियाँ ज्यादातर मुर्शिदाबाद में बनती हैं। दरअसल मुर्शिदाबाद जिले के बालूचर गांव में पहले पहल ये साड़ियाँ बुनी गई थी, इसलिए इन्हें बालूचरी साड़ियाँ कहते हैं। और ये इतनी नाजुक होती हैं कि एक साड़ी बनाने में एक हफ्ते से भी ज्यादा का समय लग जाता है।
2: बालूचरी साड़ियों के पल्लू पर रामायण व महाभारत के सीन अंकित करने का चलन है। इनके चौड़े बॉर्डर वाले फीचर पल्लू पर दोहराए जाते हैं। इन साड़ियों को ज्यादातर जमींदार घराने की स्त्रियां ही पहनती हैं।
1: बंगाली साड़ियों में अगला नाम आता है कंठा साड़ियों का, और ये साड़ियाँ अपनी नाजुक गिलकारी के लिए जानी जाती हैं। ज्यादातर बंगाली ग्रामीण स्त्रियों द्वारा शौकिया तौर पर बनाई जाने वाली ये साड़ियाँ बहुत मेहनत और वक्त लेती हैं।
2: श्रोताओं, हम बंगाली साड़ियों का नाम गिनाते गिनाते थक जाएंगे, मगर अफसाना खत्म नहीं हो पाएगा। चलिए कुछ दो चार नाम हम आपको और गिना करके इस साड़ी चर्चा को यहीं विराम देते हैं। बंगाल में गरज सिल्क साड़ियाँ भी बहुत रुतबा रखती हैं। इनकी खासियत है नेचुरल बैकग्राउंड पर प्लेन रेड बॉर्डर गरज साड़ियों में ही मिलते हैं। गरज साड़ियों से ही मिलती जुलती एक और बंगाल की साड़ी है, उसे कहते हैं कोरियल लाल पार। ये साड़ियाँ दुर्गा पूजा के अवसर पर पहनने के लिए खास तौर से बनाई जाती हैं।
1: मित्रों, जब बंगाली साड़ियों की बात चल ही रही है तो आपको बता दें कि हाल ही में आई फिल्म बर्फी में तेलुगु फिल्मों की हीरोइन इलियाना डिक्रूज ने एक बंगाली पत्नी का किरदार निभाया है और बंगाली साड़ियाँ ही पहनी हैं।
2: सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़, देश का चैनल देश के लिए। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद,
1: और आज अतुल्य भारत में हम बात कर रहे हैं भारत के दर्शनीय स्थल कोलकाता के बारे में,
2: और अब हम बात करते हैं मलमल की।
1: श्रोताओं, आजादी से पहले ढाका बंगाल का ही एक हिस्सा था और भारत का ही एक शहर हुआ करता था। ढाका की मलमल का नाम तो आपने सुना ही होगा, जिसके बारे में कहावत है कि ये इतना महीन होता है कि इसकी पूरी साड़ी आप एक अंगूठी से निकाल दें। अंग्रेज इस कपड़े को मसलिन कहा करते थे और एक जमाने में यूरोप में इसकी इतनी भारी डिमांड थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत आने का एक कारण ये भी रहा।
2: यूरोप की औरतें भारतीय मलमल का ड्रेस पहनने में फक्र महसूस करती थीं। यहाँ तक कि उनकी फ्रांस की बहुत सी खूबसूरत रानी मैरी एंटवानेट भी मसलिन का ड्रेस पहनने के लिए ललायत रहती थी। ये ड्रेस पहन करके उन्होंने अपने पोर्ट्रेट तक बनवाए और आज वो पोर्ट्रेट्स म्यूजियम्स की शोभा बढ़ा रहे हैं।
1: श्रोताओं, खादी के बारे में आप काफी कुछ जानते हैं। गांधी जी ने इसके जरिए भारत की आर्थिक आजादी का सपना देखा था, लेकिन सवाल ये उठता है कि खादी का मतलब क्या। खादी का मतलब वो कपड़ा जो चरखे पर हाथ से बुना जाता है। ये कॉटन भी हो सकता है, सिल्क भी और वूल भी। शर्त केवल ये है कि इसे चरखे पर हाथ से बुना जाना चाहिए।
2: श्रोताओं, मलमल व खादी को मिलाकर के कपड़े की एक वैरायटी बनती है और उसे कहते हैं मलमल खादी, यानी कि मसलिन खादी। यह खादी की सभी वैरायटीज में सबसे उम्दा मानी जाती है। कारण यह होता है कि इसमें मलमल की नजाकत व खादी का कूल कंफर्ट एक साथ मिलता है। इसका शर्ट व कुर्ता बनवा करके पहनना आराम व फैशन का एहसास एक साथ होता है।
1: चूंकि बात बंगाल के संदर्भ में चल रही है, इसलिए ये बात स्पष्ट कर दें कि बंगाल का बुना मलमल खादी पूरे भारत में सराहा जाता है। इसके बारे में दावा किया जाता है कि गर्मियों में आप एसी शर्ट पहनने के बजाय मलमल खादी की शर्ट पहनिए, आपका बॉडी टेम्परेचर 3 डिग्री तक नीचे आ जाएगा।
2: श्रोताओं, हमने बंगाल के कल्चर के बारे में आपसे चर्चा की, पहले खान पान के बारे में, फिर वहाँ के पहनावे के बारे में। चलिए अब आज चर्चा को आगे बढ़ाते हैं वहाँ के रीति रिवाज यानी बंगाल की शादियों के बारे में। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़। देश का चैनल देश के लिए। श्रोताओं, भारत की शादियों के बारे में आप काफी कुछ जानते हैं। हमारे यहाँ विवाह को पश्चिम की तरह कॉन्ट्रैक्ट ना कहकर के संस्कार कहते हैं, लेकिन बंगाली शादियों में कुछ खास बातें होती हैं जो बाकी शादियों से इसे थोड़ा सा विशिष्ट बनाती हैं। श्रोताओं, अगर आप किसी बंगाली शादी में जाएं तो उसमें उनकी रस्मों को समझें। इसके लिए हम आपको बंगाली शादियों के कुछ शब्दों के मायने बता रहे हैं।
1: सबसे पहली रस्म के बारे में आपको बताते हैं, आई बुदो भात। शादी से पहले दुल्हन के रिश्तेदार उसे एक दावत देते हैं जिसे आई बुदो भात कहते हैं, और इस दावत का मतलब ये होता है कि उसके रिश्तेदारों ने उसे शादी करने की इजाजत दे दी है। दूसरी रस्म है गायर होलुद। हमारे यहाँ जैसे दुल्हन को हल्दी लगाने की रस्म होती है, वैसे ही बंगाल में शादी के एक दिन पहले की रात दुल्हन का गायर होलुद होता है, और इस रस्म का मतलब होता है शरीर को हल्दी से पीला करना, और इस रस्म की शुरुआत दूल्हे के घर से आए लोग ही करते हैं।
2: श्रोताओं, ऐसी रस्मों में एक नाम है दूधी मंगोल। इस रस्म के अंतर्गत शादी वाली सुबह सात सुहागने दुल्हन को ट्रेडिशनल बंगला चूड़ियां शाखा और पावला पहनाती हैं। इसमें एक जोड़ी चूड़ी सफेद और एक जोड़ी लाल रंग की होती है।
1: बंगाली शादियों में सफेद और लाल रंग के कॉम्बिनेशन का काफी इस्तेमाल होता है। देखा जाए तो सफेद रंग शांति, सादगी, सरलता और सदाचार का द्योतक होता है, जबकि लाल रंग प्रेम और उमंग का। इसीलिए सफेद और लाल रंग के कॉम्बिनेशन का मतलब हुआ कि हे दुल्हन, तुम अपनी शादीशुदा जिंदगी में प्रेम और उमंग का समावेश तो करो, पर सरलता और सादगी को कभी ना भूलो।
2: श्रोताओं, बंगाली लोगों का यह जीवन दर्शन शादी के वक्त दुल्हन द्वारा पहने जाने वाले साड़ी के कलर में दिखता है। बंगाली दुल्हने शादी के मौके पर ऑफ व्हाइट कलर की साड़ी पहनती हैं, जिस पर गहरे लाल रंग का खूबसूरत बॉर्डर होता है। दूसरी ओर दूल्हा सफेद रंग का धोती कुर्ता पहनता है। दूल्हा दुल्हन दोनों के सिर पर सफेद रंग का एक मोर होता है, जो सामान्यतः समुद्र की फैनी से बना होता है। यह फैनी बंगाली लोगों का समुद्र के प्रति जुड़ाव दिखाता है।
1: बोर यात्री का मतलब होता है बारात का प्रस्थान करना। जैसे हमारे यहाँ शादी के कार्डों पर बारात प्रस्थान का समय लिखते हैं, वैसे ही बंगाली लोग बोर यात्री का समय लिखते हैं।
2: बोर बोरन। जब बारात कन्या पक्ष के घर पहुंचती है तो दुल्हन की माँ मिट्टी के दिए वगैरह जला करके वर पक्ष के लोगों का स्वागत करती है। यह रस्म बोर बोरन कहलाती है।
1: चंदन टोला, यानी कि शादी के मंडप में जिस जगह पर दूल्हे को बिठाया जाता है उसे चंदन टोला कहते हैं।
2: पोटो बस्त्रा। जब दूल्हा चंदन टोला पर बैठ जाता है तो कन्यादान करने वाला व्यक्ति उसे नए कपड़े भेंट करता है, और यह रस्म पोटो बस्त्रा कहलाती है। सात पाग। दूल्हे दुल्हन द्वारा सात फेरे लेने की क्रिया बंगालियों के यहाँ सात पाग कहलाती है। अब अगर आप इस शब्द का मतलब नहीं समझते हैं तो आप तो यही समझेंगे कि आपको सात तरह के पकवान खिलाने के लिए कोई रस्म होगी मगर ऐसा बिल्कुल नहीं है।
1: अगली रस्म है माला बदल। ये और कुछ नहीं, हमारे यहाँ का जय माला ही है, जिसमें दूल्हा और दुल्हन एक दूसरे को माला पहनाते हैं। एक और रस्म है जिसे शुभो दृष्टि कहते हैं। जब माला बदल की रस्म पूरी हो जाती है तो सभी लोगों के सामने ही दूल्हा और दुल्हन एक दूसरे की ओर देखते हैं। ये क्रिया शुभो दृष्टि कहलाती है, और इसका मतलब ये होता है कि अब समाज ने उन दोनों को परमिशन दे दी है कि वो एक दूसरे को प्यार से देख सकते हैं।
2: श्रोताओं, बंगाली कल्चर में मछली कितनी महत्वपूर्ण होती है यह अभी अभी हमने आपको बताया। अब चलिए यह भी देखते हैं कि बंगाली शादियों में मछली के कौन कौन से पकवान बनाए जाते हैं। उनके कुछ नाम हम आपको बताते हैं।
1: पहला नाम है चिंगरी माछेर मलाई करी, और माछेर मुरोदिये मुगेर दाल। एक और पकवान है जिसका नाम है आलू दम चिंगरीर कटलेट।
2: श्रोताओं, आपको एक सलाह हम जरूर देते हैं। अगर आप प्योर वेजिटेरियन हैं और किसी बंगाली शादी में जा रहे हैं तो बेहतर होगा कि अपने वेजिटेरियन होने की सूचना आप पहले से ही दे दें, नहीं तो आपको मात्र बंगाली रसगुल्ले खाकर ही अपना पेट भरना पड़ेगा। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़, देश का चैनल देश के लिए। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद,
1: और आज अतुल्य भारत में हम बात कर रहे हैं भारत के दर्शनीय स्थल कोलकाता के बारे में। श्रोताओं, बात बंगाल की हो रही है और बंगाल के सिनेमा की बात ना हो तो ये कार्यक्रम अधूरा रह जाएगा। कला के क्षेत्र में बंगाल बहुत ही समृद्ध है, चाहे वो सिनेमा हो, नाटक हो या फिर संगीत हो। सबकी फसल बंगाल की उपजाऊ जमीन पर खूब लहलहाई है। यहाँ तक कि बंगाल का साहित्य भी भारतीय साहित्य में एक लीडिंग रोल रखता है। हमें तो लगता है कि बंगाल की धरती में इंटेलेक्चुअल संतानों को जन्म देने की क्षमता कुछ ज्यादा ही है। पता नहीं ये माछी भात का असर है या बंगाल की खाड़ी से चलने वाली हवा का। बंगाल में जन्मे लोगों ने पूरी दुनिया में अपना परचम लहराया है।
2: तो चलिए श्रोताओं, आज बंगला सिनेमा की बात करते हैं। बंगला सिनेमा के दो सेंटर हैं, कलकत्ता व ढाका, लेकिन यहाँ हमारी चर्चा का विषय है कोलकाता। यहाँ का सिनेमा निर्माण क्षेत्र टालीगंज कहलाता है।
1: बंगला सिनेमा की शुरुआत 1890 से होती है, जबकि कोलकाता के थिएटरों में पहले पहल बायोस्कोप दिखाए गए। ये बायोस्कोप वास्तव में मूवी कैमरा होते थे, जिनमें एक फिल्म स्ट्रिप पर ढेर सारे फोटोग्राफ्स एक सीक्वेंस में चलते थे। वीडियो कैमरे इसके बाद आए। बंगाल में पहले दशक की फिल्म इंडस्ट्री बायोस्कोप वाली ही थी, जिसे विक्टोरियन एज का सिनेमा भी कहते हैं। कोलकाता में इस सिनेमा का बीज बोने वाले शख्स का नाम था हीरालाल सेन।
2: श्रोताओं, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। सन 1919 में बंगला सिनेमा की दृष्टि से एक मील का पत्थर साबित हुई, जब पहली बंगला फीचर फिल्म बिल्वा मंगल मदन थिएटर के बैनर तले बनी। यह एक ब्लैक एंड व्हाइट साइलेंट फिल्म थी। यह प्रसंगवश आपको स्पष्ट कर दें, फीचर फिल्म फुल लेंथ वाली रनिंग फिल्म को ही कहते हैं। ज्यादातर ऐसी फिल्में 80 मिनट से ज्यादा समय की होती हैं।
1: श्रोताओं, बात टॉलीगंज की। आपने बॉलीवुड और टॉलीवुड का नाम तो सुना ही होगा। दरअसल बॉलीवुड नाम हॉलीवुड से उधार लिया हुआ है और टॉलीवुड नाम टॉलीगंज के टॉली और बॉलीवुड के वुड को लेकर बनाया गया है। ये टॉलीगंज दक्षिण कोलकाता में एक जगह है और इसका नाम मेजर विलियम टॉली के नाम पर पड़ा है।
2: टॉलीगंज भारत के पैरेलल सिनेमा के इतिहास में बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है, जिसने एक से बढ़कर एक आठ फिल्मों का निर्माण किया। इसने सत्यजीत रे और मृणाल सेन जैसे जीनियस डायरेक्टर दिए। इस हिसाब से 1952 से लेकर के 1975 तक का पीरियड बंगाली सिनेमा के इतिहास में गोल्डन एज कहलाता है।
1: श्रोताओं, भारतीय पैरेलल सिनेमा में सत्यजीत रे का नाम रोशनी के समंदर से झांकते सूरज की तरह है। ऑस्कर, भारत रत्न और फ्रांस के सबसे बड़े सम्मान लीजन द ऑनर से नवाजे गए सत्यजीत रे द्वारा निर्देशित पहली फिल्म पाथेर पांचाली 1955 में रिलीज हुई। मात्र 1,50,000 रुपयों में बनी इस फिल्म ने कुल 11 इंटरनेशनल अवार्ड जीतकर दुनिया भर में तहलका मचा दिया। कोलकाता में जन्मे सत्यजीत रे को इस फिल्म ने रातों रात इंटरनेशनल पर्सनालिटी बना दिया।
2: श्रोताओं, बंगला सिनेमा की बड़ी खासियत यह है कि यह जमीन से जुड़ा हुआ सिनेमा है। यह बॉलीवुड की तुलना में हकीकत के ज्यादा निकट है। हालांकि बॉलीवुड के प्रभाव में अब ग्लैमर का तड़का

0: गांधी को एक संत पॉलिटिशियन कहा जाता है, पर रविन्द्रनाथ टैगोर शुद्ध संत थे। वे देश व राजनीति नहीं समझते थे, वे समझते थे केवल मानवता और विश्व बंधुत्व।
1: वे इतने जीनियस थे कि शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र हो जिसमें उन्होंने काम न किया हो। वैसे पहले गैर यूरोपियन थे जिन्हें साहित्य के एक क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। उनके द्वारा लिखे गए दो गीत आज भारत और बांग्लादेश के राष्ट्रगान हैं, जन गण मन जो कि आज भारत का राष्ट्रगान है, और आमार सोनार बांग्ला जो कि बांग्लादेश का राष्ट्रगान है। इन्हें भी रविंद्रनाथ जी द्वारा ही लिखा गया था।
0: श्रोताओं, हम यह चर्चा करना चाहेंगे उनके द्वारा प्रतिपादित म्यूजिकल स्टाइल रविंद्र संगीत की, यानी रविंद्र संगीत की।
1: वास्तव में रविंद्र संगीत का एक सामान्य अर्थ है स्वयं टैगोर जी द्वारा लिखे गए एवं कंपोज किए गए गीत। इसमें इंडियन क्लासिकल म्यूजिक और ट्रेडिशनल लोक संगीत का मिश्रण देखने को मिलता है। बंगाल का तो ये विशिष्ट संगीत है ही जो बांग्लादेश में भी पूजा और सराहा जाता है। स्वयं रविंद्र जी के शब्दों में कहें, यदि लोग मेरे द्वारा लिखी गई सभी कविताओं को भूल जाएं, तो भी वे मेरे गीतों को नहीं भूल पाएंगे।
0: श्रोताओं, रविंद्र संगीत एकदम से दिल को छू जाता है। इसमें प्यार, प्रकृति, सर्वव्यापी ईश्वर व मनुष्य की दुर्बलता, इन सब का मिश्रण है। यह भारत की मिट्टी का संगीत है जो सुनने वाले को एक अपूर्व शांति के लोक में ले जाता है।
1: रविंद्र संगीत का कुछ ऐसा जादू है कि बंगाल के बाहर के लोग भी इसे गाना फक्र की बात समझते हैं। हिंदी सिनेमा के पार्श्व गायक किशोर कुमार, आशा भोसले, कविता कृष्णमूर्ति इसमें अच्छी पकड़ रखते हैं।
0: श्रोताओं, चलते चलते अब हम आपको ये भी बता दें कि कोलकाता जाने के लिए सबसे अच्छा सीजन कौन सा होता है। कोलकाता जाने के लिए सबसे अच्छा सीजन होता है जाड़ों का समय। इस समय वहाँ ना तो ज्यादा जाड़ा होता है और ना ही ज्यादा गर्मी। हम तो आपसे अनुरोध करते हैं कि कलकत्ता आप एक बार अवश्य जाएं। श्रोताओं, अब अपने कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। आप सुन रहे थे 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद से अतुल्य भारत, और हमारी चर्चा का विषय था कोलकाता। इसका आलेख तैयार किया था श्रीमती पूनम जायसवाल ने, और स्वर थे प्रमोद शर्मा और कंचन राजानी के। अब हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।

आदमी वो नहीं जिसे हालात बदल दे, आदमी तो वो है जो हालात को बदल दे। ऐसे ही महान वीर सपूतों की कहानी सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद पर 90.8 मेगाहर्ट्ज़। रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

आजादी के यादगार तरानों पर केंद्रित राष्ट्रवंदना के विविध स्वर जन गर्जे, अंग्रेजी राज के दमन लूट और आतंक के प्रतिरोध में भारतीय जन का उद्घोष जन गर्जे। स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति जन गर्जे।

90.8 मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण है। मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो मित्र प्रमिला, लेकर आई हूँ आज का भारत भारती कार्यक्रम। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं पंडित सज्जन लाल ब्रह्म भट्ट और दीप्ति गेंडाम का उपशास्त्रीय गायन।

जो बंदिश सुना रहा हूँ इसमें साहित्यिक शब्दों का उपयोग नहीं है। स्वरों को इस प्रकार से गठन किया है, वो शब्द का काम भी करते हैं। यमन कल्याण में

बोल हैं, नीर गगरी गिरी नार से, नीर नीरे गगरी गगरे गिरी गरे नार नार नीरे सा, सिर सगरी गंगा मग गिर परी, नीर गगरी गिरी नार से।

ये इस बंदिश की खास बात यही है कि अलग से शब्दों का उपयोग नहीं है, केवल स्वरों को इस प्रकार से योजनाबद्ध किया है कि वही शब्द का काम भी करते हैं।

अंतिम प्रस्तुति चैते की है जो परंपरागत है। इसके बोल हैं, हथवा लगत कुमलाय गैल रामा

आज के इस कार्यक्रम में आपने पंडित सज्जन लाल ब्रह्म भट्ट और दीप्ति गेंडाम का उपशास्त्रीय गायन सुना। अब आज का भारत भारती कार्यक्रम खत्म करने की प्रमिला को दीजिए इजाजत। नमस्कार। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण है। देश का चैनल देश के लिए। सुनते रहिए।

0: आजादी के यादगार तरानों पर केंद्रित राष्ट्रवंदना के विविध स्वर जन गर्जे, अंग्रेजी राज के दमन लूट और आतंक के प्रतिरोध में भारतीय जन का उद्घोष जन गर्जे। स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति जन गर्जे।
1: नवे.8 MHz पर ये रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण है। मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो मित्र प्रमिला। लीजिए सुनिए देशभक्ति गीत।

नमस्कार, मैं हूं गोविंद नामदेव और आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

नमस्कार, मैं हूँ रेखा भारद्वाज और आप मुझे सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

हमें नाज है देश के उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों पर जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। भारत माता के सभी महान सच्चे सपूतों को मेरा शत शत प्रणाम।

नमस्ते भोपाल, मैं हूं कैलाश खेर और आप मुझे सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए।

0: कुछ याद उन्हें भी कर लो।
1: मैं हूँ मधुश्री, सुनते रहिए 90.8 रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

मैं अशोक चक्रधर एफएम रेडियो का अभिनंदन करता हूं जो 90.8 पर आप सुनते हैं। मुझे बड़ी खुशी है कि इसका प्रसार और प्रचार निरंतर हो रहा है। ये रेडियो आज़ाद हिंद है। आज़ाद हिंद हमें याद दिलाता है नेताजी सुभाष की, याद दिलाता है हमारे स्वाधीनता संग्राम की, याद दिलाता है हमारे गौरव की। इस गौरवशाली परंपरा को मैं पुनः शुभकामनाएं देता हूँ।

0: आजादी के यादगार तरानों पर केंद्रित राष्ट्रवंदना के विविध स्वर जन गर्जे, अंग्रेजी राज के दमन लूट और आतंक के प्रतिरोध में भारतीय जन का उद्घोष, जन गर्जे। स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति जन गर्जे।
1: शुभ संध्या। 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून इन किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। सांध्यकालीन प्रसारण सेवा लेकर मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो मित्र डॉक्टर रानी रैकवार भारती। शाम 5 बजे से लेकर रात 10 बजे तक रहेगा अब आपका और हमारा साथ। आप हमारा प्रसारण ऑनलाइन लाइव ब्रॉडकास्ट सुन सकते हैं मिक्सलर ऐप पर, रेडियो गार्डन पर, पॉडकास्ट स्पॉटिफाई पर, एप्पल पॉडकास्ट पर, Amazon पॉडकास्ट और साथ ही YouTube पॉडकास्ट पर भी। तो बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। सांध्यकालीन प्रसारण सेवा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी हम आपको दे दें। बस कुछ ही देर में सुनिए कार्यक्रम अक्षय निधि, जिसमें आप मंडल 2 के सूक्त 22 का वाचन सुनेंगे। भक्ति संगीत कार्यक्रम सुनिए 5:10 पर। 6 बजे का समय है कार्यक्रम वतन का राग का, जो आज केंद्रित है मदन लाल ढींगरा पर। कार्यक्रम आमने सामने प्रसारित किया जाएगा 6:30 पर। LPG द्रवित पेट्रोलियम गैस की बचत और इसका संरक्षण कैसे करें, विशेषज्ञ आशा पाठक से दानिश की खास बातचीत। वागर्ध कार्यक्रम सुनिएगा 7:00 वसीम वरेलवी पर आधारित है। विशेष कार्यक्रम नर्मदा एक सांस्कृतिक परिदृश्य के रूप में 7:30 पर प्रस्तुत किया जाएगा। रेडियो रिपोर्ट सुनिएगा 8:00। 8:30 का समय है कार्यक्रम हिंदुस्तान हमारा का, जो आज केंद्रित है शंकर शाह रघुनाथ शाह की शहादत पर। कला कल्लोननी कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाएगा 9:00 सत्यदेव दुबे पर आधारित है। और 9:30 का समय है युग प्रवर्तक विवेकानंद की कार्यक्रम के, जिसमें आप सुनेंगे भाग 48। तो ये थी हमारी सांध्यकालीन प्रसारण सेवा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। तो सुनते रहिए अपनी रेडियो मित्र डॉक्टर रानी रैकवार के साथ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: जिंदा फिर से हो रहा।
1: जननायक, स्वाधीनता संघर्ष की महागाथा, आजादी के रणबांकुरों की, क्रांति कथाओं के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाओं का संग्रह, ऑडियो एल्बम जननायक, स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।
2: वेद, पुराण, आख्यान, ये हमारी भारतीय संस्कृति की विरासत हैं, धरोहर हैं, और इसी पर आधारित है हमारा विशेष कार्यक्रम अक्षय निधि। तो लीजिए, पेश है कार्यक्रम अक्षय निधि।
3: प्रस्तुत है कार्यक्रम अक्षय।

0: अक्षय निधि कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है ऋग्वेद के द्वितीय मंडल के सूक्त 22 से वाचन। ऋषि हैं ग्रत्समत और भार्गव शौनक, देवता इंद्र, छंद अष्टि अथवा अतिशक्वरी।
1: त्रिकद्रुकेशु महिषो यवाशिरम तुविशुष्मस्त्री पत्सोम मपि बद्विष्णुना सुतम यथा वशत स ईम ममाद महि कर्म कर्तवे महामुरुम सैनम षश्चद्देवो देवम सत्यमिंद्रम सत्य इंदुः। अत्यंत बली पूजनीय इंद्रदेव ने तीनों लोकों में व्याप्त तृप्तिदायक दिव्य सोम को जौ के सार भाग के साथ मिलाकर विष्णुदेव के साथ इच्छानुसार पान किया। उस सोम ने महान इंद्रदेव को श्रेष्ठ कार्य करने के लिए प्रेरित किया। उत्तम दिव्य गुणों से युक्त उस दिव्य सोमरस ने इंद्रदेव को प्रसन्न किया। अधत्विषीमाम अभ्योजसा क्रिविम युधा भवदा रोदसी अप्रणदस्य मज्मना प्रवावृधे अधत्तान्यम जठरे प्रेम रिच्यत सैनम सश्च देवो देवम सत्यमिंद्रम सत्य इंदुः। हे इंद्रदेव, अपनी सामर्थ्य से क्रीवी नामक असुर को आपने जीता और आकाश एवं पृथ्वी को तेज से परिपूर्ण कर दिया। आपने सोम के एक भाग को अपने उदर में धारण किया और दूसरा भाग देवों को दे दिया। सत्य स्वरूप दीप्तिमान दिव्य सोम सत्य स्वरूप तेजस्वी इंद्रदेव को पुष्ट करता है। साकम जातः क्रतुना साकमोजसा ववक्षिथ साकम वृद्धो वीर्यैः सासहिर मृधो विचर्षिणः दाता राधः स्तुवते काम्यं वसुसैनं सश्चद्देवो देवं सत्यमिंद्रं सत्य इंदुः। हे इंद्रदेव, आप यज्ञ के साथ प्रकट हुए हैं। अपनी सामर्थ्य से विश्व का भार उठाने को लालायित रहते हैं। हे ज्ञानी श्रेष्ठ इंद्रदेव, महान पराक्रमी शत्रु संहारक विशिष्ट ज्ञानी, आप स्तोताओं को अभीष्ट ऐश्वर्य देते हैं। सत्य स्वरूप दीप्तिमान दिव्य सोम सत्य के ज्ञाता इंद्रदेव को प्राप्त होता है।

0: असुरों को हराया तथा जल प्रवाहित किया। शतकर्मा इंद्रदेव ने अन्न एवं बल प्राप्त किया।
1: अक्षय निधि कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे ऋग्वेद के द्वितीय मंडल के सूक्त 22 से वाचन, प्रस्तुत कर रहे थे डॉक्टर नीलिम्ब त्रिपाठी।
2: भगवत आराधना के सुमधुर भक्तिमय संगीत स्वर सुनिए कार्यक्रम भक्ति संगीत में। तो आपके लिए पेश है कार्यक्रम भक्ति संगीत।
3: फूलों की खुशबू हवा के विपरीत दिशा में नहीं फैलती, लेकिन सद्गुणों की कीर्ति दसों दिशाओं में फैलती रहती है।

फूलों की खुशबू हवा के विपरीत दिशा में नहीं फैलती, लेकिन सद्गुणों की कीर्ति दसों दिशाओं में फैलती रहती है।

हमारी वजह से कोई रोए तो हम व्यर्थ हैं, हमारे लिए कोई रोए तो समझ लो हमारे जीवन का बहुत अर्थ है।

जहां तक रास्ता दिख रहा है वहां तक चलिए, आगे का रास्ता वहां पहुंचने के बाद खुद ब खुद दिखने लगेगा।

0: दोपहिया वाहन की सवारी करते समय हेलमेट जरूर पहने। रेडियो आजाद हिंद द्वारा जनहित में जारी।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण, देश का चैनल, देश के लिए। प्रस्तुत है कार्यक्रम वतन का राग।

मैं अपने बचाव में सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि अंग्रेजों की कोई भी न्याय व्यवस्था मुझे सजा देने का हक नहीं रखती। इसी वजह से मैंने कोई वकील मुकर्रर करना मुनासिब नहीं समझा। जैसे जर्मनी के खिलाफ लड़ना अंग्रेजों की देशभक्ति है, वैसे ही अंग्रेजों के खिलाफ आजादी की लड़ाई हमारी देशभक्ति है। मैं अंग्रेजों को 8 करोड़ भारतीयों का हत्यारा मानता हूँ, जिनको पिछले 50 सालों में बेरहमी से मौत के घाट उतारा गया है। ये शब्द हैं कटघरे में खड़े उस नौजवान के, जिसमें अपने देश की आजादी का जज्बा हिलोरे ले रहा था और जिसका परिवार अंग्रेजों का विश्वास पात्र था। नाम था मदनलाल ढींगरा। मदनलाल ढींगरा का जन्म 18 सितंबर 1883 को पंजाब प्रांत के हिंदू परिवार में हुआ था। उनके पिता सिविल सर्जन थे और अंग्रेजी रंग में पूरी तरह रंगे हुए थे। मदनलाल ढींगरा को भारत की आजादी से संबंधित क्रांति के आरोप में लाहौर के कॉलेज से निकाल दिया गया। परिवार ने मदनलाल से नाता तोड़ लिया। मदनलाल को जीवन यापन के लिए पहले एक क्लर्क के रूप में, फिर एक तांगा चालक के रूप में और अंत में एक कारखाने में श्रमिक के रूप में काम करना पड़ा। कारखाने में श्रमिकों की दशा सुधारने के लिए उन्होंने यूनियन बनाने की कोशिश की, तो वहां से भी उन्हें निराश होना पड़ा। कुछ दिन उन्होंने मुंबई में काम किया, फिर अपने बड़े भाई की सलाह पर उच्च शिक्षा प्राप्त करने इंग्लैंड चले गए। विदेश में रहकर अध्ययन करने के लिए बड़े भाई ने तो सहायता दी ही, इंग्लैंड में कुछ राष्ट्रवादी कार्यकर्ताओं से भी उन्हें आर्थिक मदद मिली।

मदनलाल ढींगरा का क्रांतिकारी सफर लंदन से शुरू हुआ, जब वे लंदन के यूनिवर्सिटी कॉलेज से सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा कर रहे थे। 1905 के आसपास का समय था। मदनलाल इंडिया हाउस में रहते थे, जो उन दिनों भारतीय विद्यार्थियों के राजनीतिक क्रियाकलापों का केंद्र हुआ करता था। ढींगरा राष्ट्रवादी विनायक दामोदर सावरकर और श्यामजी कृष्ण वर्मा के संपर्क में आए। वे लोग ढींगरा की प्रचंड देशभक्ति से बेहद प्रभावित हुए। सावरकर ने ही मदनलाल को अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संस्था का सदस्य बनाया और हथियार चलाने का प्रशिक्षण दिया। ये लोग उस समय खुदी राम बोस, कन्हैयालाल दत्त, सतिंदर पाल और काशीराम जैसे क्रांतिकारियों को मृत्युदंड दिए जाने से बेहद क्रोधित थे। इन घटनाओं

1 जुलाई 1909 की रात को मदनलाल वाइली से मिले और उनसे कुछ खास बात करने के बहाने उनके समीप पहुंचे। कोल्ड पिस्टल निकालकर कर्जन वाइली पर करीब से 2 गोलियां चलाईं, जिससे वो ढेर हो गया। नस नस में भरे हुए इस क्रांतिकारी के पराक्रम और देश के लिए दी गई कुर्बानी के कारण उन्हें पकड़कर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। उन्होंने शान से कहा कि मैं आपका कानून नहीं मानता। जिस तरह से जर्मन लोगों का ब्रिटेन पर राज करने का कोई अधिकार नहीं, वैसे ही आप लोगों को भी हम पर राज करने का अधिकार कैसे हो सकता है? जब जर्मन को मारकर अंग्रेज अपने को देशभक्त कहता है, तो निश्चित रूप से मैं भी देशभक्त हूँ। मातृभूमि का अपमान करने वालों की हत्या करना एक देशभक्त का पवित्र कर्तव्य है। मैंने वही किया है जो सच्चे देश प्रेमी को करना चाहिए। मुझे मृत्यु की जरा भी परवाह नहीं। अंग्रेजों का काला कानून मुझे फांसी की सजा दे सकता है, पर वो देशभक्ति की भावना को दफन नहीं कर सकता। मेरी फांसी के बाद देश में अंग्रेजों के खिलाफ आजादी की जंग और तेज होगी। इंग्लैंड की ब्रिक्सटन जेल में मदनलाल और सावरकर को रखा गया था। ब्रिटिश हुकूमत ने 17 अगस्त सन 1909 को उन्हें फांसी पर लटका दिया।

0: आजादी की यादगार तरानों पर केंद्रित राष्ट्र वंदना के विविध स्वर जन गर्जे। अंग्रेजी राज के दमन, लूट और आतंक के प्रतिरोध में भारतीय जन का उद्घोष जन गर्जे। स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति ऑडियो एल्बम का संग्रह जन गर्जे।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए, 90.8 मेगाहर्ट्ज पर।

गंदे हाथों से कभी खाना मत खाना, कीटाणु पेट में चले जाएंगे और तुम बीमार हो जाओगे। इसीलिए तो खाना बनाने के पहले और खाने से पहले हाथों को धोना जरूरी है। धुलकर

शौच के बाद हाथों को साबुन से ही धोना। नाखूनों को साफ रखो, तुम बीमार नहीं होगे। पीने का पानी और खाने का सामान अच्छी तरह से ढककर रखना बहुत जरूरी है।

पानी अनमोल है, यह सबको जीवन देता है। पानी साफ ना हो तो यह बीमार कर देता है। इसीलिए परिवार को स्वस्थ रखने के लिए पीने का पानी साफ रखना बहुत जरूरी है।

0: दोपहिया वाहन की सवारी करते समय हेलमेट जरूर पहने। रेडियो आजाद हिंद द्वारा जनहित में जारी।
1: नमस्कार आदाब, मैं हूं पिनाज मसानी और आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद। दिल में रख लो कि निगाहों में बसा लो मुझको, दिल में रख लो कि निगाहों में बसा लो मुझको।

0: रेडियो आजाद हिंद के सभी सुनने वालों को नाज मसानी की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं।
1: कुछ यादें उन्हें भी कर लो।
2: मैं हूँ मधुश्री, सुनते रहिए 90.8 रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: झूलों के घर ना

प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी, ओ लंबी लंबी उमरिया को छोड़ो।

प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। नमस्कार, मैं नितिन मुकेश, आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए। जय हिंद। अरे

0: मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज पर, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून इन किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम आमने सामने।
2: तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम आमने सामने।
3: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। मैं हूं दानिश। कार्यक्रम आमने सामने में आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय पर जो हर घर से जुड़ा है, एलपीजी गैस का सही इस्तेमाल और उसका संरक्षण। एलपीजी का पूरा नाम लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, हिंदी में तरल पेट्रोलियम गैस कहते हैं। यह हमारे घरों में सबसे जरूरी चीजों में से एक है। इसका मुख्य उपयोग खाना बनाने में होता है। यह गैस कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल को साफ करने की प्रक्रिया से निकलता है। भारी दबाव डालकर इसे तरल रूप में बदला जाता है ताकि सिलेंडरों में भरा जा सके और आसानी से कहीं भी ले जाया जा सके। इस विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं विषय विशेषज्ञ आशा पाठक जी। नमस्कार मैम।
4: नमस्ते, आपके सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार।
3: मैम, सबसे पहले हम इस विषय पर आपसे ये जानना चाहते हैं और हमारे श्रोता भी, कि एलपीजी गैस का सही इस्तेमाल और उसका संरक्षण किस तरह से किया जाए।
4: बहुत ही आवश्यक एक प्रश्न है, क्योंकि एलपीजी हर घर में भोजन तो बना ही रहा है और साथ में लोगों के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को भी प्रदान कर रहा है। कहीं अगर रात में कोई मेहमान आ जाए और चूल्हा जलाना पड़ता तो आप समझ सकते हैं कि उस महिला का मानसिक स्थिति जो है वो क्या होती है, उस समय लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। तो एक प्रकार से एलपीजी जो है परिवार में खुशियां लाता है और ये सबसे ज्यादा बोलना सुविधाजनक ईंधन है और साथ में सुरक्षित ईंधन है। तो एलपीजी का उपयोग जो है वो घर घर में तो हो ही रहा है, लेकिन उसके साथ ही आज जो है एलपीजी से चलने वाली गाड़ियां भी हैं और एलपीजी इंडस्ट्रीज में भी इस्तेमाल होता है। तो एलपीजी एक प्रकार से इसीलिए ये इस्तेमाल होता है इतना ज़्यादा, क्योंकि ये बहुत ही सुविधाजनक ईंधन है। इसको एक तो कन्वीनियंट है कि इसको हम स्टोर कर सकते हैं या तो फिर हम उसको पाइपलाइंस के जरिए हम भी ले सकते हैं। ये जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण ईंधन है।
3: तो क्या एलपीजी एक सीमित संसाधन है और इसे बचाना क्यों जरूरी है?
4: जी हाँ, देखिए क्या होता है, क्योंकि एलपीजी आपने बताया लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो है, पेट्रोलियम मींस वही जो पेट्रोलियम से निकला क्रूड ऑयल जिसको हम कच्चा तेल बोलते हैं, तो ये कच्चे तेल का ही एक मतलब उसमें से फ्रैक्शन है। दो तरीके से वैसे तो बनाया जाता है ये, थोड़ा इसीलिए इसका उत्पादन पेट्रोल के मुकाबले में थोड़ा ज़्यादा होता है, क्योंकि इसको हम जो कई बार जो कुएं होते हैं तेल के, उसके ऊपरी सतह पर एक गैस हमको मिलती है, उसे आप बाय प्रोडक्ट बोल सकते हैं पेट्रोलियम कच्चे तेल का, उसे हम प्राकृतिक गैस बोलते हैं। या तो फिर कई कुएं ऐसे होते हैं जिसमें सिर्फ गैस होती है, प्राकृतिक गैस होती है, तो उससे भी इसको बनाया जाता है। और साथ में क्रूड ऑयल के जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जिसको हम कहते हैं, तो उसमें सबसे ऊपरी सतह के ऊपर जो है हमें एक गैस मिलती है, तो यही गैस जो है उसको फिर हम लिक्विफाइड रूप में लाते हैं, मतलब तरल बनाते हैं, उसको इतना प्रेशर देते हैं कि वो, इसका एक गुण है ये कि अगर इसको प्रेशराइज किया जाएगा तो ये एक तरल रूप में बन जाती है। तो ये एक बहुत ही अच्छा गुण है इसका, उसके कारण ही हम इसे सिलेंडर में भर पाते हैं, नहीं तो 200 ग्राम गैस भी पूरे सिलेंडर को भर लेती। तो हम इसमें 14.2 किलोग्राम गैस भर पाते हैं। मतलब ये मैं किसके बारे में बता रही हूँ, जो घरेलू हम लाल वाला जो सिलेंडर होता है, फिर उसके बाद कमर्शियल सिलेंडर है या अलग अलग, फिर वो उनके मतलब वॉल्यूम्स होते हैं। और दूसरी चीज ये होती है कि जो एलपीजी जो है इसकी अपने कोई गंध या कोई मतलब कलरलेस है, ये कोई रंग नहीं है, कोई गंध नहीं है, तो अगर ये लीक होगा तो कैसे पता चलेगा आपको। तो इसीलिए इसके अंदर एक मतलब इसे तरल किया जाता है और इसके अंदर एक रसायन मिलाया जाता है जिसे मरकैप्टन भी बोलते हैं। ये इसी की गंध होती, ये जो आपको जब एलपीजी लीक होती है तो आपको समझ में आता है, जो कि एक संकेत होता है कि आप इसको अटेंड करिए। तो हाँ, गंध जो है वो ये हमें बताती है। तो ये इस तरीके से एलपीजी जो है इसका संरक्षण हमें इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि पेट्रोलियम से बना है, तो पेट्रोलियम तो एक प्राकृतिक ईंधन प्राकृतिक रिसोर्स है और इसको बनने में लगभग 250-300 करोड़ साल लग जाते हैं, तो इतना लंबा समय इसको बनने में लग रहा है, फिर आप खर्च करने में तो कुछ सेकंड्स में खर्च कर देते हैं, चाहे वो पेट्रोल हो चाहे डीजल हो चाहे एलपीजी हो, हमने तो बहुत इस्तेमाल कर लिया पिछले 50 साल से ही, समझ लीजिए हम इसका इस्तेमाल बहुत ही ज्यादा तेजी से बढ़ते ही जा रहा है, लेकिन आगे के बच्चों का क्या होगा, आगे के जनरेशंस का क्या होगा, जो आगे हमारी बहुएं आएंगी उनका क्या होगा, खाना तो सबको हमेशा रोज ही चाहिए, दोनों टाइम चाहिए, तो इसीलिए इसको संरक्षित करके न केवल हम अपना पैसा बचा रहे हैं बल्कि साथ ही जो भविष्य में जो हमारी जनरेशन आ रही है उनके लिए हम कुछ
3: उनकी भी जरूरतें पूरी हो,
4: तो इसीलिए हमें इसका संरक्षण करना जरूरी है क्योंकि अब ये बहुत कम बचा हुआ है पृथ्वी के अंदर, पृथ्वी में अंदर से निकाला जाता है, किसी फैक्ट्री में तो आप बना नहीं सकते, तो ये एक कारण है कि इसका संरक्षण हमें अवश्य करना चाहिए, सबकी जिम्मेदारी है।
3: घर में एलपीजी की खपत कम करने के आसान तरीके क्या है?
4: बहुत ही आसान से तरीके हैं और ये कोई तरीके ऐसे नहीं है कि एलपीजी में ही इस्तेमाल, एलपीजी में कुछ विशेष अलग भी इस्तेमाल होते हैं, लेकिन ये वही सब हैं जो कि शायद मेरी दादी भी जब चूल्हा जलाती थी गाँव में तो वो इस्तेमाल करती थी कि वो जो है लकड़ी कम इस्तेमाल हो या सिगड़ी में कोयला कम इस्तेमाल हो, कहीं ना कहीं वही उसका एक थोड़ा दूसरा रूप एलपीजी में आता है, तो ऐसा कुछ नया नहीं है या कुछ टेक्निकल नहीं है इसके अंदर कि कोई नहीं कर सकता इसको, तो पहला तो क्योंकि हम सिलेंडर इस्तेमाल कर रहे हैं तो सिलेंडर के नीचे अगर आप एक लकड़ी का पटा रख दें है ना, लोग आजकल वो एक मतलब स्टैंड टाइप रखते हैं, तो हम ये कहेंगे कि उसकी जगह अगर आप लकड़ी का पटा रख दें, लकड़ी क्या होती है, ये एक कुचालक है ऊष्मा की, तो आपके जो फर्श होता है वो ठंडा है और खासकर ठंड के दिनों में तो और ठंडा हो जाता है, तो अगर वो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में है सिलेंडर के तो हमारी जो गैस जो है वो थोड़ी नीचे जम जाती है, तो हम ये सोचते हैं कि गैस खत्म हो गई है, लेकिन हो सकता है कि एक दिन की कुछ समय कुछ घंटे तक आप उसको और इस्तेमाल कर सकते हैं, जो वेस्ट चला जाएगा आपका, तो नीचे आप लकड़ी का पटा रख लीजिए तो ज्यादा कन्वीनियंट आपके लिए, मतलब बचत के हिसाब से हो जाएगा। हाँ, कुछ घंटों का उतना भी अगर हम ऐसे 1000 सिलेंडर देखें 100 सिलेंडर देखें तो थोड़ा थोड़ा भी बहुत हो जाता है। और जो दूसरे उपाय मैं आपको बता रही हूँ, सिर्फ इनका अगर आप उपयोग कर लें तो 23% तक आपका ईंधन बच जाएगा, मतलब 23% मतलब लगभग एक हफ्ता हो गया,
3: बिल्कुल
4: एक हफ्ते का सिलेंडर अगर आप गैस की बचत कर रहे हैं तो ऐसे आप सोचिए कितने घर, हमारे प्रधानमंत्री जी की भी योजना जो घर घर तक एलपीजी पहुंचाने की थी, तो एलपीजी हम पहुंचा तो रहे हैं लेकिन अगर कमी हो जाएगी तो क्या करेंगे, 23% हम इसी तरीके से बचा सकते हैं। पहला तो आप देखेंगे कि दो आपके बर्नर होते हैं, छोटा एक बड़ा है, कई बार 4 बर्नर भी होते हैं, तो आप ये देखिए कि अगर आपको जल्दी नहीं है तो आप छोटे बर्नर्स का इस्तेमाल करें, छोटे बर्नर या तो फिर बड़ा बर्नर इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन आप फिर उसको एक बार कोई भी, जैसे अगर प्रेशर कुकर इस्तेमाल कर रहे हैं, हमने देखा स्टीम हो गई है उसके अंदर, काफ़ी स्टीम आ गई है, तो फिर आप जो है उसको धीमी आँच पे कर दें। हम लोग क्या करते हैं, मतलब ये एक बाकी सोचने वाला विषय है कि जब हम रसोई का काम करते हैं तो उसको हम सेकेंडरी मान के साथ साथ दूसरे काम भी करते हैं, तो हमारा प्रेशर कुकर वो करीब 8 बार विसल दे चुका होता है, अगर आप अटेंड करें रसोई को अटेंड करें अपन, तो ये हमें पता चल जाएगा कि अब स्टीम बन गई है, तो आप उसको धीमा कर सकते हैं और धीमा करके फिर थोड़ी देर में तेज कर दें, और फिर ऐसा करके आप 3 बार विसल ले लीजिए तो आपका खाना, बल्कि 2 ही बार में आपका खाना बन जाएगा, तो जो है आपका काफी ज्यादा ईंधन बच जाएगा। पहले तो हमें ये देखना चाहिए कि हमारा बर्तन का साइज क्या है, मतलब एज पर जो रिकमेंडेशन है वो ये बोला जाता है कि 25 सेंटीमीटर व्यास का जो बर्तन होता है वो परफेक्ट होता है। तो आप कैसे देखेंगे ये कि अगर जो लॉ जो है वो बर्तन के ऊपर चढ़ रही है, तले के अलावा ऊपर भी चढ़ रही है, तो वो बर्बादी है,
3: छोटे बर्तन
4: तो वो बर्बादी है, तो उसको या तो धीमा कर दीजिए आप, और थोड़े चौड़े तले के बर्तन इस्तेमाल करेंगे तो नीचे ही सिर्फ उसकी लॉ लगेगी,
3: तली को जो है कवर,
4: तली को कवर करेगा,
3: लॉ जो है कवर करेगा,
4: जी हाँ। तो ये बर्तनों का है, बर्तन पे ही अगर हम बात करें तो आजकल कॉपर प्लेटेड बर्तन आते हैं जो नीचे तली पे रहता है, तो आप पता है कॉपर जो है बहुत अच्छा कंडक्टर है, सुचालक है, हाँ हीट का मतलब, तो वो आप इस्तेमाल करें। उसके अलावा बर्तनों पे ही हम आए तो लिड का इस्तेमाल करें, उस पर ढकना है हमको, आजकल तो बर्तन बहुत अच्छे आ गए हैं, साथ में आपके ढक्कन आते हैं, तो उसी तरह के बर्तन अगर आप इस्तेमाल करें। और दूसरी चीज़ ये है कि प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करें, लेकिन एक घर में शायद तीन तीन चार चार प्रेशर कुकर हैं, वो क्यों हैं? एक बार दाल, एक बार चावल, एक में एक्स्ट्रा भी रखा रहता है कुछ है तो मांझना ना पड़े और तीसरे में कर लिया हमने। वो आपकी बात सही है, लेकिन ये तरीका गलत है, क्योंकि प्रेशर कुकर जो बने थे उसमें सेपरेटर्स भी मिलते थे हमको, है ना? आपने देखो अगर डिब्बे, आपकी मम्मी के समय के अगर आपने देखे हो तो डिब्बे थे उसके अंदर, तो एक में दाल एक में चावल ऐसे करके सब्जी बघार के तीसरे में मम्मी डाल देती थी, तो एक साथ में सारा खाना हमारा बन जाता था। तो एक ही बार का उसमें तो तीन चीजें बन गई ना आपकी, तो जहां तक हो सके आप सेपरेटर्स या वो डिब्बों का इस्तेमाल करें। अगर नहीं है तो आप जाके आप ले सकते हैं, तो आप उनका इस्तेमाल करें। प्रेशर कुकर अच्छे वाले इस्तेमाल करें आप, महंगे नहीं बोल रही हूँ मैं, ISI मार्क के अच्छे प्रेशर कुकर होते हैं उन्हीं का इस्तेमाल करें, तो वो जो है आपके गैस की बचत के भी गारंटी होते हैं। लोकल नया करें, वो थोड़ा आपके लिए दुर्घटना का भी कारण बन जाता है कई बार, तो आप अच्छे वाले जो प्रेशर कुकर है उन्हीं का इस्तेमाल करें। यहाँ पर अगर हम ISI की बात कर रहे हैं तो आपके जो गैस के चूल्हे हैं वो भी जो है आजकल जो हमारा ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी है वो स्टार रेटिंग जो देते हैं, तो उसमें जैसे फ्रिज पे आपने देखा है 5 स्टार है 4 स्टार ऐसे आप लेते हैं, उसी तरह से गैस के चूल्हे भी आते हैं, उनको हम ग्रीन स्टोव्स भी के नाम से भी जानते हैं, तो उसके अंदर 2 स्टार अगर आप लेते हैं तो आप एक लोकल वो बिना स्टार वाला लोगे तो उससे तो आप समझ सकते हो कि ज़्यादा ही गैस बचत हो, क्योंकि उसी तरह से बनाया गया है उसका, उसका बर्नर का डिज़ाइन या सब कुछ इस तरह से बनाया गया है कि वो बचत करेगा आपकी। बर्नर किस तरह से बचाता है, एक तो बर्नर जो ले के आए हैं आप तो उसमें तो वो तो लगा ही हुआ है, लेकिन अब आप कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं उसको। देखिए गैस मैंने क्यों बोला था बड़ा कन्वीनियंट ईंधन है ये, क्योंकि ये जलता है तो ब्लू कलर में फ्लेम आती है, तो ब्लू कलर आप भी जानते हैं ये दर्शाता है कि वो ईंधन पूरी तरह जल गया, जब पूरी तरह जल गया तो पर्यावरण के लिए तो कुछ घातक कुछ बचा ही नहीं। लॉ जो है वो ऑरेंज आ रही है मान लेते हैं, इसका मतलब वो संकेत दे रही है कि ये बर्नर गंदा है,
5: खराब हो गया,
4: दाल गिर जाती है कई बार, दूध गिर जाता है तो उसमें चिपक जाता है। तो हम जो है इस चीज का ध्यान रखें कि अगर रोज नहीं तो कम से कम 3 महीने में एक बार आप जो है उसकी सफाई करें, और सफाई में ये भी ध्यान रखें बर्नर की लाइफ इस चीज पे भी डिपेंड करती है कि कहीं आप गरम गरम बर्नर में पानी तो नहीं डाल रहे, आप समझ सकते हैं ठंडा गरम तो वो टूटने का भी डर रहता है, ब्रेक हो जाता है, तो आप उसकी जगह क्या ठंडा हो गया बर्नर उसको आप खोल लीजिए, खोलने के बाद में एक भगोने में पानी ले लीजिए और उसमें थोड़ा सा आप कपड़े धोने वाला सा पाउडर डालिए, उसमें थोड़ी देर भिगो दीजिए मतलब छोड़ दीजिए उसको, और फिर उसके बाद 15-20 आधा घंटे बाद उसको निकालिए और जो पुराने टूथब्रश होते हैं उनसे अच्छे से साफ कर लीजिए, आप देखिए आपको समझ में आ जाएगा आपका पानी कितना गंदा हो गया, और फिर उसके बाद थोड़ा सा उसको सुखा के और फिर उसको लगा दीजिए तो पूरी तरह से ब्लू कलर की फ्लेम फिर से आने लग जाएगी। तो ये तरीका होता है, और आप ये ध्यान रखिए कि उस पर गिरे नहीं कुछ भी, तो अपने आप ही वो साफ रहेगा। लेकिन आप ये मत करिए कि आपने रोटी बनाई और अब चलो किचन का काम खत्म, अब सफाई कर रहे हैं तो पानी डाल दिया, फिर एक पॉलिथिन में आपने मतलब कोई पाउडर लिया साफ करने वाला और उसको घिसा आपने, तो यहाँ पर क्या होगा वो पाउडर अंदर घुस जाएगा
5: बर्नर के जो सुराख होते हैं,
4: सुराख में अंदर चला जाएगा और वो जम जाएगा तो फिर आपको आगे जाके दिक्कत होगी। तो इसीलिए ये जो तरीका मैंने बताया उस तरीके से आप इसकी सफाई करें। ज्यादा परेशानी हो रही है तो आप जो आते हैं ना कि बर्नर साफ करा लो या ये, उनसे मत कराइए आप।
5: अच्छा।
4: आप जो एजेंसी में भी इसको आप कर सकते हैं कि हमारे बर्नर ठीक से काम नहीं कर रहे, तो सर्विस चार्ज लेंगे आपसे, लेकिन वो साफ
5: घर पे आके करके जाते
4: हैं। तो वो जो रास्ते पे घूम रहे हैं उन लोगों से ना करवाएं। इसके बाद में जो है आपका भोजन आप बना रहे हैं तो उसमें तो पानी का इस्तेमाल होता है, पानी उतना ही डालें जितनी ज़रूरत है ना। आप जो है सिर्फ एक वीडियो देखना है या कुछ उसके चक्कर में थोड़ा सा पानी ज़्यादा डाल देते कि जले नहीं, लेकिन उसको उड़ाने में आप कितना ईंधन जला देते हो, तो इसीलिए हमें उतना ही पानी डालें जितनी ज़रूरत है। और मैं ये कहूँगी कि भोजन वो मतलब एक जरिया है आपके घर के अंदर, माध्यम है जिससे कि घर में संस्कार आते हैं।
5: बिल्कुल
4: सही। भोजन बच्चों के अंदर जा रहा है, पति के अंदर जा रहा है, आपके अंदर जा रहा है, वही आपके विचारों को बनाता है। तो इसीलिए अगर आप उसे मतलब एक प्रकार से सेकेंडरी बला टालने वाला काम करेंगे कि हाँ भोजन बनाना है हमें, तो फिर आप उसके भी असर देख रहे हैं।
5: प्रायोरिटी पर रखना है सबसे पहले।
4: जी जी, प्रायोरिटी हमारा भोजन है। आप चल किससे रहे हैं, भोजन से ही चल रहे हैं ना।
5: सेहत उसी से।
4: मैं तो आपको एक टिप दे देती हूँ यहाँ महिलाओं को, आप मेरे कहने से, मैं काउंसलर भी हूँ, एक साइकोलॉजिस्ट हूँ, तो उस हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ कि विचार क्या काम करते हैं। तो उस रोटी के ऊपर सिर्फ अगर प्रेम लिख लें, उंगली से प्रेम लिख लें, या बच्चे का एग्जाम है 100% लिख लें और बच्चे को सेक के खिला दें प्यार से,
5: अरे
4: है ना, आप देखिए क्या असर होता है। क्योंकि वो विचार जाता है, वो लिखा इज ओके, लेकिन आपका विचार जा रहा है उसके अंदर। हस्बैंड से तो रोज लड़ाई होती है, लेकिन प्रेम लिख के तो देखिए आप।
5: बिल्कुल सही, बिल्कुल।
4: सब मिल बैठ कर एक साथ खाना खाएं, क्यों बार बार जो है रोटी बने, है ना, बार बार तवा गर्म हो,
5: बार बार चाय गरम करते हैं।
4: बिल्कुल
5: बार बार,
4: हाँ, बिल्कुल। हम
5: बहुत
4: तो
5: सारी चीजें हम बार बार करते हैं।
4: अगर हम एक नियम बना दे घर में कि चाय सब साथ में पियेंगे, है ना, या तो एक ही बार बनेगी चाय, हाँ। जी जी, खाना साथ में खाएंगे। अगर दिन में नहीं भी पॉसिबल हो पा रहा है तो डिनर तो साथ में कर लो, रात का खाना तो कर लो साथ में। तो उससे क्या होगा कि परिवार में जो एक लिंक्स खत्म होते जा रहे हैं, भोजन एक बहुत बड़ा जरिया होता है, है ना, तो वो जो एक लिंक्स हैं वो फिर से बनेंगे, रिकनेक्ट होंगे। आप बच्चा क्या कर रहा है उसकी शक्ल से आप पहचान जाओगे। तो आप जो है डाइनिंग टेबल वो जगह है, भोजन वो जगह है, वो चीज है। तो आप जो है सब मिल बैठ के खाना खाएं, बार बार गर्म नहीं करना पड़ेगा, सब मिल बैठ के खाना खाएं, तो प्यार बढ़ेगा आपके घर के अंदर, हमारा एलपीजी बचेगा। और दूसरी चीज, भोजन बना के आप जो है ऐसे बर्तनों में रखें जिससे वो गर्म रहे।
5: बिल्कुल,
4: है ना। तो हम जो है हम वहां पे क्या करते हैं, तुरंत निकाला, अरे ठंडा है तो माइक्रोवेव में रख दिया हमने। अब यहाँ पर मैं बोलूँ कि नहीं बोलूँ, लेकिन माइक्रोवेव इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। जो एलपीजी जैसा तो आपको कोई भी ईंधन नहीं मिलेगा, क्योंकि माइक्रोवेव इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल कर रहा है। इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा महंगी पड़ती है आपको एलपीजी से, अगर आप तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं तो।
5: रेगुलेटर जो होता है और पाइप, ये कितने समय पर चेंज करना चाहिए ताकि गैस का रिसाव भी इनमें से ही होने लगता है और हमें पता नहीं चलता है कि बाज़ वक़्त।
4: इसमें थोड़ा सा मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहती हूँ संरक्षण को लेके, पहले कि जो भी आप दाल चावल वगैरह बना रहे हैं उसको थोड़ा भिगो दें पहले, भिगोने के बाद आप इस्तेमाल करें। नहीं तो एलपीजी इस्तेमाल कर रहे हैं उसको मुलायम करने के लिए, अगर वो पहले से मुलायम होगा तो डायरेक्ट पकना चालू हो जाएगा
5: जल्दी,
4: है ना। तो आप इस चीज को कर सकते हैं। और जहां तक रेगुलेटर की बात है, यहाँ आपके संरक्षण की भी बात आती है यहाँ पे, कि आप जितनी बार भोजन बनाए उतनी बार आप जो नॉब है उसका, आपका सिलेंडर का, उसको भी बंद करें। तो कहीं अनावश्यक अगर कहीं लीकेज हो रहा होगा तो उसको आप बचा सकते हैं। दूसरी चीज़ ये जो आपने पूछा कि कब हमें बदलना चाहिए, तो रेगुलेटर तो बदलने की ज़रूरत होती नहीं है कभी भी। हाँ, अगर टूट जाए, कुछ हो जाए, तो फिर आप कंपनी में जाके, जो भी एजेंसी है वहीं पर जाके आप उसको बदलें। लोकल मार्केट में शायद सस्ता वाला आपको मिल सकता है, लेकिन आप वो ना लें, ये मतलब एक बहुत ही जरूरी चीज है। हो सकता है वो 300 का मिले और ये 150 का मिले, लेकिन वो कभी भी आपके घर में बहुत बड़ा संकट ला सकता है। तो इसीलिए ISI मार्क का एजेंसी से ही लीजिए आप। दूसरी चीज ये है कि जो पाइप जो है उसका, आजकल तो आप बाहर से खरीद ही नहीं सकते, क्योंकि वो आपको एजेंसी ही देती है। और जो पहले आते थे सिर्फ रबर के होते थे, वो तो वो काफ़ी डैमेज हो जाते थे, और मतलब एक प्रकार से जो जहाँ पे चूल्हे के साथ लगते थे वो वहाँ पे खराब होने लग जाते थे, लोग उसे काट काट के छोटा कर देते थे।
5: तो ये रबर के रहते थे,
4: रबर के रहते
5: अभी
4: थे
5: तो
4: वो, अभी वो वायर के साथ है,
5: हाँ,
4: तो इट्स बहुत डिफिकल्ट है उसे काटना भी। लेकिन वो क्या होता है, मैं जो आपको बता रही हूँ कि हो सकता है कई लोग उसमें भी दिमाग लगा लें कि हम उसमें काट देंगे आरी से या कुछ, तो क्या होता है ये करीब 1 मीटर करीब होता है ये, है ना, तो वो एक एक्यूरेट मतलब वो लंबाई लेंथ है उसकी। नहीं तो मैंने आपको शुरू में बताया था कि इसे लिक्विफाइड किया जाता है और ऊपर की सतह पर वो गैस होता है, लेकिन वो जो पाइप है वो अगर सही नहीं है, छोटा है अगर, तो प्रेशर बढ़ जाएगा, तो लिक्विड रूप में बीच में जम जाएगा। और आप खाना बना रहे हैं तो कई बार रोटी बना रहे हैं, 4 बार 5 बार बंद होगा वो, तो आप सोचेंगे पता नहीं क्या हो गया, तो ये कारण आपका पाइप हो सकता है। अभी तो ये बहुत ही अच्छे पाइप्स हैं, तो बहुत जल्दी बदलने की जरूरत नहीं है, करीब आप 6-7 साल भी इसको चला सकते हैं, लेकिन बस इसे काट काट के मत यूज करें।
5: कहीं से चटक गए हैं या चूहे वगैरह ने काट लिया, तो
4: चूहा काटना भी इतना आसान नहीं है इसको, लेकिन फिर भी आपको लग रहा है कि भाई आप क्या बहुत डेंजरस चूहे हैं, तो आप फिर उसको बदलिए बिल्कुल, और लेकिन लेना एजेंसी से ही है।
5: बिल्कुल,
4: आप कहीं लोकल मार्केट से इसको नहीं लेंगे, ये सुरक्षा की दृष्टि से भी है
5: बिल्कुल,
4: और संरक्षण तो है ही, वो बीच में परेशानी भी है आपकी कि गैस बंद हो रही है।
5: बिल्कुल आशा जी, हमारे श्रोता ये भी जानना चाहते हैं कि पीएनजी और एलपीजी में क्या फर्क।
4: जी दानिश जी, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, क्योंकि आज जो है भोपाल में देखिए बहुत सारी जगह थिंक गैस का आपने देखा हो पाइपलाइंस, पाइप दे रहे हैं वो घरों में, मतलब डायरेक्ट सप्लाई है वो। तो पीएनजी का मतलब है पाइपलाइन नेचुरल गैस। मैंने आपको क्या बताया था शुरू में, नेचुरल गैस के बारे में थोड़ा बताया था, तो ये क्योंकि प्राकृतिक गैस ही है तो ये एलपीजी नहीं है, एलपीजी का मुकाबले सुरक्षित है ये। एलपीजी की अगर हम स्मेल आ रही है तो क्या है कि एलपीजी जमीन पे चिपकता है क्योंकि वो हवा से भारी गैस है, तो जमीन पे चिपक गई कोई चीज तो उसको निकालोगे कैसे आप, अनलेस अनटिल आपको ये पता हो कि झाड़ू लगाओ अब, है ना, तो कई बार पता नहीं होता, तो वो चिपकी हुई है, हम सब दरवाजे खिड़की खोल दिए फिर भी टाइम लेगी वो। लेकिन नेचुरल गैस जो है वो हवा से हल्की गैस है, अगर ये लीक होती भी है तो ऊपर जाएगी, तो ऊपर तो उसको बहुत बड़ा माध्यम मिल गया है फैलने का, तो सुरक्षित भी है। मैं तो यही बोलूंगी कि जहां कहीं पे भी जिस भी मोहल्ले में पीएनजी की सप्लाई के लिए अभी आपसे कांटेक्ट किया जा रहा है तो आप जरूर लें उसको, क्योंकि आगे पीएनजी की सप्लाई ज्यादा मात्रा में है, लेकिन हो सकता है एलपीजी की कम हो जाए,
5: और फिर ये सिलेंडर भरवाने का या
4: हाँ वो सब भी खत्म हो जाता है, आपके मीटर लगा रहता है, जैसे आप मोबाइल रिचार्ज करते हैं वैसे आप अपना,
5: ये तो सुविधाजनक हो,
4: बिल्कुल बहुत सुविधाजनक है, इसका कोई वो भी नहीं
5: भारी,
4: है
5: भारी आप... सिलेंडर उठा के अंदर रखना हो फिर बाहर ले जाना,
4: जी जी बहुत सारी चीजें हैं उसको लगा ही नहीं पाते कई लोग,
5: वो अचानक रात में भी सिलेंडर खत्म हो जाता है,
4: बिल्कुल
5: ये सारी दिक्कतों से,
4: तो वेटिंग तो बिल्कुल खत्म हो जाएगी इसके अंदर। ये दोनों में अंतर है, वो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है, ये पाइपलाइन नेचुरल गैस, तो ये काफी कन्वीनियंट है, उससे भी अच्छी है कहना चाहिए, तो इसको जरूर इस्तेमाल करें आप।
5: आशा जी, आजकल एलपीजी का जो सिलेंडर है वो लोग अपने कार में भी इस्तेमाल कर रहे हैं, रिफिल करवाते हैं और कार चलाते हैं उससे, तो ये क्या इस्तेमाल करना सही है?
4: देखिए एलपीजी का इस्तेमाल करना सही तब है जब आप उसे तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि कई हमारी आजकल जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज हैं उन्होंने इस तरह का वो दे दिया है, आपके पास टैंक्स हैं कि जिनमें आप डायरेक्ट एलपीजी फिल करवा सकते हैं आप, अभी तो सीएनजी आ गया है, कंप्रेस नेचुरल गैस है वो, तो आप उसको ले लें तो ज़्यादा अच्छा है, और भी अच्छा है। और अगर लेकिन आप एलपीजी, अगर आपकी गाड़ी है आप एलपीजी उसमें फिल करवा रहे हैं तो आप जो है पेट्रोल पंप्स पे जहाँ पे अवेलेबिलिटी है इसकी वहीं से करें, खुद ट्राई ना करें। और जो आपके घर के अंदर कई लोगों ने घर में चार मतलब कुछ ज्यादा लोग हैं उनके नाम से सिलेंडर्स ले लिए हैं, फिर उनको आप वो ब्लैक वाले सिलेंडर वो जो पाइप जो रहते हैं सिलेंडर्स उसमें आप करते हैं चेंज करते हैं आप, तो ये बहुत ज्यादा जोखिम भरी चीज है और इसमें आप कई घर बर्बाद हो चुके हैं, जल चुके हैं, तो ये कभी ना करें। थोड़े से पैसे बच जरूर जाएंगे आपके, लेकिन जो तरीका यही है कि जो आप पेट्रोल पंप्स पे या इसके सिलेंडर जो मिलते हैं वही इस्तेमाल करें। तो आजकल तो सीएनजी का समय है तो आप सीएनजी का इस्तेमाल करें, तो कंप्रेस नेचुरल गैस है, अगेन नेचुरल गैस है, प्राकृतिक गैस है आप समझ सकते हैं, तो आपको वो ज़्यादा सुविधाजनक है, सुरक्षित है, और दूसरी चीज़ यह है कि अवेलेबिलिटी ज़्यादा है।
5: अगर गैस लीक हो जाए तो तुरंत क्या करना चाहिए?
4: पीजी अगर हो जाती है तो तुरंत जो है हमें सबसे पहले तो दरवाजे खिड़की खोलने चाहिए क्योंकि उसे बाहर करना बहुत जरूरी है। अच्छा एक चीज और भी मैं यहाँ पर ऐड करना चाहती हूँ महिलाओं के लिए कि अगर एलपीजी जो है जहाँ आप इस्तेमाल कर रहे हो, रसोई जो है हमारा वो थोड़ा खुला हुआ होना चाहिए, पूरा बंद कमरे के अंदर आप एलपीजी मत इस्तेमाल करें। क्यों? क्योंकि किसी भी ईंधन को जलने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, अगर उसको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल रही है तो वो कहीं ना कहीं इनकम्प्लीट जलेगा और जो भी कुछ विषैली गैस बनेंगी वो आप ही के अंदर जाएंगी क्योंकि आप वहां ज्यादा समय हैं, तो आपको चक्कर आने लग गया या आपको उल्टी जैसा होने लगा तो इसका मतलब है वो बिना किसी कारण के अगर हो रहा है ऐसा, और जब आप खाना बना रही है तभी हो रहा है तो हो सकता है कि ये कारण हो, तो हम मैं ये कहूंगी तुरंत तुरंत आपको पूरे दरवाजे खिड़की खोल देने हैं। और दूसरी चीज जो सिलेंडर है उसको तुरंत निकाल लीजिए, रेगुलेटर निकाल दीजिए, उसको तुरंत बाहर करिए, उसमें सफेद कैप रहता है, सफेद कैप लगाइए और उसे बाहर करिए। कभी भी बिना सफेद कैप जो रहता है उसके बिना सिलेंडर को रखना ही नहीं है आपके घर में, अगर खाली भी सिलेंडर है तो। और अगर आपको लग रहा है कि अभी भी बहुत तेज बदबू आ रही है तो आप जोर जोर से फर्श पे झाड़ू लगाइए, तो क्योंकि हवा से भारी गैस है जमीन पे चिपक गई है तो झाड़ू लगाएंगे तो ये बाहर जाती है। अगर एलपीजी लीकेज हो रहा है तो ये इसका तरीका है। लेकिन अगर आग लग गई, मतलब इसका हम सुरक्षा की अगर हम बात करें, तो मैं एक दो चीज जरूर ऐड करना चाहूंगी कि जो हमारा रसोई होता है उसके अंदर देखा होगा आपने, महिलाएं जो हैं वो कागज जो रहता, पेपर जो रहता है उसे काट काट के लगाती हैं शेल्फ्स में, तो ना करें वो, क्योंकि वो भी एक माध्यम बन जाएगा और ज्यादा फैलाने का। जहाँ सिलेंडर रखा उसके आसपास कोई ज्वलनशील चीज ना रखें। दूसरी चीज ये है कि आप गैस आपकी ऑन है, आप खाना बना रहे हैं, आपने कॉकरोच देखा और वहीं पर आपने उसे मारना चालू कर दिया हीट वगैरह से,
5: हाँ, उसके तो अंदर भी
4: वो भी पेट्रोलियम ही है,
5: फ्लेमेबल, हाँ।
4: फ्लेमेबल है वो, तो आप जो है उसमें भयंकर आग लग सकती है। एक और चीज है, कई बार महिलाएं जहाँ गैस जल रही है उसी के पास मोबाइल रख के और खाना बनाती हैं, तो ये बहुत रिस्की है।
5: वीडियोस देख रहे हैं, YouTube
4: वीडियोस देख रहे हैं, हाँ। तो उसके अंदर जो एक स्टैटिक चार्ज है, बाई चांस आपने ध्यान नहीं दिया कहीं गैस लीक हो रही है, कई बार गैस बंद हो जाती है, आपका ध्यान ही
5: ध्यान
4: नहीं
5: है,
4: हाँ। तो आप जो हैं इस तरह के जो रिस्क हैं वो ना लें, मोबाइल आप दूर रखें। दूसरी चीज, आपके मोबाइल के ऊपर उतने कीटाणु होते हैं जितने टॉयलेट सीट के ऊपर हैं।
5: बिल्कुल,
4: आप बार बार उसको पकड़ रही हैं, फिर खाना भी बना रही हैं।
5: बिल्कुल,
4: तो आप समझ सकते हैं कि क्या होगा उसका, ये तो अनहाइजीनिक प्रैक्टिस है।
5: बिल्कुल,
4: अगर आग लग जाती है, सपोज कहीं इतने बुरा हो गया कि आग ही लग गई, दुर्घटना हो गई, तो आपको जो है तुरंत सबसे पहले तो ये आपको ध्यान रखना है, क्या आप उसे अटेंड कर सकते हो, क्योंकि अगर आप अटेंड नहीं कर सकते तो बाहर निकल लो, जान ज्यादा जरूरी है, सबको घर से बाहर कर दो। क्योंकि अगर आग लग गई है और सिलेंडर फट गया, क्योंकि उसमें प्रेशर इतना बढ़ जाएगा आग के कारण कि वो फट जाता है, अगर वो फट गया तो जो गैस जो उसमें तरल रूप में है वो पूरी दीवारों पे चिपकेगी और हर दीवार पे विद इन सेकंड आग लग जाएगी, और इलेक्ट्रिसिटी उसमें लाइन में आ गई वो आग, तो इलेक्ट्रिसिटी तो तुरंत बहुत आराम से पूरे घर के अंदर आग को फैला देगी। तो इसीलिए हमें तुरंत ये देखना है, और अगर आपको लग रहा है कि आप बच कर सकते हो, अभी ज्यादा नहीं फैला हुआ है, तो उसके ऊपर तुरंत कोई मोटा कपड़ा गीला कर सकते हो तो ठीक है, नहीं तो कंबल है या कोई ऐसी मोटी दरी है तो उसके ऊपर लगा के, आपने निकाल लिया रेगुलेटर, उसके ऊपर डाला आपने और उसको जो है अच्छे से कवर कर दें, या फिर कोई भगोना है जैसे प्लास्टिक का नहीं बोल रही हूँ वो उसके ऊपर रख दें, ऑक्सीजन से उसकी सप्लाई जो है कट कर दें, तो आग बुझ जाएगी। सप्लाई तो वहीं से ही है ना, सिलेंडर से ही है, तो इस चीज का उसका तरीका भी होता है, वो हम अभी आपको रेडियो पे तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन उसके कुछ मॉक ड्रिल्स हम लोग करवाते हैं जिससे कि महिला को ये चीज पता चल जाती है कि इसको हमें कैसे बचत करना, सुरक्षित रखना है।
5: आशा जी, अंत में हमारे श्रोताओं के लिए आपका एक संदेश एलपीजी संरक्षण और सुरक्षा को लेकर।
4: जी देखिए, हम लोग बहुत ज्यादा अपने देश के लिए, लोगों के लिए, अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ करते हैं ना, सोचते तो हैं बहुत ज्यादा हम, तो आज ये वो मौका है हमारे पास में एलपीजी के रूप में, कि अगर आप इसको संरक्षित करते हैं तो कि आगे आने वाली पीढ़ी आपको बहुत धन्यवाद देगी और आपका एक रिश्ता जो है उनके साथ बहुत अच्छा होगा। तो देश, समाज और परिवार तीनों के लिए इसका संरक्षण बहुत जरूरी है।
5: तो दोस्तों, आज हमने जाना कैसे हम एलपीजी की बचत कर सकते हैं और अपने घर को सुरक्षित भी बना सकते हैं। धन्यवाद आशा जी, इतने महत्वपूर्ण सुझाव देने के लिए।
4: आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे ये मौका दिया, और सभी श्रोताओं का धन्यवाद जो मुझे सुन रहे हैं।
5: दोस्तों, याद रखिए, सावधानी ही सुरक्षा है और बचत ही समझदारी। श्रोताओं, ये था कार्यक्रम आमने सामने। इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन संतोष कुमार वर्मा, परिकल्पना अदिति गौड़, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी, समन्वय संयोग सतीश बौथम, मैं था दानिश। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर।
2: आमने सामने।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आमने सामने, यह है 90.8 मेगाहर्ट्ज़ का प्रसारण, देश का चैनल देश के लिए।
6: 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद पर मैं हूँ कविता कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। रेडियो आजाद हिंद के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार।
7: ये मेरा इंडिया।
6: देश के अमर शहीदों को मेरा नमन है जिन्होंने आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। जय हिंद। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
8: छेड़ देवे।
9: नमस्कार, मैं हूँ रेखा भारद्वाज
8: ससुराल गेंदा
9: और आप मुझे सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद पे, देश का चैनल देश के लिए।
10: नमस्कार, मैं हूँ भावना सुमाया और आप सुन रहे हो रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
11: दावा है हर रान हमारा, सारा हिंदुस्तान हमारा।

0: नमस्कार, मैं हूं अभिजीत दा, अभिजीत भट्टाचार्य, और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर। देश को आजादी दिलाने वाले हमारे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को मेरा शत शत नमन है, जिन्होंने भारत माता को अंग्रेजों के चंगुल से आजाद कराया। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं रेडियो आजाद हिंद के प्रसारण के साथ, देश का चैनल देश के लिए। आनंद लीजिए कार्यक्रम वागर्ध का।

0: आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं कलाम जनाब वसीम बरेलवी का।
1: ओ दुनिया भर की नदियां जैसे मेरे साथ बहें।
0: तो पेश खिदमत है कार्यक्रम वागर्त।
2: इस्तकबाल कीजिए, इस्तकबाल कीजिए प्रोफेसर वसीम बरेलवी।
3: कल एक गांव की बुढ़िया मेरी कार से जब टकराई, कल एक गांव की बुढ़िया मेरी कार से जब टकराई, बोली तोहरा दोष नहीं है, हम ही को दिखत नहीं, हम ही को दिखत नहीं। सरहद पर हिफाजत करने वाले जवान, उनकी नजर करता हूं, जो मैंने हिंदी मंच के ऊपर भी पढ़ा है, उर्दू मंच के ऊपर भी पढ़ा है, कि खून में डूबे। सवाल यह था कि जब उस जमाने में फौजी जाते थे तो हमारे नौजवानों को हार पहनाया करते थे, सरहद पर देश की हिफाजत के लिए जा रहे हैं। मेरे जहन में ख्याल आया कि भाई ये तोहफा तो नौजवानों की तरफ से जवानों के लिए हो गया जो सरहद पर जा रहे हैं, जवानों की तरफ से नौजवानों के लिए क्या हो सकता है? तो मुझे तो उसका जवाब नहीं मिला। एक शहीद फौजी की आत्मा मेरी चार पंक्तियों में ढल गई, चार मिसरों में ढल गई, जो मैंने उसी भाषा में लिखा है जिसका मैं बता रहा था। कि खून में डूबे ये इतिहास के पन्ने एक अमानत है। आप शायरी वाले लोग हैं, मुलाहिज़ा कीजिए, खून में डूबे ये इतिहास के पन्ने एक अमानत है। जाओ देखिए लफ्जों का इस्तेमाल करो जिस चीज के लिए ये प्रोग्राम किया गया। मैं बताऊंगा कि हिंदी का लफ्ज किस तरीके से उर्दू बन रहा है, कि खून में डूबे ये इतिहास के पन्ने एक अमानत हैं। जाओ इन पर नाश करो, बलिदान की इन पर छाया है। जाओ इन पर नाश करो, बलिदान की इन पर छाया है, आने वाली नस्ल के ख्वाबों, लेकिन इतना याद रहे हमने तुम्हारे कल की खातिर अपना आज गंवाया। खून में डूबे ये इतिहास के पन्ने एक अमानत है। जाओ इन पर नाश करो, बलिदान की इन पर छाया है, आने वाली नस्ल के ख्वाबों, लेकिन इतना याद रहे हमने तुम्हारे कल की खातिर अपना आज गवाया। और इसी महफिल की नजर करता हूँ जो चार पंक्तियां भी, चार मिसरे भी, मुलाहिज़ा फरमाइए, पेश करता हूँ कि मोहब्बत इब्तिदा मेरी, आखिरी मिसर पर आप हजरात की तवज्जो चाहूँगा, मुलाहिज़ा फरमाइए, कि मोहब्बत इब्तिदा मेरी, मोहब्बत इंतहा मेरी, मोहब्बत इब्तिदा मेरी, मोहब्बत इंतहा मेरी, मैं हिंदुस्तान हूँ सबसे निराली है अदा मेरी, मैं हिंदुस्तान हूँ सबसे निराली है अदा मेरी, सुनी जाएगी सदियों तक, सुनी जाती है सदियों से, सुनी जाएगी सदियों तक, हजारों बोलियों से मिलके बनती है सदा मेरी, सुनी जाती है सदियों से, सुनी जाएगी सदियों तक, हजारों बोलियों से मिलके बनती है सदा मेरी। भात चढ़े, भात चढ़े चूल्हे पे, द्वार हुई खट खट, भात चढ़े चूल्हे पे, द्वार हुई खट खट, अरे जुल्मी ने घर भी समझ लिया पन घट, भात चढ़े चूल्हे पे, द्वार हुई खट खट, जुल्मी ने घर भी समझ लिया पन घट, भात चढ़े चूल्हे पे, द्वार हुई खट खट, के आंगन की दूरी समंदर लागे। लुत्फ लीजिए शायरी का, मैंने गीत में फित्र पसंदी पैदा करने की कोशिश की है, गीत सिर्फ तास्तुराती तर्जुमान होता था, तास्तुर का तर्जुमान, मैंने उसको फिक्र से जोड़ने की कोशिश, इतनी सारी मेरी खाता रहना कोशिश है। जुल्मी ने घर भी समझ लिया पन घट, भात चढ़े चूल्हे पे, द्वार हुई खट खट।

हंडिया में खचपच, हंडिया में खचपच तो मन में बड़ा संकट, भात चढ़े झूले द्वार हुई खटखट, जुलमी ने घर भी समझ लिया पनगट, भात चढ़े झूले पे द्वार हुई खटखट। और बन के प्यार कहे जा जा, प्यार कहे जा जा, लाज कहे ना जा। अब मिसरा दे रहा हूं,

0: प्यार कहे जा जा लाज कहे ना जा, छोटी सी कुटिया बड़ी मर्यादा, लक्ष्मण की रेखा भई, लक्ष्मण की रेखा भई बाबुल की चौखट, भात करे चूल्हे पे द्वार हुई खट, चुल्ही ने घर भात चढ़े चूल्हे पे द्वार हुई खट खट। मैं आपको गजल के माहौल से निकाल के लाने की कोशिश कर रहा हूँ। आइए गीत को रियल सेंस के अंदर पेश करता हूँ। आइए ये बंद बतर खास पेश करता हूँ।
1: घर की रसोई पे ममता का बहरा, घर की रसोई पे ममता का बहरा, चूल्हे में रखा है सपना सुनहरा, घर की रसोई पे ममता का बहरा, चूल्हे में रखा है सपना सुनहरा, बाहर से अंदर तक, बाहर से अंदर तक आहटी आहट, भात चढ़े चूल्हे पे द्वार हुई,
0: चूक गए आप, ये मिथरा ही आप चूक गए बिल्कुल।
1: बाहर से अंदर तक आहटी आहट, भात चढ़े चूल्हे पे द्वार हुई खट, जुल्मी ने घर भी समझ लिया पलघट, भात चढ़े चूल्हे।
0: मिश्रा कानों से नहीं सुन रहे, दिल से उठा रहे हैं। मिश्रा पेश करता हूं। सरपरस्ती भी कही जाए तो बस नाम की है, आसमां तेरी बुलंदी मेरे किस काम की है। सरपरस्ती भी कही जाए तो बस नाम की है, आसमां तेरी बुलंदी मेरे किस काम की है, आसमां तेरी बुलंदी मेरे किस काम की है, मेरी तेरी बुलंदी मेरे किस काम की है, कल खुदा जाने यहाँ किसका बसेरा होगा, कल खुदा जाने यहाँ किसका बसेरा होगा, आज इस घर पे जो तख्ती है मेरे नाम की है, कल खुदा जाने यहाँ किसका बसेरा होगा, आज इस घर पे जो तख्ती है। बच्चों ले जाओ ये शेर अपने साथ, इंशाल्लाह जिंदगी भर काम, अगर इसको गले में बांध लिया तो जिंदगी में कभी कोई शिकस्त तुम्हारा सामना नहीं आएगी, कभी जिंदगी किसी शोबे में शिकस्त का सामना नहीं करना पड़ेगा। पेश करता हूँ कि आज इस घर पे जो तख्ती, कल खुदा जाने यहाँ किसका बसेरा होगा, आज इस घर पे जो तख्ती है मेरे नाम की है, अपने दुश्मन से हजरत, अपने दुश्मन से ना आया कभी बदला लेना, अपने दुश्मन से ना आया कभी बदला लेना, अरे मुझ में ये ऐसी कमी है जो बड़े काम की है, अपने दुश्मन से ना आया कभी बदला लेना, मुझ में ये ऐसी कमी है। बिल्कुल मैं शेर सुना रहा हूँ दोस्तों। तुझे सोचे तो फिर सोते कहाँ, बिल्कुल ताज़ा गज़ल सुना रहा हूँ तुझको। तुझे सोचे तो फिर सोते कहाँ है, अरे हम इतने बेअदब होते कहाँ है, हम इतने बेअदब। देखिए मजमून आ रहा है, मजमून। तुझे सोचे तो फिर सोते कहाँ हैं, हम इतने बेअदब होते कहाँ हैं। बच्चों सुनो, बयां करते भी हैं तो दिल की हालत, सुने भोपाल शेख उनके बताए मुझे, बयां करते भी हैं तो दिल की हालत, अरे ये आंसू आंख के होते कहां है।

डाला पड़ते हैं, हिम्मत से अपने सफर में रास्ते होते कहाँ हैं, कि सफर में रास्ते होते कहाँ हैं, सफर में रास्ते होते तेरा होने का वादा कैसे कर ले। यार सुने सुनो तो हर सुनो वही से मुलाजा फरमाइए, सफर में रास्ते

वो देखना पड़ेगा जो देखा न जाएगा। साधु को मूंद लेने से खतरा न जाएगा, वो देखना पड़ेगा जो देखा न जाएगा। बड़ी मुश्किल से बचा रखा। सुने गजल वाले सुने, मैंने खुद को बड़ी मुश्किल से बचा रखा है। अरे वरना दुनिया तेरा हो जाने में क्या रखा है। मैंने खुद को बड़ी मुश्किल से बचा रखा है, वरना दुनिया तेरा हो जाने में क्या रखा है। वरना दुनिया तेरा हो जाने में क्या रखा है। वरना दुनिया तेरा हो जाने में क्या रखा है। दिल किसी का भी हो, दिल किसी का भी हो, दुखने से बचा रखा है। दिल किसी का भी हो, दुखने से बचा रखा है। दर्द का नाम मोहब्बत ने दबा रखा है। दर्द का नाम मोहब्बत ने दबा रखा है। उससे कहना जो कहे प्यार में क्या रखा है। उससे कहना जो कहे प्यार में क्या रखा है। सामने मीर का दीवान खुला रखा है। उससे कहना जो कहे प्यार में क्या रखा है। सामने मीर का दीवान खुला रखा है। आप सामने मीर का दीवान खुला रखा है। आप कुछ देर के साथी हैं, हमेशा के नहीं। आप कुछ देर के साथी हैं, हमेशा के नहीं। मैंने पहले ही से अंदाजा लगा रखा है। मैंने पहले ही से अंदाजा लगा रखा। मैंने पहले ही से अंदाजा लगा रखा। लौट जाए न कहीं तेरी जसारत पे वही। ये लफ्ज पकड़ेंगे यहाँ पर, पहले गजल मौजूद है कि लौट जाए न कहीं तेरी जसारत पे वही, तूने जिसके लिए दरवाजा खुला रखा। या पहले पूरे शेर का हक अदा कर दो, इंसाफ करो शेर का, तो आगे बढ़ूंगा। लौट जाए न कहीं तेरी जसारत पे वही, तूने जिसके लिए दरवाजा खुला रखा है। मेरी ही सुनते हैं अपनी नहीं कहता कोई। मेरी ही सुनते हैं अपनी नहीं कहता कोई। तुमने किन लोगों को महफिल में बुला रखा। मेरी ही सुनते हैं अपनी नहीं कहता कोई। तुमने किन लोगों को महफिल में बुला रखा है। और ये आखिरी शेर पढ़ूंगा, उसके बाद फिर आपके हुक्म की तामील करूंगा। मुलायदा फरमाइए, ये शेर अपने साथ ले जाइए। पेश करता हूँ कि तुमने किन लोगों को महफिल में बुला रखा है। जाके लौटा है कहीं कोई हवा का झोंका। पहले ये मिसरा तो लौटा दीजिए, फिर अगला मिसरा पढ़ता हूँ। तुमने किस जाके लौटा है कहीं कोई हवा का झोंका। तुमने क्या सोच के दरवाजा खुला रखा है। जाके लौटा है कहीं कोई हवा का झोंका। तुमने क्या सोच के दरवाजा खुला रखा है। तुमने आइए आखिर में मैं ये गीत पेश करता हूँ। ये नज़र मोहब्बत की नज़र है, चाहे वो रूहानी एतबार से हो और चाहे वो रूहानी एतबार से हो। ये पूरा गीत एक नज़र के ऊपर है। और पेश करूँ, ये नज़र औरत की ज़िंदगी में उसका सब कुछ बदल देती है। और फकीर की नज़र पड़ जाती है तो उसका मुरीद पूरी ज़िंदगी जो है उसके पीछे पीछे घूमता है। तो इसका आध्यात्मिक पहलू है और रूहानी पहलू, रूहानी भी है और रूहानी भी है। सुने गौर से सुनिए ये गीत, मेरे अहम गीतों में से एक नज़र। तेरी तेरी एक नज़र ही मुझको धूप से कर गई छाओ। ये पंक्ति लौटा दीजिए मुझे। धूप से कर गई छाओ,

सजन ये बात किसे बतलाऊं, बस सुने तेरी तेरी एक नजर ही मुझको धूप से कर गई छाऊं, सजन ये बात किसे बतलाऊं, सजन ये बात किसे बतलाऊं। अब बंद मुलाजा फरमाइए, मैं अहले अदब को दावत दे रहा हूँ कि पूरी जिम्मेदारियों के साथ मुलाजा फरमाएं कि मैंने अगर कोई कोशिश की है। बस सुनिए कि तन की तपती रेत जैसे फुहार गिरे शबनम की, जब मोहब्बत की पहली नजर आती है जिंदगी में, तन की तपती रेत जैसे फुहार गिरे शबनम की, ओ कैसी लचाही छुअन पापी तेरे मौसम की, कैसी लचाही छुअन पापी तेरे मौसम की। मिसरा देता हूं कि बदरा बदरा से सजाऊं, बदरा बदरा से सजाऊं धूप धूप शर्माऊं, सजन ये बात किसे बतलाऊं, बदरा बदरा से सजाऊं धूप धूप शर्माऊं, सजन ये बात किसे बतलाऊं। अब ये बंद आ रहा है, अगर आपने गजल की तरह दाद नहीं दी तो अगला बंद ही नहीं पढ़ूंगा मैं। आइए मुलाजा फरमाइए, जैसे आपने गजल सुनी है, देखिए ये कोशिश भी मुलाजा की। बदरा बदरा से सजाऊं धूप धूप शर्माऊं, सजन ये बात किसे बतलाऊं, कि कल तक जिस दर्पण में मैं थी और मैं

सुने मित्रा कि मेरे अंदर चोर छुपा है। जिंदगी की बहुत बड़ी सच्चाई बता रहा हूं कि मेरे अंदर चोर छुपा है, जाने कब लुट जाऊं। ये बात से

मुझको धूप से कर गई छाँव। सजन ये बात किसे बतलाऊं, आपकी बेपनाह मोहब्बतों की नजर चल रहा हूँ, ये आखिरी बार बेपनाह मोहब्बतों की नजर है। बहुत मुझे आपने जज्बाती कर दिया, बहुत आपने मोहब्बतें दी, बहुत नवाजा, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। पता नहीं फिर मुलाकात हो या ना हो, ये बंद मेरा अपने साथ ले जाइए। पेश करता हूँ कि रोज के क्या होता है, क्या तब्दीली आती है, कितनी बड़ी तब्दीली आती है वो बताता हूँ। कि रोज के देखे भाले मंजर आज कुछ और कहे हैं। सुने गजल वाले,

से बदलो तेरी ये नजर ही दूर से कर। बहुत शुक्रिया, बहुत।

गंदे हाथों से कभी खाना मत खाना, कीटाणु पेट में चले जाएंगे और तुम बीमार हो जाओगे। इसीलिए तो खाना बनाने के पहले और खाने से पहले हाथों को धोना जरूरी है। खुलकर

शौच के बाद हाथों को साबुन से ही धोना। नाखूनों को साफ रखो, तुम बीमार नहीं होगे। पीने का पानी और खाने का सामान अच्छी तरह से ढककर रखना बहुत जरूरी है।

पानी अनमोल है, यह सबको जीवन देता है। पानी साफ ना हो तो यह बीमार कर देता है। इसीलिए परिवार को स्वस्थ रखने के लिए पीने का पानी साफ रखना बहुत जरूरी है।

0: दोपहिया वाहन की सवारी करते समय हेलमेट जरूर पहने। रेडियो आजाद हिंद द्वारा जनहित में जारी
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण, देश का चैनल देश के लिए। प्रस्तुत है विशेष कार्यक्रम।

0: आज के इस खास कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं वक्तव्य वरिष्ठ साहित्यकार अशोक जमनानी का।
1: हम अपनी संस्कृति का मूल्य नहीं पहचानते, नर्मदा आपसे कहती है इसे पहचानो, ये बहुत कीमती है। वो जो भीतर है, वो जो बाहर है, वो जो मूर्त है, वो जो अमूर्त है, इसे पहचान सको तो नर्मदा का अर्थ ही होता है सुख देने वाली, भारत का अर्थ ही होता है प्रकाशित करने वाला, तो ये प्रकाश तुम्हें बहुत सुख देगा। नर्मदा का यही संदेश है और यही असल में नर्मदा का सांस्कृतिक परिदृश्य है।
0: ये वक्तव्य हुआ मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय में आयोजित राष्ट्रीय विमर्श में।

0: अशोक जमनानी जी, आपसे आग्रह करूंगी कृपया आए, नर्मदा एक सांस्कृतिक परिदृश्य के रूप में इस पर प्रकाश डालें।
1: नमस्कार, नर्मदे हर। मुझे लगता है कि मैं बहुत थोड़ी सी बातें कर पाऊंगा, क्योंकि नर्मदा के सांस्कृतिक परिदृश्य पर बोलना हो तो हम बहुत पीछे जाना होता है, और इतनी बातें होती हैं कहने के लिए कि शायद एक सत्र के आप पूरे एक वर्ष में भी कहते रहें तो वे ख़त्म नहीं होती। बहुत सारे युवा यहाँ बैठे हैं, और साथ में मुझे एक और आदेश भी दे दिया गया था कि अपनी कविता भी सुनानी है, तो 10-12 मिनट में अपनी बात कह करके, 3 मिनट में अपनी कविता सुना करके कोशिश करूँगा कि जो कहना चाहता हूँ उसके कुछ सूत्र आपके समक्ष रख सकूँ। जब हम सांस्कृतिक परिदृश्य की बात करते हैं तो एक बात, चूँकि बहुत सारे युवा भी आए हैं, तो एक बात ठीक से समझनी होगी कि हम भारत में संस्कृति की इतनी बात क्यों करते हैं। भारत में हम संस्कृति की बात इसलिए इतनी करते हैं क्योंकि संस्कृति कल्चर नहीं है, संस्कृति कल्चर से कुछ अलग चीज़ है। हम उसे उसके पर्यायवाची रूप में या उसके अंग्रेजी अर्थ में कल्चर कह देते हैं, लेकिन संस्कृति कल्चर नहीं है। ये कल्चर से कैसे अलग है? पश्चिम की जो समाजशास्त्रीय विचारधाराएं, वो दो बातें कहती हैं, एक सिविलाइजेशन यानी सभ्यता और एक कल्चर यानी संस्कृति। वहाँ होता यह है कि पहले सिविलाइजेशन हुआ पश्चिम में, फिर कल्चर आया। हमारी सोच थोड़ी अलग है, उसका एक उदाहरण आपके सामने रख रहा हूँ। मैं अक्सर ये बात जब संस्कृति पर बात कहनी होती है, या भोपाल के पास में एक जगह है भीमबेटका, आप सबने बहुत लोगों ने देखा सुना होगा उसके बारे में। भीमबेटका में हजारों साल पुराने चित्र हैं। जिन्होंने इसकी खोज की उनका नाम वाकणकर जी था। वाकणकर जी आज से कई दशक पहले उज्जैन विश्वविद्यालय में नौकरी किया करते थे, और वे उज्जैन से, तब यहाँ भोपाल के आसपास ही मंडीदीप भी नहीं बना था और बहुत घने जंगल थे, थोड़ा सा बस भोपाल से आगे बढ़ते थे और बहुत घने जंगल थे, वहाँ भीमबेटका है अब्दुल्लागंज से थोड़ा सा आगे जाते हैं तो वे हर शुक्रवार को अपनी ड्यूटी पूरी करके रात में यहाँ आ जाते थे। रात भर उस घने जंगल में जहाँ बहुत खतरनाक जीव जंतु हैं वहाँ अकेले रहा करते थे। शनिवार की सुबह उठ करके सारे डॉक्यूमेंटेशन, जो आज हम बात करें, सारा डॉक्यूमेंटेशन किया करते थे, फोटोग्राफ लिया करते थे, चित्र बनाया करते थे, और सारी सूचना एकत्रित करके लिखते जाते थे, अपना रिसर्च कंप्लीट कर रहे थे। फिर शनिवार को वही वैसी तरह से रात गुजारते थे, और इतवार को उठ करके काम करते थे, फिर रविवार की रात को लौट कर उज्जैन चले जाते थे। और आप सबको जानकर ये आश्चर्य होगा कि ये काम उन्होंने लगभग 14-15 साल तक किया। 14-15 साल तक लोग उनसे पूछते थे कि आखिर आप ये ढूंढ क्या रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं इन चित्रों का इतिहास ढूंढ रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि चित्रों का, तो उस समय ये जो कार्बन डेटिंग पद्धति है ये विदेशों में थी, हमारे यानी अब तो बहुत कार्बन डेटिंग आ जाने से बहुत आसान हो गया कि हम पता लगा सकते हैं कि कौन सी चीज़ कितनी पुरानी है। तो उन्होंने कहा मैं ये जानना चाहता हूँ और मैं दुनिया को बताना चाहता हूँ कि ये चित्र जो हैं 5,000 साल से ज़्यादा पुराने हैं। तो सबने उनसे कहा कि इससे क्या क्या सिद्ध होगा, मान लीजिए ये सिद्ध भी हो गया कि ये 5,000 साल पुराने हैं, और अब तो ये सिद्ध हो गया कि वे चित्र 10,000 साल से भी ज़्यादा पुराने हैं, उसमें कुछ चित्र तो ऐसे भी हैं। तो उन्होंने कहा कि इससे क्या सिद्ध हो जाएगा कि ये चित्र 5,000 साल पुराने हैं या 4,000 साल पुराने हैं। तो उन्होंने जो जवाब दिया, वो जो मैं बात आपसे कहना चाहता हूँ, उस बात की घोषणा है। उन्होंने कहा कि मैं ये सिद्ध करना चाहता हूँ कि जब मनुष्य ने खाना बनाना नहीं सीखा था, जब मनुष्य ने घर बनाना नहीं सीखा था, जब मनुष्य ने कपड़े पहनना नहीं सीखा था, तब मनुष्य ने पेंटिंग करना सीख लिया था, क्योंकि ये देश वैसा देश है कि जहाँ सिविलाइजेशन से पहले कल्चर आया है, सभ्यता से पहले संस्कृति आई है। तो उन्होंने, कितनी अद्भुत बात है, उन्होंने, और आखिर में ये सिद्ध हुआ कि जब मनुष्य ने घर बनाना नहीं सीखा था तब वो पेंटिंग करना सीख गया था, गाना गाना सीख गया था। इस देश का जो विचार है, जिसे हम भारत कहते हैं, भारत ये कहता है कि सिविलाइजेशन के आने से पहले कल्चर आता है, सभ्यता के आने से पहले संस्कृति आती है। और जब हम नर्मदा की संस्कृति की बात करते हैं तो अजीब बात यह है कि नर्मदा जब इस धरती पर थी तब अफ्रीका से कुछ टुकड़े टूट रहे थे, और इस धरती पर महाद्वीपों का निर्माण हो रहा था। अफ्रीका का एक टुकड़ा टूटा, वो आकर वहाँ जुड़ गया जहाँ नर्मदा बह रही थी, और उस समय उस टुकड़े के आकर के भारत से जुड़ने से इतनी जोर का घर्षण हुआ कि एक जगह धरती ऊपर उठ गई और जहां धरती ऊपर उठ गई वहां आज हिमालय है। तो नर्मदा तब भी थी जब इस दुनिया में महाद्वीप बन रहे थे इस धरती पर, और नर्मदा ने हिमालय को जन्म लेते हुए देखा है। सोचिए नर्मदा कितनी पुरानी है। और नर्मदा की संस्कृति की बात करेंगे तो हमें कहाँ जाना होगा, करोड़ों साल पीछे जाना होगा जहाँ से हम नर्मदा की संस्कृति की शुरुआत करेंगे। तो मैं 15 मिनट में आपको क्या बताऊँगा कि हम नर्मदा के समय मैं आपके सामने क्या सांस्कृतिक परिदृश्य रखूँगा। दो बातें कहनी हैं, उसके बाद कविता सुना करके समाप्त कर दूंगा। संस्कृति का अर्थ भारत में भिन्न इस तरह से है। कई बार पुरानी चीज़ों को लोग संस्कृति समझ लेते हैं। भारत ने इसे एक नया अर्थ दिया। भारत ने कहा जो अतीत में है वह सब संस्कृति नहीं है। संस्कृति वह है जो अतीत से आती है, वर्तमान में होती है और भविष्य को जाती है, कि निरंतर निरंतर अपने आप में से एक छन्नी लगाती रहती है। लगता है कि अभी काल इस काल में अब इसकी उपयोगिता समाप्त हो गई, इसे छोड़ दो, कि वर्तमान तक आती है, वर्तमान में कुछ जोड़ती है इसे, इसे लगता है कि इसका भविष्य में महत्व है। इसलिए भारत की संस्कृति नदी बनती है, भारत की संस्कृति नर्मदा बनती है। इसलिए बनती है क्योंकि इसमें लगातार प्रवाह है। अभी आप बात कर रहे थे, मैं वर्तमान की बात इसलिए कर रहा हूँ, मैडम ने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन किया 64 योगिनी मंदिर का। मैंने एक उपन्यास लिखा है बूढ़ी डायरी, वह इसी मंदिर पर केंद्रित है। और इस उपन्यास को जब मैं लिख रहा था, हमारा वर्तमान संस्कृति के प्रति कितनी उदासीनता का समय है, मैं आप युवा बैठे इसलिए कहना चाहता हूँ, और नर्मदा समग्र जो काम कर रहा है इसकी क्या ज़रूरत है इसलिए कहना चाहता हूँ। अभी जो आप, मैंने सोचा नहीं था कि मैं इस पर बात करूँगा, लेकिन वो चित्र, ये सारी चीज़ें देख करके मुझे लगा कि इस पर बात करना ज़रूरी है। सर, जब मैं बूढ़ी डायरी उपन्यास लिख रहा था और मैं पहली बार तेवर गया, तो मुझे पता चला कि एक कल्चुरी राजवंश था। इस कल्चुरी राजवंश ने संस्कृति के क्षेत्र में कितना बड़ा काम किया। भारत में शायद सबसे, हम मौर्य साम्राज्य की बात करते हैं, मुगल साम्राज्य की बात करते हैं, अंग्रेजों की बात करते हैं, लेकिन 1000 साल से भी ज़्यादा कल्चुरी राजवंश ने भारत के अलग अलग हिस्सों में राज्य की शासन किया, और ये भारत का सबसे अधिक समय तक शासन करने वाला राजवंश था। इतिहास की किताबों में इसके ऊपर एक पैराग्राफ मिलता है, कोई चैप्टर तक नहीं है। ये इतना महत्वपूर्ण समय राजवंश था, लेकिन जो अच्छी बात थी कि इसका कला के प्रति और संस्कृति के प्रति बड़ा गहरा लगाव था। कहते हैं कि जब कल्चुरी राजवंश की जो राजधानी थी, जिसे जिसका नाम तब त्रिपुरी था, तब वहाँ पर दिन रात शिल्पकार इतना काम किया करते थे कि आप अगर 10 कोस दूर हों तब भी उनकी छेनी हथौड़ी की आवाज़ सुनाई दिया करती थी, इतनी मूर्तियाँ बन रही होती थी। तो इतना उनका कला और संस्कृति से लगाव था। ये राजवंश लगभग समाप्त हो रहा था। ये जो 64 योगिनी का मंदिर है, उस समय एक रानी थी, उनका नाम था अलहन देवी। वो लगभग लगभग कल्चुरी वंश के जो अंतिम राजा थे, उस राजवंश की अंतिम रानी है। उनके आचार्य थे रुद्र राशि, जो बहुत बड़े तांत्रिक थे। अब रानी की चिंता ये थी कि राज्य कैसे बचेगा, और आचार्य की चिंता ये थी कि विद्या कैसे बचेगी। दोनों की चिंताएं अलग अलग थी, लेकिन दोनों की मुलाकात हुई तो रानी ने अपने गुरु से कहा, अपने आचार्य से कहा कि कुछ ऐसा कीजिए कि ये राज्य बच जाए। और आचार्य की चिंता ये थी, रानी से उन्होंने कहा कुछ ऐसा कीजिए कि ये विद्या बच जाए। तो दोनों ने मिलकर के एक काम किया, राजवंश ने और गुरुकुल ने मिलकर के एक काम किया। उन्होंने कहा कि एक मंदिर बनाते हैं। गुरु ने कहा कि मैं साधना करूंगा, हो सकता है राज्य बच जाए, लेकिन आचार्य के मन में जो बड़ी बात थी कि ये विद्या बच जाए। तो उन्होंने ये जो 64 योगिनी मंदिर, जिसे अभी 81 योगिनियों का मंदिर कहा जा रहा है, ये 64 योगिनी मंदिर असल में एक किस्म से उस तरह के, उस समय के जो सर्वश्रेष्ठ कलाकार थे उनको बुलाया, और एक किस्म की जो पूरी विद्या थी उसकी कोडिंग इन प्रतिमाओं में की गई। आप समझ रहे, पत्थर की प्रतिमाओं में उस पूरी जो इसे कहते हैं योगिनी कोल संप्रदाय, ये तंत्र का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है और बहुत गहरी विद्या है। तो ऐसे योगिनी कोल संप्रदाय की उन्होंने पूरी कोडिंग उन कलाकारों से, उन शिल्पकारों से, उन प्रतिमाओं में करवाई। एक एक प्रतिमा में, और इन 64 प्रतिमाओं को या 81 प्रतिमाओं को मिला दिया जाए, और अगर इनको, इनके जो हिस्से गायब हो चुके हैं, अगर उन हिस्सों को हम फिर से ले लें, तो पूरा का पूरा योगिनी कोल संप्रदाय हमारे सामने ऐसे खुल करके आ जाएगा, जैसे हम कंप्यूटर में डिकोड कर देते ना, ऐसे पूरा का पूरी ये विद्या डिकोड हो जाएगी। आप सोचिए, एक आचार्य क्या कर रहा था, रानी की चिंता थी राज्य बचे, आचार्य की चिंता थी या गुरुकुल की चिंता थी विद्या बचे, वे दोनों मिलकर के उन्होंने कोशिश की, राज्य भी नहीं बचा, विद्या भी नहीं बची, क्यों नहीं बची। मैं जब ये उपन्यास लिखने के लिए त्रिपुरी गया, उसका नाम है तेवर अब वर्तमान में, तो राज्य नहीं बचा, जब आक्रमण अधिक होने लगे तो वहाँ लाखों करोड़ों प्रतिमाएँ थी, सबने सोचा कि ये आएंगे और आक्रांता आएंगे और इन प्रतिमाओं को तोड़ेंगे, तो हर खेत में गड्ढे खोदे गए और उन लाखों करोड़ों प्रतिमाओं को उन गड्ढों में दबा दिया गया। और उसके बाद ये हुआ कि जब मैं गया वहाँ, तो मैंने तेवर में जाकर के जो पहला दृश्य देखा, वहाँ कोई भी आदमी, ये मैं आपको कोई 50 साल पुरानी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं 2006 में मैं उपन्यास लिख रहा था, और जब मैं तेवर में गया, जो मैंने पहला दृश्य देखा, वहाँ हर खेत में से मूर्तियाँ निकलती हैं, हर खेत में से अब भी निकलती हैं, अगर हम अपनी संस्कृति को जानते और समझते कि हमारी संस्कृति का मूल्य क्या है। हम अपनी संस्कृति का मूल्य नहीं पहचानते, नर्मदा आपसे कहती है इसे पहचानो, ये बहुत कीमती है, वो जो भीतर है, वो जो बाहर है, वो जो मूर्त है, वो जो अमूर्त है, इसे पहचान सको तो नर्मदा का अर्थ ही होता है सुख देने वाली, भारत का अर्थ ही होता है प्रकाशित करने वाला, तो ये प्रकाश तुम्हें बहुत सुख देगा। नर्मदा का यही संदेश है और यही असल में नर्मदा का सांस्कृतिक परिदृश्य है। तो अब मैं एक अपनी कविता सुना करके अपनी बात समाप्त करूँगा।
2: मुझे पहले आदेश दे दिया गया था कि अंत में आप अपनी कविता सुना दीजिएगा, इसलिए सुना रही, नहीं तो क्या होता है, जो कवि होते हैं उनको जैसे ही मंच और श्रोता मिल जाते हैं, वो मौका ढूंढने लगते हैं कि कविता सुना दो। मैंने मुझे आदेश दिया गया था इसलिए सुना रहा हूँ। इस कविता के तीन हिस्से हैं। नर्मदा कविता का शीर्षक है, एक जो वर्तमान की पीड़ा है वह है, और दूसरे हिस्से में प्रलय का वर्णन है, अंत में प्रार्थना है। नर्मदा का जब जन्म हुआ तो भगवान शंकर के माथे से पसीने की एक बूंद गिरी और नर्मदा बन गई। भगवान शंकर ने वरदान दिया कि तुम कल्प में भी नष्ट नहीं होगी। जब हर कल्प में प्रलय होता है, प्राकृत प्रलय होता है, पहले हिस्से में नर्मदा का वर्तमान से जुड़ी पीड़ा है, दूसरे हिस्से में प्रलय का वर्णन है, और अंत में प्रार्थना है कि बहो निरंतर बहो नर्मदा, बहो निरंतर बहो नर्मदा, कल्प नहीं बाधा प्रवाह में। इसमें एक शब्द आएगा एकार्णव, प्रलय में सारे समुद्र, जो हमारा साइंस कहता है कि प्रलय में ये होगा कि पहले ग्लोबल वार्मिंग होगी, सब कुछ जलने लगेगा, और बाद में सारे समुद्र, इतना पानी बढ़ जाएगा ग्लेशियर्स के कारण कि सारे समुद्र मिलकर के एक हो जाएंगे। उसके लिए उन्होंने दिया एकार्णव शब्द, यानी सारे समुद्र मिलकर के एक हो जाएं। और आप कितने आश्चर्य की बात है, जो साइंस आज कहता है कि पहले ग्लोबल वार्मिंग होगी फिर सारे समुद्र मिल जाएंगे, हमारे पुराण भी यही कहते हैं, वो कहते हैं सामवर्तक अग्नि होगी, सब कुछ जलने लगेगा, फिर सारे समुद्र मिलकर के एकार्णव हो जाएंगे और यही प्रलय होगा। तो साइंस और पुराण कोई अलग अलग बात नहीं कर रहे हैं। तो बहु निरंतर बहु नर्मदा, बहु निरंतर बहु नर्मदा, कल्प नहीं बाधा प्रवाह में, बहु निरंतर बहु नर्मदा, कल्प नहीं बाधा प्रवाह में, सृष्टि के उत्थान पतन की चिर साक्षिणी शेष रहे, बहु निरंतर बहु नर्मदा, बहु निरंतर बहु नर्मदा, तपो भूमि है तट तेरे, तपो भूमि है तट तेरे, तपो भूमि है तट तेरे, पर तप के सांचे कौन ढलेंगे, ना जाने हैं कौन कौन जो तेरे तट पर दाव चलेंगे, संस्कृतियों के अर्थ व्यर्थ हैं, कहां हृदय ये जहां पलेंगे, जो तेरा अभिषेक करेंगे हाथ वही दिन रात चलेंगे, तो सहो निरंतर सहो नर्मदा, सहो निरंतर सहो नर्मदा, घात नहीं बाधा प्रवाह में, सहो निरंतर सहो नर्मदा, घात नहीं बाधा प्रवाह में, पाप पुण्य के भेद अभेद की चिर साक्षिणी शेष रहे, बहो निरंतर बहो नर्मदा, बहो निरंतर बहो नर्मदा। और यह प्रलय का वर्णन है कि काल प्रलय घनघोर गहन है, काल प्रलय घनघोर गहन है, दिग्दिगंत तक घोर गहन, काल प्रलय घनघोर गहन है, दिग्दिगंत तक घोर गहन, लुप्त लुप्त जल सुप्त सुप्त जल तृषा तृषित है शेष देन, काल प्रलय घनघोर गहन है, दिग्दिगंत तक घोर गहन, लुप्त लुप्त जल सुप्त सुप्त जल तृषा तृषित है शेष देन, दग्ध दग्ध दिग दिग्दिगंत है, दिग्दिगंत दिग दिग्दिगंत दिग दिग्दिगंत दिग दिग्दिगंत है, काल प्रलय घनघोर गहन, दिग्दिगंत तक घोर गहन, लुप्त लुप्त जल सुप्त सुप्त जल तृषा तृषित है शेष देन, दग्ध
1: रहो न तब भी रहो नर्मदा प्रलय नहीं बाधा प्रवाह में दृश्य अदृश्य के लोप अलोप की चिर साक्षिणी शेष रहे बहो निरंतर बहो नर्मदा। और अंत में प्रार्थना है हे शुभांग देही शुभम करोति इदं वरेण्य पंथ धर्मदा। हे शुभांग देही शुभम करोति इदं वरेण्य पंथ धर्मदा शुभम वरेण्य सदा सर्वदा नर्मदाति पुण्य नर्मदा। हरिनिनाद शमशम निनाद शंभू निनाद जलधार सर्वदा शिव स्थापन हृदय हृदय हर हर हर हर मर मात्र नर्मदा। कहो मंत्र शिव कहो मंत्र शिव कहो मंत्र शिव कहो नर्मदा। काल नहीं बाधा प्रवाह में मानवता के अस्त उदय की चिर साक्षिणी शेष रहे बहो निरंतर बहो नर्मदा बहो निरंतर बहो नर्मदा नर्मदा नर्मदा नर्मदा। बहुत
3: आज के इस खास कार्यक्रम में आप सुन रहे थे वरिष्ठ साहित्यकार अशोक जमनानी का वक्तव्य। विषय था नर्मदा एक सांस्कृतिक परिदृश्य के रूप में। अगले कार्यक्रम तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: अभी आपने सुना हमारा विशेष कार्यक्रम 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: नमस्ते भोपाल, मैं हूं कैलाश खेर और आप मुझे सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद पर, देश का चैनल, देश के लिए।

नमस्कार, मैं हूं रूप कुमार राठौड़। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। जय हिंद।

0: दोपहिया वाहन की सवारी करते समय हेलमेट जरूर पहनें। रेडियो आजाद हिंद द्वारा जनहित में जारी
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण है, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम हिंदुस्तान हमारा।

0: हिंदुस्तान हमारा स्वाधीनता संघर्ष की महाकथा, आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथा के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, अनुसूचित जाति और जनजाति सहित सभी अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाएं।
1: राजा शंकर शाह और उनके पुत्र रघुनाथ शाह सन 1857 की क्रांति में शहीद हुए दो प्रमुख क्रांतिकारी कवि थे। राजा शंकर शाह गढ़ा राज्य के वारिस थे, जिस पर प्रतापी राजा संग्राम शाह और वीरांगना रानी दुर्गावती ने शासन किया था। सन 1784 में गढ़ा राज्य पर सागर के मराठों का अधिकार होने के पश्चात उसके वारिसों को गुजर बसर के लिए जबलपुर के पास एक जागीर दे दी गई थी। राजा शंकर शाह की यही जागीर 1857 की क्रांति के समय क्रांतिकारी गतिविधियों का केंद्र बन गई। 1857 की क्रांति के समय जब दिल्ली और मेरठ क्षेत्र की घटनाओं के समाचार जबलपुर पहुंचे तो वहां उत्तेजना फैल गई। जबलपुर की 52वीं बटालियन के सैनिकों ने अंग्रेजों को उखाड़ फेंकने का मन बना लिया। शंकर शाह के निवास पर क्रांतिकारी योजनाएं बनने लगी। उन्हीं योजनाओं में अंग्रेज अफसरों को मारने की योजना भी बनी, मगर ये योजना कारगर हो पाती इससे पहले ही मुखबिर गिरधारी दास की सूचना पर राजा शंकर शाह और उनके पुत्र रघुनाथ शाह को गिरफ्तार कर लिया गया। राजा शंकर शाह के निवास से एक कागज का टुकड़ा मिला, जिसमें राजा ने अपनी आराध्य देवी से ब्रिटिश सरकार को खत्म करने और खुद की सरकार स्थापित होने की प्रार्थना की थी। इसी राष्ट्रवादी प्रेरक रचना को आधार बनाकर राजा और उनके बेटे पर ब्रिटिश राज के विरुद्ध साजिश करने का मुकदमा चलाया गया। साजिश में उनका हाथ से धोने के सबूत में उन्हें तोप से उड़ा दिए जाने का दंड दिया गया। जब राजा शंकर शाह और उनके पुत्र रघुनाथ शाह को तोप के मुंह पर बांधा जा रहा था तो उन्होंने प्रार्थना की कि भगवान उनके बच्चों की रक्षा करें ताकि वे अंग्रेजों को खत्म कर सकें। अंतिम इच्छा के रूप में दोनों वीर क्रांतिकारियों ने एक दूसरे को देखकर कविता सुनाई। कविता पाठ की समाप्ति के साथ ही दो तोपों की गर्जना ने राजा और उनके पुत्र के मातृभूमि के लिए उत्सर्ग को स्वीकार कर लिया।

0: अरे गजबे दादा, दो चाय लगाना इधर,
1: जरा जल्दी करना दादाऊ।
2: क्यों रे?
1: हाँ,
2: कल रात को क्या हुआ था?
1: कुछ तो नहीं।
2: अरे सुना है प्रफुल्ल अस्पताल में भर्ती है और उसके सर पैर हाथ पैरों में चोट लगी है।
1: वो अब वो तो उसकी बाइक सामने से आ रहे बंदे की बाइक से टकरा गई थी और दोनों उछल कर दूर जा गिरे।
2: अच्छा, तू क्या समझता है कि मैं इस बारे में बात कर रहा हूँ?
1: मैं समझा कि तू झगड़े के संबंध में पूछ रहा है।
2: किस झगड़े की बात कर रहा है तू?
1: अरे वो कली की तो बात है।
2: क्या?
1: कोई 10:30-11 बजे का समय होगा।
2: हुँ?
1: मैं नीता को घर छोड़कर आ रहा था।
2: अच्छा।
1: तभी मैंने देखा कि वो लिंक रोड पर स्टेच्यू के सामने चार लड़के बीच रोड पर रास्ता रोक के खड़े हैं।
2: फिर क्या हुआ?
1: फिर क्या, मुझे बाइक रोकनी पड़ी।
2: अच्छा।
1: मैंने पूछा क्या बात है, उनमें से एक बोला, बात एकदम सीधी है बिड़ू, अपन को माल मांगता है क्या समझा, जो कुछ भी जेब में हो जल्दी से निकालने का।
2: अरे बाप रे।
1: मैंने कहा अपने पास कुछ नहीं है। तो दूसरा बोला, ए सियाणे, ज्यादा होशियार बनने का नहीं, जो कुछ भी हो जल्दी से ढीला कर देगा। अरे फिर मुझे गुस्सा आ गया।
2: तुझे गुस्सा आ गया?
1: हाँ। मैं बोला, ए लगता है तुम लोगों को ज्यादा ही रंगदारी चढ़ गई है, अकेले देखकर शेर बन रहे हो।
2: क्या हुआ?
1: फिर उनमें से बोला,
0: तू कौन सा दादा है रे?
1: मैंने झटका दिया। रॉबर्ट ग्रुप का नाम सुना?
0: इतना सुनकर पहला थोड़ा नरम होकर बोला, तो फिर झगड़ा काय को करने का, अपना भाई समझ के ही भाई की मदद करने का।
2: अच्छा।
0: देख भाई, अपन लोग बहुत जरूरत में है। मैंने मौके की नजाकत को देखकर जेब से पर्स निकाला।
2: अच्छा।
0: उसमें खुले 200 रुपए थे।
2: अच्छा।
0: उनकी ओर बढ़ाते हुए बोला, ए भाई अभी इतना ही है।
2: अच्छा।
0: कल इधर ही इसी समय मिलना, तुम्हारी सभी जरूरत पूरी हो जाएंगी। और मैं वहां से आगे बढ़ गया। वो नोट पर झपटते हुए बोला, थैंक यू, और मैं वहां से चुपके से खिसक आया।
2: बेटा तेरी चलाकी काम कर गई। ये रॉबर्ट ग्रुप का क्या फंडा यार, ये कौन है रॉबर्ट ग्रुप?
1: अरे मुझे क्या पता, मैंने तो ऐसे झटका दे दिया था।
2: याने तेरी ट्रिक काम आ गई।
1: और क्या, एक बात ठीक से समझ ले यार, अपन को कभी भी फालतू में किसी से पंगा नहीं लेना।
2: अच्छा। हाँ। दूसरा चाहे भले ही अपने सर पे हावी हो जाए।
1: देख अगर अपन चार होते तो भी ठीक था, जब अकेले हैं तो ज्यादा जोश दिखाकर हाथ पैर तुड़वा लेने से तो अच्छा है 100-500 रुपए दे के निकल लो। अच्छा। फिर अपन कोई गुंडे थोड़ी है यार जो बराबरी से लड़ते फिरे। एक बात है यार।
2: क्या?
1: ये लोगों की चौथ वसूली अच्छी चल रही है।
2: यार चौथ वसूली क्या, अब जो लते पड़ गई है ना उन्हें पूरा करने के लिए पैसे तो चाहिए ही ना।
1: और
2: अब घर से तो इतने पैसे मिलते नहीं। अच्छा एक बात बता, प्रफुल्ल कैसा है? कोई सीरियस बात तो नहीं है ना?
1: अरे कुछ नहीं, डॉक्टर ने उसे आउट ऑफ डेंजर बताया।
2: अच्छा।
1: वो तो हेलमेट ने बचा लिया, नहीं तो कुछ भी हो सकता था।
2: थैंक गॉड। अरे गजबी दादा, हमारी चाय का क्या हुआ दादा?
1: यार
3: अरे चाय तो आ रही है बेटा, पर ये तो बताओ कि एक्सीडेंट किसका हुआ?
1: प्रफुल्ल का दादा।
3: वो जो अपने कमीज की कॉलर हमेशा खड़ी रखता है उसका?
2: अरे हाँ दादा, वही। अच्छा एक बार बता यार, दूसरा लड़का कौन था वो साथ में?
1: अरे वो शंकर नाम का लड़का है।
2: अच्छा।
1: डॉक्टर ने उसे भी खतरे से बाहर बताया है।
2: अच्छा
3: यार, शंकर नाम से याद आया बेटा।
2: क्या
3: बेटा? तुम्हें पता है शंकर शाह के लड़के रघुनाथ शाह ने 57 की लड़ाई में अंग्रेजों को भारी टक्कर दी थी।
2: दादा सच बताए ना तो शंकर शाह रघुनाथ शाह के बारे में अपन को कुछ नहीं पता।
1: बिल्कुल सही कह रहे हो दादा, पिछले दिनों चित्रकला प्रतियोगिता के संबंध में इनके नाम जरूर पढ़े थे हमने। कौन थे दादा ये?
3: हाँ बेटा, सरकारी स्कूलों के कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए जिला स्तरीय चित्रकला प्रतियोगिता हो रही है।
2: अच्छा।
3: और पुरस्कार वीर रघुनाथ शाह और शंकर शाह के नाम पर रखे गए हैं।
1: अच्छा दादा, इनकी कहानी सुनाओ ना।
2: हाँ दादा प्लीज, आज इनकी कहानी सुनाओ ना।
3: तो सुनो, शंकर शाह गढ़ा मंडला के प्रतापी गोंड राजघराने के वंशज थे।
2: अच्छा।
3: इनके पुरखों ने गोंडवाना में लगभग 1500 वर्ष तक राज किया।
1: दादा ये गढ़ा वही है ना जो जबलपुर के पास है?
3: हाँ बेटा, जबलपुर से कोई 4 मील की दूरी पे है जो गढ़ा गोंड साम्राज्य की राजधानी थी।
2: अच्छा।
3: गढ़ा राज करीब 280 साल रहा।
2: अच्छा।
3: इसमें संग्राम शाह, रानी दुर्गावती और हृदय शाह जैसे नामी राजा हुए। 57 के संग्राम के समय शंकर शाह विद्रोहियों को संगठित करते रहे।
4: पिताश्री, एक हरकारा रामगढ़ की रानी आवंतीबाई का संदेशा लेकर आया है, वो आपसे मिलने को आतुर है पिताश्री।
5: वही रामगढ़ ना, जो मंडला की पहाड़ियों में राजपूत सामंतों की प्राचीन जागीर रहा है।
4: जी पिताश्री, आपको तो पता ही होगा, उनके पति स्वर्गवासी विक्रमादित्य सिंह जी के बाद फिरंगी शासन ने छल बल से रामगढ़ जागीर को भी कोर्ट ऑफ वार्ड्स के तहत अपने अधीन कर लिया है।
5: हाँ, हमें पता है, पर उन्होंने तो अत्यंत साहस और धैर्य का परिचय देते हुए दक्षता के साथ राजकाज संभाल लिया था।
4: जी, तभी तो अंग्रेजों की कूटनीति से क्षुब्ध हैं और उन्होंने अंग्रेजी राज के विरुद्ध विद्रोह का बीड़ा उठाया है।
5: रघुनाथ
4: जी,
5: क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता देवी माँ के आशीर्वाद से ये हमारे लिए शुभ संदेश लेकर आया है?
4: जी पिताश्री, मैं आपका संकेत समझ रहा हूँ, इससे हमें भी अपना खोया हुआ राज्य प्राप्त करने का रास्ता मिल जाएगा।
5: बिल्कुल ठीक, बुलाओ उस हरकारे को, बुलाओ, हम स्वयं उससे बात करना चाहेंगे।
4: जैसी आज्ञा पिताश्री। अंगरक्षक, हरकारे को महाराज की सेवा में प्रस्तुत किया जाए।
6: महाप्रतापी गौण राजा संग्राम शाह के वंशज राजा शंकर शाह के चरणों में गढ़ा मंडला राजवंश की जागीर रामगढ़ की महारानी अवंतीबाई के दूत का सादर प्रणाम स्वीकार कीजिए महाराज।
5: आओ, स्वागत, अभिनंदन है। कहें, आप महारानी का क्या संदेश लेकर आए हैं?
6: महाराज, रानी ने आपके लिए जो खरीदा और सामग्री भेजी है वो तो मैं आपकी सेवा में प्रस्तुत करूंगा ही, पर उससे पहले महारानी ने जो चर्चा आपसे करने का आदेश दिया है वो करना चाहूंगा।
5: जी हाँ, स्वागत है।
6: महाराज, जब से अंग्रेजों ने रामगढ़ जागीर को कोर्ट ऑफ वार्ड्स के अधीन हथियाया है, महारानी ने आसपास के सभी जागीरदारों राव उमरावों को फिरंगी शासन के विरुद्ध एकजुट करने का बीड़ा उठाया है।
5: हाँ, हमें पता है।
6: महाराज, महारानी की प्रेरणा स्रोत यशस्वी गौण रानी स्वर्गीय दुर्गावती, साथ ही इन दोनों में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का अनुगमन कर रही हैं। इन्हीं प्रेरणाओं के तहत अपना लक्ष्य सिद्ध करने के लिए वे एक ओर तो गांव दर गांव के दौरे कर रही हैं और दूसरी ओर क्रांति संदेश के प्रतीक कमल और रोटी का आदान प्रदान भी कर रही हैं।
5: हमने उनके इस अभियान के बारे में सुना है, बताओ रानी हमसे क्या चाहती हैं?
6: महाराज, महारानी ने अत्यंत शालीनता के साथ आपको गौण साम्राज्य के महाप्रतापी राजा आपके महाराजा संग्राम शाह का स्मरण कराया, जिन्होंने 3-4 गढ़ों को बढ़ाकर पूरे 52 गढ़ों का साम्राज्य खड़ा किया था। साथ ही उन्होंने याद दिलाया है, आपसी झगड़ों का फायदा लेकर सागर के पेशवा ने गढ़ा राज्य पर अपना आधिपत्य कर लिया था। अतः स्पष्ट है, हमारी एकजुटता ही आतताई फिरंगियों को अपने देश से बाहर खदेड़ सकती है। इस कार्य में वे आपका सहयोग चाहती है।
5: महारानी के इस अभियान से हम बहुत उत्साहित हुए हैं। महारानी को हमारी ओर से पूर्ण आश्वस्त करें कि हमारा और हमारे पुत्र रघुनाथ का संकल्प भी वही है जो उनका है। उनसे कहिए 70 साल की इस उम्र में भी हमारी हड्डियों में हमारे पूर्वजों के शौर्य का वही बल है। हमारी एकजुटता हमें अपना संकल्प पूरा करने में सफल अवश्य बनाएगी। हम सभी उनके साथ हैं।
6: महाराज का ये संदेश पूरी निष्ठा के साथ ये दास महारानी तक पहुंचा देगा। महारानी द्वारा भेजी गई सामग्री संभाले और सेवक को आज्ञा दे महाराज।
5: आपकी यात्रा सफल हो। रघुनाथ
4: जी पिताजी,
5: जरा देखो तो रानी अवंतीबाई ने और क्या क्या सौगात भेजी है।
4: जी पिताश्री, एक खरीता है और कुछ चूड़ियां।
5: चूड़ियां?
4: जी।
5: जरा पढ़ो तो खरीते में क्या लिखा है।
4: लिखा है, मान्यवर सादर प्रणाम, मेरा दो टूक संदेश है, देश के लिए कमर कसो या चूड़ियां पहनो। साथ ही लिखा है, तुम्हें धर्म ईमान की सौगंध है, जो इसका सही पता बैरी को दो। देश हित में आशा है आप मेरी धृष्टता को क्षमा करेंगे। आवंती बाई।
5: जा, देश हित में तुझे क्षमा किया। हम तेरे साथ हैं।
3: तो बेटा, कागज के उस छोटे से टुकड़े पे लिखे संदेश ने मुक्ति आंदोलन लाने के लिए वो जोत जलाई कि जिसकी चिंगारी से पूरे इलाके में देश पे मर मिटने की आग धधकने लगी। कहने को ये सारी तैयारी चोरी छिपे तरीके से चलती रहती थी।
2: अच्छा।
3: लेकिन इसकी भनक अंग्रेजों को जब तब लगी जाती थी।

0: कैप्टन मॉस कौन? ये राजा शंकर शाह कौन होता? हमको खबर मिलता कि राजा शंकर शाह और उसका बेटा रघुनाथ लोगों को कंपनी राजा के खिलाफ भड़काता।
1: मेजर अस्ताई, ये एक जागीरदार है जो जबलपुर के पास गढ़ापुरवा में रहता है।
0: ओके, पर इसको राजा क्यों कहता?
1: सर, वो इसलिए कि ये गढ़ा राज्य का वारिस है।
0: गढ़ा राज का एंटो 1784 में ही हो गया था, जब सागर के मराठा ने इसे जीता था। पर 1818 से तो ये कंपनी सरकार के अंडर होता।
1: सर, आप ठीक कह रहे हैं। गढ़ा राज्य को खत्म हुए 70 साल से ज्यादा हो चुके हैं। शंकर शाह अंतिम गौंड राजा माना जाता है, हालांकि राज्य और अधिकार इसके पास नहीं है। इन्हें ब्रिटिश सरकार से पेंशन मिलती है और इनके पास गुजर बसर के लिए जागीर है।
0: ओके
1: सर, अब तो ये 70 साल का बूढ़ा है। जब जवानी के दिलों में इसने विरोध नहीं किया तो अब क्या करेगा?
0: जो भी हो, पर इसे इग्नोर नहीं करने का।
1: यस सर।
0: जब से दिल्ली और मेरठ की वारदात की खबर इधर आता, इधर भी थोड़ा हलचल है। तुम राजा की एक्टिविटीज पर वॉच रखो।
1: ओके सर।
2: इधर शंकर शाह के पुरवा गांव विद्रोही गतिविधियों का केंद्र बना रहा। जबलपुर की 52वीं रेजिमेंट के कई सिपाही भी यहां आते रहते। यहां चर्चा करके अपने आगे की योजना बनाते रहते थे।
3: राजा साहब, आपने सुना फिरंगी शासन के प्रति सैनिक विद्रोह की शुरुआत मेरठ से हो गई है।
4: और मंगल पांडे का क्या हुआ?
3: वो तो पकड़ा गया है। इसी तरह दिल्ली में भी सैनिक विद्रोह की खबरें हैं। और इधर की खबर यह है हुजूर, इन खबरों के इधर आने से हमारी 52वीं बटालियन में भी जोश की लहर दौड़ गई है।
5: हमने उनके इस अभियान के बारे में सुना है।
3: अब 16 जून की ही बात लें हुजूर।
4: वो 16 जून को क्या हुआ?
3: जब एडजुटेंट मिलर अपनी रेजिमेंट की गारद का निरीक्षण कर रहा था तो एक सिपाही ने उन पे बंदूक तान दी और हमला कर दिया। मिलर बच गया, केवल मामूली चोटें आई थीं।
5: लेकिन उस सिपाही का क्या हुआ?
3: उसे बनारस ले जाया गया है। सुना है वहाँ उसे फांसी दी जाएगी। मैं तो कहता हूँ राजा साहब, हमें भी विद्रोह कर देना चाहिए। 52वीं बटालियन आपके साथ है ही।
4: पिताश्री, ये ठीक कह रहे हैं।
5: हमें जोश से नहीं, होश से काम लेना होगा। अपनी तैयारी का आकलन करके सही योजना बनानी होगी, ताकि अचानक हमले से फिरंगी सरकार को बचने का मौका ना मिल पाए।
3: हमारी तैयारी काफी अच्छी है हुजूर। गांव के पास के पहाड़ी जंगलों में बहुत बड़ी संख्या में बंदूकें तलवारें इकट्ठी कर ली गई हैं। 52वीं पलटन के अलावा हमारे पास करीब 200 ऐसे जांबाज लड़ाकू आदमी तैयार हैं, जो दुश्मन के 2000 लोगों पर भी भारी पड़ेंगे हुजूर।
5: वाह, बिल्कुल ठीक है। हम सोच कर योजना बनाते हैं, कब और कैसे कहां से कार्रवाई शुरू की जाएगी।
2: तभी 52वीं पलटन के 8-10 सिपाहियों की बेवकूफी से कैप्टन मैक्सोन सतर्क हो गए।
6: क्या किया था दादा इन सिपाहियों ने?
2: मूर्ख ऐसे ही बैठे योजना बनाते रहते।
6: अच्छा।
2: कि कैसे फिरंगियों को मौत के घाट उतारा जाए।
6: अच्छा।
2: इनकी बातें अफसरों ने सुन ली और इन्हें गिरफ्तार कर लिया।
6: अच्छा।
2: और फिर सेना में दहशत फैलाने की गरज से इन्हें तोप से उड़ा दिया।
7: अरे, केवल बात सुनकर ही मौत की सजा दे दी गई।
2: हाँ, बगावत की खबर सब तरफ से आती रही। सुन सुन के अंग्रेज अफसर भी घबराते रहते।
7: सो तो है, घबराना तो था ही।
2: इधर डिप्टी कमिश्नर ने राजा की योजना की जानकारी लेने के लिए एक चाल चली।
6: चाल? कैसी चाल दादा?
2: उसने राजा की धार्मिक भावना का लाभ लेने के लिए अपने एक चपरासी को फकीर के वेश में राजा के पास भेज दिया।
8: अलक निरंजन, राजा तेरा भला हो।
2: राजा और उसके बेटे रघुनाथ शाह ने बिना झिझक अपनी सारी योजना और उसे पूरा करने के लिए अपनाए जाने वाले तरीके की सारी जानकारी उस फकीर वेश में आए चपरासी को बता दी।
6: फिर क्या हुआ दादा?
2: फिर बेटा, लेफ्टिनेंट वाल्डविन और डिप्टी कमिश्नर ने राजा और उसके बेटे रघुनाथ शाह को गिरफ्तार करने के लिए 14 सितंबर 1857 के दिन पूर्वा की ओर कूच कर दिया।
9: लेफ्टिनेंट बॉल्विन
10: सर,
9: आपका दल में कितना लोग है?
10: 20 सवार और 40 लोगों का पुलिस दल है। आपके आदेश अनुसार किसी को कुछ नहीं बताया। कहां जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं?
9: ठीक है। देखो, राजा का महल अब करीब 1 माइल डिस्टेंस पर है। हम लोग यहां घेरा डालेगा और तब तक वॉचफुल रहेगा जब तक कि तुम लेफ्टिनेंट क्लार्क की टुकड़ी के सिपाहियों के साथ जाकर महल में राजा और उसके बेटे को गिरफ्तार नहीं कर लेता।
10: यस सर। चलो लेफ्टिनेंट क्लार्क।
11: ओके सर।

0: पिताश्री, पिताश्री।
1: क्या हुआ?
0: बुरी खबर है, अंग्रेजी सिपाहियों ने पूरे महल को चारों तरफ से घेर लिया है। लेफ्टिनेंट क्लार्क और बॉल्डविन सिपाहियों के साथ अंदर आ चुके हैं पिताश्री।
2: ए, कोई होशियारी नहीं करने का, सरेंडर। तुम गिरफ्तार हो चुका है।
3: इधर ये 14 लोग हैं, इन्हें गिरफ्तार किया जा चुका है सर।
2: ठीक है, राजा शंकर शाह और उसका बेटा इधर अरेस्ट हो चुका है। तुम महल की पूरी पूरी तलाशी लो। इनकी बगावट का सबूत मांगता है हम।
4: ये देखो लेफ्टिनेंट बॉल्डविन, राजा का पलंग से यह सिल्क का थैला मिला।
2: ओह,
4: इसमें यह मैरिट मर्डर केस के बाद की घोषणा का टुकड़ा है। और देखो क्लार्क, यहाँ पर कोई पोयम भी लिखा है।
2: क्या है ये? इस पोयम में क्या लिखा होता? राजा, तुम बताओ, बोलो बोलो।
1: ये देवी से प्रार्थना है।
2: कैसी प्रार्थना?
1: ब्रिटिश सरकार को खत्म करने और स्वराज स्थापित करने की प्रार्थना।
2: तुम लिखा है ये?
1: हाँ, मैंने लिखा है।
0: और उस बही के पहले पृष्ठ पर यही कविता मैंने भी लिखी है, देख लो।
2: पढ़ो इसे, देखें क्या प्रार्थना की है।
5: मूंद मुख डंडिन को चुंगलो को चबाई खाई, खूंद डार दुष्टन को शत्रु संगारिका, मार अंग्रेज रेज कर दे मात चंडिका, बचे ना ही बैर बाल बचे संघारिका, शंख

0: मातकालिका भक्षण कर तक्षण वेग गौर मातकालिका कूंदडार दुष्टन को शत्रु संघारिका कूंदडार दुष्टन को शत्रु
1: तो तुम बाप बेटा ब्रिटिश सरकार को खत्म करने के वास्ते अपनी देवी माँ से प्रार्थना करता है। लोगों को ब्रिटिश सरकार के खिलाफ भड़काता है।
2: देवी माँ से प्रार्थना करना कोई गलत काम नहीं है। देखना, देवी माँ तुम्हें दंड जरूर देगी।
1: लेकिन अभी तो हम तुम्हें सजा देगा। मिस्टर बॉल्डविन, दोनों को अरेस्ट कर लो और कल किले के सामने इन दोनों को टॉप के मुंह से बांधो।
3: यस सर।

0: सर, शंकर शाह और रघुनाथ शाह को तोप के मुंह से बांध दिया है।
1: आप ठीक है,
0: लेकिन सर पब्लिक की इतनी ज्यादा भीड़, कहीं हालात बेकाबू ना हो जाए।
1: नहीं बॉलवेन, आज के बाद अब कोई भी विद्रोही ब्रिटिश सरकार के खिलाफ बगावत करने की नहीं सोचेगा।
0: यस सर।
1: तुम पब्लिक को कंट्रोल करो।
2: अंग्रेज सरकार,
0: खबरदार, अगर किसी ने आगे बढ़ने की कोशिश करी तो उसे गोली से भून दिया जाएगा।
2: अंग्रेज सरकार,
0: इन लोगों को तोप के सामने से हटाओ।

0: शंकर शाह, तुम्हें मरने से बिल्कुल डर नहीं लगता?
1: डर? कैसा डर? अरे पागल, डरते तो कायर हैं।
2: अंत समय अपने गॉड से प्रार्थना करो, शायद वो तुम्हारी हेल्प करे।
1: हे देवी माँ, इन लोगों के बच्चों की रक्षा करना, ताकि वो बड़े होकर अंग्रेजों से बदला ले सकें।
0: Bloody Indian, fire!
3: इस तरह बेटा, बाप बेटा दोनों को तोप के मुंह से बांध के उड़ा दिया गया।
4: सिर्फ एक कविता पे इतनी भयानक मौत की सजा दादा?
3: पूरी जनता के सामने जश्न के रूप में।
4: अरे बाप रे।
3: हाँ बेटा, तुम समझो कितने भारी जुल्म किए गए हैं फिरंगियों द्वारा।
4: बड़ा ही दर्दनाक दृश्य रहा होगा दादा।
3: हाँ बेटा, सुना है उनके हाथ पांव तो तोप के मुंह के पास पड़े रहे, और शरीर का ऊपरी भाग कोई 50 गज की दूरी पे जाके गिरा।
4: अच्छा।
3: और दोनों के चेहरे पर अपूर्व शांति थी।
4: सचमुच दादा, आजादी के लिए लोगों ने बड़ी कुर्बानियां दी हैं।
3: हाँ बेटा, अब सोचो तब उन्होंने देश की आजादी लाने के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी।
4: जी।
3: और आज हम देश को बनाने के लिए, बुराइयों से बचाने के लिए क्या कर रहे हैं?
5: निर्माण और प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग।
6: अभी आपने सुना कार्यक्रम हिंदुस्तान हमारा, 90.8 मेगाहर्ट्ज पर यह रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण है, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: नमस्कार, मैं हूँ कनिका तिवारी और आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश।

0: हेलो पप्पू पेजर बोल रहा हूँ। ए झंटू ले झटक दादा ना मटक और मेरी बात गले में सटक।
1: नमस्कार, मैं हूँ सतीश कौशिक। आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: वैसे हमसे किसी ने कहा नहीं कहने को, फिर भी हम कह रहे हैं कि हम हैं लल्लन जी। अरे लापता गंजे वाले, पीडब्ल्यूडी में काम करते, पीडब्ल्यूडी में कौन ऐसे वैसे आदमी नहीं बता दे रहे। हाँ नहीं तो, और आप मुझे सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए।
1: नाइन्टी पॉइंट एट मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून इन किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। प्रस्तुत है कार्यक्रम कला कल्लोलनी।
2: नमस्कार श्रोताओं, 90.8 पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। प्रस्तुत है कार्यक्रम कला कल्लोलनी।

0: कला कल्लोलिनी, जहां कला लहर बनकर बहती है और कलाकारों की आवाज वक्त की बंदिशों को तोड़कर सदियों तक गूंजती रहती है। आज की कड़ी में हम बात करेंगे एक ऐसे महानायक की जिसने रंगमंच को सिर्फ जिया नहीं बल्कि उसे एक नई परिभाषा दी। आइए मिलकर रुख करते हैं इस कलात्मक सफर की ओर। बहती है जो अनवरत सदियों का इतिहास लिए, रंगों की सुरों की लफ्जों की प्यास लिए, ये भावों की सरिता है, ये सुरमई रागिनी है, कला के अनंत समंदर से उठी ये कला कल्लोलिनी है। कुछ अनकहे किस्से हैं, कुछ जाने पहचाने हैं, कुछ अनकहे किस्से हैं, कुछ जाने पहचाने हैं, ये कभी घुंघरू बनकर छनकती है, कभी चित्र बनकर सजती है, ये कभी नाटक के मंच पर जीवन की हकीकत बनकर गरजती है। समय का पर्दा अब धीरे धीरे सरकने वाला है, इतिहास के पन्नों से एक सितारा मंच पर उतरने वाला है।
1: और आज कला कल्लोलिनी की लहरें हमें बहा कर ले जा रही हैं एक ऐसे समंदर की तरफ जिसने भारतीय रंगमंच को अपनी शर्तों पर जीना सिखाया। एक ऐसा शख्स जिसने नाटक को केवल मनोरंजन नहीं बल्कि आत्मा का आत्म साक्षात्कार बना दिया। जी हाँ, आज बात हो रही है पद्म भूषण से सम्मानित आधुनिक भारतीय रंगमंच के कबीर, अक्खड़ फक्कड़ और अद्वितीय नाटककार निर्देशक सत्यदेव दुबे की। आइए शुरू करते हैं उनकी जीवन यात्रा। दोस्तों, समय का पहिया पीछे घूमता है। सन 1936 की 13 जुलाई को छत्तीसगढ़ के बिलासपुर की शांत वादियों में एक बालक ने आंखें खोली। नाम रखा गया सत्यदेव दुबे।
0: घर में कला और संस्कृति का एक अनूठा माहौल पहले से मौजूद था। एक प्रतिष्ठित परिवार में जन्मे सत्यदेव के पिता का बिलासपुर में अपना एक स्थानीय सिनेमा हॉल था। उस दौर में जहां आम बच्चों के लिए सिनेमा देखना किसी सपने जैसा होता था, वहीं छोटे सत्यदेव के लिए वह जादुई पर्दा उनका अपना घर था। वो अक्सर अंधेरे हॉल के किसी कोने में बैठ जाते और पर्दे पर चलने वाली कहानियों, लाइव परफॉर्मेंस और इंसानी जज्बातों को बड़े कौतूहल से निहारते। फिल्मों के उन किरदारों को देखकर उनके बाल मन में कहानी कहने और दृश्यों को रचने की समझ अनजाने में ही अपनी जड़ें जमाने लगी थी। लेकिन नियति का खेल भी बड़ा निराला होता है। जिस लड़के को आगे चलकर भारतीय रंगमंच का सबसे बड़ा कप्तान बनना था, उस समय उसका दिल थिएटर के विंग्स में नहीं बल्कि क्रिकेट के हरे मैदान पर धड़कता था। बचपन और शुरुआती लड़कपन के दिनों में सत्यदेव के सिर पर क्रिकेट का भूत सवार था। धूप में तपते हुए हाथ में बल्ला थामे वो गेंद की हर हरकत को वैसे ही भापते थे जैसे आगे चलकर उन्होंने अभिनेताओं के हाव भाव को भापा। वो एक पेशेवर क्रिकेटर बनने का ख्वाब देखते थे। खेल के मैदान की वो एकाग्रता, अनुशासन और कुछ कर गुजरने की जिद, शायद ये सब उन्होंने क्रिकेट की पिच से ही सीखा था, जिसे उन्होंने बाद में थिएटर के तख्ते पर उतार दिया। किसे पता था कि बिलासपुर के मैदानों पर चौके छक्के लगाने का सपना देखने वाला ये लड़का एक दिन माया नगरी मुंबई की पिच पर उतरकर भारतीय नाटक और सिनेमा की पूरी कप्तानी ही बदल देगा।
1: पिता के सिनेमा हॉल के प्रोजेक्टर से निकलती रोशनी की वो चमकीली लकीर, सिल्वर स्क्रीन पर नाचते हुए किरदार और बिलासपुर की तपती दोपहरी में चमचमाता क्रिकेट का बल्ला, सत्यदेव दुबे का बचपन इन्हीं दिलचस्प रंगों से बुना गया था। बिलासपुर की उस माटी में कुछ अजीब सी कशिश थी। अरपा नदी के किनारे खेलते हुए इस बालक के भीतर शब्दों की एक नदी बहने लगी थी। पिता चाहते थे कि बेटा पढ़ लिख कर कोई सरकारी ओहदा संभाले, पर नियति ने तो इस बालक के हाथों में रंगमंच की चाबी सौंप रखी थी। दुबे जी का बचपन कोई बहुत ठाट बाट का नहीं था, एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार, लेकिन उनके भीतर एक अजीब सी बेचैनी थी, एक ऐसी खोज जो उन्हें शांत नहीं बैठने देती थी। वो किताबों में खो जाते, कहानियों के पात्रों को अपने आसपास ढूंढने लगते।
0: बिलासपुर की शांत हवाओं को पीछे छोड़, जब 16-17 साल का वह दुबला पतला लड़का बंबई के खचाखच भरे वीटी स्टेशन पर उतरा, तो उसके पास ना तो कोई बड़ा सूटकेस था और ना ही जेब में पैसों की खनक थी, तो बस आंखों में एक अजनबी सी चमक और दिल में कुछ बड़ा कर गुजरने की बेचैनी। सेंट जेवियर्स कॉलेज की ऐतिहासिक इमारत के ऊंचे मेहराबों के नीचे अंग्रेजी साहित्य के पन्नों को पलटते हुए सत्यदेव दुबे के विचारों को नए पंख मिल रहे थे। कॉलेज उनके लिए सिर्फ पढ़ाई की जगह नहीं, बल्कि एक जादुई प्रयोगशाला बन गया था। वहां वह रोज नए विचार गढ़ते थे, लेकिन इस वैचारिक उड़ान के पीछे एक कड़वी हकीकत भी थी, पेट की भूख और खाली जेब। माया नगरी की चमचमाती रोशनियों के बीच इस नौजवान के संघर्ष की कहानी बड़ी बेदर्द मगर बेहद खूबसूरत थी। जब रात को पूरी मुंबई सो जाती, तब सत्यदेव के पास सिर छुपाने की कोई छत नहीं होती थी। कई रातें उन्होंने रेलवे स्टेशनों के ठंडे बेंचों पर या फुटपाथ के सन्नाटे में आसमान को चादर बनाकर गुजारी।
1: श्रोताओं, कहते हैं ना कि जौहरी की नजर में हीरा कभी नहीं छुप सकता। कॉलेज के इन्हीं कई दिनों के बीच नियति ने उनका हाथ थाम लिया। उनकी मुलाकात रंगमंच के उस दौर के सबसे बड़े पारखी और थिएटर यूनिट के मसीहा इब्राहिम अलकाजी से हुई। अलकाजी साहब ने भीड़ में खड़े इस अखड़ स्वाभिमानी और बेहद प्रतिभाशाली लड़के के भीतर सुलगती कला की चिंगारी को पहली ही नजर में पहचान लिया। उन्होंने सत्यदेव को तराशना शुरू किया और बस यहीं से फुटपाथ के उस फकीर का भारतीय रंगमंच के सुल्तान बनने का आधिकारिक सफर शुरू हो गया। कहते हैं, जब दो समंदर आपस में मिलते हैं तो कोई शोर नहीं होता, बस एक गहरी अनंत खामोशी छा जाती है। मुंबई की उस उमस भरी शाम को भी शायद समय कुछ पल के लिए ठहर गया था। ये सिर्फ दो इंसानों की मुलाकात नहीं थी, ये रंगमंच के अतीत और भविष्य का एक ऐतिहासिक आलिंगन था। एक तरफ थे इब्राहिम अलकाजी, अनुशासन का दूसरा नाम, सलीका, संजीदगी और थिएटर का वो कड़क पैमाना जिसे छूना हर किसी के बस की बात नहीं थी, और दूसरी तरफ बिलासपुर की धूल से उठकर आया वो अल्हड़ नौजवान सत्यदेव दुबे।
0: अलका जी का अनुशासन और दुबे का अनगणनपन, इन दोनों का मिलन ऐसा था जैसे बहती हुई उफनती नदी को एक मजबूत बांध मिल गया हो। अलकाजी ने सत्यदेव को शब्दों का सलीका सिखाया और सत्यदेव ने अलकाजी के रंगमंच को अपनी मिट्टी की सौंधी खुशबू दी। इब्राहिम अलकाजी 20वीं सदी के सबसे प्रभावशाली भारतीय थिएटर निर्देशकों में से एक थे। रॉयल एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट से प्रशिक्षित, उन्होंने भारतीय रंगमंच में भारी आधुनिकता और पेशेवर रवैया पेश किया। उन्होंने मोहन राकेश के आषाढ़ का एक दिन और गिरीश कर्नाट के तुगलक जैसे 50 से अधिक नाटकों का निर्देशन किया। 1962 से 1977 तक एनएसडी के प्रमुख के रूप में उन्होंने भारत में अभिनय और रंगमंच की शिक्षा को एक नई दिशा दी। सत्यदेव दुबे एक बहुमुखी रंगकर्मी, अभिनेता, निर्देशक और पटकथा लेखक थे। 1950 के दशक के मध्य में मुंबई आकर वे इब्राहिम अलकाजी की थिएटर यूनिट में शामिल हो गए। अब अलकाजी एनएसडी के लिए दिल्ली चले गए तो दुबे ने थिएटर यूनिट की बागडोर संभाली। उन्होंने गिरीश कर्नाड, बादल सरकार और विजय तेंदुलकर जैसे नाटककारों के प्रमुख नाटकों का निर्माण किया। 1971 में उन्होंने फिल्म शांतता कोर्ट चालुआ है का निर्देशन किया, जिसके लिए उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। अलकाजी और दुबे के बीच का संबंध सत्यदेव दुबे के रंगमंच करियर की शुरुआत इब्राहिम अलकाजी के सानिध्य में ही हुई थी। दुबे ने थिएटर यूनिट में अलकाजी के मार्गदर्शन में काम किया और बाद में उनके द्वारा छोड़े गए समूह का नेतृत्व भी किया। इसके अलावा दुबे ने ही धर्मवीर भारती के अंधा युग की क्षमता को पहचाना था और उसे अलकाजी के पास भेजा था। अलकाजी ने 1962 में एनएसडी में इस नाटक का मंचन किया, जिसने भारतीय रंगमंच के इतिहास में एक नया प्रतिमान स्थापित किया। ये मुलाकात महज एक इत्तेफाक नहीं थी, ये नियति का वो गुप्त समझौता था जिसने फुटपाथ पर सोने वाले एक भूखे फकीर को भारतीय रंगमंच का शहंशाह बनाने की पहली इबारत लिखी थी।
1: सत्यदेव दुबे ने जब महसूस किया कि हिंदी रंगमंच अपने मूल लेखन की कमी से जूझ रहा है, तो उन्होंने एक क्रांतिकारी कदम उठाया। उन्होंने मराठी, कन्नड़, बंगाली भाषा के सर्वश्रेष्ठ समकालीन नाटकों को चुना और उन्हें हिंदी में इस तरह ढाला कि वे नाटक हिंदी भाषी दर्शकों की अपनी रूह का हिस्सा बन गए। गिरीश कर्नाड के हैवदन और ययाति जैसे कन्नड़ नाटकों को हिंदी मंच पर लाकर उन्होंने पौराणिक कथाओं को आधुनिक संदर्भ दिए, तो वहीं बादल सरकार के बंगाली नाटक एवं इंद्रजीत के जरिए उन्होंने उस दौर के युवाओं के भीतर की सामाजिक छटपटाहट और अकेलेपन को आवाज दी। वे सही मायने में भारतीय भाषाओं के बीच एक मजबूत और जीवंत सांस्कृतिक सेतु बन गए थे। दुबे जी का ये दृढ़ विश्वास था कि नाटक भव्य सेट, कीमती पर्दों या भारी भरकम साजो सामान का मोहताज नहीं होता, बल्कि रंगमंच की असली ताकत तो अभिनेता, शब्द और दर्शकों के बीच का सीधा संवाद है। उन्होंने बेहद कम खर्चे में सिर्फ कुछ कर्टन्स, एक दो कुर्सियां और बेहतरीन लाइट अरेंजमेंट के दम पर ऐसे नाटक तैयार किए जो दर्शकों को अंत तक बांधे रखते थे। उनके इस मिनिमलिस्टिक प्रयोग का सबसे बड़ा उदाहरण अंधा युग का मंचन था, जहां उन्होंने किसी बंद ऑडिटोरियम में भारी भरकम खर्चों के बजाय बाण गंगा के खुले खंडहरों को अपना सेट बनाया और प्रकृति तथा माहौल को ही अपने नाटक का एक जीवंत हिस्सा बना दिया।
0: गुरु इब्राहिम अलकाजी के जाने के बाद दुबे जी ने थिएटर यूनिट को देश की सबसे जीवंत रंग कार्यशाला में तब्दील कर दिया, जहां नाटक सिर्फ शाम को मंच पर दिखाने के लिए नहीं होते थे, बल्कि रोज अभिनय, आवाज के उतार चढ़ाव और शब्दों के उच्चारण पर

0: साधना और आत्मखोज का माध्यम था। उन्होंने विजय तेंदुलकर के नाटक गिधारे और सखाराम बाइंडर जैसे नाटकों का निर्देशन किया, जो समाज के पाखंड, मानवीय क्रूरता और दबी हुई कुंठाओं पर बेहद तीखा प्रहार करते थे। इन प्रयोगधर्मी नाटकों को लेकर उस दौर में बड़े विवाद भी हुए और सेंसरशिप की तलवारें भी चली, लेकिन दुबे जी कभी अपने कदम पीछे खींचने को तैयार नहीं हुए। उनका मानना था कि नाटक का काम दर्शक को केवल सुलाना या बहलाना नहीं, बल्कि उसकी सोई हुई चेतना को झकझोर कर जगाना है। इसलिए वे रंगमंच और कलाकारों की आत्मनिर्भरता के बहुत बड़े पैरोकार थे। वे हमेशा लोगों से इस बात का आग्रह करते थे कि नाटक को कभी मुफ्त या पास पर नहीं, बल्कि हमेशा टिकट खरीद कर ही देखना चाहिए। उनका मानना था कि जब एक दर्शक टिकट खरीदता है तो वह न केवल कला का सम्मान करता है, बल्कि उस नाटक और कलाकार की आजादी को भी जिंदा रखता है।
1: श्रोताओं, सत्यदेव दुबे सिर्फ पर्दे के पीछे से धागे हिलाने वाले सूत्रधार नहीं थे, उनके भीतर एक ऐसा अभिनेता भी छुपा था जो मंच की खुशबू पाते ही जाग उठता था। अक्सर जब थिएटर की रिहर्सल खत्म होती या शाम को दोस्तों और शागिर्दों की महफिल जमती तो लोग उनसे कुछ सुनाने की जिद कर बैठते। दुबे जी मुस्कुराते, उनके चेहरे की कड़कड़ाहट पल भर में गायब हो जाती और उनकी आंखें किसी गहरे दार्शनिक सोच में डूब जाती। वे हमेशा धर्मवीर भारती के अंधा युग के उस पात्र की पंक्तियां सुनाते जो उनके दिल के सबसे करीब था, अश्वत्थामा। एक ऐसा पात्र जो भटक चुका था, जो कुंठित था, लेकिन जिसके भीतर सत्य को जानने की छटपटाहट थी। जब दुबे जी अपनी बुलंद और भारी आवाज में हाथों को हवा में लहराते हुए ये संवाद बोलते तो कमरे में बैठा हर शख्स अपनी सुध-बुध खो बैठता था।
0: यह मेरा नहीं, यह उस युग का अंधापन है जिसमें हम सब जीते हैं, जिसमें हम सब मरते हैं। मैंने तो सिर्फ उस प्रतिशोध को चुना जो इस समूचे ब्रह्मांड के माथे पर लिखा था। अब न कोई न्याय है, न कोई धर्म है, सिर्फ एक अंतहीन रात है और मैं हूं। इन पंक्तियों को बोलते हुए उनकी आवाज में जो दर्द, जो गुस्सा और जो दार्शनिक ठहराव होता था, वह सुनने वालों के रोंगटे खड़े कर देता था। उन्हें ऐसे जटिल पात्र बहुत पसंद थे जो सफेद या काले नहीं होते थे, बल्कि इंसानी स्वभाव के भूरे रंगों को दर्शाते थे। वह कहते थे कि नाटक का असली मजा तब है जब वह आपको अंदर से बेचैन कर दे। आज भी जब थिएटर की पुरानी गलियों में अंधा युग का जिक्र होता है तो लोगों के कानों में अश्वत्थामा के रूप में गूंजती सत्यदेव दुबे की वह बुलंद आवाज आज भी सजीव हो उठती है।
1: इसी वैचारिक आजादी और कड़े अनुशासन की पाठशाला से दुबे जी ने अभिनेताओं की एक ऐसी अद्वितीय पौध तैयार की जो आगे चलकर न केवल थिएटर के स्तंभ बने, बल्कि भारतीय सिनेमा के इतिहास के सबसे प्रसिद्ध और दिग्गज अभिनेता कहलाए। उनके तराशे हुए हीरो में अमरीश पुरी, नसीरुद्दीन शाह, ओम पुरी, रत्ना पाठक शाह, अमोल पालेकर और सतीश कौशिक जैसे नाम शामिल थे जिन्होंने अभिनय की परिभाषा ही बदल दी। रंगमंच की इसी धुरी पर काम करते हुए 70 के दशक में सत्यदेव दुबे की मुलाकात मशहूर फिल्मकार श्याम बेनेगल से हुई। ये मुलाकात भारतीय समानांतर सिनेमा के लिए एक ऐतिहासिक मोड़ साबित हुई। दोनों की कलात्मक ट्यूनिंग इतनी बेहतरीन थी कि श्याम बेनेगल के शुरुआती और सबसे प्रभावशाली फिल्मों की आत्मा दुबे जी के शब्द ही बने। दुबे जी ने बेनेगल की कालजयी त्रयी, अंकुर, निशांत और मंथन के संवाद और पटकथा लिखी, जिन्होंने भारतीय सिनेमा को यथार्थवाद का एक नया चेहरा दिया। इसके बाद 1977 में आई फिल्म भूमिका के लिए तो उन्हें सर्वश्रेष्ठ पटकथा का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिला। उन्होंने बेनेगल की फिल्म कलयुग की पटकथा पर भी काम किया था।
0: शब्दों का

0: जादू बिखेरने के साथ साथ दुबे जी ने पर्दे पर अपनी अदाकारी का हुनर भी दिखाया। उन्होंने श्याम बेनेगल की ही फिल्म निशांत में एक पुजारी की बेहद जीवंत और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसके अलावा उन्होंने गोविंद निहलानी की मशहूर फिल्म आक्रोश में भी अभिनय किया। इतना ही नहीं, कला सिनेमा से इतर उन्होंने मुख्यधारा के सिनेमा में भी अपनी छाप छोड़ी। उन्होंने साईं पराजपे की बेहद लोकप्रिय फिल्म चश्मे बद्दूर के तीखे और मजेदार संवाद लिखे और निर्देशक उमेश मेहरा की फिल्म हमारे तुम्हारे की पटकथा भी तैयार की। सत्यदेव दुबे ने श्याम बेनेगल की टीवी सीरियल भारत एक खोज में चाणक्य और फिल्म निशांत में पुजारी की भूमिका निभाई। पटकथा लेखन से लेकर कैमरे के सामने अभिनय करने तक सिनेमा का ये पूरा सफर उनके बहुमुखी और अक्खड़ कलाकार होने का सबसे बड़ा प्रमाण था। मशहूर फिल्मकार श्याम बेनेगल सत्यदेव दुबे को भारतीय कला जगत का एक अद्वितीय और अपरिहार्य स्तंभ मानते थे। वे अक्सर दुबे जी के बारे में कुछ बेहद खास बातें कहा करते थे। बेनेगल अक्सर तारीफ करते थे कि दुबे जी के पास अभिनेताओं को तराशने की एक जादुई कला थी। अमरीश पुरी, नसीरुद्दीन शाह और ओमपुरी जैसे दिग्गज कलाकारों को बेनेगल ने अपनी फिल्मों में मुख्य भूमिकाएं दी। वे सब दुबे जी की थिएटर वर्कशॉप की ही देन थे। बेनेगल मानते थे कि दुबे जी जिस अभिनेता पर हाथ रख देते थे वे सोना बन जाता था। श्याम बेनेगल दुबे जी के अक्खड़पन और उनकी फकीरी के मुरीद थे। वे कहते थे कि दुबे एक ऐसे विरल कलाकार थे जिन्होंने कभी पैसों या शोहरत के लिए अपनी कला से समझौता नहीं किया। वे सिनेमा में काम जरूर करते थे लेकिन उनका दिल हमेशा थिएटर के लिए ही धड़कता था। सीधे शब्दों में कहें तो श्याम बेनेगल के लिए सत्यदेव दुबे सिर्फ एक सह लेखक या दोस्त नहीं थे, बल्कि वे उन्हें एक ऐसा क्रिएटिव पार्टनर और थिएटर गुरु मानते थे जिसने भारतीय सिनेमा और रंगमंच को सच बोलना सिखाया।
1: श्रोताओं, वो पूरी तरह से एक फकीर और सन्यासी की तरह जिए, जिनका एकमात्र धर्म और परिवार सिर्फ और सिर्फ रंगमंच ही था। दुबे जी ने जीवन के आखिरी पड़ाव तक नए लड़कों और लड़कियों को तलाशने और उन्हें तराशने का काम कभी बंद नहीं किया। मुंबई का प्रसिद्ध पृथ्वी थिएटर उनका दूसरा घर बन चुका था। वे घंटों वहां के कैफे में ही बैठे रहते थे, जहां कोई भी नया लड़का स्क्रिप्ट लेकर उनके पास आ सकता था। वो बिना किसी फीस के सिर्फ चाय की चुस्कियों पर नए निर्देशकों को नाटक की बारीकियां सिखाते थे। उन्होंने हमेशा नए और युवा नाटककारों को मंच दिया, क्योंकि उनका मानना था कि थिएटर को जिंदा रखने के लिए नए खून और नए विचार का आना बेहद जरूरी है।
0: थिएटर और फिल्मों के अलावा दुबे जी ने जन माध्यमों की ताकत को भी बहुत पहले पहचान लिया था। उन्होंने धर्मवीर भारती के अंधा युग को न केवल मंच पर उतारा, बल्कि दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो के लिए भी उसके कई प्रयोग किए। उन्होंने ध्वनि और संवाद के उतार चढ़ाव का ऐसा ताना बाना बुना कि बिना दृश्यों के भी सिर्फ आवाज के दम पर दर्शकों के सामने महाभारत के युद्ध का सन्नाटा सजीव हो उठता था। रेडियो नाटक के शिल्प को आधुनिक बनाने में भी उनका यह योगदान अतुलनीय है। वे कभी विवादों से डरे नहीं, बल्कि वे मानते थे कि अगर कला समाज में हलचल ना पैदा करे तो वो कला ही नहीं है।
1: श्रोताओं, भारतीय रंगमंच और कला जगत में सत्यदेव दुबे के अद्वितीय क्रांतिकारी और युगांतकारी योगदान के लिए उन्हें समय समय पर देश के सबसे प्रतिष्ठित सम्मानों से नवाजा गया। उनकी इस अनूठी नाट्य साधना और कला के प्रति अटूट समर्पण को सर्वोच्च सम्मान देते हुए साल 1971 में देश की सर्वोच्च कला संस्था द्वारा उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके बाद भारतीय समानांतर सिनेमा को अपनी लेखनी और संवादों से एक नया और यथार्थवादी धरातल देने के लिए साल 1977 में आई उनकी प्रसिद्ध फिल्म भूमिका के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ पटकथा का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला। कला और संस्कृति के क्षेत्र में उनके जीवन भर के संघर्ष, अमूल्य योगदान और एक महान मेंटोर के रूप में उनके कद को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने उन्हें बेहद प्रतिष्ठित कालिदास सम्मान से भी विभूषित किया। आखिरकार उनके इसी फकीराना जज्बे और कलात्मक महानता को सलाम करते हुए साल 2011 में भारत सरकार ने उन्हें देश के तीसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म भूषण से अलंकृत किया, जो उनके जीवन की कला यात्रा पर राष्ट्र की ओर से एक गौरवशाली मोहर थी।
0: दुबे जी मुंबई के एक बेहद साधारण से किराए के कमरे में किताबों और नाटकों की स्क्रिप्ट के बीच अपनी फकीरी में मस्त थे। वे अक्सर अकेले ही मुंबई की लोकल ट्रेनों में सफर करते या पृथ्वी थिएटर के बाहर एक कप चाय हाथ में थामे घंटों बैठे रहते। उनके जीवन में ना तो पैसों का लालच था और ना ही किसी सांसारिक सुख की चाह। उनका कोई पारंपरिक परिवार नहीं था, क्योंकि उन्होंने अपनी कला को ही अपनी संतान और अपना संसार मान लिया था। एक बार किसी ने उनसे पूछा कि आपको अकेलेपन से डर नहीं लगता, तो उन्होंने हंसकर कहा था, जिसके पास शब्दों का मेला हो और मंच की रोशनी हो, वो भला अकेला कैसे हो सकता है। उनका ये निश्चल समर्पण दिखाता है कि वे सिर्फ नाटक करते नहीं थे, वे खुद में एक जीवंत नाटक थे। सत्यदेव दुबे ने जीवन के अंतिम क्षणों तक अपनी कलात्मक ऊर्जा और जीवंतता को बनाए रखा, लेकिन उम्र के आखिरी पड़ाव पर उनका शरीर थकने लगा था। साल 2011 के सितंबर महीने में उन्हें ब्रेन स्ट्रोक हुआ, जिसके बाद वे कोमा में चले गए। इसके बाद अगले कुछ महीनों तक मुंबई के एक अस्पताल में उनका इलाज चलता रहा। आखिरकार अपनी बीमारी से एक लंबा और संजीदा संघर्ष लड़ने के बाद 25 दिसंबर 2011 को 75 वर्ष की आयु में मुंबई के टोपीवाला राष्ट्रीय मेडिकल कॉलेज और BYL नायर चैरिटेबल अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके निधन का कारण लंबे समय से चल रही बीमारी और दिल का दौरा पड़ना था। उनके जाने से भारतीय रंगमंच का एक बेहद प्रखर, निडर और स्वर्णिम युग हमेशा के लिए समाप्त हो गया, लेकिन अपनी कला और विचारों के रूप में वे आज भी हर रंगकर्मी की चेतना में जीवित हैं। अभिनेता अनुपम खेर ने कहा, हिंदी रंगमंच के दिग्गज सत्यदेव दुबे अब हमारे बीच नहीं रहे। रंगमंच के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता अद्भुत थी। यह एक बड़ी क्षति है, उनकी आत्मा को शांति मिले। फिल्म निर्माता महेश भट्ट ने कहा, थिएटर जगत के दिग्गज सत्यदेव दुबे का देहांत हो गया। साथ साथ घूमने फिरने के दिनों की प्यारी यादें मुझे घेर लेती हैं। अलविदा दुबे जी, ढेर सारा प्यार। निर्देशक केन घोष ने कहा, सत्यदेव दुबे के निधन की खबर सुनकर दुख हुआ। उन्होंने बड़ी विनम्रता से इश्क विश्क की नई कास्ट के साथ एक एक्टिंग वर्कशॉप आयोजित की थी। शांता गोखले उन्हें याद करते हुए कहती हैं
1: कि सत्यदेव दुबे को बहस छेड़ना बहुत पसंद था और उन्हें सबसे ज्यादा खुशी तब होती थी जब वो युवा रंगमंच कलाकारों को अपने विचारों को निष्क्रिय रूप से स्वीकार करने के बजाय प्रतिक्रिया देने के लिए प्रेरित कर पाते थे। आधी सदी से भी अधिक समय में उन्होंने हिंदी, मराठी, गुजराती और अंग्रेजी में 100 से अधिक नाटकों का निर्देशन किया, युवा नाटककारों की खोज की और उन्हें अपनी रचनाओं को फिर से लिखने के लिए प्रोत्साहित किया। साथ ही अभिनेताओं की कई पीढ़ियों को प्रशिक्षित भी किया। आप हमेशा कलाकारों और अभिनेताओं के दिलों में मशाल बनकर जलते रहेंगे। दिग्गज अभिनेता नसीरुद्दीन शाह ने सत्यदेव दुबे को अपना थिएटर गुरु माना है। वो अक्सर याद करते हैं कि कैसे दुबे जी ने उन्हें मंच पर बिना डरे संवाद बोलना और अपनी ऊर्जा को सही जगह इस्तेमाल करना सिखाया। उन्होंने दुबे जी को एक निडर, स्पष्टवादी और रंगमंच के प्रति जुनूनी व्यक्ति बताया।
0: सत्यदेव दुबे अक्सर कहा करते थे कि एक सच्चे अभिनेता का काम केवल संवाद बोलना या चेहरे पर मुखौटा लगाना नहीं है, उनके लिए अभिनय एक आत्मसमर्पण था। वह कहते थे, एक अच्छा अभिनेता वह नहीं है जो मंच पर आकर खुद को दिखाए, बल्कि वह है जो मंच पर आकर अपने अहंकार को पूरी तरह मिटा दे और उस पात्र को अपने भीतर जीने दे। अभिनेता का शरीर और उसकी आवाज सिर्फ एक माध्यम है, असली खेल तो उसकी आत्मा की ईमानदारी का है। सत्यदेव दुबे आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन भारतीय कला जगत उनके जिक्र के बिना हमेशा अधूरा रहेगा। वे एक ऐसे फकीर थे जिन्होंने कभी महलों की चाह नहीं की, क्योंकि उनके हिस्से में मंच की वो जादुई रोशनी थी जो इतिहास बदल देती है। उन्होंने सिनेमा को दिग्गज अभिनेता और कालजयी शब्द दिए और हमें सिखाया कि कला कभी मनोरंजन के लिए नहीं, बल्कि समाज को झकझोरने के लिए होती है। तो श्रोताओं, कला कल्लोलिनी में आज इतना ही। अगले भाग में हम आपको फिर ऐसे ही महान शख्सियत से रूबरू कराएंगे। रंगमंच के कबीर फिल्मकार और नाटककार सत्यदेव दुबे जी पर चर्चा आपको पसंद आई होगी। अब समय है आपसे विदा लेने का। जाते जाते हम आपको बताना चाहेंगे, इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन किया था संतोष कुमार वर्मा ने, परिकल्पना अदिति गौड़, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी और मैं था दानिश, और लेखन दीपक नेमा।
1: आपके लिए इस कार्यक्रम को प्रस्तुत किया मैंने यानी मनीषा,
0: और मैं दानिश। नमस्कार।
1: सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8, देश का चैनल देश के लिए।
2: अभी आप सुन रहे थे हमारा कार्यक्रम कला कल्लोलनी 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। यह रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण है, देश का चैनल देश के लिए। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून इन किया है रेडियो आजाद हिंद। प्रस्तुत है कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद रेडियो रूपक।
3: क्या दिल ने कहा, क्या तुमने सुना।
4: हाय, मैं हूँ ईशा और आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
5: स्वराज संस्थान संचालनालय मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग प्रस्तुत करते हैं स्वामी विवेकानंद के आदर्शों और उनके विचारों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद।

0: स्वामी जी कुमारी मूलर और सेवियर दंपत्ति के साथ यूरोप भ्रमण करने गए। वहां स्विट्जरलैंड और जर्मनी भ्रमण कर वे एल्प्स पर्वत के मनोरम स्थानों को देखकर मुग्ध हुए थे। उन्हें अपने हिमालय पर्वतीय प्रदेश की याद आ रही थी। उनका मन हुआ, क्यों ना हिमालय की सुंदर घाटी में एक आश्रम बनाया जाए। परवर्ती काल में सेवियर दंपत्ति की सहायता से उनका यह सपना पूरा हुआ। अल्मोड़ा के पास मायावती आश्रम आज भी स्वामी जी की स्मृति संजोए स्थित है।
1: जर्मनी से प्रोफेसर डायसन के आमंत्रण पर स्वामी जी उत्तरी जर्मनी के कील बंदरगाह गए। वहां से पुनः इंग्लैंड वापस आए। प्रोफेसर डायसन स्वामी जी से बहुत प्रभावित हुए थे। वे और कुछ दिन स्वामी जी के संग बिताने के लिए उनके साथ लंदन आए।
0: लंदन वापस आकर स्वामी जी नए उत्साह के साथ व्याख्यान देने लगे। इस बार वे वेस्ट मिनिस्टर अंचल में ठहरे, जहां गुडविन भी अमेरिका से आ गए और स्वामी अभयानंद भी उन्हीं के साथ रहने लगे। इस बार स्वामी जी ज्यादातर वेदांत दर्शन पर बोले। उन्हें राजयोग और ध्यान के विषय में भी बोलना पड़ता था।
1: प्रोफेसर डायसन प्रायः स्वामी जी के पास आते और वेदांत के गूढ़ अर्थ समझते। अब उन्हें समझ में आ गया कि पाश्चात्य दृष्टिकोण लेकर भारतीय शास्त्रों का अर्थ समझना अत्यंत कठिन है। उसे समझने के लिए पाश्चात्य शिक्षा दीक्षा, संस्कृति तथा राजनीति का आवरण उतारकर प्राच्य के खुले आकाश के नीचे खड़े होना होगा। इधर प्राध्यापक मैक्स मूलर के साथ भी स्वामी जी का पत्र व्यवहार चल रहा था। इस तरह इन तीन मनीषियों के आपसी सहयोग से उस समय वेदांत प्रचार का क्षेत्र काफी विस्तृत हो गया था।
0: उन्होंने ईसा मसीह के उपदेशों का गहन अध्ययन किया और बाइबिल का गूढ़ अर्थ समझा। इसके फलस्वरूप पाश्चात्य विचार जगत ने वेदांत में एक नया और पूर्ण जीवन दर्शन का आविष्कार किया था। स्वामी जी के भाषण केवल शब्द मात्र नहीं थे, बल्कि शब्दों के माध्यम से शक्ति संचारित होकर श्रोताओं को अभिभूत कर देती थी। सारे व्याख्यान वे बिना तैयारी के ही देते।

0: उन दिनों स्वामी जी के छोटे भाई महेंद्र नाथ दत्त इंग्लैंड में पढ़ाई करने आए थे। उन्होंने उस काल का स्मरण करके लिखा है कि
1: व्याख्यान शुरू होने के पहले तक स्वामी जी हंसी मजाक और हल्की फुल्की बातें करते रहते थे। मंच पर चढ़ते समय गुडविन उनके कानों में उस दिन के प्रवचन का विषय बता देते थे। उस समय उनके चेहरे पर एक अपूर्व परिवर्तन आता, वे एक अलग ही व्यक्ति बन जाते, जैसे दैवी प्रेरणावश भाषण शुरू कर देते। बाद में आशुलिपिक गुडविन जब उन्हें उनके भाषणों को लिखकर दिखाते तो वे अवाक हो जाते और कहते,
2: गुडविन ये मेरे भाषण है, मैंने कहा था ये सब, तुमने गलती तो नहीं की।
3: उन दिनों स्वामी जी का भाषण सुनने अनेक विद्वान आते थे जो स्वयं भी भाषणकार थे। उन लोगों ने बाद में कहा था कि वे स्वामी जी की भाषण शैली का अनुकरण करने लगे थे। गंभीर विषयों को सरल बनाकर समझाने में स्वामी जी का जोड़ नहीं था।
0: अमेरिका तथा इंग्लैंड का कार्य सुव्यवस्थित हुआ देख अक्टूबर से ही स्वामी जी के मन में भारत लौटने का विचार हो गया और पत्रों एवं वार्तालापों के दौरान उन्होंने अपनी ये इच्छा घनिष्ठ मित्रों के सम्मुख व्यक्त भी की। अतः ये तय हुआ कि स्वामी जी गुडविन और सेवियर दंपत्ति के साथ भारत जाएंगे। गुडविन इंग्लैंड से ही जहाज में जाएंगे और समुद्र यात्रा कम करने के लिए स्वामी जी और सेवियर दंपत्ति स्थल पथ से इटली के नेपल्स तक जाएंगे और वहां से जहाज में सवार होंगे।
3: नॉर्थ जर्मन लॉयड कंपनी के एक नव निर्मित जहाज का टिकट खरीदा गया जो 30 दिसंबर को नेपल्स से कोलंबो जाने वाला था। प्रिंस रीजेंट लियोपोल्ड जहाज में स्थान मिला। सेवियर दंपत्ति स्थायी रूप से भारत में ही निवास करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने अपनी स्थायी व अस्थायी सभी संपत्ति बेच दी। मिस मूलर थोड़े दिनों बाद अपनी सेविका के साथ भारत आने वाली थी। मिस मूलर ने स्त्री शिक्षा के प्रचार के लिए धन देने का वादा किया था। स्वामी जी ने मन ही मन सोच रखा था कि मार्गरेट नोबल को भारत बुलाकर नारी विद्यालय का भार उन्हें सौंपेंगे।
0: सन 1896 ईस्वी के नवंबर दिसंबर में सूखे के फलस्वरूप भारत में अकाल पड़ा। इसकी खबर अखबारों में पढ़कर स्वामी जी का मन अकाल पीड़ितों के लिए रो पड़ा। उन्होंने कुछ पैसे इंडियन मिरर को भेजे। राहत कार्य के लिए कुमारी एमलिन साउटर ने भी धन दिया। अतः ये कहा जा सकता है कि इसी प्रकार भावी रामकृष्ण मिशन के सेवा कार्यों का सूत्रपात हुआ था।

0: इधर श्रीमती ओली बुल ने स्वामी जी के पत्रों से उनके स्वदेश वापस जाने की खबर जानकर लिखा कि कलकत्ते में स्थायी मठ की स्थापना के लिए वे धन देना चाहती हैं। स्वामी जी ने तत्काल वो धन स्वीकार नहीं किया। संपूर्ण रूपरेखा तैयार कर लेने के बाद उन्होंने श्रीमती बुल से सहायता लेकर बेलूर मठ की स्थापना की।
1: लंदन के छात्र छात्राओं को जब ज्ञात हुआ कि स्वामी जी स्वदेश लौट रहे हैं तो वे दुखी हो गए। स्टर्डी महोदय के नेतृत्व में एक विदाई समारोह का आयोजन किया गया। विदाई के पूर्व रविवार 13 दिसंबर को रॉयल सोसाइटी ऑफ पैटर्न्स इन वाटर कलर्स के भवन में उस दिन जगह कम पड़ गई और स्वामी जी भी भारी मन लिए वहां उपस्थित हुए। श्री एरिक हैमंड ने लिखा है,
2: वो लंदन का एक रविवार था। दुकानों के द्वार बंद थे, व्यापार वाणिज्य स्थगित थे और महानगर के राजमार्ग, जो वाहनों से कोलाहल पूर्ण रहते हैं, कुछ समय के लिए अपेक्षाकृत शांत थे। लंदनवासी रविवार की अपनी विशिष्ट वेशभूषा में शांत बल्कि मौन चर्च तथा प्रार्थना भवन की ओर चले जा रहे थे। जिन स्वामी जी का आगमन उनके मित्रों के हृदय में गहरा स्थान बना चुका था, आज अपराह्न वे लोग उन्हें अलविदा कहने वाले थे। जिस हॉल में उन्हें विदाई दी जा रही थी वो चित्रकारों के लिए निर्दिष्ट था और उसकी दीवारों पर अनेक चित्र शोभायमान हो रहे थे। अंग्रेजों की राजधानी के जिस मंच से स्वामी जी अपना अंतिम भाषण देने वाले थे वो विविध प्रकार के पत्र पुष्पों से सुसज्जित था। समाज के सभी प्रकार के सभी श्रेणियों के लोग वहां उपस्थित थे, परंतु सबके मन में केवल एक ही कामना जाग रही थी, उन्हें देखने की, उनकी वाणी सुनने की और यदि संभव हुआ तो एक बार उनका वस्त्र स्पर्श करने की। मंच के ऊपर निर्दिष्ट समय पर गायकों एवं वादकों की सुमधुर सुर लहरी उठ रही थी। स्वामी जी ने जिन नर नारियों की श्रद्धा और प्रीति पाई थी उसे व्यक्त करने के लिए उन लोगों ने व्याख्यान दिए। उन्हें सुनकर बीच बीच में तथा व्याख्यानों के अंत में तुमुल हर्षध्वनि उठ रही थी। अनेक लोग मौन नीरव तथा भारी मन लिए बैठे रहे। कुछ आंखें नम थी। केवल एक ही आकृति, एक ही रूप उस वेदना से संघर्ष करते हुए उस पर विजय पा रही थी। गैरिक वर्ण के वेश धारण किए स्वामी जी जैसे एक प्रकाश पुंज के समान लोगों के बीच विचरण कर रहे थे। उन्होंने कहा,
3: हाँ हाँ, हम फिर मिलेंगे, अवश्य मिलेंगे।
1: इस अवसर पर स्वामी जी ने हेमंत से कहा था,
3: संभव है कि मैं शरीर को एक जीर्ण वस्त्र के समान त्याग कर बाहर आ जाना पसंद करूं, परंतु मैं कार्य करना बंद नहीं करूंगा। मैं मानव जाति को सर्वत्र और तब तक प्रेरणा और सहायता देता रहूंगा जब तक सभी लोग सर्वोच्च तत्व को जान नहीं लेते।
0: इंग्लैंड में स्वामी जी का अंतिम व्याख्यान हुआ 10 दिसंबर को। विषय था अद्वैत वेदांत। इस भाषण और इंग्लैंड में उनकी सफलता तथा विदाई समारोह के बारे में इंडियन मिरर में छपा,
4: 10 दिसंबर 1896 ईस्वी को अद्वैत वेदांत पर स्वामी जी का जो आखिरी व्याख्यान हुआ उस समय पूरा सभागार श्रोताओं से भर गया था कि कहीं कोई इस अंतिम भाषण से वंचित ना रह जाए। इस कारण वे लोग विशेष चिंतित थे। जिस ध्यान के साथ इन विचारशील लोगों ने स्वामी जी के लंदन के व्याख्यान सुने वो इस बात का सूचक है कि स्वामी जी की वेदांत की व्याख्या के प्रति वे कितनी गंभीरता के साथ आकृष्ट हुए थे। ये व्याख्या एक ऐसे व्यक्ति के मुख से हुई जिनके व्यक्तित्व ने अनेक लोगों की श्रद्धा तथा अन्य अनेक लोगों की प्रीति को आकृष्ट किया था। उस व्याख्या की उपयोगिता न केवल पाश्चात्य जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में थी अपितु उस प्राच्य जीवन में भी वो उतना ही कारगर था जहां सर्वप्रथम इसे व्यक्त किया गया। उस उदार तथा विवेकपूर्ण व्याख्या के फलस्वरूप विभिन्न मतवादों के लोग, यहाँ तक कि चर्च ऑफ इंग्लैंड के अनेक पादरी आकृष्ट हुए और ये लोग मिलकर स्वामी जी की शिक्षाओं को यथासंभव दूर दूर तक प्रसारित करने में लग गए। स्वामी जी किसी भी संप्रदाय के पक्षपाती नहीं हैं, वे धर्म के प्रचारक हैं, किसी विशेष धर्म के नहीं। धर्म के विराट क्षेत्र में जो लोग किसी विशेष मत के पक्षधर हैं, वे भी उनके साथ विरोध करने का कोई कारण नहीं पा सके। विदाई की सभा में जो लोग उपस्थित हुए थे, उनमें सामरिक तथा असामरिक विभागों के ऐसे अनेक पुराने राज कर्मचारी भी थे जिन्होंने अपने जीवन के अनेक वर्ष भारत में बिताए थे, इसलिए वे भारत के बारे में काफी कुछ जानते थे।
1: लंदन में स्वामी जी की सफलता के बारे में सुप्रसिद्ध राजनीतिक नेता श्री विपिन चंद्रपाल ने 15 फरवरी 1899 के इंडियन मिरर में लिखा था,
5: भारत के कुछ लोग सोचते हैं कि इंग्लैंड में स्वामी विवेकानंद द्वारा प्रदत्त व्याख्यानों का कोई विशेष फल नहीं हुआ और मित्र तथा अनुयायियों ने उनके कार्य को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया है, परंतु यहाँ पर आकर मैंने देखा कि उन्होंने यहाँ पर सर्वत्र एक उल्लेखनीय प्रभाव डाला है। इंग्लैंड के अनेक अंचलों में मेरी ऐसे बहुत से लोगों से मुलाकात हुई जो स्वामी विवेकानंद के प्रति अत्यंत श्रद्धा एवं सम्मान का भाव रखते हैं। यद्यपि मैं उनके संप्रदाय का नहीं हूँ और ये सत्य है कि मेरा उनसे काफ़ी मतभेद है, तथापि मैं ये कहने को बाध्य हूँ कि विवेकानंद ने यहाँ के अनेक लोगों की आँखें खोल दी तथा उनके हृदय को उदार बना दिया है। उनकी शिक्षाओं के फलस्वरूप अब यहाँ के अधिकांश लोग दृढ़तापूर्वक विश्वास करने लगे हैं कि प्राचीन हिंदू शास्त्रों में अद्भुत आध्यात्मिक सत्य छिपे पड़े हैं। उन्होंने केवल इसी भाव को फैलाया हो ऐसी बात नहीं, वह इंग्लैंड तथा भारत के बीच एक स्वर्णिम संबंध स्थापित करने में सफल भी हुए हैं।
0: वे आगे एक घटना के बारे में लिखते हैं,
5: कल शाम को मैं दक्षिणी लंदन के निवासी अपने एक मित्र से मिलने जा रहा था। रास्ता भूलकर मैं एक मोड़ के किनारे खड़ा होकर सोच रहा था कि किस ओर जाऊं। उसी समय एक महिला एक बालक के साथ मेरी ओर आई। मुझे लगा कि संभवतः वे मुझे रास्ता दिखा देना चाहती हैं। उन्होंने मुझसे कहा, महाशय शायद आप अपना रास्ता ढूंढ रहे हैं, क्या मैं आपकी सहायता कर सकती हूँ। मुझे रास्ता बताने के बाद वे बोली, इन्हें संवाद पत्रों से मुझे पता चला कि आप लंदन आ रहे हैं। आपके ऊपर दृष्टि पड़ते ही मैंने अपने पुत्र से कहा, वो देखो स्वामी विवेकानंद खड़े हैं। चूंकि मुझे ट्रेन पकड़ने की जल्दी थी, अतः मेरे पास ठहर कर उन्हें ये बताने का समय नहीं था कि मैं विवेकानंद नहीं हूँ, और मैं शीघ्रतापूर्वक वहाँ से चला गया। तथापि विवेकानंद को देखे बिना ही उनके प्रति उक्त महिला की महान श्रद्धा को देखकर मैं सचमुच ही आश्चर्यचकित रह गया। इस सुखद घटना पर मैंने अतीव आनंद का अनुभव किया था और अपनी गिरवा पगड़ी को धन्यवाद दिया जिसने सम्मान दिलाया था। इस घटना के अतिरिक्त भी मैंने यहाँ ऐसे अनेक शिक्षित अंग्रेज सज्जनों को देखा है जो भारत के प्रति श्रद्धा रखते हैं और भारत के धार्मिक तथा आध्यात्मिक तत्वों को अतीव आग्रह के साथ सुनते हैं।
0: इंग्लैंड के निवासियों के प्रति पूर्ण आस्था एवं प्रीति लेकर ही स्वामी जी ने स्वदेश की ओर प्रस्थान किया। 28 नवंबर के अपने पत्र में उन्होंने हेल बहनों को बताया,
6: अंग्रेज जाति के बारे में मेरी जो धारणा थी वो पूर्णता बदल चुकी है। अब मैं समझ रहा हूं कि अन्य सब जातियों की अपेक्षा प्रभु ने उन्हीं पर इतनी कृपा क्यों की है। वे दृढ़ प्रतिज्ञ हैं, पूर्णतः निष्ठावान हैं और साथ ही उनमें गहरी भावुकता भी है। बस बाहर कठोरता का एक आवरण भर है, उसे तोड़ते ही तुम्हें अपनी पसंद का आदमी मिल जाएगा।
0: भारत पहुंचकर उन्होंने और भी स्पष्ट भाषा में कहा,
6: अंग्रेजों के प्रति मुझसे अधिक घृणा का भाव लेकर कभी किसी ने इंग्लैंड की धरती पर पांव नहीं रखा होगा। इस सभा मंच पर जो अंग्रेज बंधु उपस्थित हैं वे इस बात की पुष्टि करेंगे, परंतु जितना ही मैं उन लोगों के बीच रहने लगा, जितना ही उनके साथ मिलने जुलने लगा, जितना ही ब्रिटिश जाति के जीवन यंत्र की प्रक्रिया देखने लगा, उतना ही मेरी समझ में आने लगा कि उस राष्ट्र का हृदय कहां स्पंदित हो रहा है। उतना ही मैं उनसे प्रेम करने लगा। और भाइयों, यहां पर ऐसा कोई भी उपस्थित नहीं है जो अंग्रेज जाति को मुझसे अधिक प्रेम करता हो। मुझे लगता है कि अमेरिका की अपेक्षा इंग्लैंड में मेरा कार्य कहीं अधिक संतोषजनक रहा है। निर्भीक, साहसी एवं अध्यवसायी अंग्रेज जाति के मस्तिष्क में यदि कोई भाव किसी तरह एक बार भी संचारित किया जा सके, हालांकि उनकी खोपड़ी दूसरी जातियों की अपेक्षा स्थूल है और उसमें कोई भाव आसानी से नहीं घुसता, तो वो वहीं दृढ़ हो जाता है, फिर बाहर नहीं आता। उस जाति की अमित व्यवहारिक शक्ति के द्वारा वो बीज रूपी विचार अंकुरित होकर अविलंब फलदायी होता है। इस जाति में कल्पना कम है और कर्मठता अधिक है। अंग्रेज वीरों की जाति हैं, यथार्थ क्षत्रिय हैं। अपनी भावनाओं को छिपाए रखना ही उनकी शिक्षा है, परंतु इस बहादुरी के ठाट बाट, इस क्षत्रियत्व के आवरण के पीछे अंग्रेज हृदय की भावनाओं का गहन स्रोत छिपा हुआ है। यदि आप एक बार भी वहां तक पहुंच सके, यदि एक बार भी आपकी अंग्रेजों से घनिष्ठता हो जाए, यदि आप उनसे घुल मिल जाएं और एक बार भी अपने समक्ष उनके हृदय के भाव व्यक्त करा सकें, तो वे सदा के लिए आपके मित्र हो जाएंगे, सदा के लिए आपके दास हो जाएंगे। इस कारण मेरी राय में अन्य स्थानों की अपेक्षा इंग्लैंड में मेरा प्रचार कार्य अधिक संतोषजनक रहा है।
1: सचमुच ही स्वामी जी इंग्लैंड के निवासियों का हृदय जीत सके थे और स्वयं उनके प्रति प्रेम दिखाकर उन्होंने प्राच्य और पाश्चात्य के वास्तविक मिलन का पथ प्रशस्त कर दिया था।

अभी आप सुन रहे थे स्वामी विवेकानंद के विचारों और आदर्शों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: अभी आप सुन रहे थे रेडियो रूपक युग प्रवर्तक विवेकानंद। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर।
2: और अब दीजिए अपने रेडियो मित्र डॉक्टर रानी रैकवार भारती को अनुमति। सुनिए राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम।